नमस्कार, हम विविध भारती से बोल रहे हैं। आज बुधवार है। शक संवत 1948 के वैशाख मास की 23वीं तिथि, तदनुसार 13 मई सन 2026। हम अपनी श्रोताओं का स्वागत करते हैं।

श्रोताओं, हम आपको बता दें कि हमारे कार्यक्रम डीटीएच और इंटरनेट स्ट्रीमिंग पर उपलब्ध हैं। इसके अलावा न्यूज ऑन एआईआर ऐप के माध्यम से आप हमारे कार्यक्रम दुनिया के किसी भी कोने में दिन के किसी भी समय सुन सकते हैं। सुबह के 6 बजने को हैं। अब आप थोड़ी ही देर में सुनेंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी के पेपर लीक के संबंध में मामला दर्ज किया है। मामले की जांच के लिए विशेष सीबीआई टीमें विभिन्न स्थानों पर भेजी गई हैं। पेपर लीक मामले में राजस्थान पुलिस के विशेष दल ने अब तक 15 लोगों को हिरासत में लिया है। इससे पहले राजस्थान पुलिस ने 7 मई को देहरादून से 5 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनमें कथित मुख्य साजिशकर्ता सीकर का करियर काउंसलर राकेश कुमार भी शामिल था। राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी परीक्षा रद्द कर दी थी। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस कर देगी।
1: हमने इस मैटर को सीबीआई को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको जेल भेजेंगे ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो। इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी।
0: तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित तमिलग वेत्री कड़गम टीवी के सरकार को विधानसभा में आज अपना बहुमत साबित करना है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय विधानसभा में विश्वास मत परीक्षण से पहले समर्थन जुटाने के लिए सहयोगी दलों के नेताओं के साथ बैठकें कर रहे हैं। विधानसभा में अब टीवीके के पास लगभग 150 विधायकों का समर्थन है। इस बीच कल तमिलनाडु की राजनीतिक स्थिति में नाटकीय मोड़ आया जब अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम सरकार को समर्थन देने को लेकर दो गुटों में बंट गई। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एडापड्डी के पलानी स्वामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवीके सरकार का समर्थन न करने का निर्देश दिया है। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले दूसरे गुट ने एसपी वेलुमणि को विधायक दल का नेता चुना है। अम्मा मक्कल मुनेत्र कड़गम के इकलौते विधायक एस कामराज को टीवी के सरकार को समर्थन देने की घोषणा के बाद पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के सरकार में आने के बाद राज्य की पुलिस ने कानून व्यवस्था और राजनीतिक हिंसा पर कड़ा रुख अपनाया है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था ने सभी पुलिस आयुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और रेलवे पुलिस अधिकारियों को कई अहम निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों में 2021 विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के सभी मामलों की नए सिरे से जांच करने को कहा गया है। पुलिस ने सीमा पार तस्करी, अवैध पशु बाजारों, बूचड़खानों और अवैध खनन के विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम

0: शंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुख बैठक में भाग लेंगे। श्री जायसवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से ऊर्जा सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल आज से भूटान के दौरे पर रहेगा। इसका मुख्य उद्देश्य भारत भूटान संबंधों को और मजबूत करना है। 51 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल में राज्यसभा और लोकसभा के सांसद और विदेश मंत्रालय के अधिकारी शामिल हैं। राजस्थान के सीमावर्ती जिले भीषण लू की चपेट में हैं। कई स्थानों पर तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। कल राज्य में सबसे गर्म स्थान बाड़मेर रहा, जहां अधिकतम तापमान 48.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जयपुर मौसम केंद्र के निदेशक ने बताया कि राज्य के पश्चिमी जिलों में अगले 3 से 4 दिनों तक मौसम की यथास्थिति बनी रहेगी। आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने कल रात सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरात ने अपने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 168 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स की टीम 15वें ओवर में 86 रन पर ही सिमट गई। प्रतियोगिता में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला शाम 7:30 बजे कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है विविध भारती।
2: वंदन वार।

भूल यदि हो जाए तो चिंता करने की बजाय उसमें सुधार कीजिए। जो कुछ बिगड़ गया हो तो घबराए नहीं, क्योंकि उसका भी उद्धार संभव है। विश्वास बनाए रखें। ये था आज का चिंतन। अब सुनिए भक्ति संगीत।

भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदनवार अब यहीं संपन्न होता है। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं आज के कार्यक्रमों के बारे में जानकारी झरोखा के अंतर्गत। छह बजकर 35 मिनट पर यानी अब से कुछ ही देर बाद आप सुनेंगे श्री रामचरित मानस का भाग 187। छह बजकर 45 मिनट पर और शाम को पुनः 6:45 पर संगीत सरिता कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे श्रृंखला ऐसी लागी लगन, कलाकार गायक अनूप जलोटा। इस श्रृंखला का भाग दूसरा प्रसारित होगा। भूले बिसरे गीत ये कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 7 बजे 7:30 पर हम ही राही प्यार की। सुबह 8:15 पर और पुनः दिन में

7:30 पर हम ही राही प्यार की। सुबह 8:15 पर और पुनः दिन में 2 बजे प्रसारित की जाएगी त्रिवेणी। 8:30 पर कार्यक्रम चित्रलोक प्रस्तुत किया जाएगा। नौ पर आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित रहेगा पार्श्व गायक मनहर उदास पर। 11 के अंतर्गत सुबह 10 बजे सुनिएगा सेल्यूलाइट के सितारे। अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की कांचन प्रकाश संगीत से बातचीत। 11:00 12:05 पर यादों की महफिल सजाई जाएगी और सुरीला सफर आप तय करेंगे दोपहर 1 बजे।

दोपहर 2:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सदाबहार नगमे और 3 बजे कार्यक्रम सखी सहेली के अंतर्गत इन विषयों पर बातचीत होगी, खाने के लिए जिए या जीने के लिए खाते हैं, साड़ियां, साड़ियों का संसार जिसके अंतर्गत बात होगी पश्मीना साड़ी की, शब्द हमारे, विचार आपके, इसके अंतर्गत चर्चा की जाएगी आत्मविश्वास की और व्यंजन में भेलपुरी और दाबेली के बारे में बताया जाएगा। पिटारा जिसके अंतर्गत आप सुनेंगे आज के मेहमान, शाम 4 बजे शायर और सेवानिवृत्त केंद्र निदेशक राजेश रेड्डी से यूनुस खान की बातचीत आप सुनेंगे। छाया गीत ये कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 5 बजे 5:30 पर कार्यक्रम तराने नए पुराने।

6:35 पर शाम को आप सुनेंगे कार्यक्रम संध्या रंजन। फौजी भाइयों का कार्यक्रम जयमाला प्रस्तुत किया जाएगा शाम 7:00। 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत सुनिएगा राग अनुराग। 8:15 पर कार्यक्रम चित्रलोक। 8:00 कार्यक्रम चित्रलोक से पहले 8:00 रात्रि 8:00 आप सुनेंगे हवा महल के अंतर्गत झलकी ना बाबा ना, लेखन संजय श्रीवास्तव का, निर्देशक गोविंद पारिख। और 8:15 पर कार्यक्रम चित्रलोक। 9:00 कार्यक्रम आपके लिए। रात्रि 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित रहेगा पार्श्व गायक बैनी दयाल पर। रात्रि 10:00 आप सुनेंगे छाया गीत आलेख एवं स्वर मंदाकिनी जोशी का। रात 10:30 पर सुनिएगा ढलती जाए रात और 11:00 रंग तरंग का पुनः प्रसारण। तो श्रोताओं, ये थी आज के प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब प्रस्तुत है श्री राम चरित मानस। इसका आप भाग 187 सुनेंगे।

माता कैकेयी की कठोरता तथा कुटिलता की भर्त्सना करके भी भरत के हृदय में सुलगती आग शांत नहीं हुई। उधर क्रोधाग्नि में जलते शत्रुघ्न के सामने मंथरा जो आई तो उन्होंने एक लात जमा कर उसकी कुबड़ फोड़ डाली और झूठी पकड़कर उसे खसीटने लगे थे कि स्वभाव से दयालु भरत ने छुड़ाकर उसके प्राणों की रक्षा की। भरत और शत्रुघ्न माता कौशल्या के समक्ष उपस्थित हैं। दिवंगत पिता तथा वनवासी राम लक्ष्मण और सीता को देखने के लिए बिलखते भरत को माता कौशल्या धीर गंभीर भाव से सांत्वना दे रही हैं। पिता के वचन की रक्षा के लिए राम ने राजसी वस्त्राभूषण त्याग कर वलकल धारण किया। ऐसा करते उन्हें न तो विषाद हुआ और न ही हर्ष। मन में न आसक्ति थी न क्रोध। सबके संतोष के लिए जब वे वन को चले तो सीता भी उनके पीछे चल पड़ी। अग्रज के वन गमन का समाचार सुनकर लक्ष्मण भी अयोध्या में नहीं रुके।

0: सरिता में भक्ति भाव पर आधारित श्रृंखला ऐसी लागी लगन। इस श्रृंखला में हमारे अतिथि हैं जाने माने गायक श्री अनूप जलोटा। इनसे बातचीत की है ममता सिंह ने। आज सुनते हैं इस श्रृंखला की दूसरी कड़ी।
1: दोस्तों नमस्कार, हमारे साथ विविध भारती के स्टूडियो में मौजूद हैं श्री अनूप जलोटा जी। एक बार फिर हम उनका स्वागत कर रहे हैं। स्वागत है अनूप जी।
2: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आज की इस कड़ी में हम चाहते हैं कि जिनसे आपने तालीम ली और जो आपके लिए बहुत प्रिय हैं, आदरणीय हैं, वो है आपके पिताजी श्री पुरुषोत्तम दास जलोटा जी। तो आप उनके बारे में बताएं कि उनके जीवन का कौन सा अनमोल दर्शन आपको प्राप्त हुआ।
2: पिताजी बहुत अच्छे शास्त्रीय गायक रहे। उन्होंने बड़े बड़े कलाकारों के साथ म्यूजिक कॉन्फ्रेंसेस में गाया, बहुत लोगों को संगीत सिखाया जिसमें एक मैं भी हूँ। और वो बड़े ही स्ट्रिक्ट टीचर थे। मुझे याद है कि बचपन में मुझे कमरे में बंद कर देते थे तानपुरा लेके और कहते थे 3 घंटे बाद मैं कमरा खोलूंगा और बाहर से मैं सुन रहा हूँ और सिर्फ सा गाना, रे तक नहीं पहुँचना
1: जी।
2: तो 3 घंटे मैं सिर्फ सा गा रहा हूँ। दूसरे दिन फिर बंद कर देते थे कि आज तो रे गाना है, रे गा रहे हैं। तो इस तरह हुआ ये कि वो जो स्वर हैं उन्होंने गले में एक सिंहासन बना के अपने को स्थापित कर लिया। तो वो सुर जो है वो अपनी जगह बैठ गया। इस तरह से उन्होंने खुद भी रियाज किया था और मुझे भी रियाज करवाया। साथ ही साथ मुझे कहते थे कि कम से कम आधा घंटा रोज रियाज जो है वो आईने के सामने करो कि तुमको ऐसा लगे कि कहीं तुम्हारा मुंह बन रहा है या हाथ पैर ज्यादा उठा रहे हो, वो सब नहीं होना चाहिए, बहुत प्लेजेंट मुद्रा होनी चाहिए। तो उसका ही कारण है कि मुझे मुद्रा दोष का सामना नहीं करना पड़ा, नहीं तो अक्सर गायन में मुद्रा दोष आ जाते हैं। तो इस तरह की चीजें जो उन्होंने सिखाई उसका मुझे बहुत लाभ हुआ है। उनकी कृपा, उनका आशीर्वाद तो हमारे साथ है ही हमेशा। और न जाने कितने उनके भजन हैं जो मैं गाता हूँ और उनको और पॉपुलर करने की कोशिश करता हूँ जो उन्होंने किए हैं। तो अधिकतर जो मेरा संगीत है वो मेरे पिताजी का ही है और मैं उसको पॉपुलर कर रहा हूँ।
1: आपने कहा कि पहले दिन उन्होंने सा लगाने को कहा, दूसरे दिन रे, तो हमें बताइए कि 7 सुर कितने दिन में पूरे हुए थे और पहली बार उनके सामने आपने जब परफॉर्म किया तो क्या अनुभव था, कैसी यादें हैं?
2: नहीं, वो 7 सुर जब पूरे हो जाते थे फिर से 7 से शुरू करा देते थे।
1: अच्छा,
2: शुरू हो जाए, तो ये सिलसिला चलता रहता था। लेकिन जब उन्होंने देखा कि अब हाँ सुर जो है इसके टिकने लगे हैं, ठीक होने लगा है, उसके बाद फिर कहते थे कि अब और भी कुछ गाओ साथ साथ। लेकिन शुरू में तो उन्होंने इसी तरह से तालीम दी
1: जी। अगर आपको याद हो तो बंदिश कौन सी सीखी थी पहली?
2: मुझे उन्होंने एक चतुरंग सिखाई थी जी।

0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और अब हम जानना चाहते हैं, हमारे श्रोताओं को बताना चाहते हैं कि उनके गायन की शैली क्या थी और किन राग रागिनियों का वो ज्यादातर प्रयोग करते थे।
1: पिताजी तो बहुत विद्वान थे, तो बहुत से रागों को गाते थे। उनका राग विहाग में लट उलझी सुलझा जा बालम इतना अच्छा सुंदर गाते थे। एक दिन मुझे संगीत मार्तंड पंडित जसराज जी बता रहे थे कि उन्होंने मेरे पिताजी को लट उलझी गाते हुए सुना किसी म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में, और उस दिन से उन्होंने, जसराज जी ने राग विहाग गाना शुरू किया कि इतना सुंदर विहाग कोई गा सकता है तो मैं भी गाऊंगा। उन्होंने भी गाना शुरू किया। तो पिताजी एक ऐसे गायक थे कि अपने गायन से लोगों को इंस्पायर कर देते थे और लोग गाने लगते थे। तो मैं यही कहूंगा कि बहुत से रागों को उन्होंने प्रस्तुत किया है, जो प्रचलित राग नहीं थे उनको भी प्रचलन में लाए।
0: और अब हम चाहते हैं कि पिता पुत्र के बीच एक रिश्ता होता है और गुरु शिष्य के बीच एक रिश्ता होता है, तो उस रिश्ते के बारे में बताइए।
1: मुझे कई बार मेरा गाना सुन के कहते थे कि थोड़ा और रियाज करो, थोड़ी और मेहनत करो, ये जो नाम हो गया है उस चक्कर में मत फंस जाना। लेकिन मुझे भी थोड़ा ये रिग्रेट है, मुझे अफसोस है कि मैं उनसे कुछ 5 साल और सीखना चाहता था, लेकिन मेरा नाम जरा जल्दी हो गया। और एक बार नाम हो जाए फिर हम फंस जाते हैं अपने कार्यक्रमों में, सारी दुनिया घूमने में। तो एक ही रिग्रेट मेरे अंदर है कि मेरा नाम थोड़ा जल्दी हो गया, 5 साल बाद हो जाता तो मैं शायद और अच्छा गाता और सीख पाता।
0: सर, हम सब तो मंत्रमुग्ध होते हैं आपकी गायकी से और पिताजी पुरुषोत्तम दास जी की गायकी सुनकर। अब हम चाहते हैं कि पुरुषोत्तम दास जलोटा जी की कोई भजन आप हमारे श्रोताओं को सुनाएं।
1: हाँ, एक उनका भजन बहुत ही सुंदर है, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। ये भजन बिंदु स्वामी का लिखा हुआ है और मैं चाहूंगा कि पिताजी का गाया हुआ ये भजन पूरा सुनाया जाए।
0: जी।

0: सी लागी लगन। आप सुन रहे हैं जाने माने गायक अनूप जलूटा से ममता सिंह की बातचीत पर आधारित हमारी ये श्रृंखला। हारमोनियम पर संगत की है अजय जुगलेकर ने, तबले पर संगत आशीष झा की है। कल सुनिए इस श्रृंखला की अगली कड़ी।
1: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम भूले बिसरे गीत लेकर हम बस थोड़ी ही देर में हाजिर होंगे।

श्रोताओं, कार्यक्रम भूले बिसरे गीत में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आज आपके साथ पूजा नरानिया। आप सभी विविध भारती सुनने वालों को मेरा नमस्कार। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का पहला गीत, फूल बने अंगारे। इस फिल्म से आवाज लता मंगेशकर की है, रचना आनंद बख्शी की और धुन बनाई है कल्याण जी आनंद जी ने।

भूले बिसरे गीत में ये पहला गीत अभी आपने सुना फूल बने अंगारे फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में आनंद बख्शी की रचना थी धुन बनाई थी कल्याण जी आनंद जी ने। आइए अगला गीत सुनते हैं। नगमा फिल्म से ये गीत है शमशाद बेगम की आवाज में नाशाद का संगीतबद्ध किया गीत।

0: शमशाद बेगम की आवाज में ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म नगमा से। आइए अब सुनते हैं एक संदेश।
1: कहिए,
0: सुनिए एक खुशखबरी।
1: कहिए ना।
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 0224002466। तो

0: उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपने पसंद के गाने।
1: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। आइए आपको सुनवाते हैं अगला गीत, आह फिल्म से। हसरत जयपुरी की रचना है, संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने और आवाज लता मंगेशकर की।

ये गीत आपने सुना फिल्म आह से लता मंगेशकर का गाया गीत था, हस्तर जयपुरी के बोल और संगीत शंकर जयकिशन का। श्रोताओं, एक छोटे से अंतराल के बाद आपसे हम फिर मिलते हैं।

इस छोटे से अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर से कार्यक्रम भूले बिस्तरे गीत में स्वागत है। आइए अब आपको सुनवाते हैं हुस्न का चोर फिल्म से संध्या मुखर्जी का गाया गीत, राजा मेहंदी अली खां का लिखा गीत है, बुलो सी रानी का संगीत।

0: प्रदूषण पर प्रतिबंध लगाएं, पर्यावरण को हम सब बचाएं। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है प्रदूषण, इसका परिणाम होता है भीषण। प्रदूषण के हैं कई कारण, धुआं, कचरा इत्यादि उदाहरण। देश को प्रदूषण मुक्त बनाएं, मन में ये संकल्प बनाएं।
1: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम।
0: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा तीन आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन तीनों आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
1: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। CBI ने कथित नीट पेपर लीक के संबंध में दर्ज किया मामला, देश भर से कई संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। पेपर लीक के आरोपों के कारण 3 मई को आयोजित हुई नीट UG परीक्षा रद्द, अलग से अधिसूचित की जाएगी नई परीक्षा तिथि। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय बैठक कर ईंधन की बचत और संसाधनों के बेहतर उपयोग को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील से जुड़ने की पहल की। मुख्यमंत्री और मंत्रियों की फ्लीट में 50% कटौती सहित दिए कई अहम निर्देश। और मौसम विभाग ने कल से मौसम साफ होने की संभावना जताई, आने वाले दिनों में तापमान बढ़ने के संकेत। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट UG

0: 2026 के कथित पेपर लीक के संबंध में मामला दर्ज किया है। इस प्रकरण में देश भर से कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। जांच एजेंसी ने उच्च शिक्षा विभाग की लिखित शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया है। नीट यूजी परीक्षा के संचालन में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक के संबंध में आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, चोरी और साक्ष्य नष्ट करने तथा सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले की जांच के लिए विशेष सीबीआई टीमें विभिन्न स्थानों पर भेजी गई हैं। इससे पहले राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द कर दी। एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस कर देगी।
1: हमने इस मैटर को सीबीआई को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको जेल भेजेंगे ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो। इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी।
0: इस बीच एनटीए ने स्पष्ट किया है कि दोबारा परीक्षा के लिए फिर से पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगी। एक रिपोर्ट।
2: एनटीए ने कहा है कि परीक्षा के लिए नई तिथि अलग से अधिसूचित की जाएगी। पंजीकरण विवरण, उम्मीदवार की जानकारी और मई 2026 के लिए चयनित परीक्षा केंद्र अपरिवर्तित रहेंगे और दोबारा होने वाली परीक्षा में उपयोग किए जाएंगे। एजेंसी ने कहा है कि दोबारा परीक्षा के लिए फिर से पंजीकरण कराने की जरूरत नहीं होगी और कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। समाचार कक्ष से सुशील चंद्र तिवारी।
0: सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश भर के न्यायालयों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है। इसके लिए सरकार से 40 से 50 हजार करोड़ रुपए का आवंटन सुनिश्चित करने को कहा गया है। समिति 31 अगस्त तक प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल को विस्तृत निष्कर्ष और आवश्यक निधि का विवरण प्रस्तुत करेगी। महोबा जिले में समाजवादी पार्टी के सांसद अजेंद्र सिंह लोधी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है। भाजपा नेता सत्येंद्र प्रताप की शिकायत के बाद महोबा कोतवाली पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने बताया कि भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई और मामले की जांच जारी है। यह विवाद तब शुरू हुआ जब लोधी ने कथित तौर पर प्रधानमंत्री मोदी की उस अपील पर आपत्तिजनक टिप्पणी की जिसमें उन्होंने लोगों से सोना न खरीदने का आग्रह किया था। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल एआईआर न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में ईंधन की बचत और संसाधनों के बेहतर उपयोग को लेकर प्रदेशवासियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान से जुड़ने की अपील के साथ ही कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। एक रिपोर्ट।
3: राज्य सरकार की तैयारियों के संबंध में कल अपने सरकारी आवास पर आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने स्वयं और मंत्रियों की फ्लीट में तत्काल 50% तक कटौती करने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत अनावश्यक वाहनों को हटाया जाएगा। इसी क्रम में मुख्यमंत्री ने मंत्रियों, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से भी जिम्मेदारी निभाने को कहा है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि सरकारी कार्यों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक उपयोग किया जाए और सप्ताह में एक दिन नो व्हीकल डे मनाया जाए। साथ ही मंत्री, सांसद और विधायक भी सप्ताह में कम से कम एक दिन सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें। श्री योगी ने कहा कि सरकारी बैठकों, सेमिनारों और कार्यशालाओं का अधिक से अधिक आयोजन वर्चुअल माध्यम से किया जाए जिससे अनावश्यक यात्रा और ईंधन की खपत कम हो सके। इसके अलावा उन्होंने वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था को भी प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से भी अपील की है कि वे मेट्रो, बस, साइकिलिंग और कार पूलिंग जैसे विकल्प अपनाएं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए सभी को सतर्क और जिम्मेदार व्यवहार अपनाने की आवश्यकता है। समाचार कक्ष से अरुण।
0: प्रदेश के व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कल गोरखपुर में संवाद कार्यक्रम की अध्यक्षता की। कार्यक्रम में सरकार, उद्योग जगत, निजी आईटीआई संचालकों और प्रशिक्षण

0: शिक्षण संस्थानों के प्रतिनिधियों ने युवाओं को रोजगार परक और भविष्य आधारित प्रशिक्षण उपलब्ध कराने को लेकर मंथन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्य मंत्री ने कहा कि कौशल विकास संस्थान आत्मनिर्भर भारत की मजबूत आधारशिला हैं। गोरखपुर के रामगढ़ ताल में आज से अस्मिता नेशनल महिला रोइंग लीग का शुभारंभ होगा। 5 दिवसीय इस प्रतियोगिता में मेजबान यूपी और तेलंगाना सहित विभिन्न राज्यों की 16 टीमों के 275 खिलाड़ी शामिल होंगे। मौसम विभाग ने प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी जिलों में आज भी कहीं कहीं बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने पूर्वी जिलों में कहीं कहीं बिजली गिरने और तेज झोंकेदार हवा चलने का येलो अलर्ट भी जारी किया है। इस बीच प्रदेश के पश्चिमी जिलों में कल हुई तेज बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मुरादाबाद, रामपुर, बदायूं और आसपास के जिलों में तेज हवाओं के साथ हुई बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ। एक रिपोर्ट।
1: बदायूं जिले में जमकर बारिश हुई, जिस कारण जगह जगह पेड़ टूटने से यातायात व्यवस्था प्रभावित हुई। जिले के कई इलाकों में अचानक घने बादलों के साथ आई तेज आंधी से जहां पेड़ टूटकर गिर गए, वहीं तेज बारिश से मौसम सुहाना हो गया। साथ ही बारिश को देखते हुए किसानों ने भी खेतों की जुताई शुरू कर दी है। मौसम के लगातार करवट बदलने से लोगों को गर्मी से भी काफी राहत मिली है। मोहम्मद नईम, आकाशवाणी समाचार, बदायूं।
0: मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश ने आगामी दिनों में तापमान में बढ़ोतरी की संभावना व्यक्त की है।
2: आने वाले दिनों में अगर लखनऊ की बात करें तो मौसम साफ रहेगा और दिन में धूप खिलेगी, लेकिन तापमान ऐसा कोई एक्सट्रीम लेवल तक का नहीं पहुंचेगा। हालांकि तापमान में यहां धीरे धीरे बढ़ोतरी होने की संभावना है। मौसम आने वाले दिनों के लिए पूरी तरीके से साफ है। अब यहां से धीरे धीरे तापमान में हल्की हल्की आने वाले दिनों में बढ़ोतरी होने की संभावना है।
0: आगरा जिले के कमलानगर थाना क्षेत्र में कल यमुना नदी में नहाने के दौरान 6 बच्चे डूब गए। पीएसी और गोताखोरों की रेस्क्यू टीम ने बच्चों को नदी से बाहर निकाल लिया। सभी बच्चों को गंभीर हालत में एसएन मेडिकल कॉलेज भेजा गया, जहां उपचार के दौरान 4 बच्चों की मौत हो गई। अंतिम समाचार मिलने तक 2 बच्चों का उपचार जारी था। पुलिस उपायुक्त नगर सैयद अली अब्बास ने बताया कि सभी बच्चे एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आगरा आए थे। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। सीबीआई ने कथित नीट परीक्षा पेपर लीक के संबंध में दर्ज किया मामला। देश भर से कई संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। पेपर लीक के आरोपों के कारण 3 मई को आयोजित हुई नीट यूजी परीक्षा रद्द। अलग से अधिसूचित की जाएगी नई परीक्षा तिथि। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय बैठक कर ईंधन की बचत और संसाधनों के बेहतर उपयोग को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील से जुड़ने की पहल की। मुख्यमंत्री और मंत्रियों की फ्लीट में 50% कटौती सहित दिए कई अहम निर्देश। और मौसम विभाग ने कल से मौसम साफ होने की संभावना जताई। आने वाले दिनों में तापमान बढ़ने के संकेत। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
3: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। एपीजे अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
4: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा। सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।

आप सभी विविध भारती सुनने वालों को मेरा नमस्कार। आज मैं हूं आपके साथ पूजा नारायणिया और कार्यक्रम हम ही रही प्यार के में मैं आपका स्वागत करती हूं और आपको सुनवाती हूं ये पहला गीत। विश्वास फिल्म से मनहर उदास और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में गुलशन बावरा की बोल, कल्याण जी आनंद जी की बनाई धुन।

आइए अब आपको सुनवाते हैं अगला गीत गुरबानी फिल्म से, कंचन मनहर उदास और आनंद की आवाजों में इंदीवर का संगीत है।

0: कुर्बानी फिल्म से ये गीत आप सुन रहे थे, मनहर उदास कंचन और आनंद की आवाजों में। लीजिए अब सुनिए ये संदेश।
1: एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

0: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
1: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लो।
0: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
1: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं
2: सखी सहेली।
3: श्रोताओं, कार्यक्रम हम ही राही प्यार के में अब वक्त है एक छोटे से अंत।

इस छोटे से अंतराल के बाद हम ही राही प्यार के इस कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आइए अब आपको सुनवाते हैं मंजिल मंजिल फिल्म से गीत आशा भोसले शैलेंद्र सिंह की आवाजों में। मजरू सुल्तानपुरी के बोलो को संगीत में ढाला है राहुल देव बर्मन ने।

0: मंजिल मंजिल फिल्म से ये गीत आशा भोसले और शैलेंद्र सिंह की आवाजों में आपने सुना।
1: एक बेमिसाल शायर।

0: दुनिया बड़ा होने से डरता है।
1: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
1: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
1: कुछ बेमिसाल किस्से।
2: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी है, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
1: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

आइए आपको सुनवाते हैं नदीम श्रवण का की धुन से सजा गीत। गीतकार है समीर और अनुराधा पोडवाल मनहर उदास की आवाजें हैं। फिल्म का नाम है सड़क।

अनुराधा पोडवाल और मनहर उदास की आवाजों में ये गीत आपने सुना फिल्म सड़क से। आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म लावा से अगला गीत। लता मंगेशकर किशोर कुमार की आवाजें हैं, गीतकार आनंद बख्शी और संगीतकार आर डी बर्मन हैं।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में लावा फिल्म से ये गीत आप सुन रहे थे और ये गीत बना कार्यक्रम हम हेरा ही प्यार की आखिरी पेशकश। इसी के साथ कार्यक्रम हम हेरा ही प्यार की यहीं संपन्न होता है। ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन।

0: सुबह के 8 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप हमारे दिल्ली केंद्र से सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवी के सरकार का बहुमत परीक्षण आज। राज्य में राजनीतिक गतिविधियां तेज। अखिल भारतीय एनआर कांग्रेस प्रमुख एन रंगासामी आज पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली सरकार ने ईंधन बचाने के उपाय शुरू किए। केंद्र ने सोना सहित अन्य कीमती धातुओं के उत्पाद शुल्क में वृद्धि की। समय से पहले दस्तक देगा मानसून। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के सरकार को विधानसभा में आज अपना बहुमत साबित करना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि विधानसभा में अब टीवीके के पास लगभग 150 विधायकों का समर्थन है।
2: मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय विधानसभा में विश्वास मत परीक्षण से पहले समर्थन जुटाने के लिए सहयोगी दलों के नेताओं के साथ लगातार संपर्क में हैं। सहयोगियों के समर्थन के साथ साथ टीवी के सरकार को अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम AIADMK से अलग हुए गुट का समर्थन प्राप्त है। इस बीच तमिलनाडु में AIADMK सरकार को समर्थन देने को लेकर दो गुटों में बंट गई। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एडपाड़ी के पलनी स्वामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवी के सरकार का समर्थन न करने का निर्देश दिया है। वरिष्ठ नेता एग्री कृष्णमूर्ति ने चेतावनी दी है कि पार्टी व्हिप का उल्लंघन करने वाले किसी भी विधायक को पार्टी से निष्कासित कर दिया जाएगा। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले दूसरे गुट ने SP वेलुमणि को AIADMK विधायक दल का नेता चुना
3: ने वाले दूसरे गुट ने SP वेलुमणि को AIADMK विधायक दल का नेता चुना है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट।

0: के साथ समाचार कक्ष से जसपाल कौर।
1: वहीं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने राज्य सरकार में आईएएस अधिकारियों का तबादला किया है, जिनमें पूर्व मुख्य सचिव एन मुरुगंदम और वित्त सचिव टी उदयचंद्रन शामिल हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय में ज्योतिषी रिकी राधान पंडित को विशेष कार्य अधिकारी नियुक्त किए जाने पर गठबंधन सहयोगी ने कांग्रेस सांसद शशिकांत सेंथिल और ज्योतिमणि ने इस नियुक्ति पर सवाल उठाए, जबकि सीपीआईएम के राज्य सचिव पी शुनगमुगम ने कहा है कि कदम सरकार के वैज्ञानिक दृष्टिकोण के खिलाफ है। अखिल भारतीय एनआर कांग्रेस के नेता एन रंगासामी आज पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। लोक निवास में आयोजित एक समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाशनाथन श्री रंगासामी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: पुदुचेरी में आज नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। एन रंगासामी एक बार फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। 76 वर्षीय एन रंगासामी का मुख्यमंत्री के रूप में यह पांचवा कार्यकाल होगा। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भाजपा के चुनाव प्रभारी मनसुख मांडविया, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, भाजपा पुदुचेरी प्रभारी निर्मल कुमार सोनाना और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीपी रामलिंगम सहित कई प्रमुख नेताओं के शामिल होने की संभावना है। इससे पहले श्री नितिन नवीन ने पार्टी मुख्यालय में पार्टी पदाधिकारियों और विधायकों के साथ बैठक की। पुदुचेरी से विपिन एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के सरकार में आने के बाद राज्य की पुलिस ने कानून व्यवस्था और राजनीतिक हिंसा पर कड़ा रुख अपनाया है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था ने सभी पुलिस आयुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और रेलवे पुलिस अधिकारियों को कई अहम निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों में 2021 विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के सभी मामलों की नए सिरे से जांच करने को कहा गया है। पुलिस ने सीमा पार तस्करी, अवैध पशु बाजारों, बूचड़खानों और अवैध खनन के विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कथित नीट पेपर लीक मामले में शुभम खैरनार को हिरासत में ले लिया है। राजस्थान पुलिस के अनुरोध पर नासिक पुलिस ने कल महाराष्ट्र के नासिक से शुभम को हिरासत में लिया था। इस महीने की 3 तारीख को आयोजित नीट यूजी परीक्षा कल पेपर लीक के आरोपों के बीच रद्द कर दी गई। नीट यूजी के एक उम्मीदवार के अभिभावक ने लातूर एसपी कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई है और आरोप लगाया है कि एक निजी कोचिंग संस्थान ने परीक्षा से पहले एक मॉक टेस्ट आयोजित किया था, जिसमें कथित तौर पर 42 प्रश्न नीट परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों से मेल खाते थे। इससे पहले राजस्थान पुलिस के विशेष जांच दल ने संदिग्ध नेटवर्क और धन के लेनदेन की जांच के दौरान 15 लोगों को हिरासत में लिया। पुलिस ने कल जयपुर से कथित मास्टरमाइंड मनीष को भी गिरफ्तार किया। इसी महीने की 7 तारीख को सीकर के करियर काउंसलर राकेश कुमार समेत 5 लोगों को देहरादून से गिरफ्तार किया गया था और अगले दिन 4 नीट उम्मीदवारों को गिरफ्तार किया गया। इस बीच राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आज नीट परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर राज्यभर के सभी जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वैश्विक ईंधन कीमतों में वृद्धि के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मितव्ययिता के आह्वान पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने मंत्रियों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों द्वारा सरकारी वाहनों के उपयोग को कम करने की घोषणा की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री, मंत्रियों और अन्य अधिकारियों के वाहन बेड़े में 50% की कमी का आदेश दिया और साप्ताहिक वाहन मुक्त दिवस को प्रोत्साहित किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नागरिकों से ईंधन की खपत कम करने और सोने की अनावश्यक खरीद से बचने का आग्रह किया। राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान मुख्यमंत्री और अन्य लोगों के वाहनों के बेड़े को तत्काल 50% तक कम करने का निर्देश दिया। उन्होंने आधिकारिक काफिलों से अनावश्यक वाहनों को हटाने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने राज्य में घर से काम करने की संस्कृति को प्राथमिकता देने की भी अपील की। उन्होंने सार्वजनिक परिवहन, मेट्रो सेवाओं और उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा संचालित बसों के उपयोग पर विशेष जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मंत्रियों, सांसदों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों को सप्ताह में कम से कम एक दिन सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना चाहिए। सप्ताह में एक बार वाहन निषेध दिवस यानी नो व्हीकल डे

0: का भी आयोजन किया जाना चाहिए। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी अगले आदेश तक अपने काफिले में वाहनों की संख्या कम कर दी है। मुख्यमंत्री के काफिले में अब केवल 8 वाहन होंगे और कोई भी वाहन रैली आयोजित नहीं की जाएगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी कहा है कि मंत्री, विधायक, अधिकारी और सरकारी विभाग सरकारी वाहनों का उपयोग सीमित करेंगे, कार पूलिंग अपनाएंगे और मेट्रो और बस सेवाओं को प्राथमिकता देंगे। सरकार ने सोने और अन्य कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ा दिया है, जो आज से प्रभावी हो गया है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि सोने और चांदी पर 5% तथा प्लैटिनम पर 5.4% आयात शुल्क लगेगा। इसके अलावा अनुपालन मानदंडों की पूर्ति के अंतर्गत कीमती धातु के प्रयुक्त उत्प्रेरक पर 4.35% आयात शुल्क निर्धारित किया गया है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पश्चिम एशिया में चल रहे संकट के चलते लोगों से सोने की खरीदारी से बचने की अपील की थी। सरकार द्वारा सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के वार्षिक और चौथी तिमाही के अनुमानों की प्रकाशन तिथि को संशोधित करते हुए प्रत्येक वर्ष मई के अंतिम कार्य दिवस से बदलकर 7 जून कर दिया गया है। मंत्रालय ने कहा है कि ये संशोधन आंकड़ों की गुणवत्ता को और मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में भारतीय संसद का एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल आज से भूटान की यात्रा पर जाएगा। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य भारत और भूटान के संबंधों को और मजबूत करना है। यात्रा के दौरान प्रतिनिधिमंडल भूटान और भारत के बीच संबंधों के विभिन्न पहलुओं तथा दोनों पड़ोसी देशों के बीच सहयोग बढ़ाने के उपायों पर चर्चा करेगा। भारत कल से शुरू होने वाली 2 दिन की ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधिमंडल भाग लेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज चीन की राजधानी पेइचिंग पहुंचेंगे। वे चीन की 3 दिन की यात्रा पर हैं। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच विभिन्न पहलुओं पर चर्चा होने की उम्मीद है। राष्ट्रपति ट्रंप ने संकेत दिया है कि व्यापार इस वार्ता का प्रमुख विषय रहेगा। युगांडा के राष्ट्रपति युवेरी मुसवेनी ने जनवरी में हुए चुनाव में मिली ऐतिहासिक जीत के बाद अपने 7वें कार्यकाल की शपथ ली। राष्ट्रपति मुसवेनी पिछले 40 साल से राष्ट्रपति पद पर हैं। श्री मुसवेनी ने कल युगांडा की राजधानी कंपाला के कोलोलो इंडिपेंडेंस ग्राउंड्स में आयोजित समारोह में हजारों लोगों के बीच पद की शपथ ली। श्री मुसवेनी ने 71% से अधिक वोट हासिल किये। भारत में इस साल दक्षिण पश्चिम मॉनसून का आगमन इस सप्ताह हो सकता है। मौसम विभाग ने बताया कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून के आगमन के लिए परिस्थितियां अनुकूल बन रही हैं। इस सप्ताह के अंत तक दक्षिण बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में मॉनसून आ सकता है। मौसम विभाग ने बताया कि दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना निम्न दबाव का क्षेत्र कल भी इसी क्षेत्र में था और इससे संबंधित चक्रवाती परिसंचरण समुद्र तल से 4.5 किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ था। इस बीच राजस्थान के सीमावर्ती जिले भीषण लू की चपेट में हैं। कई स्थानों पर तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
2: मौसम केंद्र ने सीमावर्ती बाड़मेर, जैसलमेर और फलोदी जिलों के लिए आज भीषण गर्मी और लू का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा 4 पश्चिमी जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और 6 दक्षिणी पूर्वी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। दिन के साथ रातें भी तप रही हैं और कई स्थानों पर रात का पारा 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर मापा जा रहा है। गर्मी की इन परिस्थितियों से जनजीवन पर खासा असर हुआ है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2-3 दिन तापमान के यही हालात रहने के आसार हैं। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
1: महाराष्ट्र के सांगली जिले की जाट तहसील में कल एक धार्मिक सभा के दौरान दीवार गिरने से 6 लोगों की मृत्यु हो गई और लगभग 15 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। जम्मू कश्मीर में सेना के कल पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के पास कृष्णा घाटी सेक्टर में एक आतंकवादी को मार गिराया गया। हमारे संवाददाता के अनुसार सेना को मिली सूचनाओं के बाद शाम करीब 4 बजे नियंत्रण रेखा के अंदर संदिग्ध गतिविधि देखी गई। इस पर सैनिकों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। खेलों में आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने कल रात सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। प्रतियोगिता में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं उज्बेकिस्तान में आयोजित एशियाई अंडर 17 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में लक्ष्य फोगाट फाइनल में पहुंच गए हैं। 75 किलोग्राम

0: के सेमीफाइनल में फोगाट ने कोरिया के सेंगुमिन ली को पराजित किया। वहीं 8 भारतीय लड़कियों ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए फाइनल में जगह बनाई और 4 ने कांस्य पदक जीते। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है मुकेश कुमार बल।
1: धन्यवाद फरहत। नीट यूजी 2026 की परीक्षा निरस्त करने का समाचार आज सभी अखबारों की सुर्खी बनी है। अमर उजाला लिखता है सीबीआई को पेपर लीक की जांच, एक गिरफ्तार, 20 संदिग्ध हिरासत में। दैनिक भास्कर की खबर है 22 लाख अभ्यर्थियों से खिलवाड़, परीक्षा दोबारा होगी, नई तारीखों की घोषणा जल्द। कल से ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की समिट, नवभारत टाइम्स की सुर्खी है। पत्र लिखता है पीएम से भी संयुक्त मुलाकात, खाड़ी संकट के बीच दिल्ली पर दुनिया की निगाहें। तमिलनाडु में अन्नाद्रमुक के 30 विधायकों का टीवीके को समर्थन का ऐलान, विजय आज बहुमत साबित करेंगे, जनसत्ता सहित कई अखबारों की सुर्खी है। अमर उजाला ने हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों पर लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है नया भारत और बदलती सियासी समझ, संपादक का कहना है कि हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनावों के नतीजे बताते हैं कि देश का मिजाज अब राजनीति में किसी तरह की संकीर्णता को बर्दाश्त नहीं करेगा। कोलकाता से लेकर चेन्नई और तिरुवनंतपुरम तक नए की उम्मीद और पुराने के प्रति गुस्से के चलते मौजूदा व्यवस्था बहती दिखी। दैनिक जागरण ने पेट्रोल और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी के शब्द प्रकाशित किए हैं, पेट्रोल उत्पादों की दिक्कत नहीं लेकिन कंपनियों का घाटा चिंताजनक। शेयर मार्केट में निवेशकों के 9 लाख करोड़ स्वाहा, आखिरी घंटे और बढ़ी गिरावट, सेंसेक्स 1500 प्वाइंट टूटने से मचा हाहाकार। लोकसत्य ने कारोबार पन्ने पर यह खबर प्रकाशित की है। जम्मू श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस बनी लोगों की पहली पसंद, 10 दिनों में करीब 45,000 यात्रियों ने किया सफर, देशबंधु की खबर है। नवभारत टाइम्स ने जनगणना 2027 पर खबर प्रकाशित की है। पत्र लिखता है अब क्यूआर कोड से जनगणना कर्मियों की होगी पहचान, फर्जी मैसेजेस को लेकर किया फैसला। मेहनत के बिना जवाब, चैटबॉट खत्म कर रहा रचनात्मकता, राजस्थान पत्रिका ने डिजिटल एडिक्शन शीर्षक से खबर प्रकाशित की है।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवीके सरकार का बहुमत परीक्षण आज। अखिल भारतीय एनआर कांग्रेस प्रमुख एन रंगासामी आज पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली सरकार ने ईंधन बचाने के उपाय शुरू किए। केंद्र ने सोना सहित अन्य कीमती धातुओं के उत्पाद शुल्क में वृद्धि की। मौसम विभाग का अनुमान, समय से पहले दस्तक देगा मॉनसून। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. Political activities in Tamil Nadu turn hectic ahead of C. Joseph Vijay-led TVK government's floor test today. All India NR Congress leader N. Rangasamy to take oath as Chief Minister of Puducherry today. Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Delhi governments implement measures for fuel consumption following Prime Minister Narendra Modi's austerity appeal. Centre increases import duty on gold and other precious metals. IMD predicts early arrival of monsoon this year. And in IPL cricket, Gujarat Titans beat Sunrisers Hyderabad by 82 runs in Ahmedabad. And now the news in detail. In Tamil Nadu, political activities have turned hectic ahead of C. Joseph Vijay-led TVK government's floor test in the assembly today. In a dramatic turn of events, the AIADMK has split into two groups over extending support to the TVK government. Lone AMMK MLA S. Kamaraj has decided to support the TVK government. We have more from our correspondent.
3: The TVK with allies like the Congress, VCK, CPI, CPIM and IUML had enjoyed a majority of 120 to form the government in Tamil Nadu. After the government was sworn in, now it has the support of 30 AIADMK MLAs from the breakaway faction and one AMMK MLA, having a total of 151 MLAs. TVK will now have to prove the strength of the government today. The AIADMK led by General Secretary E. Palaniswamy has already said that those who do not adhere to the rules of the whip will be expelled from the party. The party founded by MGR will be facing a major political crisis presently. Joy, Akash.

लीजिए, हम हाजिर हैं कार्यक्रम चित्रलोक लेकर। आप सभी श्रोताओं को पूजा नारायणिया का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत करते हैं सभी के लिए मंगल कामनाओं के साथ, और शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम चित्रलोक। सुप्रभात, गुड मॉर्निंग श्रोताओं। पहला गीत सलाम नमस्ते, इस फिल्म से कुणाल गांजावाला और वसुंधरा दास की आवाजें हैं। जयदीप साहनी का लिखा गीत, संगीत विशाल शेखर का।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं विविध भारती से इस वक्त कार्यक्रम चित्रलोक, और इस कार्यक्रम की शुरुआत हमने की सलाम नमस्ते फिल्म के इस गीत के साथ। कुणाल गांजावाला और वसुंधरा दास की आवाजें थी। और आइए अब आपको सुनवाते हैं रेड 2 फिल्म से जुबीन नौटियाल का गाया गीत, मनोज मुंतशिर पूर्णम अलाहाबादी नुसरत फतेह अली खान का लिखा गीत, रोचक कोहली नुसरत फतेह अली खान संगीतकार हैं।

दम लगा के हईशा इस फिल्म से कुमार सानू और साधना सरगम की आवाज में ये गीत। वरुण ग्रोवर का लिखा, अनु मलिक के संगीत से सजा।

कार्यक्रम चतुर्लोक में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए अब आपको सुनवाते हैं अगला गीत, कभी अलविदा ना कहना फिल्म से। सोनू निगम, अलका याग्निक और वसुंधरा दास की आवाजें हैं।

सोनू निगम, अलका याग्निक और वसुंधरा दास का गाया गीत कभी अलविदा ना कहना फिल्म से अभी आपने सुना। आइए अब आपको सुनवाते हैं दिलवाले फिल्म से अगला गीत, अमित मिश्रा, अनुष्का मंजंदा, अंतरा मित्रा का गाया गीत। गीतकार हैं अमिताभ भट्टाचार्य और धुन बनाई है प्रीतम ने।

ये गीत था फिल्म दिलवाले से। आइए अब आपको सुनवाते हैं अगला गीत, जिसे गाया है राहत फतेह अली खान और रेखा भारद्वाज ने। नीलेश मिश्रा का लिखा गीत है, धुन इस बार फिर से प्रीतम की बनाई हुई, और फिल्म का नाम है बजरंगी भाईजान।

बजरंगी भाईजान फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे राहत फतेह अली खान और रेखा भारद्वाज की आवाजों में। और अब वक्त है एक छोटे से अंतराल का।

इस अंतराल के बाद आप सभी का कार्यक्रम चित्रलोक में फिर से स्वागत करती हूं। मैं हूं आज आपके साथ पूजा नारायणिया। आइए सफर को जारी करते हुए आगे चलकर आपको सुनवाते हैं ये गीत परम सुंदरी फिल्म से। सचिन जिगर का गाया गीत है, आदित्य रिखारी ने साथ दिया है, अमिताभ भट्टाचार्य ने इस गीत को लिखा है और सचिन जिगर का ही संगीत है।

0: सुनिए एक खुशखबरी।
1: कहिए ना।
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियाँ फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।
2: शुक्रिया, शुक्रिया।
0: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।
3: इस संदेश से पहले आपने गीत सुना परम सुंदरी फिल्म से सचिन जिगर की आवाजों में। लीजिए अब आपको सुनवा रहे हैं तनुवेद्स मनु रिटर्न्स फिल्म से स्वाति शर्मा ब्रिजेश सांडल्य की आवाजों में ये अगला गीत, जिसे लिखा है वायु ने और धुन बनाई है तनिष्क साथी वायु ने।

0: आनस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली गलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताते हैं।
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: जावेद अली का गाया गीत सुनिए। इस गीत के गीतकार हैं रकीब आलम। देवी श्री प्रसाद का संगीत है। फिल्म का नाम है पुष्प।

0: पुष्पा द राइज फिल्म से गीत अभी आपने सुना जावेद अली की आवाज में।
1: एक बेमिसाल शायर
2: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
1: एक शानदार शख्सियत
3: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
1: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी,
3: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था। उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चरण से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
1: कुछ बेमिसाल किस्से
3: मैंने पढ़ा, जाने कितनी उड़ान बाकी है, इस परिंदे में जान बाकी, और जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
1: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जाने कितनी उड़ान।
4: दीदी नौकरी लग गई।
5: अरे वाह बधाई हो, तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग।
4: हाँ दी, नया मोबाइल।
5: अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे।
4: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
5: पहले बजट बनाना सीखो फिर खर्च करो।
4: पर दी
5: देखो, कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम।
4: हाँ दी, पार्टी मेरी बजट तुम्हारा।
5: अच्छा
6: आरबीआई कहता है
7: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।

अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जुबीन नौटियाल और जहरा एस खान की आवाजों में अगला गीत सुनिए फिल्म लव यापा से।

लव्यापा फिल्म से ये गीत आपने सुना, जुबीन नौटियाल और जहरा एस खान की आवाजों में। गुरप्रीत सैनी का लिखा गीत था। इस गीत की धुन बनाई थी तनिष्क बागची ने। गब्बर इज बैक, इस फिल्म से सुनिए अगला गीत। देवनेगी परुमा दास गुप्ता की आवाज।

कुमार का लिखा गीत था, चितरंजन भट्ट का संगीत। गब्बर इज बैक फिल्म से देव नेगी और परोमा दास गुप्ता की आवाजों में ये गीत आपने सुना।

सत्यमेव जयते टू फिल्म से जुबिन नौटियाल और नीति मोहन की आवाजों में। नासिर काजमी और मनोज मुंतशिर का लिखा गीत, रोचक कोहली नुसरत फतेह अली खान का संगीत, बत किया ये गीत।

जुबिन नौटियाल और नीति मोहन की आवाजों में अभी अपने गीत सुना सत्यमेव जयते 2 फिल्म से। और आइए अब आपको सुनवाते हैं चित्रलोक कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। नीरज श्रीधर और कविता सेठ की आवाजों में इरशाद कामिल का लिखा गीत प्रीतम के संगीत से सजा फिल्म कॉकटेल से।

0: हो गया इंतजाम।
1: किसका?
0: गुड्डी की फीस का।
1: दिखा। 20,000 का लोन तुरंत? पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही लें और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
2: आरबीआई कहता है,
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
4: दीदी नौकरी लग गई।
5: अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग।
4: हाँ दी, नया मोबाइल।
5: अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे।
4: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
5: पहले बजट बनाना सीखो फिर खर्च करो।
4: पर दीप,
5: देखो कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम।
4: हाँ दी, पार्टी मेरी बजट तुम्हारा।
5: अच्छा।
2: आरबीआई कहता है,
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।

है विविध भारती। आज के फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद।

0: भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: कहानी के किसी सीन की रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया।
0: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत?
1: डायरेक्टर ने आओ देखना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। तो बस सिर्फ दिल बहलाने गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में। सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में पल्लम कोई करता चमर होगा। वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर।

दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि अभी अभी तो मैं आपसे आज के फनकार कार्यक्रम में मिला और ये बिछड़ने की बातें क्यों कर रहा हूँ। दरअसल जो हैं आज के फनकार, उनकी आवाज के जरिए कोई ना कोई बात तो आप तक पहुँचानी है सरकार।

यहाँ हर किसी को जिंदगी में प्यार नहीं मिलता। शायर ने कहा भी तो है कि मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं। ये वो नगमा है जो हर साज पर गाया नहीं जाता। आप सोच रहे होंगे कि मैं शेरो शायरी करने आया हूँ या आज के फनकार कार्यक्रम में कौन से कलाकार की बातें करने वाला हूँ, ये आपको बताने आया हूँ। तो पहले जरा ये गाना सुन लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और बातें करते हैं।

जी हाँ दोस्तों, बहुत दिनों बाद इस फनकार की बातें हो रही हैं। इनकी आवाज जाने माने पार्श्व गायक मुकेश से मिलती जुलती थी, इसका इनके करियर पर भी काफी असर पड़ा। मुकेश ने इनको काफी आगे भी बढ़ाया और आगे चलकर इन्होंने अपना एक पक्का और मुकम्मल रास्ता तय

दोस्तों मनहर उदास जानी मानी गजल गायक पंकज उदास के बड़े भाई हैं। दरअसल एक ही परिवार के तीनों भाई गायक बने। सबसे पहले मुंबई आए मनहर उदास, उसके बाद आए पंकज उदास और फिर निर्मल उदास। लेकिन घर में गाने की परंपरा शुरू से थी नहीं। दरअसल मनहर उदास रेडियो पर गाने सुनते थे और साथ साथ गुनगुनाते थे। उन्होंने संगीत की बाकायदा तालीम तब तक नहीं ली थी जब तक कि उन्हें फिल्मी दुनिया में अपना पहला गाना गाने का मौका नहीं मिला था। अब आपको ये बताना भी जरूरी है कि मनहर आखिर मुंबई आ कैसे गए। दरअसल मनहर पेशे से इंजीनियर हैं। इंजीनियरिंग की पढ़ाई उन्होंने की, बचपन से ही गाने का शौक था। उनके एक रिश्तेदार एक फिल्म बना रहे थे, उसमें एक गाना गवाने के लिए उन्होंने मनहर को मुंबई बुलाया। मुंबई में मनहर ने एक नौकरी कर ली और बचे हुए समय में वो संगीतकार जोड़ी कल्याण जी आनंद जी के पास बैठा करते, उनके स्टूडियो में गाने की रिकॉर्डिंग देखा करते और सीखा करते। ऐसे ही एक समय ऐसा आया जब उन्हें फिल्म विश्वास का ये गाना मिला।

दौर था जब मुकेश फिल्म संसार में मौजूद थे। मुकेश के अलावा मोहम्मद रफी, मन्ना डे और किशोर कुमार जैसे बड़े और दिग्गज गायकों के बीच एक युवा गायक को इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाना आसान नहीं था। उन्हीं दिनों में मन्नर उदास अलग अलग जगह पर जाकर गाने गाते, शोज करते, संगीतकारों से मिला करते और अपने गाने सुनवाकर नए गानों की तलाश में रहते। एक बार मन्नर उदास को लता मंगेशकर की ओर से एक संदेश आया कि वो उनके साथ एक शो में गाएं। मन्नर ने लता जी के साथ एक लाइव शो में श्रोताओं के सामने गाया और उसके बाद फिल्म अभिमान का एक गाना उन्हें मिला। लता जी ने एसडी बर्मन से आग्रह किया कि उन दिनों बन रही फिल्म अभिमान में मन्नर से कोई गीत गवाया जाए। सारे गाने रिकॉर्ड हो चुके थे।

में मनहर पर ये इल्जाम लगे कि उनकी आवाज मुकेश से मिलती जुलती है, लेकिन आगे चलकर उनकी आवाज एकदम बदल गई, उन्होंने मुकेश से एकदम अलग रास्ता

संगीत के संसार को मनहर ने फिल्मी गीत ही नहीं दिए बल्कि उन्होंने भक्ति गीत भी बहुत सारे गाए हैं और भक्ति गीतों के मामले में उनकी ख्याति सारे संसार में फैली हुई है। इसके अलावा मनहर की एक और खासियत है और वो है गुजराती गजल। मनहर ने गुजराती गजलों की परंपरा को शुरू करके उसे इतना लोकप्रिय बनाया है कि आज गुजराती गजल और मनहर एक दूसरे के पर्याय बन चुके हैं। आइए अब मनहर के कुछ बेहद मकबूल गाने आप तक पहुंचाए जाएं।

0: हम आए तो समय पर ही थे और जा भी समय पर ही रहे हैं, इसलिए इस गाने के जरिए आप ये शिकायत नहीं कर सकते कि हम देर से आए और जल्दी जाए और ऐसा ही भी ठीक नहीं, क्योंकि मनोहर के बारे में इतने सारे किस्से हमने आपको बताए, उनके तमाम मशहूर गाने भी आपको सुनवाए। और अब इजाजत लेने का वक्त आ गया। चलने से पहले आपको बता दें, शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन और प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: श्रोताओं, आज हमारे साथ स्टूडियो में एक ऐसे कलाकार मौजूद हैं, मैं उनका परिचय कराती हूं, लेकिन उनके बारे में मैं ये कहूंगी कि वो फिल्म लाइन में स्क्रीन पर एक बहुत ही बुरे इंसान है, बहुत बहुत बुरे इंसान है। लेकिन देखिए कितनी खुशनुमा हंसी है उनकी। मेरे सामने बैठे हैं, बहुत ही उम्दा इंसान है और उनका नाम है सदाशिव अमरापुरकर। सदाशिव जी, मैं खुद अपनी तरफ से, विविध भारती परिवार की तरफ से और विविध भारती के करोड़ों श्रोताओं की तरफ से आपका यहाँ स्टूडियो में स्वागत करती हूँ और उन सब की तरफ से आपको कहती हूँ कि नमस्कार।
1: नमस्कार, नमस्कार।
0: और अब देखिए ना, मेरे मन में ऐसी घटा छाई है, ये प्रश्नों की घटा है।
1: अच्छा।
0: और पता नहीं अब ऐसा लग रहा है कि कौन सा प्रश्न बरस पड़ेगा। बताइए ना कि कहाँ से शुरू करें, कि आज आपकी, अभी यहाँ से निकल के किस शूटिंग में आप जा रहे हैं, यहाँ से शुरू करें और पीछे चले जाएं, या आप अपने बचपन के दिनों को याद करेंगे?
1: नहीं, जो आपको अच्छा लगे वहीं से शुरू करें।
0: तो आप अपने बचपन की ही याद ताजा करें और कुछ बताएं कि कैसे थे वे आपके दिन।
1: मैं एक बहुत छोटे से गाँव में पैदा हुआ जिसका नाम अहमदनगर
0: जी,
1: ना वो शहर है ना वो देहात था। तो ऐसे छोटे से गांव में जब मेरा जन्म हुआ और बचपन बहुत अच्छा गया, खेल कूद में गया, स्कूल में जाते थे लेकिन सिर्फ पास होने तक के मार्क हमें मिलते थे। और हमारी पिताजी की एक ही इच्छा थी कि बेटे तुम कभी फेल मत होना, हमेशा पास होना और ग्रेजुएट होना, उसके बाद नौकरी की जरूरत नहीं है, हम कुछ भी व्यापार वगैरह कर लेंगे लेकिन शिक्षा जरूर लेना। तो ये बात अच्छी थी क्योंकि सिर्फ पास होना था तो 40-50 टका हमें मार्क्स मिलते थे और बचा हुआ टाइम हम खेल कूद में,
0: शरारतों में,
1: हर चीज में गुजारते थे और हर मौसम का मजा लेते थे।

0: गर्मियों के दिन आते थे तो इमलिया खाते थे, आम के दिन आते थे तो बहुत आम खाते थे, चुराते भी थे। हमारा खेत भी था, उसमें भी बहुत दौड़ धूप करते थे।
1: और जामुन खा के आपका गला नहीं बैठ जाता था?
0: सब कुछ होता था सब कुछ होता था। और हमारे जो रिश्तेदार थे वो और भी देहातों में रहते थे, तो छुट्टियों के दिन हम उनके साथ गुजारते थे। तो उनके साथ जंगल में घूमते थे, प्राणी पंछी सब देखते थे, बकरियों से खेलते थे, उनका दूध पीते थे। गाय को बछड़ा जब होता है तो क्या होता है, ये अनुभव मैंने वहां लिया। और मुझे एहसास हुआ कि जब हम पैदा हुए थे तो हमारी माँ को कितनी तकलीफ हुई थी। तो इस तरह का बहुत अच्छा, बहुत जिसको हम समृद्ध कहेंगे, ऐसा मेरा जीवन बचपन का गुजरा है और उसका फल बहुत अच्छा है। आज जब मैं कहीं भी जाता हूँ, आउटडोर शूटिंग में जाता हूँ या किसी से मिलता हूँ, और जब उसको देखकर मुझे एहसास होता है कि ये कहाँ कहाँ से गुजरा होगा यह इंसान, यह आदमी, तो इंसान को समझना, इंसान को जान लेना और उसके बारे में सोचना, ये सब मुझे बचपन में मिला, ये संस्कार। मेरे पिताजी छोटे से व्यापारी थे, तो हर तबके के लोग, हर जाति के लोग, हर धर्म के लोग हमारे घर आते थे। तो मैं मंदिर में खेला हूँ, मस्जिद में खेला हूँ। हमारे पीछे मस्जिद थी, उसके पीछे आज भी चर्च है, तो वहीं उसी ग्राउंड पे खेला हूँ। तो मेरे लिए तो कभी धर्म की बात, जाति की बात आई नहीं, और ये एक बड़ा अच्छा संस्कार मेरे गांव ने मेरे ऊपर किया है।
1: तो अहमदनगर ही में आपका स्कूल का जो है पूरी पढ़ाई लिखाई वहीं पे हो गई और आप इर्द गिर्द जाते रहे हैं?
0: अहमदनगर में ही मेरी पढ़ाई हुई, स्कूल की, कॉलेज की। वहीं मैंने थिएटर किया, एक्टिंग की। मेरे गांव में पानी कम है, लेकिन मेरा गांव छोटा है, मेरे गांव के रास्ते गलत है, मतलब खराब है। हमारा गांव चांदबीबी के नाम गांव से पुकारा जाता है, और मुझे तो लगता है कि आज भी अगर चांदबीबी आई तो बिना हिचक के उसी रास्ते पर अपने महल में चली जाएगी। उस जमाने के रास्ते वहां पर है
1: जी।
0: और क्रिएटिव है
1: जी।
0: और मुझे हमेशा ये बात अच्छी लगी है कि मेरे जीवन के हर मोड़ पर मुझे ऐसे इंसान मिले जिसकी वजह से मेरा जीवन दिन ब दिन संस्कारित होते गया
1: जी। ये जो आपका संस्कारित बचपन है वही आपका साथ आज भी दे रहा है
0: जी,
1: है ना सदाशिव जी? इसी बात पे आपकी पसंद का कोई एक गीत हम क्यों ना सुन लें?
0: जी जी, जरूर सुनते हैं। पिक्चर का नाम है पोस्ट बॉक्स नंबर 999।
1: अरे वाह, बहुत पुरानी फिल्म है ये। हाँ
0: और उसके बोल है, मेरे दिल में है एक बात।

0: आप बता रहे थे कि नगर में रह के ही आपने अपना कॉलेज का भी पूरा जो जीवन है वहां पे आपका आपकी शिक्षा दीक्षा वहां हुई और इसके साथ साथ वहां पे थिएटर भी आपने शुरू किया, वो सब बातें बताइए ना।
1: हाँ,
0: तो आप बहुत शरीर बालक रहे, बहुत शरारती रहे, तो कॉलेज में जाके क्या धमाके किए, क्या हंगामे किए?
1: नहीं, वैसे मैं शरारती तो स्कूल में था, मतलब पढ़ाई में दिल नहीं लगता था और मेरे दोस्तों को बताता था कि चलो यार घूमने चलते हैं। और मुझे याद है कि स्कूल में एक दिन मैंने पूरे स्कूल को मेरे साथ लेकर, मतलब हमारी पूरी जो हमारा वर्ग है उनको लेकर, कक्षा को लेकर मैं बाहर निकला था और दिन भर हम घूमकर शाम को घर लौटे थे।
0: पिटाई नहीं हुई थी?
1: और घर दूसरे दिन जब हम स्कूल गए तो सब बच्चों ने कहा कि सदाशिव ने कहा इसलिए हम निकले। और मैं, मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैंने कुछ गलती की है। मैंने कहा हाँ हम बहुत बोर हो गए थे, पढ़ाई में दिल नहीं लगता था, तो ऐसा लगा थोड़ा घूमकर आए, इसलिए मैंने इनको कहा और ये सब मेरे साथ आए। हम बाजारों में घूमे, दुकानें देखी, फ्रूट्स देखे, फिर उसके बाद मिठाई की दुकानें देखी और शाम को घर लौटे, इसमें क्या बुरा है? लेकिन उस वक्त वो बहुत बुरा था, तो इसकी शिक्षा भी मुझे बहुत मिली। और स्कूल में मैं बहुत क्रिकेट खेलता था, मैं हमारी स्कूल की टीम में था, लेग स्पिनर था, बैटिंग भी करता था और क्रिकेट में इतना मन लगा हुआ था कि मुझे लगता था कि मैं
0: क्रिकेटियर बन जाऊंगा।
1: और जैसे ही मैं कॉलेज में आया तो हमारे कॉलेज की एक परंपरा रही है, हमारे कॉलेज के गैदरिंग में वन एक्ट प्ले कॉम्पिटिशन्स होती है
0: जी।
1: आज भी चल रही है वो और बहुत अच्छी चीज है। उन्होंने बहुत बड़े बड़े कलाकार इस देश को दिए हैं, महाराष्ट्र को दिए हैं। तो उसमें एक बात थी कि बच्चे ही, मतलब विद्यार्थी ही एकांकी लिखते थे, विद्यार्थी डायरेक्शन करते थे और सब विद्यार्थी मिलकर वो वन एक्ट प्ले करते थे और इसकी कॉम्पिटिशन थी और उस जमाने में बहुत बड़ा प्राइज उसके लिए रखा गया था
0: जी।
1: मुझे मतलब रखा जाता था, आज भी रखा जाता है। और उसमें मुझे एक काम करने का मौका मिला और हम कहेंगे कि वो बिच्छू एक्टिंग का उसी वक्त हमें काटा। और उसमें मुझे 10 रुपये का प्राइज मिला
0: उस समय।
1: हाँ, और तब से मेरा क्रिकेट छूट गया और मेरी एक्टिंग शुरू हो गई।
0: लेकिन बिच्छू ने काटा आपको और इसीलिए शायद आप विलेन बन गए, ऐसा तो नहीं हुआ?
1: नहीं, नाटक करता रहा
0: जी,
1: धीरे धीरे नाटक में इतना मन लगने लगा, उसके वजह से पढ़ने लगा, किताबें आई, फिर किताबों में मन लगने लगा और दोस्त मिलने लगे, रात रात जागते रहे, बातें करते रहे। बहुत तूफानी दिन थे, हमारे पैर जमीन पर नहीं थे
0: जी,
1: हम मतलब हवा में दौड़ते थे।
0: और यूथ फेस्टिवल्स वगैरह में बहुत सारे प्राइजेस भी आपने जुटाए होंगे?
1: जी जी जी, यूथ फेस्टिवल में बहुत प्राइजेस लुटाए और हर बार हमारी एकांकी आती थी और उसको काफी प्राइजेस मिलते थे। और जब हमारी गैदरिंग होती थी तो हमें 20-25 प्राइज लेने स्टेज पर जाना पड़ता था।

0: हमारे लिए सब खुशी की बात रहती थी और इसी दौरान आज जो मेरी पत्नी है सुनंदा वो तो स्कूल से हमारे साथ थी
1: जी।
0: प्रॉब्लम ये थी कि वो पहले बेंच पे बैठती थी, मैं लास्ट बेंच पे बैठता था क्योंकि वो बहुत होशियार थी और हम तो बस पिछड़े हुए जाति के लोग।
1: तो वो पलट के नहीं देखती थी?
0: उस वक्त उन्होंने नहीं देखा, लेकिन बाद में जब हम कॉलेज में इकट्ठा हुए तो धीरे धीरे उनका ध्यान हमारी तरफ गया
1: जी।
0: हमारे अंदर हम दोनों एक दूसरे को चाहने लगे और बाद में हमने शादी भी कर ली। उस वक्त एक फिल्म आती थी जिसका नाम था आराधना और उसका गाना था मेरे सपनों की रानी कब आएगी।
1: आ तो गई। गीत सुन लेते हैं
0: जी।

0: लेकिन आप आगे ये बताइए ना कि थिएटर की जो बात है वो वहां से आपकी शुरुआत हो गई
1: जी।
0: और कितने साल, मतलब जब आपके मन में ये सुखबुगाहट होने लगी थी कि मुझे ये सब कुछ पढ़ाई वढ़ाई नहीं करनी है, तो आपके मन ने ये भी ठान लिया कि आगे जाके एमए वगैरह नहीं करना है, कौन सा विषय था आपका?
1: नहीं, मैं बीए होने के बाद मैंने यही सोचा कि मैं थिएटर करता रहूंगा, प्रोफेसर बनूंगा, और प्रोफेसर बनने के बाद कॉलेज में थिएटर करूंगा, क्योंकि हमारे कॉलेज में मधुकर तोरणमल थे जो प्रोफेसर थे और थिएटर भी करते थे, तो वही आदर्श मेरे सामने था। इसलिए मैंने सोशियोलॉजी लेके पूना गया, पूना यूनिवर्सिटी में दाखिल हुआ, लेकिन उस वक्त भालभा केलकर के साथ पीडीए में नाटक करता रहा
0: जी।
1: रात भर जागते थे, पैदल यूनिवर्सिटी वापस आते थे, और एक दिन भी मैं क्लास में गया नहीं। उस वक्त हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट विद्याधर पुंडलिक जी थे, तो एक दिन पीडीए का एक प्रोग्राम था, तो उसमें उनको एज अ चीफ गेस्ट बुलाया था। तो मेरा नाम सुनकर उन्होंने कहा कि देखो, मुझे आपका नाम कुछ याद आ रहा है। मैंने कहा यस सर, आप मुझे सिखाते हो, मैं सिखाता हूं तुम्हें। मैंने कहा जी हाँ, लेकिन मैंने तो कभी क्लास में आपको देखा नहीं। हाँ बिल्कुल याद आया, मैं जो हर रोज ये लेता हूँ, हाँ रोल कॉल लेता हूँ, उसमें आपका नाम होता है, लेकिन आप कभी दिखे नहीं। तो मैंने कहा देखो, ये पीडीए में मैं नाटक कर रहा हूँ, रिहर्सलें करता हूँ, 11 बजे खत्म होती है, उस तब तक वो पीएमटी की बस नहीं होती, फिर पैदल यूनिवर्सिटी तक जाना पड़ता है, तो रात को लेट सोते हैं, तो सवेरे लेट उठते हैं, तो आपका पीरियड हो जाता है। अरे बोले, एक काम करो, नाटक करते हो अच्छा है, लेकिन बीच में कभी कभी आया करो, ताकि मैं आपका रोल कॉल में नाम लिख दूंगा। अच्छा लगा सुनकर। मैंने कहा सर क्या करूं, मैं नाटक के सिवा जी नहीं सकता। तो उन्होंने कहा ये अच्छी बात है, आप आगे बढ़िए और थिएटर करने लगा। तो फिर उसके बाद उसी वक्त एक साल हुआ था, तो मुझे आपकी आकाशवाणी की तरफ से एज ए अनाउंसर नौकरी मिली।
0: वाह।
1: तो मैं परभनी में अनाउंसर था 6 महीने,
0: जहाँ पे कृषि विद्यापीठ है
1: जी। और फिर वो नौकरी छोड़ी मैंने, क्योंकि तबीयत खराब हो गई।
0: आपको कैसे लगता था जब माइक्रोफोन के सामने, मुझे लगता है उस समय शायद पहली बार आप स्टूडियो में अकेले बैठ के बात कर रहे होंगे श्रोताओं के साथ, तो कैसा लगा था आपको?
1: नहीं, अच्छा लग रहा था, लेकिन सामने पैक्स बैठते थे।
0: मतलब प्रोग्राम ऑफिसर
1: जी, और वो हमेशा ध्यान से सुनते थे कि मैं क्या कह रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ। और उस जमाने में गांव में हमें बड़ी इज्जत थी, नए होकर भी, क्योंकि वहाँ एक मराठी प्रोग्राम था आपली आवड़, और वो हम सुनाते थे,
0: मतलब जैसी आपकी फरमाइश पे जैसे जी, होता है हेलो फरमाइश।
1: और उस वक्त हम अगर तेल लेने जाए, किसी होटल में चाय पीने जाए, तो वो होटल मालिक या तेल देने वाला या सब्जी देने वाला हमें कहता था साहब 2 रुपये कम दो, 1 रुपया कम दो, 8 आना कम दो, लेकिन हमारा नाम लो। तो हमें बड़ा अच्छा लगता था, हम कहते थे नहीं नहीं भैया, पैसे क्यों कम लेते हो, मेहनत करते हो।
0: लेकिन बहुत अच्छा लगता होगा नहीं ऐसा, जब समाज में लोगों से प्यार मिलता है, इज्जत मिलती है। तो लेकिन आपने छोड़ तो दी वो नौकरी
1: जी, छोड़ दी। और उस वक्त मैंने वहां पर एक फिल्म आई थी प्यासा,
0: पुरानी
1: बहुत गुरुदत्त और गुरुदत्त जी की, और वो प्यासा फिल्म से मैं बहुत प्रभावित हुआ था।
0: ये प्यासा फिल्म से कौन सा गीत आपको बहुत बहुत अच्छा लगा?
1: मुझे सभी गीत अच्छे लगे।
0: अभी एक बहुत अच्छा काम करते हैं, जो आपकी पसंद का गीत हम सुनते हैं।

0: पूना पहुंच गए, पूना यूनिवर्सिटी में पहुंच गए, लेकिन पूना से बंबई की तरफ कब आए और कैसे आना हुआ था?
1: नहीं, पूना से परभनी गया, परभनी से फिर नगर आया, स्टेट कॉम्पिटिशन जो नाटक होते हैं उसमें हिस्सा लेने लगा और उसमें मैंने एक नाटक किया, काई स्वप्ने विकाई चेत। वो नाटक उसमें मैंने जो एक्टिंग की थी वो बहुत पसंद आई लोगों को। और नासिक में हमारा पहला एलिमिनेशन राउंड था और वहां एक जो परीक्षक थे उनका नाम था भिकुपई आंगले, उन्होंने मेरी एक्टिंग देखी और मुझे खत लिखा कि आप जाकर बंबई में गोवा हिंदू एसोसिएशन है वहां जाकर मिलो, वहां एक आपके लिए काम रखा हुआ है। तो और उन्होंने एड्रेस वगैरह दिया था, फोन नंबर दिए थे, तो मैंने वहां फोन किया तो वहां पर रामकृष्ण नाइक करके थे, आज भी है
0: जी,
1: उन्होंने कहा कि आप आइए। और मैं वहां गया, उन्होंने कहा हमारा एक नाटक है नट सम्राट जो डॉक्टर लागू ने किया था, दत्ता भट्ट ने किया था, अभी दत्ता भट्ट के बाद हम देख रहे हैं, सतीश दुबाशी ने हमको कहा है कि मैं ये करूंगा लेकिन पता नहीं वो करेंगे या नहीं, लेकिन आपके एक्टिंग की मैंने इतनी तारीफ सुनी है भिकुपई आंगले से, तो मैं चाहता हूं कि आपकी

0: थोड़ी सी टेस्ट ले ले। तो उसमें काम करने वाली जो आर्टिस्ट थी उनका नाम शांता भाई गोखले, उनके पास मुझे लेकर गए। उनमें एक आर्टिस्ट थी शांता जोक, बहुत बड़ी आर्टिस्ट थी, बहुत बढ़िया एक्टिंग करती थी, आज हमारे में नहीं है।
1: उन्होंने मेरे अनंत जोक कर रहे
0: जी,
1: हैं
0: जी, जी, जी। उन्होंने मेरी टेस्ट ली और उनको कहा कि ये कर सकते हैं। मुझे किताब दिया गया, बोले आप गांव जाइए, हम आपको बुला लेंगे। और बाद में मैंने पेपर में पढ़ा कि वो रोल सतीश दुभाषी कर रहे हैं, बड़ा नर्वस हुआ। फिर दोबारा उन्होंने मुझे बुलाया, बोले
1: उसी रोल के लिए
0: नहीं
1: हाँ।
0: हमारे पास एक नाटक है, जयवंत दळवी ने लिखा है, नाम है बैरिस्टर।
1: वाह,
0: विजय मेहता जी डायरेक्ट करने वाली है, आप अच्छे एक्टर हो तो चलो हम विजय जी के पास जाते हैं। मुझे उनके घर ले गए लेकिन वो मिली नहीं। फिर दूसरे दिन हमको गोवा हिंदू एसोसिएशन के ऑफिस में मिली और उन्होंने मुझे कह दिया कि देखो सदाशिव, मैंने इस रोल के लिए पहले ही चुन लिया है एक्टर को और विक्रम गोखले वो काम करने वाला है, तो इस बार हम कुछ नहीं कर सकते। फिर मैं वापस आया और दो अच्छे नाटक मेरे हाथ से चले गए, लेकिन दिल में एक तमन्ना थी, दिल में एक आवाज बज रही थी, आंखों में एक सपना था कि कुछ कोई बात नहीं, और भी नाटक लिखे जाएंगे, हमें रोल आएंगे। और एक दिन अचानक एक फोन मुझे आया, दूरवांची जुड़ी एक संस्था है उनका, कि हम एक नाटक कर रहे हैं, उस रोल के लिए जो प्रोफेसर का रोल है बहुत बड़ा, उसके लिए हम आपको मिलना चाहते हैं, तो आप बंबई आइए।
1: जी,
0: मैं तीसरी बार बंबई आया, तीसरी बार बंबई आया तो उन्होंने कहा कि देखो आपने वो नाटक किया था, फाइनल में आया था, वहां पुरुषोत्तम दारवेकर जी थे और उन्होंने आपके नाम का सजेशन दिया है प्रोफेसर के रोल के लिए, इसलिए आपको बुलाया और चलिए आप हमारे साथ चलिए। तब मैं पहली बार विविध भारती के ऑफिस में आया था।
1: अरे वाह।
2: अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है विविध भारती का प्रोग्राम सेल्यूलॉइड के सितारे, और आज के इस प्रोग्राम में मेहमान सितारे हैं जाने माने फिल्म अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर। आपसे बातचीत की है कांचन प्रकाश संगीत ने।
0: और नीचे छोटी छोटी दुकानें थी और वहां गाने बज रहे थे, आपके बरस भेज बंदिनी का गाना जो आज भी मुझे याद है।
1: अच्छा, इसे सुनेंगे हम अभी?
0: जी
1: जरूर सुनेंगे।

0: उसके बाद मैं ऊपर गया, दारवकर जी ने मेरी तरफ देखा भी नहीं, बिठाया, वो बातें करने लगे और वो उनसे कहने लगे कि मैंने जो आपको कहा था वो नगर में रहता है वो आदमी सदाशिव, उनको लेकर आओ ना, आप किसी इन जवान लड़के को लाएंगे तो कैसा होगा, वो तो प्रोफेसर का रोल है। तो उन्होंने कहा कि सर ये वही है सदाशिव अमराप्रकर जी। तो वो दो मिनट तक मुझे घूरते रहे, बोले आपने वो मास्टर का रोल किया था उस नाटक में और आप तो बूढ़े लग रहे थे उसमें और आप तो इतने जवान हैं, ये कैसे हुआ। तो मैंने मन में कहा ये दाद है या क्या है मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैंने कहा मैं वही हूँ। अरे बाप रे, फिर उन्होंने जो मेरी तारीफ की है, बहुत तारीफ की। फिर मुझे कहा कि आप ही इस रोल के लिए फिट हैं, बराबर हैं, आप ये स्क्रिप्ट, उस वक्त वो परदेशी थे, उनका ही वो स्क्रिप्ट था, अभी मुझे उस नाटक का नाम याद नहीं आ रहा है, हाँ मैंने, मुझे याद आया, सत्यम शिवम सुंदरम
1: जी।
0: और मैं स्क्रिप्ट लेकर घर आया, गावाया, याद करने लगा, प्रोफेसर के डायलॉग याद करने लगा। एक महीने के बाद मुहूर्त पे मैं वापस गया तो दारवेकर जी मुझे देखकर कहने लगे आइए आइए बैठिए, लेकिन इस वक्त वो मेरे से बात करने से झिझक रहे थे। और लेकिन प्रोड्यूसर ने कहा कि देखो भाई, हमने आपको वो रोल तो दिया था, लेकिन अभी भी एक सीनियर प्रोफेसर कमलाकर सोनटक के, जो औरंगाबाद से, वो जो है उनकी एक्टिंग की स्कूल है वहां से इस्तीफा देकर आए हैं और वो अब ये रोल करेंगे। अब ये तीसरी बात जब मेरे साथ हादसा हुआ तो मैंने कहा देखो भाई, उसके पहले घर में मेरी हमेशा पिताजी से झगड़े चलते थे, बोलते थे ये नाटक नाटक छोड़ दे, ये अपना लाइफ नहीं है। और मैं कहता था नहीं, मुझे नाटक ही करना है, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर पाता हूँ।
1: तो आप करते भी नहीं थे उस समय कुछ?
0: कुछ नहीं कर सकता था। एक दिन मुझे एहसास हुआ कि नाटक के अलावा मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर पाऊंगा। और इस बार जब फाइनली मुझे पिताजी ने बुलाया तो पिताजी को मैं मिलने गया तो पिताजी ने कहा अगर तेरे जीवन में यही ट्रेजेडी लिखी है तो जाओ करो। और मैं आया था, बैग भरकर आया था, रिहर्सल करने आया था, दोबारा मैं नहीं जाना चाहता था। मैंने कहा आपने ऐसा क्यों किया? बोले क्या करे, उनका नाम बड़ा है, ये है वो है, उनको लेते हैं। मैंने कहा नहीं, इसमें कोई और रोल हो तो मुझे दे दो। और मैं उसमें एक डबल रोल करता था, एक गुंडे का रोल करता था एक, और एक लड़के का रोल करता था, वो दो रोल मैंने, और इस तरह मेरी व्यावसायिक नाटक में पहली बार एंट्री हुई
1: जी।
0: उसके बाद मैंने केंकरे जी के साथ काम किया और मेरे हाथ में एक नाटक था, मेरे दोस्त ने लिखा हुआ यात्रिक, वो यात्रिक नाटक मैं छबिलदास में करना चाहता था और इसी वजह से मेरी INT इंडियन नेशनल थिएटर में पहचान हुई और उनकी तरफ से मैंने पहली बार डायरेक्शन की यात्रिक की
1: जी।
0: उसके बाद मैंने छिन्न नाटक किया जिसमें स्मिता पाटिल ने काम किया था, आशा लता ने काम किया था, और उसके बाद मैं नाटक में एक्टिंग और डायरेक्शन करता ही गया। तेंदुलकर जी के चार पांच नाटक किए, हैंड्सअप नाटक किया और उस वक्त मेरी तेंदुलकर जी से बहुत अच्छी पहचान हो गई थी और वो एक स्क्रिप्ट लिख रहे थे, उसका नाम था अर्ध सत्य
1: जी।
0: और उस वक्त उन्होंने मुझे कहा कि इसमें एक छोटा सा रोल है और इसके लिए मैंने आपका नाम सजेस्ट किया है। हालांकि जब भी मैं नाम सजेस्ट करता हूं तो डायरेक्टर उसे नहीं लेता है, लेकिन इस बार देखिए आपका लक अगर चलता है तो। और इस

0: का मेरी गोविंद निहलानी से पहचान हुई। वो मेरा हैंड्सअप नाटक देखने आए और उसमें मैं इंस्पेक्टर का रोल कर रहा था और फिल्म भी इंस्पेक्टर के ऊपर थी, तो मुझे लगा मुझे कोई बड़ा अच्छा इंस्पेक्टर का रोल मिलेगा। और मैंने बड़े जोश के साथ वो नाटक किया, उनको बहुत पसंद आया, अच्छा लगा। दूसरे दिन घर पे बुलाया और कहा, देखो आपका नाटक अच्छा था, इंस्पेक्टर का रोल आपने बहुत बढ़िया किया, इस फिल्म में एक रोल है छोटा सा, 3 दिन का काम है, उस कैरेक्टर का नाम है रामा शेट्टी,
1: अर्धसत्य का रामा शेट्टी।
0: और मैं नर्वस हो गया, मैंने कहा क्या यार, इतनी बढ़िया एक्टिंग मैंने की इंस्पेक्टर की और ये कौन से शेट्टी फिट्टी का रोल दे रहे, 2.5-3 सीन का है, हमें पसंद नहीं यार। तेंदुलकर जी को पूछा मैंने, कहा ये क्या रोल है, बोले छोटा है अच्छा है। मैंने कहा मुझे स्क्रिप्ट पढ़ने दो। स्क्रिप्ट पढ़ा, 2-2.5 सीन थे लेकिन उसका जिक्र बार बार आता था
1: जी।
0: और उस वक्त मुझे फिल्म के बारे में ABCD भी मालूम नहीं था। मैंने कहा चलो एक एक्सपीरियंस होगा। 2-2.5 दिन काम किया, उसको भूल गया, मेरा नाटक चलता था।
1: भूल भी गया
0: क्योंकि बाद में 6 महीने में मैं भूल गया कि मैंने किसी फिल्म में काम भी किया।
1: क्योंकि आपके अर्धसत्य के रामा शेट्टी को लोग आज भी याद करते हैं।
0: जी जी।
1: और मैं तो कहूं कि एक विलन के लिए एक नया चेहरा आपने उस समय दिया और कुछ विलन की तरफ देखने का लोगों का नजरिया भी उसी भूमिका से बदल गया और आप भूल गए।
0: जी जी, मैं सचमुच मैं भूल गया क्योंकि मैं इतना नाटक में व्यस्त था कि मुझे मालूम भी नहीं था। और उसके बाद मैं नाटक खत्म हुआ, मैं कुछ काम के लिए गांव गया और उस वक्त मुझे वहां पे फोन आया कि आपका पिक्चर का प्रीमियर है, आप आइए, आपने बहुत अच्छा काम किया है। मैंने पिताजी को कहा कि मेरे प्रीमियर शो है, मैंने एक फिल्म में काम किया है। तो उन्होंने मेरी तरफ देखा, अच्छा अभी फिल्म भी करने लगे, वहां भी नाचने लगे, कमर हिलाने लगे। मैंने कहा नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, बहुत अच्छी फिल्म है, अच्छा रोल है। नहीं नहीं बोले, अभी इधर ही रहो, उधर जाने की जरूरत नहीं, अभी कोई आपका नाटक बिटक नहीं है। मैं वहीं रह गया,
1: प्रीमियर में नहीं गया,
0: प्रीमियर में नहीं जा सका। बात यह हुई कि बड़ा अफसोस लगता था और उदासी छाई हुई थी। और उस वक्त मैंने फिर गुरुदत्त की एक फिल्म देखी, कागज के फूल, और उसमें का वो जो गाना है वो मुझे आज भी बहुत याद आता है।

0: वाकई रामा शेट्टी को लोग नहीं भूल पाए हैं आज भी, और उसके बाद जो है आपकी कई फिल्में आई, जैसे आखिरी रास्ता में जो आपने पॉलिटिशियन चतुर्वेदी का रोल किया, वो भी मुझे वो पूरा सीन ऐसा देख के लगता था कि अभी जाके इस आदमी का गला घूम दूं, ये जयाप्रदा कुछ नहीं कर पा रही है, हम जाके कुछ इसका कर डालें। और मैं समझती हूँ कि यही आपका सक्सेस है, यही एक बहुत बड़ा।
1: हाँ, वो उस फिल्म में एक बहुत मजा हुई थी कि अमिताभ बच्चन जी उसमें थे, जयप्रदा थी, श्रीदेवी थी, और उसके डायरेक्टर थे के भाग्य राजा, जो वहां के बहुत बड़े डायरेक्टर और एक्टर भी थे, हीरो भी है
0: जी।
1: और उनको ना हिंदी आती थी ना इंग्लिश आती थी, तो कैसे मतलब उनसे बातचीत कैसे करें। अमित जी को तो बहुत ही प्रॉब्लम होती थी उस वक्त, और वो जब भी जो भी करना समझाना चाहते थे वो थ्रू एक्टिंग ही समझा सकते थे
0: जी।
1: तो उनके बाजू में एक हिंदी और तेलुगु जानने वाला आदमी था, मतलब तमिल जानने वाला, और वो उनको बताते थे, फिर ये हिंदी में हमें बताता था और बीच में वो फिर एक्टिंग करते थे। तो वो जो सीन है जो उनके ऊपर मैं रेप के बारे में बात करता हूँ, वो सीन जब मैंने किया तो उन्होंने मुझे एक्टिंग करके बताया कि मुझे इस तरह चाहिए, और वो एक एक्टिंग की लैंग्वेज भी होती है ना, तो वो मैं समझ गया
0: जी।
1: और फिर उसके बाद हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत कंफर्टेबल रहे
0: जी।
1: तो एक अलग किस्म का एक्सपीरियंस था और फिल्म लोगों को बहुत पसंद आई, अच्छा हुआ
0: जी।
1: काफी वैरायटी फिल्में कर रहा हूँ।
0: ये जो विलन बनना और एक साथ कॉमेडियन भी बन जाना, ये आप कैसा कर पाते हैं? कहीं पे मैं हमेशा ये पूछती हूँ कि जैसे आपके प्रोड्यूसर्स या निर्माता जो आपके पास अपना रोल वो भेजते थे, तो वो विलन का रोल रहता था, वो उसमें बदलाव नहीं आया, तो लगातार वही काम करते करते करते करते जब कॉमेडियन का रोल करने को मिल गया, तो उस चीज से निकल के, उस शय से निकल के इस शय में अपने आप को ढालना, वो आपने कैसे कर लिया?
1: नहीं, मैं एक्टर हूँ और जो भी रोल मेरे सामने आता है उसे लगन और निष्ठा से निभाना मेरा काम है, इसीलिए तो मेरे हर कैरेक्टर को गालियां मिलती है लेकिन हमें तालियां मिलती है।
0: तो उम्र एक अलग चीज है जो व्यक्ति की होती है, और फिल्म की जो अदा है, जो भूमिका है, जो रोल है, उसकी एक अलग उम्र होती है, मतलब हर उम्र में कलाकार को अपने आप को ढाल देना पड़ता है। तो कुछ उसके बारे में बताइए ना कि बिल्कुल जैसे उन्होंने कहा था कि आप तो बहुत बूढ़े थे और आप तो हो जवान बिल्कुल, ऐसी कोई किसी भूमिका के बारे में जिसमें आपको लगता है कि बिल्कुल अलग मैं कुछ ये कर रहा हूँ?
1: हाँ, वैसी एक भूमिका मैंने सड़क में की थी
0: जी,
1: महारानी की, युनक की। वो भूमिका जब मेरे पास आई, उसके निर्देशक थे महेश भट्ट, और बड़े मुझे रोल तो दिया उन्होंने, लेकिन घबराए हुए थे कि इस तरह का यूनिक का विलन का रोल लोगों को अच्छा लगना,
0: महारानी
1: का रोल बहुत जरूरी है, और अच्छे लगने के साथ साथ उसकी एक दहशत पैदा करना, क्योंकि आज तक फिल्मों में जितने भी यूनिक के रोल हुए हैं वो कॉमेडी के लिए इस्तेमाल किए गए, लेकिन ये रोल लोगों के दिल में दहशत पैदा करे ऐसा होना चाहिए
0: जी।
1: और उसके लिए उन्होंने मुझे कॉन्टेक्ट किया था, और रोल सुनकर मैंने कहा मैं ये करता हूं। बोले आपको जरा भी हिचक नहीं हुई हाँ कहने में? मैंने कहा बिल्कुल नहीं। आप ये कर पाएंगे? मैंने कहा जरूर करूंगा। कैसे करेंगे? मैंने कहा वो आप मुझ पर छोड़िए।

0: इसके लिए क्या करेंगे, कैसे कपड़े पहनेंगे, वो भी मुझ पर छोड़िए। और मुझे सोचने में जरा थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि बहुत साल पहले मैंने एक प्ले किया था, उसमें किंचित गंधर्व का रोल था, वो मैंने किया था कॉलेज में, इसलिए उसके एक्टिंग की मुझे चिंता नहीं थी। मुझे चिंता थी कि इस कैरेक्टर की दहशत कैसे मैं पैदा करूं।
1: जी।
0: और जब हमने पहला सीन जिस दिन किया, उस दिन भट्ट साहब बहुत खुश हुए और उनको कॉन्फिडेंस आ गया कि ये लड़का अच्छा काम करेगा, और उसी का फल मिला मुझे। उस रोल की काफी तारीफ हुई, पिक्चर भी बहुत चली और उसमें काफी अवार्ड्स भी मुझे मिले।
1: जी जी।
0: तो ये करते वक्त मुझे बड़ा मजा आया। एक उसमें सीन हम करते थे तो मैंने कहा एक सीन इसका साड़ी में होना बहुत जरूरी है कि वो साड़ी पहनकर बात करता है। तो बोले जरूर करेंगे, आप बोलो कैसे करना है। वो छोड़ देते थे और ये उनका छोड़ना बड़ा अच्छा था।
1: मुझे ऐसा लगता है कि
0: प्रोत्साहित करना था।
1: हाँ, कलाकार के साथ साथ जो आपने निर्देशन का इतना सारा काम किया
0: जी,
1: वो ही आपका इसमें
0: जी
1: हुनर।
0: हाँ, तो उस वक्त मैंने किया और बाद में लोगों ने पूछा मुझे कि आपने ये रोल करते हो क्या स्टडी किया, कहाँ किसको देखा, क्या देखा क्या नहीं देखा। तब मुझे याद आया कि मैंने वो प्ले किया था, वो एक्टिंग मेरे पास थी, और एक जमाने में मैं जब गया था मेरे दोस्त के साथ किसी काम के लिए, तो वहां एक फोटो लगी हुई थी साड़ी में किसी औरत की, और उन्होंने कहा नहीं ये औरत नहीं ये मर्द है, लेकिन कभी कभी वो साड़ी पहनकर ऐसे बैठते हैं और उनको शौक है साड़ी पहनकर फोटो निकालने की। तो वो मैंने फोटो देखी थी, वो मेरे दिमाग में थी, वो जो यादगार है, वो यादगारें हमें काम आती है
1: जी,
0: वो बहुत बढ़िया होती है
1: जी।
0: जब आदमी एक्टिंग करता है तो यादें सामने आ जाती है कि भाई देखो ये है ये है ये है
1: जी।
0: वही तो हमारी मतलब जिसको हम कहेंगे कि जीवन का अनुभव, जिसको लोग कहते हैं, मैं तो यादगारें कहता हूँ, वही बहुत संपन्न करती है हमें और वही हमसे एक्टिंग करवाती है
1: जी।
0: ऐसे कुछ डायलॉग थे उसमें, डर मत मेरी जान डर मत, मैं कुछ नहीं करूंगी, मैं कुछ कर ही नहीं सकती, जानती हूं क्यों क्योंकि मैं आधा मर्द हूं और आधी औरत, देख ना ये किस्मत का खेल तो देख, कुछ नहीं मेरे पास है ना, तो वो सिर्फ दिमाग, हाँ कमाल का दिमाग है मेरे पास, इसलिए औरतों का धंधा करती हूं और मर्दों की सेवा, इस जिस्म के बाजार का महाराजा और नाम महारानी।
1: वाह वाह वाह। लेकिन इसके अलावा आप और क्या क्या, मतलब आपकी हॉबीज क्या हैं? आप क्या करना और पसंद करते हैं, या खाली समय में और क्या करते हैं?
0: खाली समय में मैं किताबें पढ़ता हूँ, फोटोग्राफी करता हूँ, दोस्तों से बातचीत करता हूँ, पुराने शिल्प मुझे बहुत पसंद है, मैं मंदिर में जाता हूँ किसी पुराने तो जरूर वो मंदिर देखना चाहता हूँ और उसी लिए मंदिर जाता हूँ। टीवी देखना मुझे पसंद नहीं है लेकिन नेशनल जियोग्राफी और डिस्कवरी देखता हूँ, कभी कभी बीबीसी भी सुनता हूँ। और आप यकीन नहीं करोगी, मैं ऑल इंडिया रेडियो सुनना बहुत पसंद करता हूँ।
1: वाह वाह वाह, ये तो बहुत ही उम्दा बात कही है आपने जी। आपने कभी लिखा है जो आप ये कह रहे हैं कि मैं लोगों को देखता हूँ, उनसे सीखता हूँ, उनको अपनी भूमिकाओं में ढाल लेता हूँ, तो क्या आपके मन का कभी ये रुझान नहीं हुआ कि कुछ लिखें भी?
0: नहीं, ऐसा कभी हुआ नहीं, लेकिन एक हादसा जरूर हुआ था कि अपने मराठी थिएटर के बहुत बड़े राइटर विवा शिरवाड़कर, जिनको ज्ञानपीठ अवार्ड भी मिला था, आज वो नहीं है, मैं और डॉक्टर लागू एक दो बार डॉक्टर लागू के संग में उनके पास गया था और बातें हो रही थी और सोशल वर्क कमिटमेंट की बातें हो रही थी, तो मैंने कहा ये बातें करने से क्या होगा, अगर करना है तो चलो जीवन के कुछ साल निकालो दे दो उनको, काम करते हैं। तो शिरवाड़कर जी ने मेरी तरफ कहा, देखा और कहा कि देखो कि समाज सेवा का मतलब ये नहीं कि बाहर निकलो और समाज का काम करो, हर आदमी अपना काम सिंसियरली करे तो भी वो एक समाज सेवा है
1: जी।
0: तुम्हारे माध्यम से लोगों

0: की सेवा कर सकते हो। उस वक्त समझ में नहीं आई बात, कुछ साल बाद एक स्क्रिप्ट मिला फिल्म का, वो हेलन केलर के ऊपर था। मैंने वो फिल्म पढ़ी और मैं बड़ा खुश हुआ कि एक आंधी गूंगी बहरी लड़की को कैसे सिखाया 100 साल पहले। तो मैं वो स्क्रिप्ट लेकर गया शिरवाड़कर जी के पास और कहा कि इसके ऊपर मुझे नाटक लिख के दो, मैं ये नाटक करना चाहता हूं। उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं इंग्लिश ना फिल्म के ऊपर इस तरह नाटक मैं नहीं लिख सकता, आप किसी और से लिखो। तो मैं गया, फिर वापस बैठा, फिर कुछ सीन तैयार किए, कुछ ढांचा तैयार किया, फिर उनके पास आया। तो उन्होंने कहा ये आपने कुछ किया है लेकिन ये मैं विजुअल नहीं कर सकता हूँ उसको, तो आप ऐसा करो इसके कुछ डायलॉग्स भी लिखो, संवाद लिखो और फिर मेरे पास आओ। फिर मैं गया, फिर कुछ संवाद लिखे, फिर लेकर आया और उनके सामने रखा। हाँ बोले अभी ठीक है, तुम ये रख के जाओ। और उसके बाद उन्होंने 10 दिन में उसमें कुछ संवाद लिखे, जहां मैंने संवाद लिखे थे उनको अच्छे लगे थे वो वैसे के वैसे रखे, और इस तरह हम दोनों ने मिलकर एक की मायागार नाम का नाटक लिखा।
1: एक की माया ही हो गई जैसे।
0: जी जी।
1: और वो बहुत उसका नाम भी हुआ
0: जी।
1: उसको काफी सराहा भी लोगों ने।
0: एक फिल्म है सूरत और सीरत,
1: बहुत पुरानी फिल्म है
0: जी
1: ये।
0: जी, बहुत दिया देने वाले ने तुझको।

0: आप विविध भारती की तरफ दोबारा जरूर आइएगा, आपसे बात करने का एक मौका हमें जरूर दीजिएगा। और सारे श्रोताओं की तरफ से मैं आपको धन्यवाद कहती हूँ, आगे चाहती हूँ। नमस्कार।
1: नमस्कार। सेल्यूलॉइड के सितारे, इस प्रोग्राम में अभी आप सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेता सदा

राष्ट्रीय गीत की 150वीं वर्षगांठ। आ सेतु हिमाचल गूंजता स्वर। हम मना रहे हैं स्मृति। सुनना न भूलिए लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। वंदे मातरम एक जय घोष प्रसारण प्रति शुक्रवार सुबह 8:15 पर, पुनः प्रसारण उसी दिन दोपहर 2 बजे। लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक

0: रंग तरंग
1: कार्यक्रम रंग तरंग लेकर हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।

0: साजन मिश्रा और साजन मिश्रा की आवाजों में आप सुन रहे थे भक्ति माला से ये भक्ति गीत। कार्यक्रम विविध भारती पर आप सुन रहे हैं रंग तरंग।
1: एक बेमिसाल शायर
2: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
1: एक शानदार शख्सियत
3: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
1: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी,
3: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
1: कुछ बेमिसाल किस्से
3: मैंने पढ़ा, जाने कितनी उड़ान बाकी इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
1: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम रंग तरंग। आइए सुनते हैं द बेस्ट ऑफ भूपिंदर। इस एल्बम से भूपिंदर सिंह की आवाज में ये गजल जिसे लिखा है गुलजार ने और संगीत भूपिंदर का।

विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग और आपको याद दिला दें कि संगीत सरिता में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला ऐसी लागी लगन। आज सुन सकते हैं उसकी दूसरी कड़ी। कलाकार हैं गायक अनूप जलोटा और इस कार्यक्रम को आप सुन सकते हैं शाम 6:45 से। वैसे रोजाना ये कार्यक्रम सुबह 6:45 पर भी आप सुन सकते हैं। और इंद्रधनुष के अंतर्गत राग अनुराग कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 7:45 से। और इस वक्त रंग तरंग कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं ये गीत।

द मॉर्निंग सन इस एल्बम से सुरेश वाडकर की आवाज में आप सुन रहे थे रविन्द्र जैन का लिखा और इनका संगीतबद्ध किया ये गीत। कार्यक्रम रंग तरंग विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

महेश्वर का लिखा ये कलाम आप सुन रहे थे कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में। चंदी रमानी का संगीत था सोजे दिल। इस एल्बम से इस गजल को हमने आपको सुनवाया, ना बाबा ना। ये झलकी आप सुन सकते हैं रात 8 बजे हवा महल में। लेखन संजय श्रीवास्तव का है, निर्देशन गोविंद पारिक का है और नए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रलोक आप सुन रहे हैं ना हर रोज रात 8:15 से। और इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग विविध भारती पर।

जयवालिया की आवाज में उन्हीं का लिखा ये गीत आपने सुना, ललित का संगीत और एल्बम आंखों में तेरा ही चेहरा, जिससे हमने ये गीत आपको सुनवाया। कार्यक्रम रंग तरंग में अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं लक्की अली की आवाज में। अक्स एल्बम के इस गीत में लक्की अली का ही आवाज है, उन्हीं का संगीत और उन्हीं के बोल।

लकी अली की आवाज में उन्हीं का संगीतबद्ध किया गीत आपने सुना अक्स एल्बम से। इस गीत को लिखा भी उन्होंने ही। और आपको बता दें कि आज के फनकार कार्यक्रम रात 9:30 से आप सुन सकते हैं। आज केंद्रित है पार्श्व गायक बेनी दयाल पर। और कार्यक्रम रंग तरंग में अगला गीत आप सुन सकते हैं या सुनने वाले हैं दिल के टुकड़े हजार हुए। इस एल्बम से अल्ताफ राजा की आवाज, अरुण भैरव के बोल, संगीत अल्ताफ राजा और वैष्णव देवा का।

दिल के टुकड़े, माफ कीजिएगा, दिल के टुकड़े हजार हुए। इस एल्बम से आप सुन रहे थे अल्ताफ रजा को, और कार्यक्रम रंग तरंग विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

आहा सुचित्रा। इस एल्बम से आप सुन रहे थे सुचित्रा कृष्णमूर्ति की आवाज में अरुण राज के बोल, बंटी दुग्गल का संगीत इस गीत में आपने सुना। आपको बता दें शाम 4 बजे आज के मेहमान कार्यक्रम में सुनना न भूलिएगा शायर और सेवानिवृत्त केंद्र निदेशक राजेश रेड्डी से यूनुस खान की बातचीत, प्रस्तुति जुबैर खान की। कार्यक्रम रंग तरंग विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

अपने पराये फिल्म का गीत आप सुन रहे थे केसुदास और साथियों की आवाजें, योगेश के बोल, बप्पी लाहिरी का संगीत। कार्यक्रम रंग तरंग में अब आपको सुनवाते हैं करण सगथिया और श्रेया घोषाल की आवाजें, मीर अली हुसैन और मीर अली हुसैन के बोल हैं, सलीम सुलेमान का संगीत। डोर फिल्म से सुनिए ये गीत।

डोर फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे करण सगठरिया और श्रेय घोषाल की आवाज से, मीर अली हुसैन के बोल, सलीम सुलेमान का संगीत। इसके साथ ही आज का रंग तरंग कार्यक्रम अब समाप्त होता है। रंग

0: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार। गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जय दास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: जल संरक्षण के सारे काम सुख समृद्धि के रचे आयाम।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गर्मी के इस मौसम में आपके विचार की प्रासंगिकता और भी अधिक बढ़ जाती है। जी हाँ श्रोताओ, जल अमूल्य है, इसे बूंद बूंद बचाना हमारी जिम्मेदारी है। और अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम।
2: छत्तीसगढ़ रायपुर से नरेंद्र कुमार जाटव, संदीप जाटव, अनीता जाटव और राधिका रानी जयपुरिया जी ने लिखा है, मिठाइयों का सम्मेलन कहानी बहुत पसंद आई, आपको बधाई।
0: आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू।
2: ग्राम पजौनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया और श्रीमती कल्पना चंसौलिया।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपके संदेशों के लिए। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए में।
2: तो श्रोताओ, कल हमने चर्चा की थी गर्मी से बचने के कुछ उपायों पर
0: जी,
2: और ये भी जाना था कि 12 बजे से 4 बजे तक खास तौर से हमें गर्मी के मौसम में बाहर क्यों नहीं निकलना चाहिए। तो अजीत जी, जरा श्रोताओं को ये भी जानकारी दे दें कि आज की चर्चा किस विषय पर होगी।
0: विमलेश जी, आज हम ये चर्चा करेंगे कि गर्मी के मौसम में हमारा खान पान कैसा होना चाहिए
2: जी।
0: लेकिन श्रोताओं, इससे पहले कि हमारी चर्चा आगे बढ़े, एक रोचक लेकिन महत्वपूर्ण बात आपको हम बताना चाहते हैं, और वो ये कि परंपरागत धारणाओं के अनुसार गर्मी के मौसम में सबसे कठिन दिन कब आते हैं।
2: जी अजीत जी, ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि वो समय अब आने ही वाला है। आज 13 मई हो गई, बस कुछ दिन और। जी हाँ श्रोताओ, हम बात कर रहे हैं नवतपा की। उत्तर और मध्य भारत में इसका प्रभाव विशेष रूप से दिखाई पड़ता है। इन दिनों हमें अपना बहुत ही खास ध्यान रखना चाहिए। अजीत जी, नवतपा किसे कहते हैं ये तो बताइए जरा।
0: जी विमलेश जी, नवतपा का अर्थ है 9 दिनों तक तपना, यानी 9 दिनों तक भयंकर ताप
2: जी।
0: ये वो अवधि है जब हमारे परंपरागत खगोल ज्ञान और मान्यता के अनुसार सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करता है, और इन दिनों में लगभग 9 दिनों तक प्रचंड गर्मी पड़ती है।
2: तो श्रोताओं, आइए अब जानते हैं कि सामान्यतः ये समय कब आता है। आमतौर पर मई महीने के अंत यानी लगभग 25 मई से जून महीने की शुरुआती यानी 2 जून तक जलवायु परिवर्तन के कारण ये समय थोड़ा इधर उधर हो सकता है। इस समय विशेषकर उत्तर भारत में लू चलती है और आसमान साफ होता है, इसलिए छाया की भी गुंजाइश नहीं होती है।
0: जी बता दें श्रोताओं कि यह प्राचीन अनुभवों के आधार पर परंपरागत मान्यता है। वैसे नवतपे में गर्मी बड़ी खतरनाक हो जाती है, लेकिन इसे वरदान भी माना गया है। क्यों?
2: नवतपे में जितनी गर्मी पड़ेगी, माना जाता है कि मानसून उतना ही अच्छा आएगा
0: जी।
2: आइए अब करते हैं चर्चा गर्मी के मौसम में खान पान की।
0: तो विमलेश जी, आपसे ही शुरुआत करें।
2: जी अजीत जी, श्रोताओ, गर्मी के मौसम में खास ध्यान ये रखना चाहिए कि हमारा आहार पौष्टिक लेकिन हल्का हो।
0: और हाँ, इस मौसम में नींबू पानी, छाछ, दही जैसे प्राकृतिक उत्पादों का अधिक से अधिक उपयोग करें।
2: सबसे जरूरी बात तो ये है श्रोताओ कि खाली पेट घर से न निकलें।
0: जी
2: अब बात करते हैं मौसमी फलों के बारे में। अजीत जी, मुझे लगता है कि प्रकृति को सचमुच हमारी बहुत चिंता रहती है।
0: जी बिल्कुल, इसलिए तो प्रकृति को माँ भी कहा गया है।
2: जी सही कहा, जैसे माता को हमारी चिंता रहती है वैसे ही प्रकृति भी हमारी चिंता करती है। श्रोताओ जरा सोचिए ना, गर्मी के मौसम में ही खरबूजे, तरबूज जैसे फल प्रकृति क्यों उगाती है, खीरे और ककड़ियाँ क्यों उगाती है, आम और दूसरे मौसमी फल क्यों होते हैं, ये फल सर्दियों में क्यों नहीं उगते।
0: विमलेश जी, आमतौर पर लोग कहेंगे कि इसमें

0: ज़रा सोचने की क्या बात है, ये गर्मी के फल हैं तो गर्मी में तो होंगे ही।
1: जी अजीत जी, आम लोग ऐसा सोच सकते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि कुछ फल जैसे खरबूज, तरबूज, ककड़ी और खीरे में 80 से 90% तक पानी होता है।
0: जी,
1: इन्हें खाने से हमारे शरीर में पानी की मात्रा बनी रहती है। इतनी अधिक पानी की मात्रा होने के कारण ये पचने में भी आसान होते हैं।
0: जी विमलेश जी, आपने बिल्कुल सही कहा। प्रकृति को सचमुच हमारी चिंता रहती है, तभी तो वो ऐसे फल उगाती है जिनसे कि हम स्वस्थ रहें। हमें प्रकृति माता को जरूर धन्यवाद देना चाहिए।
1: जी,
0: लेकिन दुखद है कि प्रकृति हमारे स्वास्थ्य की जितनी चिंता करती है ना, उतनी प्रकृति के स्वास्थ्य की चिंता हम नहीं करते।
1: तो श्रोताओं, कैसी लगी हमारी ये जानकारी, जरूर बताइएगा। और अब सुनते हैं आज का प्रश्न।
0: तो आज का प्रश्न है, प्रकृति को हमारे भले की चिंता रहती है, ऐसा क्यों कहा गया है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: प्रकृति को हमारे भले की चिंता रहती है, ऐसा क्यों कहा गया है?
0: भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। और साथ ही साथ आप हमारे ईमेल के पते पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो श्रोताओं, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम, शीर्षक है गर्मी।
1: ये कार्यक्रम गर्मी के मौसम की जानकारी देते हुए बताता है कि गर्मी के मौसम में हमें अपना ध्यान किस तरह से रखना चाहिए और गर्मी के मौसम में पैदा होने वाली साग सब्जियाँ और फल कौन कौन से होते हैं जिनका हमें भरपूर सेवन करना चाहिए।
2: बहुत पुरानी बात है, दो बहनें थी, सोना और रूपा। दोनों अपने माता पिता के साथ एक गांव में रहती थी। गर्मी का मौसम था, दोनों बाग में खेल रही थी।
3: अकर बकर बम्बे वो 80 90 100 में लगा धागा, चोर निकल के भागा।
4: मुझे तो कहानी आती है।
5: तो कहानी सुना दो भाई।
4: अच्छा ठीक है। गर्मी का दिन था, एक कौआ प्यासा था, घड़े में पानी थोड़ा था। कौआ लाया कंकर, घड़े में डाले कंकर, पानी आया ऊपर, कौए ने पिया पानी, खत्म हुई कहानी।
5: अच्छी कहानी भाई, कौए ने तो पानी पी लिया, पर अब मुझे बहुत प्यास लग रही है।
4: हाँ, प्यास तो मुझे भी लग रही है। वो सामने घड़ा रखा है, चलो वहाँ चलकर देखते हैं।
5: हाँ चलो चलो, वहाँ
4: चलो,
5: पानी
4: चलो
5: होगा।
4: चलते हैं।
2: सोना और रूपा ने घड़े का ढक्कन हटाकर देखा तो उसमें पानी था। दोनों बहुत खुश हुई। रूपा पीने के लिए पानी निकाल ही रही थी कि तभी एक आवाज आई।
6: कौन है?
5: दीदी,
6: कौन है?
5: दीदी।
4: अम्मा जी, मैं हूँ सोना और ये है मेरी बहन रूपा।
5: अम्मा जी, हमें बहुत प्यास लगी है,
4: हम थोड़ा पानी पी लें?
7: हाँ हाँ, क्यों नहीं, पी लो पानी। बच्चों, पानी पी लो, ढक्कन ठीक से लगा देना। पी लिया पानी? प्यास बुझी?
5: हाँ, बड़ा ठंडा पानी था। लेकिन अम्मा,
4: आप कौन है?
7: मैं एक मौसम हूँ। मेरे आने से तुम्हें बहुत प्यास लगती है और बहुत गर्मी भी लगती है, पर मैं अपने साथ तरह तरह के फल भी लाती हूँ, जैसे खरबूजा, तरबूज, खीरा, ककड़ी और भी बहुत सारी चीजें। अच्छा भला बताओ तो, मैं कौन हूँ?
5: कौन है आप?
7: नहीं समझे?
5: नहीं।
7: अच्छा, तो फिर ये पहेली सुनो।

0: चलते हैं
1: और सारा दिन पानी भी पीते हैं।
0: ऐसा मौसम। ओ,
1: ओ
0: अब गर्मी अम्मा है।
2: बिल्कुल ठीक समझी। मैं गर्मी यानी गर्मी का मौसम ही तो हूँ।
1: गर्मी अम्मा, आप कब आती हैं? पता ही नहीं चलता।
2: सीधी सी बात है, सर्दी जब जाने की तैयारी करती है, गर्म कपड़ों में तुम्हें गर्मी लगती है, तो बस समझ लो कि मेरा मौसम शुरू, यानी
1: हाँ, जब होली आती है तो गर्मी भी तो लगनी शुरू हो जाती है।
2: शुरू हो जाती है हाँ।
1: अम्मा, मुझे तो धूप में बहुत गर्मी लग रही है।
2: भाई, मेरे मौसम में गर्मी तो लगती है। चलो ऐसा करते हैं, उस पेड़ की छाया में बैठते हैं, ठीक है?
1: हाँ चलो, चलते हैं।
3: चलो।
4: सोना और रूपा गर्मी अम्मा के साथ जाकर पेड़ की छाया में बैठ गईं। इतने में पेड़ से दो आम गिरे।
1: अरे ये क्या गिरा?
2: मैं देखती हूँ, तुम लोग यहीं बैठो।
4: वहाँ दो आम गिरे थे, बच्चे भी दो और आम भी दो, लेकिन अम्मा ने वो आम छिपा लिए।
1: अम्मा, आप क्या छुपा रही हैं? अम्मा, ये आपके हाथ में क्या है?
2: मेरे ही मौसम का एक फल है।
1: दिखाओ ना।
2: दूंगी तुम्हें, दूंगी, पर पहले तुम्हें इसका नाम बताना पड़ेगा।
1: इसका नाम
2: सोचो। मेरे मौसम का सबसे स्वादिष्ट फल जो बच्चों को, बड़ों को, सबको बहुत पसंद है, खट्टा मीठा रसदार फल। सोचो।
1: स्वाद है,
5: पसंद है,
1: सबसे अच्छा भी है।
5: कौन सा फल है?
1: कौन सा फल
2: नहीं समझी?
1: नहीं।
2: अच्छा तो फिर सुनो।

0: झट से तुम बोलो ये क्या है, झट से तुम बोलो ये क्या है, बोलो ना।
1: तुम तो बड़ी समझदार हो।
2: आइसक्रीम ले लो आइसक्रीम, कुल्फी वाला बर्फ का गोला ले लो, चुस्की ले लो आइसक्रीम।
1: बच्चों मेरे मौसम में तुम लोग खूब आइसक्रीम खाते हो, बर्फ के गोले खाते हो, है ना, कुल्फी भी खाते हो ना। अरे तुम्हारा बस चले तो तुम दिन भर आइसक्रीम ही खाते रहो, है ना?
3: अरे कोई खाने को दे तब ना।
4: अरे लगता है बहुत तेज आंधी आने वाली है, तुम लोग जल्दी से घर चले जाओ।
1: और हाँ, ये आम तो लेती जाओ।
3: लाओ अम्मा, लाओ अम्मा।
1: लो
3: गर्मी अम्मा। हाँ। आप बहुत अच्छी हैं।
1: हाँ, तुम्हें मीठे मीठे आम जो खिलाती हूँ।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम गर्मी, और श्रोताओं आइए अब चलते हैं अगले कार्यक्रम की ओर। और हमारा अगला कार्यक्रम है कारगिल की शौर्य गाथा।
1: ये कार्यक्रम कारगिल युद्ध से ठीक पहले की परिस्थितियों की जानकारी देता है और वर्णन करता है कि कारगिल युद्ध के दौरान विपरीत और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के होते हुए भी किस प्रकार से भारतीय सेना ने अपार धैर्य और शौर्य का प्रदर्शन करते हुए विजय की पताका फहराई।
2: मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। सुप्रसिद्ध कवि माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा लिखी गई ये पंक्तियां कितनी जीवंतता से उन पराक्रमी युद्ध सैन्य महानायकों के प्रति असीम श्रद्धा की भावनाओं को जगाती है।
3: विजय श्री उन्हीं के लिए निर्धारित होती है जो कठिन और विपरीत परिस्थितियों में भी अदम्य साहस और दृढ़ निश्चय के साथ अविचलित और अडिग खड़े रहते हैं। आज का कार्यक्रम हम श्रद्धा सहित समर्पित करते हैं उन पराक्रमी योद्धाओं को जिन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी।
2: जी हाँ, आज हम बात करेंगे कारगिल युद्ध की, जो नियंत्रण रेखा के पास जम्मू कश्मीर के कारगिल जिले में भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ा गया था। स्वतंत्र भारत के इतिहास में ये ऐसी पहली लड़ाई थी जिसे संचार माध्यमों के द्वारा निरंतर प्रसारित किया गया, और परिणाम स्वरूप इस युद्ध का आंखों देखा हाल भारत की जनता के घर घर तक पहुंचाया गया।
4: Sound of Bofors guns directly targeting the top of Tiger Hill, the prelude to the final assault.
5: We just had a shell land very close to us. I doubt if you were able to see anything.
3: देश के विभिन्न मीडिया चैनलों के माध्यम से पत्रकारों ने इस युद्ध का जीवंत रिपोर्टाज प्रस्तुत किया, जिसके कारण जनता द्वारा सेना को अपार समर्थन मिला और फलस्वरूप भारतीय सेना का मनोबल और अधिक बढ़ा, जिसने इतिहास रच दिया। एक ऐसा स्वर्णिम अध्याय जिसे आने वाली पीढ़ियां गर्व के साथ याद करेंगी। कारगिल का युद्ध 3 मई से 26 जुलाई 1999 तक लड़ा गया।

0: इस युद्ध को ऑपरेशन विजय के नाम से जाना जाता है, जो मुख्य रूप से स्थल और वायु सेना द्वारा लड़ा गया। उल्लेखनीय है कि इस दौरान भारत की समुद्री सीमाओं पर भी भारतीय नौसेना ने शत्रुओं पर कड़ी निगरानी रखी।
1: दिन था 6 मई 1999 का। समुद्र तल से 16,000 फीट की ऊंचाई पर दुर्गम बर्फीले पर्वतों के बीच एक भारतीय चौकी पर सैनिक मुस्तैदी से पहरा दे रहे थे।
2: बहुत ठंडी आज तो है। वैसे भी ये एक ऐसी जगह है जहां लगता है कि हम दुनिया के किसी और ही कोने में हैं, है ना?
3: ठीक कहते हो तुम। अभी मई महीने में इतनी ठंड है तो पता नहीं सर्दियों में क्या हाल होता होगा।
2: वैसे तुम्हारी पोस्टिंग तो अभी हाल ही में हुई है ना? अरे मैंने तो यहाँ की दो सर्दियां देख ली हैं।
3: जरा उधर देखो।
2: अब किधर?
3: वहां लगता है कोई इधर ही आ रहा है।
2: कोहरा काफी घना है, ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन हाँ, इतना कह सकता हूँ मैं कि कोई सैनिक नहीं है। उसका पहनावा तो देखो।
3: पहनावे से तो कोई कबायली लगता है। लेकिन इधर क्यों आ रहा है? कोई जासूस तो नहीं? वार्निंग दो इसे।
2: आने दो। ए! कौन हो तुम? रुको, जाओ वहीं रुक जाओ, रुको।
4: कौन हो तुम?
5: साहब मैं एक चरवाया हूँ साहब, मुझे एक बहुत जरूरी सूचना देनी है। अपने बड़े साहब से मुझे मिलवाओ।
4: क्या सूचना?
5: साहब

0: दुश्मनों के बारे में।
1: अच्छा यहीं रुको, चलो कमांडेंट साहब ने बुलाया तुम्हें।
0: नमस्कार सर, मेरा नाम ताशी नामग्याल है।
2: नमस्कार, कहो क्या कहना चाहते हो?
0: सर हम एक चरवाया है।
2: आगे बताओ।
0: सर ये 3 मई की बात है, कुछ दिनों पहले मेरा याक खो गया था। उसे खोजते हुए मैं पहाड़ों पर काफी ऊंचाई में चला गया था। एक ऊंची चट्टान पर खड़े होकर मैंने दूरबीन से नीचे देखा तो एक बड़ा अजीब सा नजारा मुझे दिखाई पड़ा।
2: क्या देखा तुमने?
0: सब मैंने देखा कि पठानी कपड़ों में बहुत से लोग एक जगह पर जमा है।
2: क्या?
0: उनमें बहुत बड़ी संख्या में पाकिस्तानी सैनिक भी हैं। वे बंकर खोद रहे थे और उनके पास बहुत सारे हथियार भी थे। हाँ,
2: कितने लोग रहे होंगे?
0: सब पूरी गिनती तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन हाँ इतना पक्का है कि वो बॉर्डर के उस पार से आए हैं और बहुत ही बड़ी संख्या में जमा हो रहे हैं।
2: ये तो बड़ी जरूरी बात बताई तुमने। हो सकता है कि हमें तुम्हारी फिर से जरूरत पड़े। तुम्हारा घर कहाँ है?
0: सब मेरा गाँव है घरकोन, ये कारगिल शहर से 60 किलोमीटर दूर बटालिक शहर के पास है।
3: तो साथियों, इस स्थानीय सजग चरवाहे की सूचना से सेना सतर्क हो गई। जब सेना ने इस बात की छानबीन की तो बात सच निकली। उन्हें पता चला कि सीमा पार से बहुत बड़ी घुसपैठ हुई है।
4: सही स्थिति का अंदाजा लगाने के लिए भारतीय सेना ने मेजर सौरभ कालिया के नेतृत्व में एक गश्ती दल भेजा, लेकिन वो दल कभी वापस ही नहीं आया। 10 जून को पाकिस्तानी सेना ने उनके बुरी तरह से क्षत विक्षत शव वापस भेजे।
3: अब इस बात में कोई संदेह नहीं था कि पाकिस्तान द्वारा बड़े पैमाने पर घुसपैठ हुई थी। सेना द्वारा गहन जांच में पता चला कि मई 1999 की शुरुआत में ही पाकिस्तानी सेना नियंत्रण रेखा पार करके मुश्को, द्रास, काकसर और बटालिक क्षेत्रों में लगभग 4 से 8 किलोमीटर अंदर तक घुस आई थी और पाकिस्तानी सेना के लगभग 2000 से अधिक पैदल सैनिकों और कमांडो ने यहां अपनी चौकियां बना ली थी।
4: यद्यपि पाकिस्तानी अधिकारियों द्वारा कहा गया कि ये घुसपैठिए कश्मीरी स्वतंत्रता सेनानी हैं, लेकिन छापेमारी में पकड़े गए लोगों और हल्की गोलाबारी में मारे गए सैनिकों के पास मिले सारे दस्तावेजों ने साबित कर दिया कि ये काम पाकिस्तान के अलावा किसी और का नहीं था।
3: दरअसल पाकिस्तान का उद्देश्य था सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इन क्षेत्रों में अपनी सेना भेजकर श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर कब्जा करके लद्दाख को कश्मीर से अलग करना और कारगिल व सियाचिन पर कब्जा करना।
4: ये भारत की सुरक्षा और संप्रभुता पर सीधा प्रहार था और इसलिए भारत को बड़े पैमाने पर कारगिल में एक सैनिक अभियान प्रारंभ करना पड़ा, जिसे कारगिल युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस सैन्य अभियान का नाम था ऑपरेशन विजय। भारतीय सेना समझ चुकी थी कि विपरीत भौगोलिक परिस्थितियों में शत्रुओं से युद्ध करना एक बेहद कठिन और दुष्कर कार्य होगा। भारत सरकार द्वारा नियंत्रण रेखा को पार न करने के निर्णय ने भारतीय सेना के कई सामरिक विकल्पों पर अंकुश लगा दिया।
3: भारतीय सीमा में घुसे हुए पाकिस्तानी पूरी तरह से सुरक्षित और अत्याधुनिक हथियारों से लैस थे। उन्हें पहाड़ों की ऊंचाइयों पर होने का प्राकृतिक लाभ था, जबकि भारतीय सेना घाटी में खुले होने के कारण बेहद असुरक्षित थी। लेकिन युद्ध अवश्यम भावी था और भारतीय सेना ने युद्ध छेड़ दिया।
4: दिन में किए गए हमले खतरनाक हो सकते थे क्योंकि देख लिए जाने का जोखिम था, इसलिए भारतीय सेना द्वारा आक्रमण मुख्य रूप से रात को 0 डिग्री से भी कम तापमान में किए गए। सेना के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी समुद्र तल से 18,000 फीट की खड़ी चढ़ाई को चढ़ना।
5: साथियों, हमारे सामने जो सबसे बड़ी कठिनाई है वो है इन पहाड़ों की खड़ी चढ़ाई पर चढ़ना।
2: लेकिन सर, एक और बहुत बड़ा खतरा है और वो है दुश्मनों द्वारा देख लिए जाने का।

0: ठीक कहते हो। अगर हम चढ़ने की कोशिश भी करें तो वो बड़ी आसानी से हमें अपने निशाने पर ले सकते हैं।
1: जी सर, इसलिए दिन की रोशनी में आक्रमण करना बिल्कुल संभव नहीं है। हमारे पास मात्र रात को ही आक्रमण करने का विकल्प बचता है।
0: सही बात। सुनो, सब इधर आओ।
2: जी, यस सर।
0: ये मेज के चारों ओर।
1: जी सर।
2: उधर से। हाँ
0: जी। तुम्हें याद होगा कि अभी 3 दिन पहले हमारी वायुसेना के विमान इस क्षेत्र में आक्रमण करने आए थे।
2: जी सर।
0: वायुसेना ने हमले के दौरान इस क्षेत्र के चित्र भी खींचे हैं और उन्हें हमारे पास भेजा है।
2: जी सर।
0: इन चित्रों के आधार पर मैंने ये नक्शा बनाया है।
2: जी सर।
0: इस नक्शे के अनुसार मुझे ऐसा लगता है कि दुश्मनों की चौकी जहां है उसकी विपरीत दिशा से हमें पर्वत पर चढ़ना होगा, यानी दाहिनी ओर से।
2: जी सर, आप ठीक कहते हैं सर। इस तरफ से सर, यहां से पहाड़ की दाहिनी ढाल भी ज्यादा कठिन है सर। दुश्मन सोच भी नहीं सकता कि हम इस तरफ से चढ़ भी सकते हैं।
0: बिल्कुल ठीक। तो साथियों,
3: यस सर।
0: अभी बज रहे हैं शाम के 5 और मेरा अंदाजा है कि इस चढ़ाई में हमें कम से कम 5 घंटे तो लगेंगे, तो क्यों ना रात 11 बजे से इस अभियान को शुरू किया जाए।
2: जी सर।
0: चढ़ाई करने वाली हल्की रस्सियां तैयार कर ली जाएं। हथियारों में राइफल्स, हल्की मशीन गन और हथगोले होंगे।
2: सर, जी सर।
0: कोई शक?
2: नो सर।
0: बी प्रिपेयर्ड फॉर द मिशन।
3: यस सर।
2: अब हम चोटी के बिल्कुल पास आ गए।
4: धीमे बोलो, धीमे।
2: जी,
4: उन्हें पता ना चल जाए।
2: जी सर।
4: चोटी पर पहुंचते ही हम सभी रेंगते हुए उनके तंबुओं की ओर बढ़ेंगे।
2: जी।
4: और हथियारों के साथ अपनी अपनी पोजीशन ले लेंगे।
2: ठीक सर।
4: और फिर तुम विपरीत दिशा में एक हथगोला फेंकना।
2: जी सर। जी सर।
4: बम के फटने की आवाज सुनकर अपने तंबुओं से कुछ सैनिक बाहर जरूर निकलेंगे और तुम्हें उन पर फौरन फायरिंग करनी होगी।
2: जी सर।
4: ठीक है, आगे बढ़ो। बहुत धीरे, आवाज नहीं निकलनी। जैसे धीरे
2: धीरे धीरे
4: तपे बहुत। बस अब हम चोटी पर आ गए हैं तो अब रेंगना शुरू करो।
2: रेंगेंगे। जी सर।
4: कोई भी उठ कर नहीं चाहेगा, सब रेंगेंगे। आवाज नहीं, आवाज नहीं, आवाज नहीं। हर कोई अपनी पोजीशन ले ले।
2: हाँ सर।
4: एवरीबॉडी रेडी?
2: यस सर।
4: यस सर। अब हथगोला फेंको।
0: गुड, वो अपने बंकरों से बाहर आ रहे हैं।
5: इस मिशन में भारतीय सेना को भारी सफलता मिली। दुश्मन के अधिकांश लोग मारे गए और कारगिल की इस चोटी पर भारतीय सेना ने अपना परचम लहरा दिया। ऑपरेशन विजय में भारतीय वायुसेना की बहुत ही अहम भूमिका रही। इस युद्ध में सामरिक महत्व के मुख्य क्षेत्र थे मुश्को, द्रास, काकसर और बटालिक।
6: भारतीय सेना ने एक अपूर्व गरिमामय इतिहास रच दिया था।
5: 3 मई से 26 जुलाई 1999 के बीच लड़ी गई इस लड़ाई में 25 सैनिक अधिकारियों और 436 जवानों की शहादत हुई। इसके अलावा 54 सैनिक अधिकारी और 629 जवान घायल हुए।
6: इस युद्ध में 2 सैनिक अधिकारियों और 2 जवानों को परमवीर चक्र से अलंकृत किया गया। ये पराक्रमी योद्धा है कैप्टन विक्रम बत्रा, लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे, राइफलमैन संजय कुमार और ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव।
5: देश इन रणवीरों को उनके असीम शौर्य हेतु श्रद्धा से नमन करता है। कारगिल युद्ध की गौरवशाली विजय की स्मृति में 26 जुलाई को अब देश

0: भर में विजय दिवस मनाया जाता है।
1: अभी आपने सुना ये कार्यक्रम और श्रोताओ, अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से।

विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। आपको याद दिला दें कि रोजाना शाम 7:45 से इंद्रधनुष के अंतर्गत आप सुनते हैं अलग अलग कार्यक्रम और आज आप सुन सकते हैं शास्त्रीय गीतों पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम राग अनुराग और हवा महल में सुनिए झलकी ना बाबा ना। रात 8 बजे से लेखन है संजय श्रीवास्तव का, निर्देशन गोविंद पारिक का। कार्यक्रम यादों की महफिल में आज पार्श्व गायक मनोहर दास के जन्मदिन पर उन पर केंद्रित गीत हम आपको सुनवा रहे हैं जो उनकी आवाज में हैं। और अब आपको सुनवाते हैं जांबाज फिल्म का ये गीत मनोहर दास और साधना सरगम की आवाज़ें, इंदिवर के बोल, कल्याण जी आनंद जी का संगीत।

जांबाज फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। कल्याण जानन जी का संगीत, मनहर उदास और साधना सरगम की आवाजें, इंदिवर के बोल। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं यादों की महफिल विविध भारती पर।

मनोहर दास और मोहम्मद अजीज की आवाज में नाम फिल्म का गीत आपने सुना। आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का संगीत, यादों की महफिल कार्यक्रम विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

0: मन रास कंचन और आनंद की आवाज में आप सुन रहे हैं कुर्बानी फिल्म का ये गीत इंदिवर के संगीत।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
2: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के

0: गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
1: करोड़ों हिंदुस्तानियों

0: சசிய ஷியாமலாம் மாதரம் வந்தே வந்தே மாதரம்.
1: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल, और इस प्रोमो से ठीक पहले आपने कुर्बानी फिल्म का गीत सुना। कंचन मनोहर दास और आनंद की आवाज है, इंदिवर के बोल कल्याण जी आनंद जी का संगीत। कार्यक्रम यादों की महफिल में आज पार्श्व गायक मनोहर दास के जन्मदिन पर उनकी आवाज से सजे गीतों को हम सुनवा रहे हैं, और अब सुनते हैं मनोहर दास, कविता कृष्णमूर्ति और सुखविंदर सिंह की आवाजों में सौदागर फिल्म का ये गीत, आनंद बख्शी के बोल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम सुरीला सफर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम लेकर हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। और कार्यक्रम में स्वागत के साथ साथ ही आज के कार्यक्रम के शुरुआत में आपने तो ढेरों बातें हम तक पहुंचा ही दी हैं, लेकिन हर रोज हम एक इबारत या टेक्स्ट फेसबुक पर पोस्ट करते हैं जैसा कि आप सभी जानते हैं। और इस एक पैराग्राफ में बहुत सारे शब्दों में से कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनसे संबंधित गीत, जिन पर आधारित गीत इस कार्यक्रम में शामिल किए जाते हैं। तो आपके लिए इबारत तो पोस्ट कर दी ही जाती है और आपको ये पता लगाना होता है उसे पढ़कर कि कौन कौन से शब्दों पर गाने शामिल हो सकते हैं। और कार्यक्रम का मजा भी इसी बात में है कि गानों की जो लिस्ट है, आपकी जो लिस्ट है, हमारी जो लिस्ट है, हमने जो सोचकर वो इबारत लिखी है, वो सोच आपकी सोच से मिल जाए और वो गाने मैच कर जाए। और कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि गाने ना मैच करें, फिर भी आप फेसबुक कमेंट्स के जरिए पोस्ट पर ये बता सकते हैं कि क्या कि कौन से गाने आपको लगता है कि शामिल होंगे, हो सकता है वो गाने शामिल हो जाएं। तो चलिए आज का ये कार्यक्रम तो नेहा शर्मा के साथ आप सुनने वाले हैं। और इस कार्यक्रम में आज की इबारत या टेक्स्ट हमने जो लिखी है वो क्या है आपको बता देते हैं। जिंदगी की पहेली कोई समझ कहां पाया है, कभी तो जिंदगी एक ऐसा सवाल जिसका जवाब मुश्किल, और कभी ऐसा ख्याल जो महका दे मन। जिंदगी एक ऐसी नदी जिसकी धारा बिना उलझनों के बहती है, कभी गाती झूमती और रचती है सौ अफसाने, और कभी इसकी हकीकत कोई जाने तो कैसे जाने। ये जीवन जैसे सपनों की कहानी, थोड़ी अनजानी तो थोड़ी जानी पहचानी। इसलिए तो कहते हैं जीना तो उसी का जीना है जो दे बेसहारों का सहारा, जिसके होते न कोई जीता न कोई हारा। तो ये है आज की इबारत या टेक्स्ट जिसमें छुपे हैं वो शब्द जिनसे आज के इस कार्यक्रम में गाने मतलब शामिल हो सकते हैं। और आपने बहुत सारे गीत हमें लिख भेजे हैं, अलग अलग शब्दों को आपने छांट लिया और कहा है कि इन शब्दों पर गीत तो होने ही चाहिए। देखिए ये आपके कमेंट्स देखकर हमें ये अंदाजा हो गया है कि आपकी लिस्ट और हमारी लिस्ट काफी हद तक तो मिल रही है। अब ये देखना है कि किन के जो गीत हैं वो आज के इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं, जिन्हें ऐसा लगा कि ये गीत शामिल होने वाले हैं। लेकिन हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि जिंदगी की पहेली है, सवाल है, जवाब है, वो जो भी है, लेकिन जब मुश्किल वक्त आता है तो आप किस तरह से सुलझाते हैं वो पहेली? क्या आप भी परेशान हो जाते हैं या आप रखते हैं संयम और अपने आप को संभालते हुए अपनी जिंदगी को एक सही ढर्रे पर, सही रास्ते पर ले आते हैं? और क्या है अफसाना आपकी जिंदगी का, हमसे बांटिए। तब तक हम आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का पहला गीत और हमें ये भी बताइए कि इसमें आवाज किसकी है।

0: कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए।
1: मन अड्डे की आवाज में आनंद फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे और हमारे बहुत से साथियों ने इस गीत के बारे में सोचा था कि ये गीत तो जरूर शामिल होगा, तो बिल्कुल सही बात तो है क्योंकि एक टेक्स्ट का जो पहला अक्षर इस तरह से आए तो लगता है कि ये तो होना ही। लेकिन एक पहेली जो हमारे साथियों के मन में बनी हुई है, ये हमारे एक साथी कह रहे हैं कि मुझे तो कार्यक्रम को समझ में नहीं आ रहा, लगता है कि पोस्ट कब आती है पता नहीं चलता, तो लगता है कि कार्यक्रम के प्रसारण में कुछ परेशानी हो रही है या समझौता हो रहा है। तो हम इन्हें कहना चाहते हैं कि क्योंकि शुरुआती दौर में एक घंटे का जो अंतराल रहा करता था कार्यक्रम की पोस्ट और कार्यक्रम में, तो उस वक्त हमारे कई श्रोताओं ने कहा कि इतनी जल्दी टेक्स्ट में से शब्द खोजना या गीत सोचना थोड़ा मुश्किल होता है। तो बस इस असुविधा की सुविधा के लिए, असुविधा को सुविधा बनाने के लिए ही कार्यक्रम का टेक्स्ट जो है वो रात में आ जाता है, ताकि आपको एक लंबा समय मिले ये सोचने के लिए कि कौन कौन से शब्द शामिल हो सकते हैं और आप अपनी पसंद के गीतों की लिस्ट भी हम तक पहुंचा सकते हैं पोस्ट पर कमेंट के जरिए। और जिस तरह से इन्होंने ये बात लिखी, हमारे दूसरे श्रोताओं ने तो ये भी कहा है कि भाई ये बहुत अच्छा लग रहा है उन्हें कि रात में ही पोस्ट आ जाती है। वो कह रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूं कि आप रात्रि को ही कार्यक्रम की पोस्ट डाल देते हो, और उन्होंने जो साथ में इमोजीज डाली है उससे समझ में आ रहा है कि उन्हें इस बात से खुशी है। वहीं हमारे एक और साथी ने भी कहा कि पिछले जो रात में पोस्ट आती है उससे उन्हें काफी सुविधा हो जाती है, ताकि वो अपने जो भी बातें लिखनी है करनी है उसके लिए उन्हें एक पर्याप्त समय मिल जाता है। तो बस इस तरह से अलग अलग बातें होती हैं, अलग अलग बातें के साथ साथ अलग अलग विचार भी होते हैं। हमारी एक और साथी कह रहे कि इतनी जल्दी इबारत को हम श्रोतागण को शेयर करना कुछ कुछ सरल सा दिखता है, धन्यवाद विविध भारती परिवार। तो एक ही

चीजों के दो अलग अलग पहलू देखने मिलते हैं हमें जीवन में भी। तो आप किस तरह का पहलू देखते हैं अपने जीवन में? और हमने पूछा था कि जीवन में अगर कोई मुश्किलें आ जाए तो आप उन्हें कैसे सुलझाते हैं? क्या आप उस मुश्किल को लेकर थोड़ी और मुश्किल में पड़ जाते हैं, या गाते झूमते नाचते अपनी उस मुश्किल से पार हो जाते हैं अपने विचारों के जरिए? हमें बताइए। और तब तक हम आपको सुनवा रहे कार्यक्रम का अगला गीत। उम्मीद है कि ये गीत भी शायद आपके लिस्ट में शामिल किसी एक गीत से मिलता होगा।

महेंद्र कपूर और आशा भोसले की आवाजों में आंचल फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं सुरीला सफर विविध भारती पर, और हमारी टेक्स्ट और इबारत को देखकर हमारे कुछ साथियों ने शब्द चुने हैं कि कौन से शब्द हो सकते हैं जिनके गीत आज इस कार्यक्रम में हो। हमारे एक साथी ने लिखा सवाल पाया, हालांकि उनके साथ गाने भी लिखे हैं लेकिन हम सिर्फ शब्द पढ़ रहे हैं। सवाल पाया कहां, जवाब महका, गाता झूमती, सपना रचना, जाने कहानी, सहारा बेसहारा, जीता हारा, ये शब्द हो सकते हैं आज के इस कार्यक्रम में जिनके जिनसे संबंधित गीत हम सुनवाने वाले हैं, ऐसा इनका अनुमान है। हमारे एक और साथी कहने कि कुछ शब्द हैं जिंदगी, पहेली, कोई, समझ, सवाल जवाब, ख्याल, जीना, सहारा, अनजानी, बहती, झूमती, गाती जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण परक शब्दों की ही भरमार नहीं अपितु संबोधन परक शब्द भी हैं और इनसे बनने वाले गीत भी इस क्रम में शामिल हो सकते हैं। हमारे और साथी ने कहा कि भाई आज गाने नहीं लिख रही हैं क्योंकि बहुत ही कॉमन गाने बचते हैं जो लगभग सबने लिखे हुए होते हैं। मैं थोड़े अलग यानी रेयर गाने पोस्ट करती हूँ जिसका लिस्ट में होना असंभव।

हुई है तो इसलिए वो गाने पर कमेंट नहीं कर रही। भाई ये तो क्या बात हुई, हो सकता है कि आपके वो रेयर गीत ही हम चलाना चाह रहे हो, ऐसा थोड़ा हो नहीं सकता भाई। इस तरह से आप अगर कहें कि हम तो इसमें भाग नहीं ले रहे तो ये तो जरा अच्छी बात नहीं। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि आज के शब्दों की सूची कुछ इस तरह से हो सकती है, जिंदगी, पहेली, सवाल जवाब, मुश्किल, ख्याल, महका, मन, नदी धारा, उलझन, गाती झूमती, रचना या रचती, अफसाने, हकीकत, सपना, कहानी, अनजानी, जानी पहचानी, सहारा बेसहारा, जीत हार। तो एक तरह से इन्होंने इबारत में से सारे शब्द उठा लिए हैं, तो इनकी बात तो सच होने वाली है क्योंकि बहुत सारे शब्द इन्होंने चुन लिए हैं एक साथ। तो हमारे एक और साथी हैं, उन्होंने बहुत सारे गीत भी लिख भेजे हैं और जिंदगी से संबंधित अपने विचार भी हमारे साथी हम तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन आज की इबारत में जैसे कहा गया कि ये जीवन जैसे सपनों की कहानी, तो हमें ये बताइए कि आपको आपके सपने याद रहते हैं? क्योंकि कई बार सपनों में एक अलग सी कहानी चलती रहती है, हम अलग जगह यात्रा करते रहते हैं, कई बार तो कोई सस्पेंस थ्रिलर फिल्म भी चल रही होती है ऐसा लगता है। तो क्या आपने कभी अपने सपनों में कुछ ऐसी कहानी देखी है जो आपके जीवन में कभी नहीं हो सकती, जिंदगी से बिल्कुल अलग एक ऐसी जिंदगी आपने सपनों में जी हो? तो बताइए उसके बारे में, कोई ऐसा सपना जो आपने देखा हो और आपको अब तक याद हो बहुत दिन बीतने के बाद भी। और क्योंकि हमने ये सवाल कर लिया है तो एक सवाल से संबंधित गीत आपको सुनवा रहे हैं, फिल्म का नाम आपको बताना है।

0: साइलेंस।
1: वो तो है स्कूल का टीचर हरदम जो चिल्लाए, क्यों बच्चों ठीक है ना?
2: नो सर, नो सर, रॉन्ग आंसर, रॉन्ग आंसर।
1: क्या था?

0: तो एक रंगीन फिल्म है जिसकी हुई है जुगली। करेक्ट?
1: नो सर, नो सर, रॉन्ग आंसर, रॉन्ग आंसर।
0: अच्छा, ये भी गलत।
2: जी हाँ।

इस बात को लेकर काफी सोच विचार में है कि कब आती है पोस्ट। किसी का कहना है कि कहा जाए उसमें एक वीडियो पोस्ट किया जाए, पर हमें तो लगता है कि इबारत पढ़ना और उसमें से शब्द चुनना ज्यादा आसान है, क्योंकि वीडियो सुन सुनकर आप को लगातार वीडियो सुनना पड़ेगा हर शब्द को पहचानने के लिए। खैर, ये पहेली तो हम आप पर ही छोड़ते हैं कि किस तरह से क्या होना चाहिए, लेकिन हमने सवाल आपसे पूछा था कि भाई कोई सपना ऐसा आपको आया है जो अब तक आपको याद हो, कितने दिन बीत गए हो और फिर भी वो सपना याद हो, उस सपने में कोई ऐसी कहानी हो जो आपने जिंदगी में कभी सोची ही ना हो। हो सकता है कोई फिल्म देखकर आप सोए हो और वो सपना आया हो। हमारे एक और साथी कहते हैं कि भाई जिंदगी पर अनगिनत गीत हैं जो मन को सिर्फ छूते नहीं बल्कि बहुत कुछ सिखा जाते हैं, और हर लाइन उसमें ऐसी होती है कि कुछ न कुछ सीख देती है। हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि जिंदगी एक समंदर है जिसमें सुख दुख की लहरें तो आती जाती रहेंगी। और हमारे साथी हैं, वो बहुत सी बातें कह रहे हैं। हमारे एक साथी का कहना है कि भाई शब्द नहीं गीत लिखकर पोस्ट कीजिए। तो मेरा ये सोचना है कि शायद उन्होंने श्रोताओं के कमेंट पर ही ये कमेंट किया है। हमारे एक और साथी कहते हैं कि जिंदगी की पहेली है, नदियों की धार जैसी बहती रहती है, मुश्किलों को पार करती हुई निरंतर बढ़ती जाती है। आगे उन्होंने ढेर सारे गीत लिखे हैं जो उनकी लिस्ट और हमारी लिस्ट मैच होती है या नहीं, वो ये देखेंगे खुद से। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि हर मुसीबत एक सबक लेकर आती है, मुसीबत में अनुभव से जीवन में सीखने को मिलता है, मुश्किल समय में धन का अभाव स्थिति को और कठिन बना देता है, इसलिए बचत और योजनाबद्ध तरीके से खर्च करना जरूरी है। ये बात उन्होंने लिखी है जब हमने पूछा था कि भाई अगर मुश्किल वक्त आता है तो किस तरह से आप उससे बाहर निकलते हैं। हमारे एक और साथी कहते हैं कि फिल्म के बारे में वो लिख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कभी कभी परेशान जब होती हूँ तो कुछ भी जिंदगी में थोड़े वक्त ठीक नहीं होते तो गाना सुनकर मन को शांति और कुछ रास्ता भी मिल जाता है। वहीं हमारे एक और साथी का कहना है कि जिंदगी की मुश्किल पहेली सुलझानी हो तो संयम के साथ निरीक्षण करना चाहिए, फिर सोच समझ कर आचरण करना चाहिए। वैसे तो जन्म बुद्धिमत्ता और भाग्य ईश्वर की देन है, फिर भी कठिन स्थिति में मेहनत के साथ प्रयत्न करना हमारे हाथ में होता है। और एक और साथी कहते हैं, जब मैं मुसीबत में होता हूँ तब शब्द कम पड़ जाते हैं तो मैं पुराने दौर के संगीत में अपनी सांत्वना ढूंढता हूँ। कुंदनलाल सहगल की आवाज या शंकर जयकिशन की धुनों में एक ऐसा ठहराव है जो मेरे घावों पर मरहम जैसा काम करता है। तो भाई जब संगीत इतना अच्छा काम करता है तो क्यों ना सवाल जवाब बनकर आपसे पूछते हैं, नहीं है कुछ भी, पूछते हैं एक सवाल कि किस फिल्म का है ये गीत जो आपको सुनवा रहे हैं।

0: से ज्यादा तुम सब जानो इस दुनिया का हाल। अब ना करो सवाल बच्चों, अब ना करो सवाल।
1: नर्तकी फिल्म का ये गीत आपने सुना और ये सवाल हमारा था आपसे, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। हमारे साथी

भाई तो हमारा सवाल तो ये था कि किस फिल्म का है ये गीत, ससुराल फिल्म का ये गीत है। आपने बिल्कुल सही जवाब दिया और आपके भी कुछ सवाल हम तक पहुंच गए हैं। वैसे हमारे साथी ने कहा कि इस गाने के मामले में तो हमारी पसंद आपसे जा मिली और बहुत से साथियों की पसंद इस गाने के जरिए हम तक पहुंच गई और हमारी और उनकी लिस्ट भी मिल गई। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि मेरे सारे सपने दिवा स्वप्न की तरह निकलते हैं, अथवा चर्चा अव्यर्थ प्रतीत होती है। हमारे एक और साथी ने बताया कि जीवन में एक बार उन्हें सपना आया था जब वो स्टेज पे गीत गा रहे हैं फिल्म पड़ोसन का, कहना है कहना है, और ये गीत उन्होंने पूरा का पूरा स्टेज पर गा दिया। ये सपना आज तक नहीं भूले, शायद ये मेरे संगीत के प्रति दीवानगी, क्योंकि गाने का मुझे बहुत ज्यादा शौक है। ये उन्होंने कहा। हमारे गौर साथी कह रहे हैं कि आपकी पोस्ट अभी बढ़िया डल रही है, जो बदलाव किया है अच्छा है। और हमारे और साथी हैं वो कह रहे हैं पोस्ट ही करना उचित है वीडियो की जगह। हमारे एक और साथी कह रहे हैं जिंदगी को लेकर बहुत सी बातें हमारे साथी कहने लगे हैं। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि जिंदगी एक पहेली, जिंदगी एक सवाल, जवाब मुश्किल, ख्याल महका, जिंदगी नदी धारा बहती गाती झूमती अफसाने हकीकत। इस तरह से इन्होंने इबारत में से काफी सारे शब्द चुन लिए हैं और हमें तो पूरा भरोसा है कि इनके शब्द तो कहीं ना कहीं जाकर हमारे लिस्ट से मिल जाएंगे। हमारे बहुत से साथियों ने गीत भी लिख भेजे हैं और उनके गीत जब हमारे लिस्ट के गीतों से मिलते हैं तो जो खुशी उन्हें होती है उतनी ही खुशी हमें भी होती है। तो चलिए अब कार्यक्रम में आगे अगर हम चलें और दूसरा गीत सुने तो हमारे साथी कौन से गीतों की फरमाइश कर सकते हैं और कौन से गीत उन्हें लगते हैं कि आ सकते हैं। वहीं हमारे एक साथी ने ये भी कहा कि मेरा सपना तो मैं बहुत देखती हूँ, अलग अलग तरह के होते हैं। कभी मैं किसी को बचा रही हूँ, डाकू से बचा रही हूँ। मैंने एक सपना देखा कि एक लड़के को जब वो शादी में गया था वहां उसे देखा। सपने पूरे भी होते हैं कभी कभी, ऐसा इनका कहना है। भाई हमें तो ये अच्छा लग रहा है कि वो एक हीरो का किरदार निभा रही है अपने सपनों में। किसी डाकू का किरदार भी कई बार हम निभाते हैं अपने सपनों में। तो ऐसा कोई खतरनाक सपना आपको कभी आया है तो हमें बताइए अपने सपनों की कहानी। तब तक हम आपको ले चलते हैं एक ऐसे सफर में जहां आपको नदिया और धारा की ये बात सुनने मिलेगी। और हमें बताइए कि किसने इस गीत को लिखा है और आवाज किसकी है।

सफर फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे मन्ना डे के आवाज और साथ ही भी उनके साथ साथ में इंदिवर के बोल। ये हमारे सवाल का सही जवाब है। हमारे एक साथी पूछ रहे हैं कि वे ओरिजिनल पेज कौन सा है और वो ये पूछ रहे हैं ओरिजिनल पेज के पोस्ट के कमेंट में, तो हम उन्हें बता दें जो भी और भी व्यक्ति जो जानना चाहते हैं, विविध भारती राष्ट्रीय सेवा हिन्दी में लिखा हुआ है देवनागरी में और साथ ही उसमें एक ब्लू टिक भी बना हुआ है। और अगर आपको और ज्यादा जानना हो तो आप देख सकते हैं फॉलोवर 100K लिखे हैं, यानी 1,00,000 फॉलोवर हैं, 1,00,000 हमारे श्रोता हैं जो इसमें हमारे साथ शामिल हैं। तो इस पेज को जब आप देखेंगे तो इसमें जो भी पोस्ट आती हैं वो विविध भारती की तरफ से आधिकारिक रूप से पोस्ट आती हैं। तो बस ये देखिए कि विविध भारती राष्ट्रीय सेवा हिन्दी में लिखा हो, साथ ही उसमें एक ब्लू टिक साइड में बना रहता है, वो बना होगा फेसबुक पर www.facebook.com/vbsmumbai। इस पते पर जाकर आपको ये पेज मिल जाएगा। और हमारे साथी कह रहे बेसहारा और सहारा शब्द पर मेरी पसंद का गाना, उन्होंने बता दिया है गाना है तुम बेसहारा हो तो किसी का सहारा बनो। सपने के बारे में हमारे एक साथी ने बताया कि एक रात अचानक 3 बजे नींद खुली, उसका कारण ऐसा सपना था कि फाइनल ईयर के एग्जाम में इंग्लिश का पेपर है, रिविजन करें। थोड़ी देर बाद जब नॉर्मल हुए तो पता चला सारे एग्जाम पास करके रिटायर हो गए, तब जाकर नींद में चले गए। तो साथियों बुढ़ापे में भी जवानी के सपने याद आते हैं, ऐसा इन्होंने लिखा। हमारे साथियों ने बहुत सी बातें लिखी। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि 25-30 साल पहले एक सपना उन्होंने देखा था जो आज भी याद आता है तो रूह कांप जाती है। अलग कमरे में मैं सो रही थी और माँ अलग कमरे में, मैंने सपने में देखा कि मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई बहुत दूर, नींद में ही रोने लगी और सपना टूट गया। दौड़कर जब माँ के रूम में गई तो मां से लिपट कर बहुत रोई। हमारे एक और साथी ने बताया 1987 का सपना कि सपने में रात में उन्होंने देखा कि एक मानव आकृति आसमान में विचरण कर रही है। अगले सारे दिन उस सपने के बारे में सोचता रहा और रात को हमें एक दुखद समाचार मिला कि पिताजी नहीं रहे। हमारे एक और साथी हैं, बहुत सी बातें हमारे साथी लिख रहे हैं। नदियां चले चले रे धारा, कितना गहरी फिलॉसफी इसमें छुपी है। ये गीत भी मेरे कयास से सही निकला। एक नाव वाला गा रहा है, पर्दे पर राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर नदी के किनारे बैठकर भूंजा खा रहे हैं, मन्ना डे की आवाज है। हमारे साथियों ने बहुत सी बातें लिख भेजी हैं अपने जीवन के बारे में, अपने सपनों के बारे में और भी बहुत सी बातें। हमें ये बताइए कि कभी ऐसा हुआ कि आप अपने शहर से दूर आ गए हों और आपको लग रहा हो कि कितना मुश्किल है जीवन यहाँ। कुछ ऐसा गीत भी आने वाला है, वो गीत भी आप सोच सकते हैं कि कौन सा गीत होगा जो दूसरे शहर की किसी शहर की मुश्किलों के बारे में बताता है। तब तक हम आपको अनुराधा फिल्म से ये गीत सुनवा रहे हैं, हमें बताइए किसने इसे लिखा।

लता मंगेशकर की आवाज में अनुराधा फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। शैलेंद्र के बोल, रविशंकर का संगीत। तो गीतकार का नाम आपने बिल्कुल सही पहचाना। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि मुझे तो दांत टूटने का सपना बहुत बार आता है। अभी दो दिन पहले भी आया था। नींद खुलने पर सबसे पहले दांतों की तरफ ही ध्यान जाता है। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि मुझे सपने तो रोज आते हैं, लेकिन सुबह उठने के बाद कुछ याद नहीं रहता। ऐसा लगता है कि सुबह पड़े हुए सपने अक्सर सच होते हैं। हमारी एक और साथी कहती है कि पहले तो मुझे सपने बहुत आते थे और नींद खुलने के बाद फिर से आकर लेटती थी तो फिर वो सपने वापस में कंटिन्यू होते थे। इंस्टॉलमेंट के सपने उन दिनों बड़ा मजा आता था देखने में। भाई इस जगह आपकी और हमारी लिस्ट मिलती है। हम कह सकते हैं कि इंस्टॉलमेंट में जब सपना देखते हैं ना, कि जब बीच में नींद खुल जाए तो ऐसा लगता है इतना अच्छा सपना चला था, चलो वापस सोकर इसे फिर से देखा जाए और पूरा किया जाए। तो कहीं ना कहीं वहां हमारा दिमाग भी लग जाता है और किसी तरह से बड़ा आनंद तो आता है उस सपने को पूरा करने में। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि अपने शहर से दूर जीवन एक नई किताब जैसा होता है, जहां यादों की खुशबू साथ रहती है पर अपनों की कमी अक्सर खलती है। नई जगहें, नए लोग, नई जिम्मेदारियां इंसान को मजबूत तो बनाती हैं, लेकिन अपने शहर की गलियां, दोस्त और अपनापन दिल में हमेशा बसे रहते हैं। हमने ये पूछा था कि किसी दूसरे शहर में जाकर कुछ मुश्किलें आपके सामने आई क्या, कि इस शहर में रहना कितना मुश्किल है। और ऐसा ही गीत हमने आपको पहचानने के लिए कहा था, क्योंकि मुश्किल शब्द हमारी आज की इबारत में है। तो आपने बिल्कुल सही पहचाना, सीआईडी फिल्म का वो गीत ही हम आपको सुनवाने वाले हैं। हमें बताइए किन की आवाजें हैं इस गीत में।

0: गीता।
1: सीआईडी फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, मोहम्मद रफी और गीता दत्त की आवाजें। आपने बिल्कुल सही पहचाना। हमारे एक साथी कहने कि सपना तो हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षा के दिनों में आया था, जिसे याद करके आज भी हंसी आती है। पहले दिन सपने में देखा कि परीक्षा भवन में बैठा हूँ पर पेपर बटे नहीं है, और दूसरे दिन सपना आया कि पेपर देकर बाहर निकल रहा हूँ। पेपर में सवाल क्या थे वो दिखाई ही नहीं दिए। भाई हम तो ये कहेंगे कि ये सवाल और जो ये बीच का समय होता है ना, वही काटना तो मुश्किल होता है। अब सपने में भी अगर हम ये सब देखेंगे तो भाई वो तो हकीकत में भी नहीं देखना चाहते। ऐसा लगता है बस किसी तरह से अंदर जाएं और परीक्षा भवन में बैठे और बस बाहर आए, बीच का जो समय है किसी तरह से यूं ही कट जाए। और आपने बिल्कुल सही तरह से सपना देखा है। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि आपने पूछा है तो बता रहा हूं, 1995 में हाईस्कूल पास करके पारिवारिक कारणों से बंबई से दिल्ली आ गया। 4-5 साल तक कुछ भी अच्छा नहीं लगता था यहां, बल्कि 2 बार भागकर वापस बंबई गया। रिश्तेदारों का व्यवहार, वक्त और हालात ने ऐसा सबक सिखाया कि 30 सालों से दिल्ली में हूं लेकिन बंबई की तरफ पैर करके भी नहीं सोता। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे कि गंगटोक भ्रमण के दौरान नाथुला जो चीन की सीमा पर है, वहां ऑक्सीजन कम होने के कारण डर लगा था क्योंकि सांस लेने में तकलीफ होने लगी थी। तो इस तरह से जो मुश्किल वक्त के बारे में हमने पूछा वो हमारे साथियों ने बताया। हमारे एक और साथी कहती हैं कि जब मुसीबत में हो तब कैसे निकले, तो मैं थोड़ा चुप रहना चाहती हूं, बहुत कम लोगों से बात करना चाहती हूं और जो मेरे मन को अच्छा लगता है प्रभु का नाम बस उन्हें

करती हूँ। बीच रात में मुझे नींद नहीं आ रही थी, कोई बात परेशान कर रही थी, तो रात में बैठकर मंत्र उच्चारण करती हूँ, कोई गिनती नहीं करती हूँ। बहुत बार मन को सुकून के साथ साथ उस समस्या का समाधान भी निकल जाता है। वहीं हमारे बहुत से साथी हैं जो ये बता रहे हैं कि उनकी जो लिस्ट है वो हमारी लिस्ट से काफी हद तक मिल गई है। बहुत सारे गीत जो उन्होंने सोचे थे और लिखे थे कमेंट में, वो आज के इस कार्यक्रम में शामिल हो गए। तो यकीन मानिए, हमें तो बहुत ही आनंद आ रहा है कि आपकी और हमारी लिस्ट मिल गई है। तो अब एक ऐसा गीत जिसके जो तो लिस्ट में बहुत देर से हम देख रहे हैं कि बहुत से साथियों की लिस्ट में शामिल है, और ये हमारे गीत हमारी लिस्ट में भी काफी देर से शामिल था। तो चलिए ये गीत सुन लेते हैं और आपको बताना है फिल्म का नाम।

अनुरोध फिल्म का ये गीत आपने सुना। मन्ना डे और साथियों की आवाजें आनंद बख्शी के बोल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। हमारे बहुत से साथियों ने इस फिल्म का नाम बिल्कुल सही बताया, क्योंकि हमारा यही सवाल था। हमारे एक साथी ने कहा कि आमतौर पर सपनों में वही आता है जो हमारे दिमाग में रहता है, और हम सोचते हैं कुछ ऐसी जगह जहां हम जाना चाहते हैं। कभी कभार ही ऐसा होता है कि जो नहीं सोचा जाता वो सपनों में आ जाए।

लेकिन ये कभी कभार ही होता है। और हमारे बहुत से साथी हैं जिन्होंने अपने सपनों के बारे में बताया कि क्या क्या देखते हैं, तो आधे से ज्यादा साथी तो स्कूल के दिनों को ही देखते हैं, खासतौर से परीक्षा का समय, और वो भी ऐसा कि अगर वो परीक्षा दे रहे हैं तो टीचर ने कॉपी छीन ली या कुछ लिख नहीं पाए या फिर सब चीजें ठीक नहीं हुई। भाई ये जो एक भय है मन में वो सालों साल बसा हुआ है ऐसा लगता है, क्योंकि वो जो भी हमारे साथी लिख रहे हैं कि जो देखते हैं ये वाला सपना, वो कब से अपने स्कूली जीवन को पार कर चुके हैं और वो पढ़ चुके हैं, पढ़ाई वढ़ाई सब हो चुकी है, कई तो रिटायर भी हो गए अपना काम करके, लेकिन ये जो सपने का जो है ना कि भाई नहीं परीक्षा दे रहे थे परीक्षा नहीं हुई, वो अब भी जारी है। हमारे बहुत से साथी बहुत खुश हैं और हम भी उनसे ज्यादा खुश हैं कि उनके गाने आज के लिस्ट में शामिल हो गए। तो एक और गाना चलिए जांच लेते हैं, क्या आपके लिस्ट में ये गाना था। फिल्म का नाम अगर बताएं तो बहुत अच्छा होगा।

सम्राट चंद्रगुप्त फिल्म से ये गीत आप सुन रहे थे। फिल्म का नाम ही हमने आपसे पूछा था और आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। जब बात हो रही है जिंदगी की मुश्किलों की और सपनों की, तो एक गीत हमें बिल्कुल अच्छा लगता है, क्योंकि वो गीत हमें किसी तरह से ये समझाता है कि जीवन को जीना ही है और जीवन को किस तरह से जीना चाहिए। ये गीत आपको सुनवा रहे हैं और आप हमें ये बताइए कि किस फिल्म का ये गीत है, आवाज किसकी है।

मेरा नाम जोकर फिल्म का ये गीत मुकेश की आवाज में आपने सुना, यही हमारे सवाल का सही जवाब था। और इसके साथ ही आज का सुरीला सफर कार्यक्रम यही समाप्त होता है। विविध भारती का सुरीला सफर जारी रहेगा।

0: देश के अधिकांश भागों में गर्मी अपने रौद्र रूप में है। सूरज निकलते ही शोले उगलना शुरू कर देता है। गर्मी से लोग बेहाल हैं। लोग दिन को बड़ी मुश्किल से काट रहे हैं। उन्हें शाम और रात का बेसब्री से इंतजार रहता है। गर्मी से बचाव का हर उपाय बेकार जान पड़ता है, लेकिन जिंदगी रुकती कहाँ है। इस भीषण गर्मी में भी लोग सफर कर रहे हैं और मजदूर चट्टाने तोड़ रहे हैं। मौसम की ये दुश्वारियां हजारों वर्षों से मनुष्य और जीव जंतुओं के साथ चल रही है। कोई भी परेशानी स्थायी नहीं होती। इसी गर्मी से एक दिन समंदरों का पानी बादल बनकर बरसेगा, बीज उगेंगे, उत्सव मनेंगे और इसी सूरज की तपन से फल मीठे होंगे।
1: सूरज जरा आ पास आ, आज

जिंदगी में परेशानियों और चीजों को देखने का नजरिया हर इंसान का कितना अलग अलग हो सकता है, ये हम आसानी से अनुमान नहीं लगा सकते। जिस तपते हुए लू के महीने से लोग इतने बेहाल रहते हैं, उसी महीने को एक शायर कितनी खूबसूरत मिसाल देता है, ये बेहद ठंडक देने वाली बात है। क्या रूपक है, सुनिए जरा।

ये तपन मनुष्य और प्राणी जगत की परीक्षा लेती है। ये हमें विकट परिस्थितियों से जूझने के लिए तैयार करती है। तभी तो इस सर्वाधिक कठिन मौसम में पेड़ों में नई कोमल पत्तियां निकलती हैं, गुलमोहर सजता है, मोगरा महकता है। और गर्मियों में ये जो हमारे शरीर से पसीना बहता है ना, ये मनुष्य की मेहनत और स्वाभिमान से जीने का प्रतीक है। इसीलिए तो ईमानदारी और मेहनत से कमाए धन को खून पसीने की कमाई कहा जाता है।

0: अंदर माल भी अंदर दोनों ना बच पाएंगे, जैसे सेठ मरा है वैसे सारे मारे जाएंगे,
1: सारे मारे जाएंगे, सारे मारे जाएंगे।
0: अरे इसीलिए तो कहता हूँ प्यारो के खून पसीने की जो मिलेगी तो खाए।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवी के सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल किया। श्री एन रंगासामी ने रिकॉर्ड पांचवी बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने ईंधन बचत उपाय तेज किये।

0: सीबीएसई ने अखिल भारतीय सीनियर सेकेंडरी कक्षा 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित किए। सरकार द्वारा आयात शुल्क को लगभग 15% किए जाने के बाद सोने और चांदी की कीमतों में 6% से अधिक की वृद्धि। मौसम विभाग ने कहा इस साल मॉनसून जल्दी आने की संभावना। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से। अब समाचार विस्तार से। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवगठित सरकार ने 144 विधायकों का बहुमत साबित कर विश्वास मत हासिल कर लिया है। एडप्पाडी पलनीसामी के नेतृत्व में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के 22 विधायकों ने विश्वास प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया। एक रिपोर्ट।
1: लोक निवास में आयोजित एक सादे समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाशनाथन ने मुख्यमंत्री और आज शपथ लेने वाले दो मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इससे पहले मुख्य सचिव शरद चौहान ने केंद्र सरकार की उस अधिसूचना को पढ़कर सुनाया जिसमें मुख्यमंत्री और दो मंत्रियों की नियुक्ति की गई थी। समारोह के बाद श्री रंगासामी पुदुचेरी विधानसभा भवन स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय गए और अपना कार्यभार संभाला। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार पुदुचेरी को सिंगापुर की तर्ज पर विकसित करने की दिशा में काम करेगी। श्री रंगासामी के नेतृत्व में लगातार दूसरी बार प्रदेश में एनडीए की सरकार बनी है। अन्य मंत्रियों, विभागों और विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सरकारी सचेतक की नियुक्ति को लेकर एनडीए में विचार विमर्श जारी है। बिबिन एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं कनकलता।
0: ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस नेता एन रंगासामी ने आज रिकॉर्ड 5वीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। लोक निवास में आयोजित एक समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाशनाथन ने श्री रंगासामी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। पश्चिम बंगाल में कोलकाता में 18वीं विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने भवानीपुर सीट से विधायक के रूप में शपथ ली जबकि नंदीग्राम सीट रिक्त रखी गई है। इसके बाद मंत्रिमंडल के 5 अन्य सदस्यों ने भी शपथ ग्रहण की। वहीं नौदा सीट से विजयी आम जनता उन्नयन पार्टी के विधायक हुमायूं कबीर ने भी शपथ ली। कबीर ने रजीनगर सीट से भी जीत हासिल की है। कार्यवाहक अध्यक्ष तापस राय ने सभी विधायकों को शपथ दिलाई। राज्य में फालता विधानसभा क्षेत्र में 21 मई को पुनर्मतदान होना है। पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने ईंधन बचत उपाय तेज कर दिए हैं। वैश्विक ईंधन कीमतों में वृद्धि के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में घरेलू दौरों के लिए अपने काफिले का आकार काफी कम कर दिया है। विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी प्रोटोकॉल के अंतर्गत अनिवार्य सभी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाएं बरकरार रखी गई हैं। एक रिपोर्ट।
2: ये कदम पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करने और पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनाकर आर्थिक मजबूती में योगदान के लिए प्रधानमंत्री की 7 अपीलों के अनुरूप है। सूत्रों के अनुसार काफिले का आकार कम करने के बावजूद प्रधानमंत्री की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी महत्वपूर्ण सुरक्षा व्यवस्थाएं यथावत बनी रहेंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जहां भी संभव हो बिना कोई नई खरीद किए उनके काफिले में इलेक्ट्रिक वाहन शामिल किया जाए। अंकित की रिपोर्ट के साथ अमीषा।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने भी अपने काफिले का आकार घटाकर आधे से भी कम कर दिया है। ये कदम पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करके और पर्यावरण के अनुकूल विकल्पों को अपनाकर आर्थिक स्थिरता में योगदान देने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा नागरिकों से की गई 7 अपीलों के अनुरूप है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने भी मंत्रियों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों से सरकारी वाहनों के उपयोग को कम करने को कहा है। एक रिपोर्ट।
3: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री, मंत्रियों, अन्य अधिकारियों के वाहन बेड़े में 50% की कमी का आदेश दिया है और सरकारी काफिले से अनावश्यक वाहनों को हटाने का निर्देश दिया है। उन्होंने नागरिकों से ईंधन की खपत कम करने, अनावश्यक सोने की खरीद से बचने और घर से काम करने को बढ़ावा देने की अपील भी की। राज्य सरकार ने मेट्रो सेवाओं और सार्वजनिक परिवहन के अधिक उपयोग पर बल दिया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी अगले आदेश तक अपने काफिले में वाहनों की संख्या कम कर दी है। श्री यादव ने मंत्रिपरिषद के सदस्यों से राष्ट्रीय हित में पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने की अपील की। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि मंत्री, विधायक, अधिकारी और सरकारी विभाग सरकारी वाहनों का उपयोग सीमित करेंगे, कारपूलिंग अपनाएंगे और मेट्रो तथा बस सेवाओं को प्राथमिकता देंगे। समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
0: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी राज्य में पेट्रोल और डीजल की बचत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने जनता से वाहनों का अनावश्यक उपयोग न करने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने अपने काफिले में वाहनों की संख्या कम करने का निर्णय लिया है और मंत्रियों, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को

0: वाहनों के उपयोग में संयम बरतने के निर्देश दिए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने आज कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। छात्र रोल नंबर डालकर आधिकारिक वेबसाइट डिजी लॉकर और उमंग ऐप पर अपना परिणाम देख सकते हैं। इस वर्ष सीबीएसई की कक्षा 12वीं की विज्ञान, वाणिज्य और मानविकी विषयों की परीक्षाएं 17 फरवरी से 10 अप्रैल तक आयोजित की गई थी। सीबीएसई ने एक बयान में बताया कि 17,68,000 से अधिक विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। इनमें से 15,07,000 से अधिक उत्तीर्ण हुए। इस वर्ष का कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 85.20% है। छात्राओं का उत्तीर्ण प्रतिशत 88.86% है, जबकि छात्रों का उत्तीर्ण प्रतिशत 82.13% है। भारत कल से शुरू होने वाली 2 दिन के ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। विदेश मंत्री ने आज सुबह चिली के विदेश मंत्री फ्रांसिस्को पेरेज मैककेना से मुलाकात की। एक रिपोर्ट।
1: श्री फ्रांसिस्को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की कल से शुरू होने वाली 2 दिवसीय बैठक में भाग लेने के लिए भारत आए हैं। इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधिमंडल प्रमुख भाग लेंगे। श्री फ्रांसिस्को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए आज नई दिल्ली पहुंचे। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान भी करेंगे। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
0: डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों पक्षों ने बाजारों और स्रोतों में विविधता लाने, प्राथमिकता वाली वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने और सेवा अर्थव्यवस्था को सुगम बनाने के लिए द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के लेख को साझा किया है, जिसमें बताया गया है कि पंजाब में आधुनिक रेलवे स्टेशन और बेहतर रेलवे नेटवर्क से प्रगति के नए द्वार खुल रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि यह परिवर्तन क्षेत्र के लोगों के लिए अनेक अवसर लेकर आ रहा है। उन्होंने कहा कि यह लेख दर्शाता है कि पंजाब में किस प्रकार बदलाव आ रहा है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में 16वीं पेंशन अदालत का शुभारंभ किया। देश भर के पेंशन भोगियों ने इसमें हाइब्रिड मोड के माध्यम से भाग लिया। इन अदालतों का उद्देश्य पेंशन संबंधी शिकायतों के निवारण के लिए मौके पर भी निर्णायक समाधान प्रदान करना है, जिसमें पेंशन भोगियों को अदालतों का सहारा लेने की आवश्यकता न पड़े, उनका समय और धन दोनों की बचत हो और उन्हें एक प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र प्राप्त हो। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने वांछित भगोड़े प्रदीप सिंह को अजरबैजान से सफलतापूर्वक भारत प्रत्यर्पित करा लिया है। सीबीआई ने विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस के समन्वय से यह कार्य किया। सीबीआई ने बताया कि नई दिल्ली के विशेष प्रकोष्ठ पुलिस स्टेशन में मादक औषधि और मनोरोगी पदार्थ एनडीपीएस अधिनियम के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत दर्ज एक मामले में प्रदीप वांछित था। इस मामले में बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ बरामद किए गए और कई सह आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। नीट यूजी परीक्षा के कथित रूप से प्रश्न पत्र लीक होने की जांच के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई का दल जयपुर पहुंचा। दल ने राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान समूह एसओजी द्वारा हिरासत में लिए गए कई लोगों से पूछताछ की। जांच के अंतर्गत एसओजी ने सीकर और आसपास के इलाकों में लोगों से पूछताछ की। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमण्यम ने केवल नीति निर्माण के बजाय अंतर्राज्यीय समन्वय, सुगम सामाजिक सुरक्षा और श्रम कानूनों के सुदृढ़ कार्यान्वयन जैसे प्रणालीगत सुधारों की आवश्यकता पर बल दिया। वे प्रवासी श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा, सरकार और निजी क्षेत्र की साझा जिम्मेदारी विषय पर आयोजित आयोग की बैठक को संबोधित कर रहे थे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने गृह मंत्रालय के सहयोग से विकसित वाइब्रेंट ग्राम प्रोग्राम 2026 के लिए माय भारत प्लेटफॉर्म पर राष्ट्रीय स्तर की प्रश्नोत्तरी का शुभारंभ किया है। मंत्रालय ने बताया कि इस महीने की 20 तारीख तक आयोजित होने वाली ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी में देश भर के युवा भाग ले सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। सोने और चांदी की कीमतों में आज 6% तक का भारी उछाल देखा गया। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज

0: के वायदा बाजार में जून अनुबंध के अंतर्गत सोना लगभग 6% बढ़कर 1,62,597 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था, जबकि जुलाई अनुबंध के अंतर्गत चांदी लगभग 6.4% बढ़कर 2,96,821 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार दिन के दौरान सोने और चांदी की कीमतों में 8% तक की वृद्धि दर्ज की गई। सरकार ने सोने और चांदी पर आयात शुल्क 6% बढ़ाकर 15% कर दिया है। घरेलू शेयर बाजार के आज दोपहर के कारोबार में 0.5% की वृद्धि देखने को मिली। सेंसेक्स 403 अंक बढ़कर 74,962 जबकि निफ्टी 146 अंक की वृद्धि के साथ 23,526 पर था। भारत में इस वर्ष दक्षिण पश्चिम मॉनसून का आगमन जल्दी हो सकता है। इस सप्ताह के अंत तक दक्षिण बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में मॉनसून आ जाएगा। विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मॉनसून आमतौर पर हर साल 1 जून के आसपास केरल में शुरू होता है। विभाग ने देश के पूर्वोत्तर तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कल तक मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आज ओलावृष्टि हो सकती है। दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पंजाब में भी आज बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ वर्षा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1998 में आज के दिन भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षणों का स्मरण किया। सोशल मीडिया पर संस्कृत श्लोक सुभाषितम साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परमाणु परीक्षणों ने देश के अडिग संकल्प को प्रदर्शित किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में पूर्व राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। श्री फखरुद्दीन अली अहमद देश के 5वें राष्ट्रपति थे। उन्होंने 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 तक पदभार संभाला। आईपीएल क्रिकेट में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। गुजरात टाइटंस ने कल रात सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। उधर बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और किदांबी श्रीकांत प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने चीनी ताइपे की तुंग स्यू टोंग को सीधे सेट में 21-9, 21-12 से सिर्फ 33 मिनट में हरा दिया। छठी विजेता प्राप्त पीवी सिंधु का क्वार्टर फाइनल में मुकाबला डेनमार्क के अमाली शुल से होगा। वहीं पूर्व विश्व चैंपियन किदांबी श्रीकांत ने सिंगापुर के लो केन यू को आसानी से 21-14, 21-15 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। अगले दौर में उनका सामना चीनी ताइपे की सू ली योंग से होगा। हालांकि भारत के आयुष शेट्टी जापान के कोदाई नाराउका से हारने के बाद टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित एशियाई अंडर 17 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 75 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में कोरिया की सेंगमिन ली को 5-0 से हराकर लक्ष्य फोगाट फाइनल में पहुंच गए हैं। अन्य 4 मुक्केबाजों को कांस्य पदक से ही संतोष करना पड़ा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवी के सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल किया। श्री एन रंगासामी ने रिकॉर्ड 5वीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने ईंधन बचत उपाय तेज किए। सीबीएसई ने अखिल भारतीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल कक्षा 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित किए। सरकार द्वारा आयात शुल्क को लगभग 15% किए जाने के बाद सोने या चांदी की कीमतों में 6% से अधिक की वृद्धि। मौसम विभाग ने कहा इस साल मॉनसून जल्दी आने की संभावना। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

आशा भोसले की आवाज में लाजवंती फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, सचिन देव बर्मन की तर्ज। कार्यक्रम सदाबहार नगमे विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

चलती का नाम गाड़ी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजें, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल सचिन देव बर्मन का संगीत। कार्यक्रम सदाबहार नगमे आप सुन रहे हैं विविध भारती पर। आइए अब सुनते हैं आशा भोसले को मजरूह सुल्तानपुरी के शब्दों के साथ, मदन मोहन की तर्ज फिल्म आखिरी दांव। सुनते हैं ये गीत।

फिल्म के इस गीत में आपने सुना आशा भोसले को मजरूह सुल्तानपुरी के बोल मदन मोहन का संगीत। आपको याद दिला दें कि शाम 4 बजे सखी सहेली के ठीक बाद आप सुन सकते हैं आज के मेहमान कार्यक्रम, जिसमें आज शायर और सेवानिवृत्त केंद्र निदेशक राजेश रेड्डी से यूनुस खान की बातचीत आप सुन पाएंगे। और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे विविध भारती पर।

गीता दत्त की आवाज में आप सुन रहे थे आवड़ा ब्रिज फिल्म का ये गीत, कमर जलालाबादी के बोल, ओपी नैयर का संगीत। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं सदाबहार नगमे विविध भारती पर, और अब आपको सुनवाते हैं राजेंद्र कृष्ण का लिखा ये गीत चंदन।

ना कोई बिल्ला ना कोई नंबर, दफ्तर उसका नीला अंबर। नोट है उसकी पॉकेट बुक में सबका माल मसाला, बड़ा ही सी आई डी है वो नीला।

हो जाए उसको ऑटोमेटिक टेलीफोन, हर 24 घंटे जाके उसकी आंख कभी ना लागे। होशियार खबरदार, बच के रहना, देख रहा है सब कुछ ऊपर वाला, बड़ा ही सी आई डी है वो नीली छतरी वाला, हर ताले की चाबी।

मोहम्मद रफी की आवाज में काला पानी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल सचिन देव बर्मन का संगीत। कार्यक्रम सदाबहार नगमे विविध भारती पर सुन रहे हैं और कार्यक्रम का अंतिम गीत धूल का फूल फिल्म से महेंद्र कपूर और लता मंगेशकर की आवाजें, साहिल लुधियानवी के बोल एन दत्ता का संगीत। ये गीत सुनिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: सखी सहेली सभी सखियों सहेलियों को श्रोताओं को सोनाली पाठक का सप्रेम नमस्कार। मंजरी आपको भी सप्रेम नमस्कार। क्या हालचाल?
1: बस सोनाली बिल्कुल हालचाल एकदम ठीक है। और तुमको और हमारे सुनने वाले सभी सखियों और साथियों को प्यार भरा नमस्कार। और मुझे लगता है सभी अपने अपने घरों में स्वस्थ मस्त और खुश होंगे और सब इंतजार भी करें कि आज सोनाली और मंजरी बहुत दिनों बाद मिले हैं सखी सहेली मंच पर और ये इतनी सारी बातें लेकर के आई हैं तो देखते हैं ये लोग क्या क्या करती है ना। तो इशारे तो समझ ही रहे हैं ना कि सब लोग भी आज कुछ खाने पीने की बात भी होगी, बताया भी जाएगा,
0: मजेदार चटपटी चाट का जिक्र होने वाला है।
1: दो आरजे के साथ में दो धुरंधर कुक भी बैठे हुए हैं, है ना। कोई किसमें महारत हासिल रखता है, कोई किसमें महारत हासिल रखता है ना सोनाली।
0: बिल्कुल।
1: तो आज तुम कुछ कहने वाली थी ना कि मतलब गाने सुनाने से पहले कुछ तुम्हारा था
0: मुझे ना, ये गानों की आवाज तो बाद में आएगी पर ये आपकी जो छन छन छन छन चूड़ी की जो आवाज आ रही है ना वो बार बार आपके हाथों की तरफ आकर्षित कर रही है कि क्या है इतनी सुंदर चूड़ियां हाथ में पहनी हुई है।
1: एक्सचेंज कर लेते हैं, तुम अपनी मुझे दे दो, मैं तुम्हें अपनी दे देती हूँ।
0: ये बातचीत बाद में करेंगे, पहले हम विषय
1: बता देते। देखो व्यंजन की बात आज करने वाले तो उसमें भेलपुरी और दाबेली है ना, जिसमें तुम भेलपुरी मेरे लिए बना के नहीं लाई, बोली दाबेली बाद में खिला दूंगी।
0: ये जो ऐसे आइटम होते हैं ना भेलपुरी और दाबेली, ये ऐसे बनाए और तुरंत खाए, बना के लेकर नहीं आ सकते ना इसको।
1: बिल्कुल सही कहा तुमने। और शब्द हमारे विचार आपके में हम बात करेंगे आज आत्मविश्वास के ऊपर।
0: जी, जो सबसे जरूरी है हर क्षेत्र में, यानी अगर जिसके पास आत्मविश्वास होगा वो अपनी जो है ना बेहतरीन पेशकश दे सकता है।
1: इस शब्द पर तो हमारे साथी लिखकर संदेश भेजेंगे और उन्हीं को तो हम पढ़ने वाले हैं ना।
0: और साथ ही साड़ियों का संसार, इसमें आज हम पश्मीना साड़ी के बारे में जानकारी देंगे और हमारे बहुत सारे साथियों ने भी इस विषय पर बहुत सारे कमेंट्स लिखना शुरू कर दिया है। और साथ ही
1: खाने के लिए जीते हैं या जीने के लिए खाते हैं,
0: ये सवाल मैं आपसे पूछूंगी कि भाई मंजरी जी आप खाने के लिए जीते हैं सिर्फ जीने के लिए खाते हैं?
1: नहीं भाई, तो मैं तो भाई जीने के लिए खाती हूँ, लेकिन वो इतना स्वादिष्ट खाना बनाते हैं ना कि वो सब एक जैसा ही हो जाता है ना।
0: भाई मंजरी जी मैं तो खाने के लिए जीती हूँ, है ना, कि मनुष्य का जीवन बार बार नहीं मिलता है, इतने अच्छे अच्छे आइटम से इतने सुंदर से
1: आप मेंटेन है ना।
0: ये वही तो बात है,
1: इसलिए हमें संतुलन रखना है,
0: पौष्टिक खाना खाना है और उसमें अपने स्वाद का भी ध्यान रखना है। वही तो जीवन, उसी में तो जीवन का सही में आनंद है।
1: बिल्कुल आनंद,
0: संतुलन जरूरी है,
1: संतुलन बहुत जरूरी है। और गीतों का भी तो आनंद है ना, तो क्यों ना पहले गीत सुनाते फिर बातें करते हैं।
0: जी, तो सुनते हैं गीत।

0: जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: तो सोनाली हम लोग बात करने वाले हैं पश्मीना साड़ी के बारे में, है ना?
2: तो कश्मीर चले?
1: बिल्कुल चलते हैं। तो कश्मीरी साड़ियां जिन्हें पश्मीना साड़ियां भी कहा जाता है कश्मीरी ऊनी कपड़े की एक उत्कृष्ट किस्म है जो चार अलग

0: अलग प्रकार की पहाड़ी पशुओं से प्राप्त ऊन से बनाई जाती है। पेशमनी शब्द फारसी शब्द पश्मी नेह से लिया गया है, जिसका फारसी में अर्थ ऊन होता है। पश्मीना कपड़ा आमतौर पर कश्मीर में उत्पादित होता है।
1: और ये कपड़ा बेहद आरामदायक और मुलायम होता है। असली पश्मीना कपड़ा इतना नरम और मुलायम होता है कि आसानी से अंगूठी के आर पार जा सकता है। और कश्मीरी साड़ियां आमतौर पर सर्दियों के मौसम में पहनी जाती है, क्योंकि ये कपड़ा गर्म और हल्का होता है, जिससे इसे पहनना और ले जाना बहुत आरामदायक होता है।
0: और पश्मीना ऊन और महीन रेशम के मिश्रण से पश्मीना रेशम बनता है। असली पश्मीना साड़ियों में कश्मीरी कढ़ाई की बारीकी कारीगरी होती है, जिसे कशीदा कहा जाता है। कश्मीर में साड़ियां बनाने के लिए कई तरह के कपड़े इस्तेमाल किए जाते हैं। इनमें सबसे आम है पश्मीना साड़ियां, कश्मीरी रेशम की साड़ियां, क्रेप साड़ियां और जॉर्जेट साड़ियां। यानी कितनी खूबसूरत साड़ियां, जैसे तुमने कहा ना कि अंगूठी से आर पार हो जाती है, तो सोचो कितनी मुलायम होती होंगी,
1: कितनी पतली होती होगी ना। और कश्मीरी साड़ियों की उत्पत्ति लगभग 200 वर्ष पूर्व की है, और आज भी पश्मीना शॉल फैशनेबल जीवन जीने वाले किसी भी व्यक्ति के वार्डरोब में सबसे पसंदीदा वस्तुओं में से एक होती है। और कश्मीरी साड़ियां कश्मीर की धरती पर हाथ से बुनी जाने वाली एक प्रामाणिक शैली की साड़ियां हैं। और कश्मीरी साड़ी में हमेशा इसकी विशिष्ट कढ़ाई होती है। सटीक रूप से कहें तो हर कश्मीरी साड़ी मूल रूप से कढ़ाई वाली साड़ी होती है। और कश्मीरी साड़ियां खूबसूरत और अनूठी कढ़ाई से सजी होती है, जो कश्मीर की पारंपरिक शैली जैसे कि आरी वर्क और टिल्ला कढ़ाई। कश्मीरी साड़ियों में अधिकतर फूलों के डिजाइन दिखाई देते हैं।
0: बिल्कुल। और कश्मीरी साड़ियां अधिकतर हल्के से लेकर गहरे रंग तक कई रंगों में उपलब्ध होती हैं। इनमें से कुछ सबसे अधिक उपयोग की जाने वाले रंग सफेद, बेज, काला, पीला और नीला हैं। कश्मीरी या पश्मीनी साड़ियां आमतौर पर सादी साड़ियों के रूप में बुनी जाती हैं, लेकिन इन्हें बॉर्डर और पल्लू वाली पारंपरिक साड़ियों के समान दिखने के लिए भी बुना जा सकता है।
1: अब जैसे प्लेन स्टाइल, यानी प्लेन स्टाइल कश्मीरी साड़ियां चटक रंगों की होती है, जिनमें कोई मोटिफ, कढ़ाई, डिजाइन या प्रिंटिंग नहीं होती। इनमें एक खास आकर्षण होता है और इनकी सादगी ही इनकी सबसे बड़ी खूबी है। ये साड़ियां ऑफिस या कार्यस्थल के लिए एकदम सही है। प्लेन कश्मीरी साड़ियां कई रंगों और शेड्स में उपलब्ध हैं, जिनमें नेचुरल बेज से लेकर आइवरी, सफेद, लाल, नीला, हरा, पीला, गुलाबी जैसे अन्य रंग भी शामिल होते हैं।
0: और कानी बुनाई कश्मीर घाटी की एक अनूठी बुनाई शैली है, जिसका उपयोग कपड़े के विभिन्न रंगों में जटिल और बारीक पैटर्न बुनने के लिए किया जाता है। इसमें बहुत बारीकी से काम किया जाता है और काफी समय लगता है, क्योंकि प्रत्येक साड़ी को बुनने में महीनों तक का समय लग सकता है। कानी पश्मीना साड़ियां उत्कृष्ट वस्त्र हैं और पीढ़ियों तक विरासत के रूप में दी जा सकती हैं। ये भव्य साड़ियां किसी भी औपचारिक अवसर के लिए आदर्श विकल्प हैं, चाहे वो भव्य रात्रि भोज हो, सम्मेलन हो या मनोरंजन पूर्ण समारोह। ये साड़ियां हर जगह शोभा बढ़ाती हैं। तो सोच लो कितना अच्छा लगता होगा जब महिलाएं साड़ियां, ये वाली पश्मीना की साड़ियां पहन के निकलती होंगी, तो चार चांद लग जाते होंगे महफिल में, है ना।
1: सचमुच एक जो कशीदा कढ़ाई है ना, ये एक अनूठी यहाँ की शैली है, जो केवल कश्मीर में ही प्रचलित है। साड़ी पर सुंदर और जटिल पैटर्न बनाने के लिए केवल कुछ ही टांकों का उपयोग किया जाता है। कशीदा कढ़ाई की खास बात यह है कि इसे या तो केवल बॉर्डर या पल्लू पर किया जा सकता है, या फिर पूरी साड़ी पर भी किया जा सकता है। एक लोकप्रिय शैली है, जिसमें बॉर्डर और पल्लू पर कशीदा कढ़ाई के साथ साथ पूरी साड़ी पर छोटे छोटे डिजाइन बने होते हैं। कशीदा कढ़ाई वाली साड़ियां कला और शिल्प की उत्कृष्ट कृतियां हैं।
0: और सोजनी कश्मीर की एक बहुत ही अनूठी कढ़ाई शैली है, जिसमें सैटिन स्टिच का उपयोग करके इस पैटर्न को बनाया जाता है, और साड़ी के दोनों तरफ कढ़ाई की सकती, यानी कि पूरी भर जाती है ये कढ़ाई, आगे पीछे दोनों एक जैसी। इसकी खासियत यह है कि दोनों तरफ अलग अलग रंग भी हो सकते हैं और नहीं भी। सोजनी पहले शाल में बहुत प्रचलित थी, लेकिन अब कश्मीरी साड़ियों के डिजाइन में भी इसका इस्तेमाल होने लगा है।
1: और प्रिंटेड कश्मीरी साड़ियां और पश्मीना सिल्क साड़ियां पारंपरिक प्रिंट में भी उपलब्ध है। इनमें कई प्रकार के प्रिंट मिलते हैं, जैसे साड़ी के पूरे भाग, बॉर्डर, पल्लू पर, बूटी पर प्रिंट, फूलों वाले बॉर्डर और पल्लू, ज्यामितीय बॉर्डर और आदि। और ये प्रिंटेड साड़ियां रेशम में सूती साड़ियों की तरह ही बेहद आकर्षक और आरामदायक होती है, और इन्हें कैजुअल और ऑफिस दोनों तरह के मौकों पर पहना जा सकता है।
0: और कश्मीरी साड़ियां दोहरी या बहुरंगी बुनाई के पैटर्न में भी मिलती हैं। इनमें धारियों के चेक पैटर्न या सादे केंद्र पर मैचिंग बॉर्डर या पल्लू के डिजाइन होते हैं। ये बहुरंगी साड़ियां 100% पश्मीना और पश्मीना सिल्क दोनों में उपलब्ध हैं। और धागे को कंघी करने की प्रक्रिया से सख्त रेशों को नरम रेशों से अलग किया जाता है, फिर चरखे पर, जिसे स्थानीय भाषा में चरखा कहा जाता है, इसे सावधानी पूर्वक हाथ से काटा जाता है। ऊन व्यापारी ताने और बाने के लिए धागे को अलग करते हैं

0: रंगीन साड़ियों के लिए इस चरण में रंगर या रंग साज की सहायता से ली जाती है। रंगाई की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ऊन के गुच्छों को बॉबिन में बांधा जाता है, फिर उन्हें ताना लगाने के लिए तैयार किया जाता है। इस तरह काफी मेहनत लगती है इन साड़ियों को बनाने के लिए, एक दो महीने का समय लग जाता है, बहुत अच्छी डिजाइन उभर कर आती है। और सोनाली, हमारी एक साथी ने कमेंट भी लिखकर भेजा है तो मैं इसको पढ़ लेती हूँ। साड़ियों का संसार पश्मीना, ये जम्मू कश्मीर में बनाई जाती है, वहां की बहुत ही प्रचलित साड़ी है। अभी कुछ महीने पहले मेरे घर में शादी थी, तब मैंने ये साड़ी बारात कार्यक्रम में पहनी थी। क्या बात है। और इसका सिल्क बहुत ही मुलायम होता है, हाथ से फिसलती है और देखने में बहुत खूबसूरत लगती है। इसके सूट और शॉल भी मिलते हैं। एक पश्मीना साड़ी भी होना चाहिए हमारी वार्डरोब में। बिल्कुल, आपकी वार्डरोब में तो हो गई है, अब हम लोग को सोचना पड़ेगा, है ना।
1: अब हम भी खरीदने वाले हैं, हमारी सखी ने खरीद लिया, तो ये हमारी भी जिम्मेदारी कि हमें भी पश्मीना साड़ी खरीदना है।
0: बिल्कुल।
1: बहरहाल गाना सुनना है, सुनते हैं गीत।

0: दुनिया बड़ा होने से डरता है।
1: एक शानदार शख्सियत।
0: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
1: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
0: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, स्टीम का जवाब नहीं, जिसने मुझे इतने चढ़ने से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
1: कुछ बेमिसाल किस्से।
0: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी है, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत जी

0: म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
1: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर। जाने

0: तो भाई सोनाली, आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो हमारा विषय है कि खाने के लिए जीते हैं, जीने के लिए खाते हैं। तो हमारे साथियों ने देखो बहुत सारे
1: भर-भर के कमेंट्स लिखे हैं,
0: भर-भर के लिखे हैं कमेंट्स। और देखो मनुष्य के जीवन में भोजन का जो स्थान है ना, वो तो
1: बहुत
0: महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसके बिना तो जीवन चलता नहीं है। शरीर के लिए सब चीजों की जरूरत होती है, उसी तरह भोजन की है। भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं होता ना सोनाली, बल्कि जीवन को चलाने वाली वो शक्ति होती है। अन्न के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। हम रसोई में सोच ही नहीं सकते कि ये चीज हमारे पास होगी या नहीं होगी। हम सब चीजें खरीद लाते हैं। हमारा यही कारण है कि हमारे देश में अन्न को देवता का रूप माना गया है। जब भी हम खाना बनाते हैं तो अन्न के देवता को, देवी को याद करते हैं। और देखो पहले के जमाने में क्या होता था कि एक सुबह चाय हो गई, फिर सीधा सादा खाना हो गया, फिर दोपहर की शाम की चाय हो गई और रात का खाना सादा, सब सादगी पूर्ण था जीवन। उस समय शरीर स्वस्थ भी रहता था, लेकिन
1: बहुत स्वस्थ रहते थे,
0: स्वस्थ रहते
1: और काम कितना करते थे पुराने जमाने के लोग।
0: बहुत लोग सब घर में चक्की भी चलना है तो गेहूं भी पछोड़ना है,
1: पानी भरना है, कुएं से पानी निकालना है, कितना सारे काम,
0: बहुत सारे काम थे। तो उसमें फिटनेस रहती थी बॉडी को। लेकिन आज के समय में जो हमारी जीवन हो गया है, भागदौड़ की जिंदगी जो हो गई, भोजन के प्रति लोगों का दृष्टिकोण जो है बदलता जा रहा है। उन्हें स्वाद और दिखावा और फैशन दिखता है, जिसमें भोजन को, वास्तविक उद्देश्य को पीछे छोड़ देता है। और इसी कारण ये प्रश्न विचारणीय भी बन गया है सोनाली, कि क्या हम जीने के लिए खाते हैं या खाने के लिए जीते हैं।
1: हमारे एक साथी ने लिखा है, मंजरी, भोजन चाहे जीवन जीने के लिए हो या जीवन भोजन के लिए हो, दोनों ही जरूरी है। वो तो हम अपने ऊपर निर्भर करता है कि हम उस भोजन को किस नजरिए से देखते हैं। कुछ लोग रूखा सूखा भोजन ग्रहण करके शून्य से शिखर तक पहुंच जाते हैं, उनको कह सकते हैं कि जीने के लिए खाते हैं। और कुछ लोग बहुत स्वादिष्ट भोजन करके भी अपने जीवन में कुछ विशेष नहीं कर पाते, उनको कह सकते हैं कि सिर्फ खाने के लिए जीते हैं। पर ऐसी बात नहीं है, हम पौष्टिक भोजन भी खाके, यानी खाने के लिए जी सकते हैं ना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें जंक फूड खाके ही जीना है। बहुत सारे पौष्टिक हमारे भोजन में, तो इतनी आहार में इतनी पौष्टिकता भरी हुई है।
0: हर सीजन में देखो, हर सीजन की सब्जियां मिलती, हर सीजन के फल मिलते हैं। अगर हम उनको भी खाएंगे ना तो हम स्वस्थ रह सकते हैं, जीवन गुजार सकती है। जरूरी नहीं कि हमें बहुत फास्ट फूड पर हम जाए, जंक फूड पर जाए, है ना। और हमारे साथी और लिखते हैं कि अगर ये पूछा जाए कि आप खाने के लिए जीते हैं या जीने के लिए खा रहे हैं, तब यही जवाब रहेगा, जीने के लिए खाना जरूरी होता है। यानी ईट टू लाइव। जैसे गाड़ी को चलाने के लिए ईंधन की जरूरत होती है, उसी तरह भोजन हमारे शरीर का ईंधन है, जो हमें पोषक तत्व देकर उम्र के साथ साथ ऊर्जा और बुद्धि भी बढ़ाता है। अगर खाना स्वाद पर केंद्रित होगा या चटकारे भोजन पर ध्यान केंद्रित होगा तो पेट खराब होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए जो भी खाओ जीने के लिए खाओ। एक बात कान से खाने से की भी एक काम की, मतलब कह दूं कि विविध भारती के मधुर गीतों का रस स्वादन सेहत के लिए भी बड़ा फायदेमंद होता है। आपने बहुत अच्छी सी बात इसमें शामिल कर दी है।
1: एक हमारे सखी ने लिखा है कि कुछ समय पहले तक मैं जो भी मिल जाता था खा लेती थी, कभी यह सोचने का समय नहीं मिला कि जो खा रही हूं उसमें पोषण है भी नहीं। लेकिन जब स्वास्थ्य की बात आई तब समझ में आया कि भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं बल्कि जीवन को ऊर्जा देने का आधार है। और उन्होंने कहा कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर स्वाद के पीछे स्वास्थ्य को भूल जाते हैं, जबकि सही मायने में हमें जीने के लिए खाना चाहिए, न कि केवल खाने के लिए जीना चाहिए। संतुलित और पौष्टिक भोजन ही स्वस्थ शरीर और शांत मन और अच्छे जीवन की असली पहचान है। अब एक गीत सुन ले।
0: बिल्कुल
1: सुनते हैं गीत।

0: मंजरी नहीं थी इस गाने में है ना, जब अच्छा अच्छा खाना सामने हो ना तो हमारी पायल थिरकने लगती है, हमारी पायल बजने लगती है।
1: तो देखो हमारे एक साथी लिखते हैं कि मैं सूरत का रहने वाला हूँ और सूरत का खाना और काशी का डैश डैश फेमस है, सो तो मैं खुले पेट से सबको कहता हूँ कि हाँ मैं चटोरा हूँ, खाने के लिए जीता हूँ। स्वर्ग या नरक में न जाने, खाने को मिले या न मिले, भगवान को भी लगना चाहिए कि मेरा भेजा बंदा खा पी कर धरती से लौटा है। बहुत इन्होंने हंसने वाले स्माइलीज लगाए हैं। और अगला संदेश क्या है?
0: बहुत सारे हमारे साथी,
1: अच्छा एक साथी और लिखते हैं, सुना लिए हम पढ़ लेते हैं कि पहली बात तो खाएंगे नहीं तो जिएंगे कैसे, इसलिए खाने के लिए जीना चाहिए, उससे अच्छी सेहत होती रहती है और जब तक स्वस्थ है तब तक जी भरकर खाना चाहिए, लेकिन योग और वॉक करना चाहिए।
0: और अब लेते हैं एक
1: अंतराल।

0: बहुत सुंदर हमारे साथियों ने हमारे कमेंट्स लिखकर भेजे। एक लिखते हैं कि भाई खाने के लिए जीते हैं, जीने के लिए खाते हैं। जो भी हम खाते हैं हमारा जीवन बन जाता है, इसलिए भोजन कृतज्ञता के भाव के साथ खाना चाहिए। कहते हैं कि भोजन के द्वारा हम किसी के दिल तक पहुंच सकते हैं, मतलब भोजन जीवन है। जीने के लिए खाना जीवन का संतुलन सिखाता है, जबकि खाने के लिए जीना अक्सर स्वाद की आदत बन जाता है। भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं, बल्कि शरीर को ऊर्जा, मन को संतोष और रिश्तों को मिठास देने वाला माध्यम है। स्वाद जीवन का आनंद है, लेकिन स्वास्थ्य उसकी असली पूंजी है। इसलिए शायद सही बात यही है कि हम ऐसा खाएं जो जीवन को स्वस्थ, खुशहाल और संतुलित बनाए, क्योंकि अच्छा जीवन केवल स्वाद से नहीं, अच्छे स्वास्थ्य और सुकून से भी बनता है।
1: क्या
0: बात है, बहुत सुंदर बात।
1: हमारे साथी लिखते हैं कि दुनिया में बहुत सारे लोग खाने के लिए जीते हैं, और जब समझ में आता है कि जीने के लिए समतौल खाना जरूरी, तब तक वक्त निकल चुका होता है। इसलिए जीवन करी जीविता, अन्न हे पूर्ण ब्रह्म, उदर भरण नोहे, जाणिजे यज्ञ कर्म। ये बात सही समय पर जान लो। अर्थ है इसका कि शरीर का यज्ञ शुरू रहने की समाधि यानी खाना होता है, ये बात पहचान लो। बहुत सुंदर सी बात आपने लिखकर भेजी है। और हमारे एक साथी लिखते हैं कि जीने के लिए खाना एक जैविक और तार्किक आवश्यकता है, जबकि खाने के लिए जीना जीवन के रंगों और खुशियों का आनंद लेने का तरीका है। एक स्वस्थ और सुखी जीवन के लिए अनिवार्य है कि हम जीने के लिए खाएं, लेकिन कभी कभी खाने का आनंद इस तरह से ले मानो हम उसी के लिए जी रहे हैं। सुनाली, किस्सा मुझे याद आ गया कि जिम में हमने देखा कि सीढ़ी पे चढ़ के खिड़की थी, तो वहां खिड़की के पास स्पेस था, तो एक लड़की काफी हैवी थी, वो चढ़ी वहां बैठ गई और बैग से निकाल के उसने बर्गर लेके आई थी और अंकल चिप्स थे उसके चिप्स थे और ठंडा कोल्ड ड्रिंक थी, तो बस वो उसके साथ बैठ के खा पी रही थी। तो मैं चढ़ रही थी, मैंने पूछा उसको कि तुम यहाँ क्या करने आई हो, कहती भूख बहुत लगी, पहले खा लूं फिर जाके कर लूंगी। तो उसका ये कि वो खाने के लिए जी रही थी।
0: देखिए, खाने के लिए जीना जरूरी है, पर अगर हम स्वस्थ रहेंगे तभी तो जी पाएंगे ना अच्छे से। तो ऐसा नहीं है कि हम जंक फूड खा के ही जी सकते हैं, उसमें भी बहुत सारे ऑप्शन है। अब देखिए, जैसे हमने भेलपुरी और दाबेली का ऑप्शन दिया है, तो मैं एक उसमें पौष्टिक भेल की भी रेसिपी बताऊंगी। कि ऐसा नहीं है कि हमेशा जंक फूड खा के ही, उसमें भी हम बहुत उसमें हेल्दी ऑप्शन ले सकते हैं। एक हमारे साथी लिखते हैं मंजरी, जो शरीर के लिए फायदेमंद है वो भोजन नियमित तरीके से खाना चाहिए। सीजनल सब्जी और फल का सेवन करना चाहिए। डब्बा बंद और गैर मौसमी फल सब्जी और अनाज से बचना चाहिए। अपने रहने के एक लिमिटेड दायरे में उगने वाली फसल का उपयोग अधिक करना चाहिए। यानी हम जहां रहते हैं वहां उगने वाली जो सब्जियां होती है, वो फल होते हैं ना, उसे हमें प्राथमिकता देना चाहिए। ऐसा होता है कि हम विदेशी फलों को, विदेशी सब्जियों को बहुत ज्यादा प्राथमिकता देने लग गए हैं, वो भी अच्छे हैं, पर जो हमारे हैं, जैसे अब हम बचपन में कितने जो है ना जाम अमरूद खाते थे, बेर खाते थे, गन्ना खाते थे, तो अब वो बच्चे भूलते जा रहे हैं, पर उनमें भी बहुत ज्यादा विटामिन्स मिनरल्स मौजूद होते हैं।
1: बहुत से बच्चों को ये भी नहीं पता है कि गन्ने को कैसे मतलब
0: खाया जाता है,
1: चूसा जाता है, क्या किया जाता है, तो उन्हें बताना पड़ता है कि भाई गन्ने को चूसना पड़ता है। उन्हें चने के साग का स्वाद नहीं पता है, उन्हें झरबेरी का स्वाद नहीं पता है,
0: तो उन्हें कैसे मालूम होगा, हमने ही नहीं बताया।
1: हाँ, हम नहीं बता रहे उनको, हम उन जगह लेके नहीं जा रहे हैं, इसलिए थोड़ी सी गलती अपने लोगों की कही जा सकती है। चलो फिर एक संदेश पढ़ लेते हैं। एक साथी लिखते हैं कि शरीर को चलाने के लिए भोजन से जितनी एनर्जी चाहिए उतना भोजन चाहिए ही। कभी कभार भोजन स्वादिष्ट होने के साथ होने के कारण कुछ ज्यादा खा लिया जाता है तो पेट में तकलीफ हो जाती है, इसलिए भोजन को एक लिमिट में ही करना चाहिए। और एक हमारा संदेश है सोनाली, उन्होंने थोड़ा इंग्लिश में लिखा है कि ज्यादातर तो सभी जीने के लिए ही खाते हैं, वैसे भी आजकल तो नाप तौल का खाना होता है, ये मत खाओ वो नुकसान करेगा, इस तरह की बातें लिखी है। और हम अपने साथियों से कहेंगे कि हिंदी में ही संदेश लिखे तो ज्यादा अच्छा रहता है,
0: वैसे पढ़ने में दिक्कत नहीं आती।
1: हाँ, वो इजिली से आंखों में अटैक कर जाता है, हालांकि मैंने इनका संदेश पढ़ लिया है।
0: एक हमारे साथी लिखते हैं मंजरी, खाने के लिए जीना है दृष्टिकोण भोजन को केवल पेट भरने का साधन नहीं, बल्कि जीवन के परम आनंद और उत्सव के रूप में देखता है। भोजन के स्वाद, विविधता और उससे मिलने वाली मानसिक संतुष्टि को प्राथमिकता देना, नई संस्कृतियों, व्यंजनों और स्वादों को खोजना एक कला है। यह सामाजिक मेलजोल को बढ़ाता है। अच्छा खाना मस्तिष्क में डोपामाइन रिलीज करता है, जो तनाव कम करने और खुशी देने में मदद करता है। अत्यधिक स्वाद लोलुपता से स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है, जैसे अपच या वजन बढ़ सकता है।
1: बिल्कुल। और हमारे एक साथी और लिखते हैं कि आज का पहला विषय बहुत ही रोचक है। मेरा मानना है कि हमें जीने के लिए खाना चाहिए, क्योंकि सादा और पौष्टिक भोजन ही हमें स्वस्थ, ऊर्जावान रखता है। लेकिन कभी कभी स्वाद के लिए पसंद का खाना खाने में भी एक अलग ही खुशी है, और अक्सर लोग स्वाद के पीछे भागते हैं, लेकिन लंबी उम्र और अच्छी सेहत के लिए जीने के लिए खाना ही सही मंत्र है। अगर हम खाने पर नियंत्रण रखेंगे तो शरीर हमारा जो है हमेशा साथ देगा।

0: और सोनाली एक साथी ने हमारे और इंग्लिश में कमेंट लिखकर भेजा है, जब हम खाना खाते हैं तभी तो हम जीते हैं, अगर खाना नहीं खाएंगे तो हमारा शरीर कमजोर हो जाएगा, इसलिए खाना भी जरूरी है और जीना भी जरूरी है। जब तक है जीना जब तक खाएंगे खाना। तो ये बात आपने अच्छी लिखी है, लेकिन हम चाहेंगे कि अगली बार आपका संदेश हिंदी के शब्दों में आए, है ना। और क्या करें, सुने गीत,
1: सुन लेते हैं गीत।

0: तो सोनाली कौन सा कमेंट तुम पढ़ने वाली हो?
1: एक हमारे साथी ने लिखा है कि सही मायने में भोजन वही है जो शरीर को ताकत दे और मन को संतुलन। जिस प्रकार दीपक को जलने के लिए तेल चाहिए उसी प्रकार शरीर को जलने के लिए भोजन चाहिए, परंतु दीपक का उद्देश्य केवल तेल खत्म करना नहीं बल्कि रोशनी फैलाना होता है। ठीक वैसे ही जीवन का उद्देश्य केवल खाना नहीं बल्कि अच्छे कर्मों और खुशियों से जीवन को सुंदर बनाना है, इसलिए हमें भोजन का सम्मान करते हुए संयम और संतुलन के साथ जीवन जीना चाहिए।
0: क्या बात है। और हमारे साथी जो है उन्होंने छोटा सा संदेश लिखा है, खाने पीने क्या शर्मा, कम खाओ गम खाओ, सेहत जोरदार शरीर कभी शानदार। और एक साथी लिखते हैं, प्रसिद्ध कहावत का अंग्रेजी अनुवाद है, ईट गो लाइव, ईट टू लाइव और लाइव टू ईट होता है, खाने के लिए जीते हैं या जीने के लिए खाते हैं। इस विषय पर कॉलेज में इंग्लिश में निबंध आता था। क्या बात है, बिल्कुल सही बात है।
1: और एक हमारे साथी ने भी लिखा है कि हिलियर्ड कहते हैं कि जीने के लिए खाना खाने का मतलब है भोजन को शरीर के लिए ईंधन की तरह मानना। अक्सर इसके विपरीत खाने के लिए जीना वाला दृष्टिकोण ही दर्शाता है कि आनंद का एक बड़ा हिस्सा मुख्य रूप से या पूरी तरह से खाने के अनुभव में ही निहित हो जाता है, जो हिलियर्ड के अनुसार आमतौर पर अस्वास्थ्यकर विकल्पों को जन्म देता है।
0: और एक हमारे साथी लिखते हैं, जीने के लिए खाना खाते हैं वो भी घर का बना हुआ स्वादिष्ट वेजिटेरियन फूड, प्राकृतिक सब्जियां, फल और फ्रूट्स। बहुत अच्छी सी बात है, आप बिल्कुल संभाल करके अपने भोजन को ग्रहण करते हैं। और हमारे सभी साथी भी बहुत अच्छी तरह से खाते हैं। लेकिन हमारे एक साथी और लिखते हैं कि सही मायने में भोजन वही है जो शरीर को ताकत दे और मन को संतुलन। जिस प्रकार दीपक को जलने के लिए तेल चाहिए उसी प्रकार शरीर को जलने के लिए भोजन चाहिए, परंतु दीपक का उद्देश्य केवल तेल खत्म करना नहीं बल्कि रोशनी फैलाना है। ठीक वैसे ही जैसे लगता, तुमने ये पढ़ा है क्या?
1: ये पढ़ दिया।
0: अच्छा, इशारे कर दिए थे। चलो अच्छी बात है, उनको थोड़ा

0: अच्छा लगा होगा। तो देख दूसरा कमेंट हम ले लेते हैं सोनाली। खाने के लिए जीते हैं या जीने के लिए खाते हैं? भाई बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि इससे हर एक का ही स्वास्थ्य प्रभावित हुआ करता है। जो लोग स्वाद के लिए भोजन करते हैं वे ही खाने के लिए जीते हैं ऐसा कहा जा सकता है, क्योंकि वे अपनी जीवन पर लोलुपता पर नियंत्रण नहीं रख सकते। इसलिए विपरीत, जो लोग खाने के लिए जीते हैं खाते हैं वे सुस्वाद भोजन के साथ ही षडश युक्त संतुलित भोजन के लिए सेहतमंद और आनंद में रहते हैं। मैं तुम्हारी आंखों में देखती जा रही थी पढ़ते पढ़ते कि कहीं तुमने इसको भी तो नहीं पढ़ लिया है। कभी कभी ऐसा हो जाता है श्रोता भाइयों कि लगता है कि हाँ ये नहीं पढ़ा है, तो पता चलता है दूसरा इशारा कर रहा होता है ना।
1: ये टेक्नोलॉजी में ऐसे ना थोड़ी बहुत गड़बड़ी हो सकती है
0: ना, इसमें मजा आता है जिसको लग रहा है मैंने दोबारा पढ़ लिया।
1: और अगर हमने गलती को है ना, अपनी गलती को भी आत्मविश्वास के साथ बोल दिया कि हाँ हमने गलती कर ली, तो वो आत्मविश्वास भी अच्छा लगता है ना।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: आज ये शब्द हमारा, विचार आपके इस विषय में, हमारा विषय है आत्मविश्वास। हमारे साथियों ने भी बहुत भर भर के कमेंट्स लिखे हैं आत्मविश्वास। और सचमुच मंजरी, आत्मविश्वास जो ऐसा शब्द है ना, अगर हम उसे अपना ले, यानी कि अगर हमारे अंदर आत्मविश्वास आ जाता है तो कितने भी कठिन से कठिन काम हम बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। फिर वो कोई कला है, उसके बाद में कोई भी प्रस्तुति है, अगर वो प्रस्तुति में थोड़ी बहुत गलती हो जाए तो भी चलेगा, पर उसमें अगर आत्मविश्वास होगा तो वो कला दिल को छू जाती है।
0: बिल्कुल, हमारे साथी लिखते हैं इसी बात पर कि आत्मविश्वास शब्द में ही इसका अर्थ शामिल है। आत्म यानी खुद पर, विश्वास मतलब भरोसा, अंग्रेजी में सेल्फ कॉन्फिडेंस कहते हैं। इसे अगर परिभाषित किया जाए तो जिन्हें हम अपनी क्षमताओं, कौशलों और निर्णय लेने की क्षमता पर अटूट भरोसा हो वो आत्मविश्वासी कहा जा सकता है। जो बिना डर हर चुनौतियों का सामना कर सकता है, बस एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए। इस बात पर गुजराती मुहावरा है, मन होए तो मालवे जवाए, मतलब मन करे तो हम कोई भी जगह जा सकते हैं, कोई भी कठिन कार्य कर सकते हैं। बहुत सुंदर सी बात लिखी आपने।
1: एक हमारी सखी ने लिखा है कि अपनी असफलताओं पर ना डरते हुए अपने काम पर भरोसा, सही मायने यही आत्मविश्वास होता है। अपनी योग्यताओं, क्षमताओं और निर्णयों पर अटूट भरोसा है, न कि केवल अहंकार। ये अपनी खूबियों और कमियों को स्वीकार करते हुए जीवन की चुनौतियों का सामना करने की सकारात्मक मानसिक स्थिति है। ये डर को दूर कर सत्य और आंतरिक शक्ति पर विश्वास करने का नाम है। मन में विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन।
0: बात है। और हमारे एक साथी लिखते हैं कि आत्मविश्वास से विवेक बुद्धि को बल मिलता है, वो मैं पूर्ण आत्मविश्वास से भर कर कार्य करता हूँ, जहाँ मुझे सफलता भी मिलती है। बस कोई काम में आत्मसात से करे, यानी कि आप कोई भी काम करें तो ये मत सोचिए कि हमें इस काम से सफलता मिलेगी। पहले तो ईमानदारी से काम करें, आप आत्मविश्वास से भरें और धैर्य के साथ करें, तो आप हमेशा अपने काम को आगे ले जा सकते हैं। और हमारे साथी लिखते हैं कि आत्मविश्वास के बारे में मेरा मानना है कि ये हमारे काम और मेहनत से पैदा होता है। जब हम दिन भर कठिन परिश्रम करते हैं और अपने काम में माहिर होते जाते हैं, तो वही भरोसा हमारे व्यक्तित्व में आत्मविश्वास बनकर छलकता है। आत्मविश्वास ही वह शक्ति है जो हमारे हर सुबह एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। मेरा मानना है कि आत्मविश्वास कठिन परिश्रम से आता है। जब हम अपनी कमियों को स्वीकार कर उन्हें सुधारते हैं, तो हमारा आत्मविश्वास अपने आप बढ़ सकता है।
1: एक हमारे साथी लिखते हैं कि आत्मविश्वास के बारे में मेरा मानना है कि हमारे काम और मेहनत से पैदा होता है। जब हम दिन भर, अच्छा आपने पढ़ चुका है ये भी कमेंट्स आप पढ़ चुके हैं, और हमारे बहुत सारे साथियों ने इस विषय पर और भी कमेंट्स लिखे हैं। तो उससे पहले एक गाना सुन लें, तो सुनवाते हैं गीत।

0: एक हमारे साथी लिखते हैं मंजरी कि व्यक्ति के जीवन में आत्मविश्वास सफलता की वो सीढ़ी है जिस पर चलकर व्यक्ति आसमान की ऊंचाइयों को छू सकता है। जब स्वयं पर भरोसा होता है तो हर मुश्किल आसान लगती है, लेकिन आत्मविश्वास का मतलब ये नहीं कि मुझे सब पता है, इसका मतलब पता न होने पर भी सीख लूंगा। आत्मविश्वास कभी शोर नहीं करता, वो शांति और धैर्य के साथ अपना काम करता है। सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली बात यह है कि आत्मविश्वास कोई जादू नहीं जो एक दिन में प्राप्त किया जा सकता है, ये हर रोज खुद से छोटे छोटे वादे करके उन्हें निभाने से ही आता है। क्या बात है, बहुत सुंदर विचार।
1: इतनी सारी बातें करने के बाद तो अब चलते हैं व्यंजन की ओर जिसमें मुझे मिल गई है कच्ची दाबेली की रेसिपी।
0: तो
1: हमारे साथियों ने भेजी, तो हम इसको पढ़ते हैं कि पहले मसाला तैयार कर लीजिए। दाबेली मसाला घर पर बनाने के लिए धनिया, जीरा, सौंफ, लौंग, दालचीनी, तेजपत्ता और सूखे नारियल को भूनकर पीसकर तैयार कर लीजिए, मतलब अपने अंदाज से लीजिए सामग्री। सामग्री आगे लिखी इन्होंने कि जो आलू का मसाला, 4-5 उबले और मैश किए हुए आलू, दाबेली का मसाला जो स्पेशली लिया जाता है जो पहले से तैयार किया था वो 2-3 बड़े चम्मच लेना है, जो हमने पहले बताया था वो दाबेली का मसाला था। अब चटनी, इसके लिए आपको इमली की खट्टी मीठी चटनी और लहसुन लाल मिर्च की तीखी चटनी। स्टफिंग के लिए बारीक कटा प्याज, अनार के दाने, मसाला वाली मूंगफली, बारीक सेव और अन्य में लिखा है 6-8 पाव मक्खन या घी, हरा धनिया। और इसकी विधि लिखी है कि स्टफिंग तैयार करें, एक कढ़ाई में तेल गर्म करें, इसमें दाबेली मसाला, थोड़ा सा पानी और इमली की चटनी डालकर मिलाएं। अब मैश किए हुए आलू और नमक डालकर अच्छी तरह मिलाइए। मिश्रण को गीला और मसालेदार रखना है। प्लेटिंग के लिए तैयार आलू के मिश्रण को एक थाली में फैलाएं, ऊपर से बारीक कटा प्याज, अनार के दाने, मसाला, मूंगफली, हरा धनिया और ढेर सारी बारीक सेव डालें। दाबेली असेंबल करें, पाव को बीच में काटें और पूरी तरह से अलग न करें, एक तरफ से तीखी चटनी, दूसरी तरफ से मीठी चटनी लगाएं और भरें। बीच में एक बड़े चम्मच तैयार आलू का मसाला भरें, ऊपर से थोड़ा सा अनार, प्याज और मूंगफली डालें और एक तवे पर मक्खन या घी गर्म करें और दाबेली को दोनों तरफ से कुरकुरा होने तक सेक लें। गर्मा गर्म दाबेली आप खाएं, हमको खिलाएं, सबको खिलाएं, है ना।
0: और अभी छुट्टियों का मौसम है तो बच्चों को इस तरह का कुछ चटपटा बना के खिला दें, बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं ना, और उन्हें उनकी हेल्प भी ले सकते हैं क्योंकि बनाना जो है आसानी होता है, बस तवे में सेकते वक्त हम अपने एक साथ खड़े रहें, वरना बच्चों को साथ में लेके हम उन्हें सिखा भी सकते हैं, बना भी सकते हैं। वैसे एक भेलपूरी जो है एक चटपटा भारतीय नाश्ता और चाट का प्रकार है, इसकी जड़ें गुजराती व्यंजनों में से है, लेकिन मुख्य रूप से मुंबई की पहचान है। मुंबई के चौपाटी, गिरगांव, जुहू बीच की भेलपूरी पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। इसकी सामग्री इन्होंने बताया कि मुरमुरा, तली हुई सेव, पापड़ी, कटे हुए उबले आलू, प्याज और काटी हुई हरी मिर्च से बनाया जाता है। इसमें खट्टी मीठी इमली की चटनी और तीखी हरी चटनी मिलाई जाती है। इसका स्वाद बेहद चटपटा होता है और कलकत्ता में से झालमुरी और कर्नाटक में मसाला पूरी है चुरमुरी के नाम से जाना जाता है। वैसे एक मैं पौष्टिक भेल की मैं आपको रेसिपी बताने वाली थी, तो उसके लिए हमें क्या करना है, 2-3 मुट्ठे मखाना लेना है, उसे घी में अच्छी तरह सेक लेना है, उसमें उबला हुआ शकरकंद जो है उसके

0: छिलके निकाल के बारीक बारीक छोटे छोटे टुकड़ों में डाल देना। फिर उसमें उबली हुई मूंगफली डालना है और उसमें फिर प्याज टमाटर और फिर उसमें हरी चटनी मीठी मीठी चटनी, फिर उसमें बारीक कटी हुई ककड़ी भी डाल सकते हैं, उसमें अनारदाना डाल सकते हैं, उसमें चाट मसाला डाल दीजिए और फिर उसमें रागी की सेव डाल दीजिए।
1: क्या बात है।
0: और ये पौष्टिक भेल सर्व कीजिए।
1: खास बात है, आपने बताई कि शकरकंद के टुकड़े,
0: हाँ, आलू के बदले हम शकरकंद का इस्तेमाल कर सकते
1: बहुत
0: हैं और बेसन की सेव के बदले हम उसमें रागी की सेव यूज कर सकते, या फिर खाकरा जो होता है उसको चूरा करके वो डाल दे। तो यानी ऐसा जरूरी नहीं है कि हम जंक फूड खाके ही खुश रह सकते हैं, इस तरह हमें पौष्टिक खाने खाके भी हम खुश रह सकते हैं।
1: बिल्कुल रह सकते हैं। और साथ में गीत सुने कि कमेंट्स पढ़ोगे?
0: एक कमेंट्स पढ़ दीजिए।
1: ठीक है, एक हमारे लिखते हैं कि भारत दावेली, कच्ची दावेली भारत का एक लोकप्रिय नाश्ता है जिसकी उत्पत्ति गुजरात के कच्छ क्षेत्र के मांडवी में हुई थी। ये एक मसालेदार और मीठा नाश्ता है जिसे उबले हुए आलू को एक विशेष मसाले के साथ मिलाकर बनाया जाता है। बहुत सुंदर सी जानकारी दी है। और हमारे साथी लिखते हैं कि देखा तुम्हें मिला
0: दाबेली, कच्ची दाबेली है डबल रोटी, देवनागरी दाबेली भारत का एक लोकप्रिय नाश्ता है, गुजरात के मांडवी से हुई एक मसालेदार मीठा नाश्ता है और ये जो है उबले हुए आलू को विशेष मसाले के साथ मिलाकर बनाया जाता है। इसमें हम पाव की जगह पर हम रोटी का इस्तेमाल करें ना और पैकेट बना के बना सकते हैं तो वो भी बहुत अच्छा लगता है। और आप गीत सुन ले, सुनते हैं गीत।

0: ले लेकर अपने पास स्टोर करते जाते हैं व्हाट्सएप
1: और फिर क्या
0: पे।
1: होता है ना, जब हम मॉल में जाते हैं ना तो उस वक्त हमें आ जाता है, अच्छा हाँ हमने वो ना नेट पे ये रेसिपी
0: हाँ।
1: देखी थी, उसमें ये डालना है, ये पाउडर डालना है, ये सब डालना है, और लेकर आते
0: एक्स्ट्रा
1: हैं
0: शॉपिंग कर लेते हैं, फ्रिज पूरा भर लेते हैं
1: और
0: चीज
1: कभी कभी
0: बटर
1: बनाते भी नहीं है, वो पैकेट वैसा ही पड़े पड़े एक्सपायर हो जाता है।
0: देखो हमारे साथी लिखकर बैठते हैं, रेसिपी सुनकर नाना करते दाबेली बनाकर खा भी बैठे हैं। और एक लिख रहे हैं कि मैं तो रस्ते से जा रहा था, भेलपूरी खा रहा था, तुझे मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। और एक लिखते हैं खाने के लिए जीते या जीने के लिए खाते हैं। इस बारे में इंदौरियों से पूछे, हर इंदौरी खाने के लिए जीता है, किसी भी कोने में चले जाइए खाने पर भीड़ लगी होती, क्यों ना हो भाई, यहाँ नाश्ते खाने की इतनी विविधता जो है वाकई में सही बात है।
1: सचमुच
0: हमारे
1: इंदौर
0: देश
1: बार
0: में
1: बार जाने को जी करता है।
0: और देखो हमारे हर शहर में, हमारे देश में कई सारे शहर हैं, सबके अलग खान पान है, सबका अलग स्वाद है, तो जब जहां कहीं जाते हैं तो वहां का स्वाद खाते हैं। आप चाहे इंदौर चले जाइए, चाहे आप लखनऊ चले जाइए, चाहे आप गुजरात आ जाइए, चाहे महाराष्ट्र आ जाइए, राजस्थान चले जाइए, और जिसका नाम हमने नहीं लिया उन सभी शहरों में जाइए, वहां का बढ़िया बढ़िया पंजाब वगैरह सब जगह खा के आइए
1: और खूब खाइए और है ना खूब सारा व्यायाम कीजिए, ताकि है ना ये जो खाना जो हमने खाया है वो पच जाएगा और हम स्वस्थ रहेंगे।
0: फिलहाल तो हमारी बातों की जो हम लोगों ने गप्पे मारी है उनसे लेते हैं विराम, तो सभी से लेते हैं विदा।
1: और आप सभी को सोनाली पाठक
0: और वंशी वर्मा का नमस्कार।

0: सचमुच नाना करते प्यार कर ही बैठते हैं हम खाने की चीजों से, भले ही डॉक्टर कितना भी मना कर दे कि ये नहीं खाना है वो नहीं खाना है।
1: अरे आजकल तो देखो ना हमारे सोशल मीडिया पे कितनी सारी रेसिपी बताई जाती है, उसी में डूबे रहते हैं कि अच्छा ये भी बना ले वो भी बना ले और सब

0: सखी सहेली
1: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
0: सखी सहेली

0: नमस्कार श्रोताओं, आज के मेहमान आज इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं सुप्रसिद्ध शायर और विविध भारती के भूतपूर्व केंद्र निदेशक राजेश रेड्डी से एक मुलाकात। आपसे बातचीत की है यूनुस खान। आज सुनिए इस बातचीत का पहला भाग।
1: राजेश रेड्डी एक जाने माने शायर जिनकी गजलों का हर शेर खरा होता है। वो लिखते हैं, शाम को जिस वक्त खाली हाथ घर जाता हूं मैं, मुस्कुरा देते हैं बच्चे और मर जाता हूं मैं। राजेश रेड्डी अपने समय और समाज की आवाज भी बन जाते हैं। जुबां खामोश है डर बोलते हैं, अब इस बस्ती में

0: खंजर बोलते हैं। राजेश रेड्डी की शायरी में जिंदगी का फलसफा छलक छलक पड़ता है। वो लिखते हैं, ये जो जिंदगी की किताब है, ये किताब भी क्या किताब है, कहीं एक हसीन सा ख्वाब है, कहीं जानलेवा अजाब है। जिंदगी के डर, जिंदगी की उदासी और जुल्मतों को वो अपनी लेखनी में पिरो देते हैं। घर से निकले थे हौसला करके, लौट आए खुदा खुदा करके। जिंदगी की नाकामियां, उदासियां और विडंबनाएं भी राजेश रेड्डी की लेखनी में नजर आती हैं। जिंदगी तूने लहू लेके दिया कुछ भी नहीं, तेरे दामन में मेरे वास्ते क्या कुछ भी नहीं। राजेश रेड्डी वो शायर हैं जिन्होंने बड़ी ही मशहूर गजल लिखी जिसे पंकज उधास ने गाया, यहाँ हर शख्स हर पल हादसा होने से डरता है, खिलौना है जो मिट्टी का फना होने से डरता है। कई वर्षों तक राजेश रेड्डी विविध भारती के हेड रहे। उन्होंने विविध भारती को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। जाने माने शायर और विविध भारती के हमारे पुराने साथी राजेश रेड्डी विविध भारती के स्टूडियो में मौजूद हैं और मैं उनका बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं।
1: बहुत बहुत शुक्रिया यूनुस और विविध भारती पूरे परिवार को। इस पूरे परिवार से बरसों बाद 13-14 साल बाद एक मुलाकात हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। और विविध भारती के श्रोताओं से भी इस बहाने मिलना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया यूनुस विविध भारती परिवार को।
0: मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अभी वो जमाना लौट आया जब आप विविध भारती के मुखिया हुआ करते थे और ढेर सारे काम हम लोग मिलकर एक साथ किया करते थे।
1: जी, वो बहुत प्यारा जमाना था और एकदम तुमसे मिलके और विविध भारती में आने के बाद वो जमाना फिर एकदम तरोताजा हो गया। और वो ऊर्जा, वो उत्साह, वो उमंग और श्रोताओं के साथ वो लगाव एकदम आंखों के सामने आ गया। जी, खुश हुआ जी।
0: क्या बात है। अच्छा, आकाशवाणी अब अपने 90 बरस की यात्रा की तरफ अग्रसर है। एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक सामाजिक योगदान रहा है, चेतना का योगदान रहा है आकाशवाणी का। तो 90 बरस की इस यात्रा के बारे में जानकर आपकी क्या कैफियत है और आप क्या कहना चाहते हैं?
1: इस यात्रा का तो कोई भारत में खासतौर से पूरे भारत को सांस्कृतिक रूप से और भाषा के तौर पर जोड़े रखने का इससे अच्छा माध्यम, क्योंकि बाकी जो संचार माध्यम है उनमें भाषा, अखबार की बात करें या किताबों की बात करें, टीवी तो खैर बहुत बाद में आया, तो ये आकाशवाणी था जो देश के कोने कोने में, चाहे वो पहाड़ हो, चाहे वो मैदान हो, गांव हो, बसा हुआ शहर हो, सब जगह अगर पहुंचती तो आकाशवाणी की ही थी। और एक से दूसरे से जोड़ने का जो काम आकाशवाणी ने किया उसकी कल्पना ही नहीं की जा सकती कि कितने अच्छे ढंग से काम हुआ और हो रहा है।
0: बिल्कुल, अपने बचपन की तरफ अगर लौटें तो रेडियो को आप किस तरह से अपने बचपन में देखते हैं, किस तरह से प्लेस था रेडियो और कितनी सुनहरी यादें आकाशवाणी से जुड़ी हैं?
1: यूनुस, कमाल की बात यह है कि सारा बचपन जो है वो उस जमाने में, और आज के जमाने में तो सोशल मीडिया और जाने क्या कुछ हो गया है, हम लोगों का बचपन रेडियो सुन सुनकर ही बढ़ा। उसमें जो कुछ भी संस्कार आए, सुनने के भी, सीखने के भी, बोलने के भी, समझने के भी, ये सब संस्कार आकाशवाणी ने दिए। और जिसको सुनते सुनते कि ये आवाजें कानों को इतनी अच्छी लगती है, फिर फिल्म म्यूजिक की तो मैं बाद में बात करूंगा, जिनको हम सुनते थे, चाहे रेडियो ड्रामा हो, अनाउंसर हो। अनाउंसर उस वक्त जो है वो पूरे शहर में एक सुपरस्टार हुआ करते थे।
0: जी जी,
1: इनकी आवाज सुना, आम अनाउंसर, न्यूज रीडर्स, ये सब जो है। तो अगर किसी से कहा जाए कि आप रेडियो में काम करते, अच्छा अनाउंसर है आप, ये अनाउंसर का वो दर्जा था मतलब, और वो पॉपुलरिटी थी। तो मतलब आप स्टेशन डायरेक्टर हो तो कोई मतलब ही नहीं है, कोई
0: हाँ।
1: जानता ही नहीं आपको
0: जी।
1: लेकिन अगर अनाउंसर है आप, अच्छा, तो ये मतलब बड़ी पहचान हुआ करती थी कि आप रेडियो में अनाउंसर है। फिर रेडियो सिंगर होना
0: जी,
1: रेडियो आर्टिस्ट होना, ये बड़ी बात थी। तो हम जब बचपन में सुना करते थे, तो जयपुर में मेरा सारा बचपन बीता, तो ये सब हुआ। और फिर उसी केंद्र को सुनते सुनते युवाणी इंद्र शुरू हुआ था
0: जी जी।
1: तो जयपुर के जो पहले युवाणी वाला बैच था उसमें हमें सौभाग्य मिला कि हम पार्टिसिपेंट के तौर पर एक
0: खिलाड़ी
1: के रूप में, एक ड्रामा आर्टिस्ट के रूप में ऑडिशन दिया, क्लियर हुए और फिर उसका हिस्सा बने। तो वही युवाणी कार्यक्रम जिसकी शुरुआत ही हम कलाकार थे, पार्टिसिपेंट थे, फिर उसी को हमने एज ए प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव उसको प्रोग्राम को संभाला आकाशवाणी ज्वाइन करने के बाद। और फिर जो मैं दूसरी बात कहना चाह रहा हूँ ये
0: हाँ।
1: कि आज मैं विविध भारती में बैठ के ये बात बड़े गर्व से कहना चाह रहा हूँ कि बचपन में फिल्म म्यूजिक और उस जमाने का फिल्म म्यूजिक का तो कहना ही क्या
0: जी।
1: तो जिनको, जिस चैनल को सुन सुन के वो

0: सजता, वो सारे कार्यक्रम और बड़ी बड़ी आवाजें, बड़े बड़े संगीतकार, फिल्म म्यूजिक, तो जिन जिन को सुन के हम लोग बड़े हुए, विविध भारती चैनल को, मैं कभी कल्पना नहीं कर सकता था कि मैं उसी चैनल में आऊंगा
1: जी,
0: और न सिर्फ आऊंगा
1: बल्कि हेड करेंगे
0: उसका कार्यक्रम का, मतलब मुझे संचालन करने का मौका मिलेगा, उसको निर्धारित करने का मुझे मौका मिलेगा, प्लान करने का मौका मिलेगा, और पूरे चैनल को मैं अपने ढंग से चला पाऊंगा, देख पाऊंगा। तो ये मेरा सौभाग्य था कि जिस चैनल को सुनते सुनते मैं बड़ा हुआ,
1: वाह वाह वाह,
0: उसी चैनल से मैं रिटायर हुआ, और अच्छे ढंग से रिटायर हुआ कि मेरी एक अच्छी टीम थी जिसमें यूनुस, एक से एक टेबल में क्या नाम लूं, और पूरी अच्छी टीम, और उनकी वजह से हम अच्छे अच्छे प्रोग्राम शुरू कर सके, चला सके, और आज भी वो चैनल बहुत पॉपुलर है दुनिया भर का।
1: क्या बात है, मुझे याद आता है आपके साथ काम करने का वो पूरा दौर। कितनी प्यारी आपने बात कही है, युववाणी से आपकी शुरुआत हुई और जयपुर के पहले युववाणी के बैच में आप रहे हैं, न जाने कितने लोगों की यादें ताजा हो गई होंगी। मेरी अपनी खुद की याद इसलिए ताजा हो गई कि मैंने भी अपनी रेडियो की शुरुआत युववाणी से ही की है, तो वो जो जहन में युववाणी की सिग्नेचर ट्यून बजने लगी जिस तरह की वो होती थी। पर क्या ये रेडियो तक का रास्ता आसान था, या वो रास्ता बहुत सारे डिबेट्स और कल्चरल एक्टिविटीज से होता हुआ पहुंचा है?
0: हाँ, नेचुरली ये आप एकदम अचानक आकाशवाणी में नहीं जा सकते, आपको एक सांस्कृतिक लिटरेरी बैकग्राउंड तो आप में होना ही पड़ेगा,
1: बिल्कुल,
0: उसके बगैर आप आकाशवाणी में एंटर नहीं कर सकते, कम से कम आर्टिस्ट के तौर पर या पार्टिसिपेंट के तौर पर। और उस वक्त तो शर्तें और भी ज्यादा, वो आकाशवाणी का एक तरह से जयपुर का आकाशवाणी ड्रामे के मामले में नंबर वन था।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बड़े दिग्गज,
0: बड़े दिग्गज लोग, नंदलाल शर्मा जी, फिर ओम शिवपुरी, ये सब लोग वहां पे,
1: गंगा प्रसाद जी,
0: हाँ हाँ, तो ये सब जो उसका मेयर था वो ऐसा था कि पूछे मत। जब हम आकाशवाणी में एंटर, उससे पहले हम लोग रंगमंच, कवि सम्मेलन, साहित्य, ये सब कर चुके थे
1: जी,
0: और
1: जी,
0: कर रहे थे, है ना। तो उसके साथ ये हम ऑडिशन देने गए, उत्तर से सेलेक्ट हुए और पार्टिसिपेंट के तौर पर उसमें हिस्सा लिया। तो ये सफर जो है आकाशवाणी का सफर, पहले मेरा अपना रचनात्मक सफर शुरू हुआ और वो फिर आकाशवाणी के जरिए आगे बढ़ा। ये
1: बहुत ही शानदार बात है। जयपुर में जब आप पढ़ रहे थे तो आपने कहा कि रंगमंच और बाकी कल्चरल एक्टिविटीज में आप शामिल थे, तो रंगमंच की अपनी एक्टिविटीज के बारे में बताइए।
0: रंगमंच का यूं था कि मैं थोड़ा अपना पारिवारिक पहले बैकग्राउंड बताऊं कि मैं, हमारे परिवार में संगीत का परिवार रहा है, हमारे पिताजी बाकायदा गायक रहे और आकाशवाणी जयपुर के उस वक्त ए ग्रेड आर्टिस्ट में से वो सुगम संगीत के गीत, गजल, ये सब गाना उनका रहा। और न सिर्फ वो गायक थे बल्कि उन्होंने जयपुर में एक राष्ट्रीय तरुण कलाकार परिषद और श्रुति मंडल, ये दो सांस्कृतिक, मतलब कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन कौशल भार्गव साहब के साथ मिलकर खड़ी की, जिसने साल भर में बड़े बड़े कंसर्ट, म्यूजिकल कंसर्ट, और बड़े बड़े उस्ताद, बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े गुरु, तो इन सबको हमने बचपन से उनको आमने सामने बैठ के सुना, उनके आसपास घूमे, कई लोग हमारे घर भी आए, तो वो माहौल जो था बचपन का, वो सांस्कृतिक माहौल हमें बचपन से मिला।
1: यहाँ एक पल के लिए रुकना चाहता हूँ कि जिस किसी को भी आपके बारे में बताएं तो लोग सोचते हैं कि आपका ताल्लुक तो कहीं आंध्रा से होना चाहिए, तो जयपुर से होते हुए लोगों को थोड़ा ताज्जुब होता है इसके बारे में।
0: बिल्कुल सही है, वो नाम से भी बिल्कुल है कि, और ये सही है कि हम लोग मूल रूप से आंध्रा के ही हैं, तेलंगाना के हैं, हमारे पिताजी माताजी सब वहीं के रहे, लेकिन मेरा ननिहाल नागपुर, और मेरे पिताजी जो पोस्ट सेंटर ग्राफ्स में डिपार्टमेंट में काम करते थे उनकी पहली पोस्टिंग भी नागपुर में थी, तो मेरा जन्म भी नागपुर में हुआ। लेकिन आंध्रा में हमारा संपर्क लगातार हम लोग नहीं रहे कभी भी, माताजी पिताजी कभी रहे थे, हम लोग बचपन में कभी शादी ब्याह में गए, साल में एक आध बार घूमने गए, तो आंध्रा उससे पहले हमारे पिताजी माताजी वहां से निकल चुके थे नागपुर, और नागपुर के बाद एक पूरा डिपार्टमेंट पिताजी के सेक्शन का वो जयपुर शिफ्ट हुआ, तो पिताजी जयपुर शिफ्ट हुए, तो हम बहुत बचपन में ही, हम बच्चे लोग जो थे वो जयपुर शिफ्ट हो गए उनके साथ, और फिर मेरी सारी परवरिश, पढ़ाई लिखाई सब जयपुर हुई। तो ये है आंध्रा और जयपुर का।
1: बिल्कुल, ये मुझे लगा कि ये जरूर इस बात के बारे में बात कर लेनी चाहिए। तो गुलाबी नगरी एक तरह से आपके बनने का, एक बुनियाद का शहर रहा है, और आज भी बहुत सशक्त परंपरा रंगमंच और संगीत की जयपुर में रही है, तो आपके जमाने में वो कौन से कलाकार थे जो रंगमंच में बहुत जबरदस्त तरीके से सक्रिय थे? मुझे लगता है कि ओम शिवपुरी वाला दौर था।
0: ओम शिवपुरी उस वक्त एनएसजी जा चुके थे
1: ओके
0: हाँ, और हम उस वक्त छोटे थे और हम लोग रंगमंच में एक्टिव हुए थे, देख ही रहे थे, सुन ही रहे थे और एक सीखने का प्रोसेस जारी था
1: जी।
0: तो जो हमारी बचपन की यादें हैं, मतलब शुरुआती दिनों की यादें हैं, उस वक्त ओम शिवपुरी और सुधा

0: हमने ये गाना सुना, हाय रे वो दिन क्यों ना आए, शैलेंद्र का लिखा, पंडित रविशंकर का स्वरबद्ध किया ये गाना, अनुराधा फिल्म का, ऋषिकेश मुखर्जी की ये फिल्म थी। उस दौर में फिल्म म्यूजिक और फिल्मों से किस तरह का ताल्लुक था, जयपुर में फिल्में देखने की और टॉकीजों की भी एक बड़ी शानदार सी परंपरा रही है।
1: जयपुर में एक से एक थिएटर थे
0: जी,
1: और उस वक्त ये राज मंदिर, कभी नाम सुना हो?
0: बिल्कुल
1: हाँ। तो राज मंदिर मेरे ख्याल से भारत का अकेला ऐसा थिएटर था जो बिल्कुल राज मंदिर, और उसमें राज वाला वो भी था
0: जी।

0: डेंजर शाही अंदाज उसका, तो वो लोग देखने आते थे फिल्म तो बाद में थिएटर पहले देखते
1: हाँ, थे। वो टूरिस्ट मैप पर था
0: वो थिएटर का अपना क्रेज था उसका
1: जी।
0: तो राजमंदिर, जैम, पोलिविक्ट्री, ये सब उस वक्त तो फिल्में भी मतलब आज कहीं नहीं इतने करोड़ उतने करोड़ मतलब 100 दिन चली, ये बड़ी बात होती है
1: बिल्कुल
0: है ना, इसने 100 दिन पूरे किए। तो उस वक्त वो जमाना था जब जब हम लोग फिल्में देखते थे तो ये सब बड़े बड़े थिएटर थे और फिल्मों का तो खैर दौर ही अलग था, हम कभी कभी स्कूल से भी भाग के देखा करते थे ये सब भी होता था
1: जी, ये हुआ है लेकिन स्कूल से भाग के देखना भी हुआ
0: उपकार जैसी फिल्म हमने देखी थी और कई फिल्में थी और लंबी लंबी लाइनें और आपको टिकट मिल जाए बड़ी बात ना, तो ये वो दौर देखा है हमने, जबकि थिएटर में जाकर फिल्म देखना और स्कूल से भाग के भी देखना और टिकट के लिए धक्का मुक्की होना, ये सब दौर देखा है। और फिल्म म्यूजिक का तो ये था कि सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट वही था, घर में रेडियो चल रहा है, विविध भारती चल रहा है, फिल्मी गाने कहीं लता जी हैं, कहीं आशा जी हैं, कहीं रफी जी हैं, कहीं मुकेश हैं, कहीं मन्ना डे हैं, तो ये सब चलता था। और हमारे क्योंकि संस्कार में म्यूजिक भी था और म्यूजिक ही था
1: जी,
0: मैं अपने घर में नहाने में सबसे ज्यादा टाइम लेता था।
1: अच्छा, क्योंकि गाना चलता था।
0: गाना चलता नहीं था
1: जी,
0: मैं गाता रहता
1: खुद गाते था
0: तो वो घर वाले भी बार बार तो मुझे फिल्मी गानों का शौक
1: जी,
0: गुनगुनाने का शौक बचपन से था। फिर वो संस्कार में ऐसा है कि फिर उसपे धुने भी बनाने लगा और बाकायदा परफॉर्म भी करने लगा, वो एक अलग दौर। फिल्मी गानों का ये असर फिल्म म्यूजिक का मेरी जिंदगी बहुत पड़ा रहा।
1: क्या बात है, और तब से ही ये गायकी वाला मामला आपका?
0: हाँ, मेरे कहा गायकी तो हमारे परिवार में पिताजी और बड़े भाई साहब आज भी गायक हैं, वो सिखाते भी हैं, तो संगीत और गायकी का एक वो जो अंग है वो हमारे संस्कार में है। लिखना पढ़ना साहित्य में मैं बाद में आया उस तरह से।
1: जी, रंगमंच वाली आपकी एक्टिविटीज में वो कौन से नाटक याद आते हैं जिनका यहाँ जिक्र हो जाए?
0: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया
1: जी,
0: वो एक लड़कपन का दौर था हमारा, मतलब बीए का दौर ही था, हम उम्र लोगों ने हमने एक टीम बनाई और मैंने उसका नाम दिया ग्रुप का विकल्प
1: जी,
0: वो अभी भी चल रहा है, वो मेरा जो दोस्त है वो चला रहा है, हरि नारायण उसका नाम है। तो हम 4 लोगों ने मिलकर एक विकल्प नाम की संस्था बनाई और उसके साथ मैं लिखता था और डायरेक्ट करता था, और एक आध कभी कभी छोटा मोटा रोल जरूरत पड़ी तो कर लिया। तो उससे हमने एकांकी से शुरुआत की और उस वक्त मैं ज्यादातर राजनीतिक व्यंग और पॉलिटिकल सटायर और ह्यूमर यही मेरा विषय रहा, तो उस पर ज्यादा काम हुआ और उस तरह के नाटक मैंने लिखे भी। नाम से ही समझ जाओगे कि होशियार समाजवाद आ रहा है,
1: वाह वाह,
0: नेता कुर्सी प्रसाद सिंह,
1: क्या बात है।
0: और एक नाटक जिसको बहुत ज्यादा जिसके हमने शोज किए, भूमिका, जिसको उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकेडमी का ड्रामा कॉम्पिटिशन में बेस्ट ड्रामा का अवार्ड भी मिला। और एक नाटक मराठी, क्योंकि हम जिस कॉलोनी में रहते थे तो वो बहुवर्षीय कॉलोनी थी, मतलब एक छोटा भारत था वो, उसमें गुजराती, मराठी, सिंधी, पंजाबी, सिख, मुस्लिम, सब मतलब कोई भेदभाव ही नहीं था, मतलब आज इस घर में घुस गए कल उस घर में घुस गए, सब मिलजुल के खेल रहे हैं, होली हो, ईद हो और गणेशोत्सव हो, तो गणेशोत्सव यहाँ के बाद कई लोगों को पता लगता है गणेशोत्सव क्या है, ये हमने जयपुर में देख चुके हैं।
1: वाह वाह,
0: तो उनकी एक्टिविटीज में शामिल होना, सब कुछ करना, तो मराठी लोगों के साथ उठना बैठना बचपन से रहा, तो मराठी नाटकों का मैंने अनुवाद भी किया।
1: गजब।
0: तो एक नाटक था शाम फड़के का, कॉमेडी, काका की चाचा, जिस पर मराठी में फिल्म भी बनी, तो उसका मैंने कौआ चले हंस की चाल,
1: क्या बात है,
0: इस नाम से किया। और वो जयपुर का पहला नाटक था जो टिकटेड हाउसफुल रहा, रविन्द्र मंच पर टिकटेड हाउसफुल वो पहला नाटक था जो विकल्प ने किया, हमने किया और खूब प्रसन्न किया और उसके बहुत शोज हुए।
1: हम जब असरानी साहब के बारे में सुनते हैं तो वो भी काफी रंगमंच पर सक्रिय थे और जयपुर में थे, जयपुर की एक बड़ी शख्सियत रहे, कभी उनसे आमना सामना हुआ उस दौर?
0: नहीं, मेरा ये रहा कि वो असरानी साहब से बहुत अरसे बाद किसी फंक्शन में यहाँ पे मिलना हुआ।
1: अच्छा,
0: लेकिन उस दौर में नहीं, कि वो जयपुर से जा चुके थे
1: उस दौर में जब आप
0: तो वो तो हमसे काफी से, तो लेकिन उनकी

0: हाँ, क्योंकि अजमेर इंडिपेंडेंट स्टेशन नहीं था
1: जी,
0: वो सिर्फ रिले सेंटर था, तो जयपुर अजमेर ही बोला जाता था उसको।
1: अच्छा।
0: और आज भी शायद वही होगा कि अजमेर सिर्फ रिले सेंटर है, वहां पे कोई रिकॉर्डिंग या उस तरह का इंडिपेंडेंट ब्रॉडकास्ट नहीं होता है, अजमेर को लिंक किया हुआ है यह है।
1: जी, तो आकाशवाणी में नौकरी का रास्ता किस तरह से खुला?
0: हाँ, मैं उस वक्त एक और पहलू भी था मेरा कि मैं एमए मैंने किया ही किया था
1: जी,
0: और मैं उस वक्त ये राजस्थान पत्रिका
1: बहुत ही मशहूर
0: हिंदुस्तान का उस वक्त राजस्थान का नंबर वन अखबार था हिंदी का, और उसका एक संडे एडिशन शुरू हुआ था
1: जी,
0: वो राजस्थान में पहली बार ही हुआ था, पता नहीं दिल्ली और जगह होगा, उसका नाम ही इतवारी पत्रिका था, हर इतवार को आता था और उसका नाम रखा था इतवारी पत्रिका। कर्पूर चंद कुलेश साहब राजस्थान पत्रिका के मालिक भी थे और बड़े पत्रकार थे, तो उन्होंने शुरू किया था, उसमें उन्होंने श्री गोपाल पुरोहित उसके संपादक थे और मैं उनके साथ सहायक संपादक के तौर पर लगा। 3 साल मैंने वहां काम किया और वो हर इतवार उसमें कॉलम भी लिखता था, इंटरव्यू भी करता था, ये सब होता रहा। उसी दौरान ये आकाशवाणी की ये वैकेंसी निकली थी यूपीएससी की, तो मैंने भी अप्लाई कर दिया और संयोग से सेलेक्ट हुआ, यूपीएससी में इंटरव्यू दिया, सब हो गया और पहली पोस्टिंग मेरी आई जलंधर।
1: अच्छा,
0: ये 1980 की बात है।
1: क्या बात है,
0: 19 नवंबर, हाँ 1980 में, तो पहली पोस्टिंग मेरी जलंधर हुई, मैंने वहां ज्वाइन किया, 1 साल वहां काम किया।
1: तो वहां तब पता चला था कि ये वो स्टेशन है जहां जगजीत सिंह गाया करते थे?
0: हाँ, बिल्कुल सब, जगजीत सिंह, सुदर्शन फाकीर
1: जी,
0: इन लोगों के नाम से वो
1: ऐतिहासिक स्टेशन है जलंधर,
0: और वहां पे पंजाबी के बड़े बड़े लोग थे, मतलब
1: बिल्कुल
0: पंजाबी राइटर्स, सोहन सिंह मीशा
1: जी,
0: और मतलब ऐसे नाम जो बाद में साहित्य अकेडमी अवार्ड जिनको मिला, सुरजीत पातर, ये सब लोग वहां पे मतलब एक्टिव लोग थे, पार्टिसिपेंट के तौर पर आते थे, सुरजीत पातर लुधियाना से, सब कुछ। तो जलंधर भी उस वक्त पंजाब का जयपुर था एक तरह से,
1: बिल्कुल
0: पंजाब का जयपुर था वो, वहां बड़े अच्छे नाटक, बड़े अच्छे आर्टिस्ट और बहुत एक्टिव शहर था
1: जी।
0: तो मेरा बहुत अच्छा वक्त गुजरा और मेरे जो सीनियर थे वो सारे पंजाबी लोग थे, मतलब हिंदी वाला मैं अकेला था वहां पे, हिंदी का प्रोग्राम मैं ही संभालता था वहां पे, हिंदी का पैक्स था वहां पे मैं, लेकिन एक से प्रोग्राम और पंजाबी ऐसी भाषा थी कि जो समझने में उतनी मुश्किल नहीं थी
1: जी।
0: तो मेरा अच्छा वक्त गुजरा जी।
1: कितने वक्त तक आप जलंधर में रहे?
0: 1 साल
1: जी। और किन हस्तियों से आपका बहुत करीबी ताल्लुक रहा लिटरेचर की?
0: मैंने बताया ना, सोहन सिंह मिश्रा
1: जी,
0: और फिर उर्दू के भी कई लोग थे वहां पे
1: जी,
0: जो सुरजीत पात्र वो उस जमाने में उनसे मिलना हो गया था, जो बाद में साहित्य अकेडमी अवार्ड मिले हुए सब,
1: बिल्कुल
0: मिश्रा साहब को मिला।
1: तब तक आपका लिखना शुरू हो चुका था?
0: हाँ, लिखना तो मेरे जयपुर में शुरू हो चुका था
1: जी,
0: लेकिन मैं उस वक्त मैं गीत लिखता था, शुरुआत मेरी मंच से हुई, गीत लिखता भी था, छपते भी थे सब कुछ, और गीतकार के तौर पर मैं राजस्थान में जगह जगह कवि सम्मेलन में भी जाया करता था। उदयपुर में जब कवि सम्मेलन हुआ तो पहला जो मेरा बड़ा ब्रेक था या पहचान या आत्मविश्वास जिसे मिला, तो नीरज जी का तो बोलबाला था उस वक्त, गीतों के राजकुमार,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: उनके नाम से पूरा क्राउड इकट्ठा होता था, हजारों लोग इकट्ठा हो जाते थे,
1: सुबह तो, तक लोग सुनते थे और सबसे तो, लास्ट में उन्हें पढ़वाया जाता
0: जी, और मेरा वो शुरुआती दौर था
1: जी,
0: तो नीरज जी थे वहां पे, वो मुख्य कवि तो थे ही थे, तो मैंने जब वो गीत पढ़ा अपना, तो ये नीरज जी ने आशीर्वाद देने का उनका तरीका था, उन्होंने बहुत प्यार दिया, पहचान, और अपने गले की माला मेरे गले में जब मैं पढ़ रहा हूँ तभी आगे डाल दी।
1: अरे
0: तो ये एक आशीर्वाद था जो मुझे
1: आप बात है। क्या वो गीत याद है आपको?
0: हाँ, जो वो मेरे काफी पढ़ाई दर उधर
1: जी,
0: तरन्नुम में सुना हूँ
1: जरूर सर, जरूर, बिल्कुल स्वागत है।

0: है। नवगीत का शुरू हुआ था तो ये अंत देख, बात क्या करे कोई हाफती हवाओं से,
1: हाफती हवाओं से क्या बात है।

0: है।
1: क्या बात है, क्या बात है। जाहिर है कि इस रचना से नीरज जी की प्रशंसा तो मिलनी ही थी और ये आपके लिए बहुत यादगार लम्हा रहा होगा।
0: वो बिल्कुल, और एकदम शुरुआती दौर में इतने बड़े हस्ती का आशीर्वाद मिलना और प्रोत्साहन मिलना, तो वो एकदम यादगार और बहुत आत्मविश्वास देने वाला लम्हा था, एक सफर को आगे बढ़ाने वाला।
1: जब आप घर लौटे इस कवि सम्मेलन के बाद, तो क्या पिताजी की कैफियत थी, उन्हें क्या बताया?
0: वो बहुत खुश हुए, लेकिन मैं यहाँ ये भी बताना चाहूंगा कि हमारे पिताजी, मैंने कहा वो गायक थे और संस्था चलाते सब कुछ, लेकिन एक अलग तरह के पिता थे वो, बिल्कुल।
1: हाँ हाँ।
0: बहुत कम बोलना, मतलब उनसे हमारा संवाद जो है ना
1: मिनिमम,
0: हमारे नाटक भी देखते थे, आते थे देखते थे, लोग खुश हो रहे हैं तालियां बजा रहे हैं या सब कुछ, या कभी सल्लम ने भी आते थे कभी, तो वो आके देखा और चले आए घर पे। अखबार में भी कॉलम लिखता था, हर संडे आता था।
1: हाँ।
0: पढ़ते थे सब कुछ था, लेकिन वो खुद अपनी तरफ से कभी, वो दौर था तो हो सकता है कि आज तो अगर हम अपने बच्चों से दोस्त की तरह से बात करते हैं
1: जी,
0: पिताजी का एक डिस्टेंस हमेशा रखते थे।
1: तो आपके जहन में हमेशा ये सवाल रहता होगा कि अच्छा हाँ। लगा है कि नहीं, हाँ। क्या चल
0: तो
1: रहा है मन में,
0: बस वो उनको सूचना जरूर हो। और हमारे संवाद माँ से होता था
1: जी,
0: उनसे खूब मतलब हंसी मजाक बोलना चलना, नाराजगी या गुस्सा या सब कुछ पिताजी से घर में जो था, लेकिन वो खुश तो होते थे, बहुत खुश होते थे, लेकिन वो डायरेक्ट इस तरह से बोलते नहीं थे।
1: वो दौर भी ऐसा था कि पिताओं से संवाद बहुत कम हुआ करता था। माँ की स्मृतियां हमारे साथ बांटिए कि उनसे क्या कुछ आपने सीखा है, आपकी शख्सियत में उनका क्या योगदान है, और आपकी कामयाबी उन्हें कितना खुशी दी।
0: बिल्कुल, ये पारिवारिक रूप से अगर देखें तो पिता ने माहौल दिया
1: जी,
0: पिता ने माहौल दिया, मतलब अगर मैं कलाकार बना हूं या कलाकार कला के क्षेत्र में हूं तो वो पिता के संस्कार है। पिता ने जो माहौल दिया बचपन से, अगर आप देखें तो कुमार गंधर्व, भीमसेन जोशी, रविशंकर, बुद्धदेव मुखर्जी, राजन साजन मिश्र, अमजद अली खां,
1: बड़ा
0: कोई नाम लीजिए, कोई नाम लीजिए जिनको हमने बचपन में आगे बढ़ने
1: सामने देखा,
0: आमने सामने देखा, उनके आसपास घूमे बैठे, गिरिजा देवी, बेगम अख्तर,
1: बाप रे,
0: कोई नाम लीजिए, तो वो सब हमने देखा है और उनके साथ उठे बैठे हैं, कई लोग हमारे घर आए है ना, तो ये माहौल पिताजी ने दिया। उसके बगैर हमारे संभव नहीं था कि हम उस दुनिया को देख सकते, इन बड़े लोगों को देख सकते, इन हस्तियों, तो वो उनको सुन सुन के भी संस्कार हुए। संगीत जो है वो इस तरह से भी संस्कार में आता है, एक तो बाकायदा आप गुरु से सीखते हैं और एक सुन के भी सीखते हैं, तो वो हमने उस तरह से सीखा। तो पिताजी ने माहौल दिया, संस्कार दिया, माँ ने जो है वो एक पूरा प्रोटेक्शन कहना चाहिए। मैं बात करूं तो हमारी कॉलोनी में जो मैंने कहा ना वो एक मिनी भारत था वो
1: जी जी,
0: लेकिन मेरा बचपन बिल्कुल विपरीत था। मैं अपनी कॉलोनी के चंद शैतान बच्चों में से एक था।
1: ये तो नया खुलासा है हमारे लिए।
0: मतलब खेलना कूदना ये तो सही है ही, सभी बच्चे करते सब कुछ, लेकिन छेड़ने की आदत जो है ना, किसी के साथ भी मजाक कर लेना, किसी को
1: तंग करना
0: या मस्ती करना
1: जी,
0: तो कहीं ना कहीं एक या दूसरे दिन में कोई
1: शिकायत
0: मेरे पास आती कि आज इसने ये क्या, और मेरा बचपन का नाम छोटू था।
1: अच्छा। हाँ। क्योंकि आप छोटे थे इसलिए।
0: हाँ, मेरे बड़े भाई साहब थे, मैं नंबर दो था
1: जी,
0: तो पहले नाम ऐसे ही रखे जाने घरेलू।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: बड़े भाई साहब श्याम और मेरा नाम छोटू
1: जी,
0: तो वो छोटू की शिकायत
1: रोज आ रही है,
0: मतलब हर दूसरे दिन या हर दिन जो है, आज इसने ये किया, आज इसने वो किया, ये सब चलता रहता था। तो वो माँ थी
1: प्रोटेक्शन
0: संभालती थी, और कभी कभी वो पिता तक पहुंच जाती थी बात।
1: हाँ।
0: पिताजी जिस ढंग से पेश आते थे वो, तो वो मैं

0: उसका जिक्र ना ही करे
1: तो ये एक अच्छा बचपन बीता। और माँ ने जो है वो, क्योंकि पिताजी का यही था कि वो दिन में नौकरी करना, आना, फ्रेश होना, चाय पीना और कपड़े वपड़े बदल के सीधा रविंद्र मंच।
0: अरे
1: तो घर में वो पारिवारिक कृष्ण के पिता नहीं थे वो,
0: हाँ, वो अपनी दुनिया उनकी,
1: वो अपनी दुनिया थी उनकी। बस आए सुबह ऑफिस चले गए, शाम को आए और फ्रेश हुए, चाय वाय पी और फिर सीधा रविंद्र मंच। फिर वहां से लौटे, खाना खाए, सो गए। हाँ। तो बच्चों से भी उनका उस तरह संवाद नहीं होता था, क्योंकि वो माँ थी जिनसे मैंने कहा ना कि वो तो परिवार में पारिवारिक माहौल का जो और पारिवारिक मजबूती जो है, खुलापन भी, छूट भी, वो सब माँ से मिली।
0: क्या बात है। और क्या आपकी रचनाओं में माँ झलकती हैं?
1: उस तरह से तो डायरेक्ट तो नहीं, लेकिन कहीं कहीं जैसा बचपन हमने गुजरा तो वो एक लोअर मिडिल क्लास का जो मिडिल क्लास मतलब सरकारी कर्मचारी जो है,
0: बिल्कुल
1: उनकी कॉलोनी थी तो हम उसी में, तो लेकिन बहुत खुशहाल। मतलब मैं अपने आप को अगर आप देखूं तो हो सकता है आर्थिक रूप से हम लोग बहुत लोअर मिडिल क्लास ही कहना चाहिए उस वक्त, लेकिन एक बहुत ही सांस्कृतिक रूप से समृद्ध खुशहाल परिवार थे और मुझे अपने बचपन की बहुत अच्छी यादें हैं। मैं खुशहाल हूँ जी।
0: क्या बात है, इतनी सुंदर बातें हो रही हैं और इतनी जज्बाती बातें, तो मुझे लगता है कि यहाँ आशीर्वाद फिल्म का गाना सुनते हैं, एक था बचपन,
1: एक था बचपन,
0: क्योंकि ये जो बचपन के जो दिन है।

0: बचपन की बातें हमने की रेड्डी साहब, और ये वो बातें हैं जो इसलिए जरूरी थी कि वो कौन से तत्व थे जिन्होंने आपको बनाया। लेखन की दुनिया में उस समय में जब आप धीरे धीरे कदम बढ़ा रहे थे, तो आपके आदर्श कौन थे और क्या कोई था जो आपकी रचनाओं को सुधारे या जो आपको मार्गदर्शन दे वहां पर जयपुर में?
1: जी, जयपुर में जैसे मैंने कहा कि मैं गीत से शुरू हुआ था, तो मेरे दो बड़े लोग थे जो मेरे काव्य गुरु भी मैं निजी मान सकता था और जो मुझे मार्गदर्शन भी देते थे, आशीर्वाद भी देते थे। एक थे तारा प्रकाश जोशी
0: जी
1: और एक हरिराम आचार्य। हरिराम आचार्य ने फिल्मों में भी लिखा
0: जी जी,
1: मेहंदी रंग लाई,
0: डांसिंग जी के साथ उनके गाने हैं बहुत सारी फिल्मों।
1: और तारा प्रकाश जोशी जी आईएएस ऑफिसर थे।
0: अच्छा।
1: लेकिन गीत में उनका कोई जवाब नहीं था, मतलब इतने बड़े गीतकार थे वो राजस्थान के। मतलब एक पंक्ति यूनुस में बताऊंगा उनकी, ब्रेक गुरु तो मैं देखता से, मेरा वेतन ऐसे रानी, मेरा वेतन ऐसे रानी जैसे गर्म तवे पर पानी।
0: ओ हो हो हो, क्या अद्भुत है। हा? क्या अद्भुत है,
1: जैसे गर्म तवे पर पानी,
0: क्या बात है।
1: ऐसी पंक्ति मतलब मैंने नहीं सुनी।
0: क्या बात है, क्या बात
1: नहीं
0: है?
1: सुनी। तो ऐसे लोग मेरे आदर्श थे, मेरे गुरु थे, जिनके साथ
0: गजब, गजब, गजब, गजब, ये जीवन में कभी भूलेगा नहीं, ये इतनी अद्भुत है।
1: मेरा वेतन ऐसे रानी जैसे गर्म तवे पर पानी,
0: तुरंत खत्म। वाह वाह।
1: तो और हरिराम आचार्य जी के तो
0: बिल्कुल मेरी भी मुलाकात रही
1: होगी। तो ये लोग थे जिनसे सीखा। लेकिन मेरे साथ अच्छी बात रही आप संस्कारों में, जिसने मुझे आगे थोड़ा गंभीर लेखन की तरफ रखा, सिर्फ मंची ही नहीं बनाया, वो ये कि मैं बाकी विधाएं भी पढ़ता था। मेरे निर्मल वर्मा, भीष्म साहनी, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, ये सब मतलब फिक्शन भी, उपन्यास भी, आलोचना भी, नवर सिंह जी भी, हिंदी में तो एमए किया था, तो

0: हिंदी साहित्य से बराबर जुड़ाव, और फिर बचपन से ही वो हमारे कॉलोनी में, हमारे अखबार परिवार में सिर्फ अखबार था, मतलब किताबें विताबों का वो नहीं था उतना. तो एक कॉलोनी के आगे एक डिपार्टमेंटल लाइब्रेरी हुआ करती थी, तो सारे अखबार आते थे, मतलब अखबार तो थे ही थे,
1: पत्रिकाएं भी,
0: दिनमान, साप्ताहिक हिंदुस्तान, कादम्बिनी, तो ये मैं इन सबको चार्ट जाया करता था वहां जाकर के, घंटों घंटों वहीं बैठता था. तो और बाकी लोग जो आके चले गए और मैं अपने अभी इसको पढ़ रहा हूँ, फिर उसको पढ़ रहा हूँ, फिर उसको, मतलब तीन चार टेबल पे मैं, मेरे दो तीन घंटे निकल जाते थे.
1: जी,
0: तो बचपन से वो पढ़ने का भी शौक था, संगीत का भी शौक था, तो ये सब चीजें जो है संस्कार में. और फिर जैसे होता है कि ये तो मेरे आदर्श थे और बड़े थे. बाकी फिर उर्दू शायरी की तरफ यूं हुआ कि गीत करते करते फिर हम उम्र लोगों के साथ उठना बैठना है ना, सुनना सुनाना, और फिर मुशायरे भी वहां हुआ करते थे जयपुर में, तो बड़े बड़े मुशायरों को सुनना. तो हम उम्र लोगों की टोली में यंग शायर भी थे जिनके साथ उठते बैठते थे.

0: हम उम्र लोगों के साथ उठना बैठना है ना, सुनना सुनाना, और फिर मुशायरे भी वहां हुआ करते थे जयपुर में, तो बड़े बड़े मुशायरों को सुनना। तो हम उम्र लोगों की टोली में यंग शायर भी थे जिनके साथ उठते बैठते थे, तो जब मुशायरे सुने और उसमें जो शेर का जो दो मिसरों में दो पंक्तियों में जो सारी बात कह देने का जो जादू वो मुशायरों में देखा, तो फिर वो उस विधा ने मुझे आकर्षित किया, मैं उस तरफ झुका और फिर गजलें कहने लगा। अमरूर लोगों को हमारे जो साथ में थे अरशद अब्दुल हबीब, इनाम शरर, मजा साहब, तो ये सब सुनते थे, वो सराहते थे और कि ये अच्छा है अच्छा है। और फिर मैंने बाकायदा गजल के लिए उर्दू स्क्रिप्ट सीखी, मौलवी साहब आते थे मुझे पढ़ाते थे सिखाते थे, और फिर मैं बाकायदा गीत से गजल में शामिल हो गया। गजल को मैंने अपनाया और शायद फिर गजल ने मुझे भी अपना लिया।
1: क्या प्यारी बात है। तो शुरुआती गजलों में से कोई एक हमें सुनाइए।
0: मेरा सौभाग्य रहा यूनुस की ये जो गजल पंकज दास साहब ने गाई और पूरे दुनिया में पहुंची,
1: जो आपकी पहचान के साथ की हुई है,
0: वो जयपुर की गजल है।
1: वाह,
0: वो शुरुआत
1: कमाल। हाँ, ये मुझे नहीं पता था। और ये मेरे लिए हैरत की बात है कि वो आपकी शुरुआती गजल है।
0: नहीं यूनुस, इसलिए आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए वो, कि गीत से मेरी यात्रा शुरू हो चुकी थी
1: जी,
0: गजल की विधा को मैंने
1: अपने शिफ्ट किया है।
0: हाँ, गजल में शिफ्ट किया और उसको अपना लिया। मैंने कहा ना, हम उम्र लोगों के साथ उठते बैठते सुनते सुनाते उनसे आश्वस्ति मिली। और एक हमारे बुजुर्ग होते थे, कहना चाहिए टोंक में रहते थे वो, तो वो भी आया करते थे वो, और शाम को बैठने और एक दूसरे को सुनना सुना। तो उन्होंने जब ये पहली बार सुनी गजल तो वो भी चौंक गए, मतलब क्योंकि ये ट्रेडिशनल ढंग की गजल नहीं है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, है ना? बिल्कुल।
0: तो बोले, और ये जो जिसको कि गजल की जबान में या उर्दू में टेक्निकली रदीफ कहते हैं, है ना, जो गजल के भक्ति के आखिर में आती है और वो रिपीट होती है हर शेर में, से डरता है। अब ये रदीफ जो है वो अनसुनी सी थी, मतलब,
1: और कभी इससे पहले मैंने सुना नहीं है,
0: तो खुद तो
1: मुश्किल भी है।
0: हाँ,
1: मुश्किल भी,
0: मुश्किल भी है, तो उसको निभा ले जाना। और उसके तो वो भी हैरान हुए कि ये यार तुम ये रदीफ ले आए और उसको तुमने शेर भी कह दिए और अच्छे शेर कह दिए सब कुछ है। और फिर वो शेर उसने तो मुझे मतलब सबसे ज्यादा प्यार दिया, पहचान दी। तो वो गजल मैं अगर कहें तो
1: जरूर सर, अरे स्वागत है, बिल्कुल।
0: जो पंकज जी ने गाई उसकी धुन अलग है,
1: आपकी धुन।
0: हाँ, जो मैं सुनाता हूँ और जिसने मुझे शहरों में पहचान दी वो ये गजल।
1: स्वागत।
0: यहाँ हर शख्स

0: बच्चा बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है। खिलौना है जो मिट्टी का फना। यूनुस इसकी एक शेर और सुनाता हूँ।
1: जरूर सर।
0: ये बच्चे वाला जो शेर है उससे सबसे ज्यादा प्यार मिला
1: जी।
0: ये शेर भी उतना ही सच्चा है।
1: बिल्कुल।
0: हम देखते हैं कि हर जिंदगी में हर इंसान की कभी न कभी वो पल आता है कि वो ऊपर वाले से पनाह मांगता है।
1: बिल्कुल।
0: बहुत हो गया अब नहीं रहा, अब नहीं
1: जी,
0: बहुत हो गया
1: जी,
0: है ना, ये आता है
1: सबके साथ, सबके साथ।
0: अरबपति खरबपति भी खुदकुशी करते हैं, उनके पास क्या नहीं होता
1: जी,
0: लेकिन वो जिंदगी ऐसे मोड़ पे ले आते हैं कि वो बस बहुत हो गया। लेकिन जब ऐसा पल आता है
1: तो आप कहते हैं अजब ये जिंदगी,
0: तो फिर हमारे क्या रिएक्शन होते हैं।
1: वाह।
0: और कोरोना में तो हमने देखा ही कैसे जान बचाते फिर रहते हम लोग। तो ये शेर है जो सबका सच है।
1: वाह।
0: अमीर हो गरीब सबका, यहाँ हर शख्स हर पल हादसा होने से डरता है।

0: ये था जाने माने शायर और विविध भारती के भूतपूर्व केंद्र निदेशक राजेश रेड्डी से यूनुस खान की बातचीत का पहला भाग। इस बातचीत का दूसरा भाग आपको सुनवाएंगे अगले हफ्ते आज ही के दिन। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंधल, संपादन सहयोग रीमा जोशी। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।
1: आज के मेहमान।

जैसा कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता।

ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन, बोरीवली पश्चिम, मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

0: राष्ट्रीय गीत की 150वीं वर्षगांठ। आ सेतु हिमाचल गूंजता स्वर।
1: वंदे मातरम सुजला।
0: हम मना रहे हैं स्मृति उत्सव।
1: शस्य श्यामला मातरम वंदे मातरम।
0: सुनना न भूलिए लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। वंदे मातरम एक जय घोष। प्रसारण प्रति शुक्रवार सुबह 8:15 पर, पुनः प्रसारण उसी दिन दोपहर 2 बजे। लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय

एफएम 103 पर हम आकाशवाणी के झांसी केंद्र से बोल रहे हैं। अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से अनुप्रसारित विविध भारती देश की सुरीली धड़कन के कार्यक्रम। इस समय शाम के 5 बजे हैं। ये आकाशवाणी का झांसी केंद्र है। आइए अब हमारे केंद्र से सुनते हैं युवा साथियों का दैनिक कार्यक्रम युव वाणी।

हेलो दोस्तों, मैं हूं आज आपका दोस्त और होस्ट संजीव गौतम और स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी में, जिसमें होगी आज की बात कुछ रोचक जानकारियों के साथ और साथ ही करवाएंगे आपका मनोरंजन कुछ फिल्मी गीतों के साथ। तो चलिए साथियों शुरुआत करते हैं। दोस्तों, समय बदलता है तो उसके साथ सपनों की दिशा भी बदल जाती है। आज का युवा केवल नौकरी पाने का सपना नहीं देखता बल्कि अपनी पहचान बनाने और कुछ नया करने की सोच रखता है। इंटरनेट और तकनीक ने दुनिया को इतना छोटा बना दिया है कि गांव या छोटे शहर का युवा भी अपने हुनर के दम पर पूरी दुनिया तक पहुंच सकता है। यही कारण है कि डिजिटल युग में करियर के नए नए विकल्प तेजी से सामने आ रहे हैं। आज का दौर तकनीक और नवाचार का दौर है। पहले जहां करियर के कुछ सीमित रास्ते हुआ करते थे, वहीं अब दुनिया डिजिटल हो गई है। युवाओं के लिए अवसरों के नए नए दरवाजे खोल दिए गए हैं। आज एक साधारण मोबाइल भी फोन भी सीखने कमाने और आगे बढ़ने का माध्यम बन चुका है। आज के समय में डिजिटल मार्केटिंग, वेब डिजाइनिंग, ऐप डेवलपमेंट, साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वीडियो एडिटिंग और कंटेंट क्रिएशन जैसे क्षेत्र तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। कई युवा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपनी प्रतिभा दिखाकर रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। वहीं फ्रीलांसिंग ने भी युवाओं को घर बैठे काम करने का अवसर दिया है। साथियों, डिजिटल युग में डिग्री के साथ साथ कौशल का होना बहुत आवश्यक हो गया है। यदि कोई युवा नई तकनीक सीखने के लिए तैयार है तो उसके लिए रोजगार और स्वरोजगार दोनों के रास्ते खुल सकते हैं। ऑनलाइन कोर्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म

0: आज हर युवा को सीखने का मौका दे रहे हैं। युवाओं को चाहिए कि वे समय के साथ खुद को अपडेट रखें, नई चीजें सीखें और अपनी रुचि के अनुसार करियर का चुनाव करें, क्योंकि आने वाला भविष्य उन्हीं का होगा जो तकनीक के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। अंत में यही कहूंगा कि डिजिटल युग केवल बदलाव नहीं बल्कि युवाओं के सपनों को नई पहचान देने का अवसर है। इसलिए अपने हुनर पर विश्वास रखिए और आगे बढ़ती रहिए। तो फिलहाल साथियों, हमारी चर्चा तो आगे भी जारी रहेगी, लेकिन वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, तो मिलते हैं ब्रेक के बाद।
1: वक्त बदलता है, दौर बदलते हैं,
2: पर कुछ धुने कभी पुरानी नहीं होती।
3: लग जा गले के फिर हसी रात।
1: ये वो यादगार नगमे हैं जो यादों में आज भी महकते हैं। हर लफ्ज में छुपी है बीत।

0: रहती हो।
1: आज का संगीत जो हर पल को बना दे यादगार।
2: तेरी मेरी गल्लाएं होगी मशहूर, करना कभी तू मुझे नजरों से दूर।
3: जब बीते कल की मिठास और आज की धड़कन एक साथ गूंजती है।

0: सुनते रहिए नए पुराने गीत सुहाने रोज शाम 6:35 पर
1: सिर्फ FM 103 आकाशवाणी झांसी पर।
2: दीदी नौकरी लग गई।
3: अरे वाह।

0: दीदी नौकरी लग गई।
1: अरे वाह बधाई हो, तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग।
0: हाँ जी, नया मोबाइल।
1: अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे।
2: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
1: पहले बजट बनाना सीखो फिर खर्च करो।
0: प्रदीप
1: देखो, कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम।
0: हाँ दी, पार्टी मेरी बजट तुम्हारा।
1: अच्छा,
3: आरबीआई कहता है
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
5: दोस्तों, आज का युवा सोशल मीडिया से गहराई से जुड़ा हुआ है। सुबह की शुरुआत से लेकर रात तक हम फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हैं। सोशल मीडिया ने हमें दुनिया से जोड़ने का काम किया है, लेकिन इसके साथ ही एक बड़ी जिम्मेदारी भी आती है, अपनी निजी जानकारी यानी प्राइवेसी को सुरक्षित रखना। आज हम अपनी तस्वीरें, लोकेशन, मोबाइल नंबर और कई निजी बातें बिना सोचे समझे सोशल मीडिया पर साझा कर देते हैं। कई बार यही छोटी सी लापरवाही साइबर फ्रॉड, अकाउंट हैकिंग और ऑनलाइन धोखाधड़ी का कारण बन जाती है। इसलिए डिजिटल दुनिया में सतर्क रहना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हमें अपने सोशल मीडिया अकाउंट का मजबूत पासवर्ड रखना चाहिए। पासवर्ड ऐसा हो जिसमें अक्षर, अंक और विशेष चिन्ह शामिल हों। साथ ही समय समय पर पासवर्ड बदलते रहना भी जरूरी है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अपनी निजी जानकारी हर किसी के साथ साझा न करें। घर का पता, बैंक से जुड़ी जानकारी या व्यक्तिगत दस्तावेज सोशल मीडिया पर डालने से बचें। अनजान लिंक और संदिग्ध मैसेज पर क्लिक न करें, क्योंकि इससे मोबाइल या अकाउंट हैक हो सकता है। आज के युवा डिजिटल रूप से बहुत तेज हैं, लेकिन साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक होना भी उतना ही जरूरी है। हमें अपने अकाउंट की प्राइवेसी सेटिंग को सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि केवल भरोसेमंद लोग ही हमारी जानकारी देख सकें। याद रखिए, सोशल मीडिया का सही उपयोग हमें आगे बढ़ा सकता है, लेकिन लापरवाही नुकसान भी पहुंचा सकती है। इसलिए समझदारी, सतर्कता और जागरूकता के साथ डिजिटल दुनिया का हिस्सा बनिए। अंत में बस इतना ही कहूंगा कि आपकी सुरक्षा आपके अपने हाथ में है। सुरक्षित रहें, सजग रहें और जिम्मेदारी के साथ सोशल मीडिया का उपयोग करें।

तो फिलहाल साथियों हमारी चर्चा तो आगे भी जारी रहेगी, लेकिन उससे पहले वक्त हो चला है आप सभी के मनोरंजन का, तो करवाते हैं आपका मनोरंजन इस फिल्मी गीत के साथ जिसे हमने लिया है फिल्म एयरलिफ्ट से, जिसे गाया है अमाल मलिक, अरिजीत सिंह और तुलसी कुमार ने।

0: सिंह कुमार ने। दोस्तों, भारत की धरती विविधताओं से भरी हुई है और इन्हीं विविधताओं में अपनी अलग पहचान रखता है बुंदेलखंड। वीरता, संस्कृति और इतिहास के लिए प्रसिद्ध यह क्षेत्र प्राकृतिक सौंदर्य और वन्यजीव पर्यटक के लिए भी तेजी से पहचान बना रहा है। यहाँ की नदियां, झरने, घने जंगल और वन्यजीव प्रकृति प्रेमियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। बुंदेलखंड केवल किलों और वीर गाथाओं की भूमि नहीं बल्कि प्रकृति की अद्भुत धरोहर का भी घर है। यहाँ का शांत वातावरण, हरियाली और प्रकृति और प्राकृतिक स्थल पर्यटकों को नई ऊर्जा से भर देते हैं। बुंदेलखंड में स्थित पन्ना नेशनल पार्क बाघों के संरक्षण के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है। यहाँ के घने जंगल, केन नदी का सुंदर दृश्य और वन्यजीव सफारी पर्यटकों को रोमांच से भर देते हैं। बाघों के साथ साथ यहाँ कई दुर्लभ पक्षी और वन्यजीव भी देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार पांडव जलप्रपात अपनी प्राकृतिक सुंदरता के कारण लोगों को आकर्षित करता है। पहाड़ियों से गिरता जल और उसके नीचे बनी गुफाएं इस स्थान को और भी विशेष बनाती हैं। कहा जाता है कि इन गुफाओं का संबंध पांडवों के अज्ञातवास से भी जोड़ा जाता है। और साथियों, बुंदेलखंड की जीवन रेखा कही जाने वाली बेतवा नदी भी पर्यटन का प्रमुख केंद्र है। ओरछा में बेतवा नदी के किनारे बने कंचना घाट और सुंदर छतरियां सूर्यास्त के समय बेहद मनमोहक दिखाई देती हैं। यहां आने वाले पर्यटक प्रकृति और इतिहास दोनों का आनंद लेते हैं। आज जरूरत है कि युवा ऐसे पर्यटन स्थलों को पहचाने और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक बने। यदि हम प्रकृति को सुरक्षित रखेंगे तभी आने वाली पीढ़ियां भी इसकी सुंदरता का आनंद ले सकेंगी। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि बुंदेलखंड का प्राकृतिक और वन्यजीव पर्यटन केवल घूमने का माध्यम नहीं बल्कि प्रकृति से जुड़ने और उसे समझने का अवसर है। तो फिलहाल साथियों, हमारी चर्चा तो आगे भी जारी रहेगी, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक और छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद।
1: हो गया इंतजाम।
2: किसका?
1: गुड्डी की फीस का।
2: दिखा। 20,000 का लोन तुरंत? पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
3: आरबीआई कहता है,
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
5: दीदी, नौकरी लग गई।
6: अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग।
5: हाँ जी, नया मोबाइल।
6: अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे।
5: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
6: पहले बजट बनाना सीखो फिर खर्च करो।
5: पर दीप,
6: देखो कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम।
5: हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा।
6: अच्छा।
3: आरबीआई कहता है,
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
0: दोस्तों, आज का युवा केवल अपने भविष्य के बारे में ही नहीं सोच रहा बल्कि समाज और पर्यावरण के प्रति भी जागरूक हो रहा है। ऐसे समय में कुछ लोग अपने कार्यों से युवाओं के लिए प्रेरणा बन जाते हैं। ऐसे ही एक प्रेरणादायक व्यक्तित्व हैं रामवीर तंवर, जिन्होंने तालाबों के पुनरुद्धार के माध्यम से जल संरक्षण का अनोखा अभियान शुरू किया है। रामवीर तंवर को पॉन्डमैन के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने सूखते हुए तालाबों और बढ़ते जल संकट को गंभीरता से समझा और तालाबों की सफाई, गहरीकरण तथा संरक्षण का कार्य शुरू किया। उनके प्रयासों से कई तालाब फिर से जीवित हुए और लोगों को पानी की समस्या से राहत मिली। दोस्तों, रामवीर तंवर का जीवन युवाओं को यह प्रेरणा देता है कि यदि इरादे मजबूत हों तो एक व्यक्ति भी समाज में बड़ा बदलाव ला सकता है। उन्होंने यह साबित किया कि पर्यावरण की रक्षा केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं बल्कि हर नागरिक का कर्तव्य है। आज का युवा तकनीक और सोशल मीडिया की मदद से जल संरक्षण के संदेश को दूर दूर तक पहुंचा सकता है। यदि हम अपने आसपास के तालाबों, नदियों और जल स्रोतों की रक्षा करें तो आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित हो सकता है। रामवीर तंवर हमें सिखाते हैं कि सच्ची सफलता वही है जो समाज और प्रकृति दोनों के काम आए। इसलिए युवाओं को आगे आकर जल संरक्षण और पर्यावरण बचाने का संकल्प लेना चाहिए। तो फिलहाल साथियों, हमारी चर्चा तो आगे भी जारी रहेगी, लेकिन उससे पहले सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म बॉस से, जिसे गाया है निखिल डिसूजा ने।

दोस्तों अभी सुना आपने गीत जिसे हमने लिया था फिल्म बॉस से, जिसे गाया था निखिल डिसूजा ने। दोस्तों गर्मी का मौसम आते ही तेज धूप, थकान और शरीर में पानी की कमी जैसी समस्याएं बढ़ने लगती हैं। ऐसे मौसम में यदि खान पान का सही ध्यान ना रखा जाए तो लू और डिहाइड्रेशन जैसी परेशानियां भी हो सकती हैं। लेकिन हमारे पारंपरिक पेय पदार्थों में ऐसे कई प्राकृतिक उपाय मौजूद हैं जो शरीर को गर्मी से बचाने में मदद करते हैं। उन्हीं में से एक है आम का पन्ना। यह केवल स्वादिष्ट पेय ही नहीं बल्कि गर्मियों का सुरक्षा कवच भी माना जाता है। कच्चे आम से बनने वाला यह पेय शरीर को ठंडक देता है और लू से बचाने में सहायक होता है। इसमें मौजूद विटामिन, मिनरल्स और इलेक्ट्रोलाइट शरीर में ऊर्जा बनाए रखने में मदद करते हैं। आज के युवा अक्सर कोल्ड ड्रिंक और पैकेट वाले पेयों को अधिक आकर्षित होते हैं, लेकिन आम का पना जैसे पारंपरिक पेय स्वास्थ्य के लिए कहीं अधिक लाभकारी होते हैं। यह शरीर में पानी की कमी को दूर करने के साथ साथ पाचन को बेहतर बनाता है। हमें अपनी पारंपरिक खान पान संस्कृति को अपनाना चाहिए और स्वस्थ जीवन शैली की ओर बढ़ना चाहिए। अंत में बस इतना ही कहूंगा कि इस गर्मी में ठंडक और स्वस्थ दोनों चाहिए, तो आम के पने को अपनी दिनचर्या का हिस्सा जरूर बनाएं। तो साथियों ये था हमारा आज का कार्यक्रम। इसी क्रम में सुनते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत जिसे हमने लिया है फिल्म किक से, जिसे गाया है मीत ब्रोस अनजान, सलमान खान और श्रेया घोषाल ने।

दोस्तों अभी सुना आपने गीत जिसे हमने लिया था फिल्म किक से, जिसे गाया था मीत ब्रोस अंजान व सलमान खान और श्रेया घोषाल ने। साथियों अब हमारे स्टूडियो की घड़ी हमें आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दे रही है, तो कैसा लगा हमारा कार्यक्रम हमें सुझाव पत्रों और फेसबुक इंस्टा कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। हमारे कार्यक्रम का ऑफिशियल अकाउंट akashvani.jhansi.in के नाम से है, पिन कोड है 284128। इसी के साथ अपने मित्र संजीव को दीजिए जाने की इजाजत। नमस्कार।

युवा साथी अभी सुन रहे थे अपना पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी FM 103 पर। हम आकाशवाणी के झांसी केंद्र से बोल रहे हैं।

नमस्कार बहनों, मैं नीलम दुबे आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम नारी जगत में। तो बहनों, आप सब स्वस्थ हो, कुशल हो, इसी उम्मीद के साथ अब हम अपनी चर्चा को आगे जारी रखते हुए बात करते हैं कि आज के डिजिटल युग में हम मोबाइल पर ज्यादा समय व्यतीत कर रहे हैं। आजकल बच्चे भी मोबाइल पर ज्यादा समय तक मोबाइल में लगे रहते हैं, जिसके कारण हमारा आपसी तालमेल, बातचीत का तरीका व समय हम एक दूसरे के साथ कम व्यतीत कर पाते हैं। हमारे आपसी संबंध में भी दूरियां देखने को मिलती हैं। इसलिए हमें अपने बच्चों के साथ एक समय निश्चित करना चाहिए, जिससे हम अपने बच्चों से खुलकर बातें करें, उनके साथ खेलें, उनके साथ समय व्यतीत करें, जिससे बच्चे भी हमसे खुलकर बातचीत कर सकें, खुलकर अपनी बातें आपको बता सकें। क्योंकि जब हम अपने बच्चों से खुलकर बातें नहीं करते हैं, तो बच्चे भी हमें अपने मन की बात बताने में हिचकिचाते हैं और उनके मन में एक डर का माहौल होता है। इसीलिए

0: बहनों, आपको भी मोबाइल से दूरी बनाकर अपने बच्चों के साथ अपना समय का सदुपयोग करना चाहिए, जिससे हमारे संबंधों में भी मधुरता आती है। तो बहनों, बातें और भी होंगी, लेते हैं अल्पविराम।
1: वक्त बदलता है, दौर बदलते हैं,
2: पर कुछ धुनें कभी पुरानी नहीं होती।

0: आज का संगीत जो हर पल को बना दे यादगार।
1: तेरी मेरी गल्लाए होगी मशहूर, करना कभी तू मुझे नजरों से दूर।
2: जब बीती कल की मिठास और आज की धड़कन

0: सुनते रहिए नए पुराने गीत सुहाने रोज शाम 6:35 पर
1: सिर्फ FM 103 आकाशवाणी झांसी पर।
2: अरे भैया का करें, जब खेती किसानी में कौन फसल में कितने पानी देवे, खाद बीज कितने से ले आवे, किसे पूछ में कछु समझ ही में नहीं आऊ।
3: अब चिंता छोड़िए किसान भाइयों, क्योंकि आकाशवाणी झांसी प्रस्तुत करता है रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी के सहयोग से RLBCAU रेडियो कृषि पाठशाला। 24 कड़ियों के इस कार्यक्रम में कृषि, बागवानी, पशुपालन, मत्स्य आदि से संबंधित जानकारियां और व्यवहारिक अनुप्रयोग की विधियां बताई जाएंगी। यह कार्यक्रम 10 मई 2026 से प्रत्येक रविवार शाम 6 बजे से प्रसारित किया जाएगा।
2: अरे सच में भैया?
3: हाँ बाबू, बिल्कुल सच। हाँ
4: बहनों, अब हम बात करते हैं वट वृक्ष, जो कि अक्षय और अमरता का प्रतीक माना जाता है। बहनों, अभी हमारा महत्वपूर्ण त्योहार आने वाला है वट सावित्री व्रत, जो कि बहुत खास होता है। हम महिलाओं को साज श्रृंगार और पति की लंबी आयु के लिए हम यह व्रत करते हैं, जिससे हमारे पति की उम्र लंबी हो और वह स्वस्थ रहें। यह विशाल वृक्ष हजारों वर्षों तक जीवित रहता है। इसकी शाखाओं से निकलने वाली जटाएं जब जमीन में प्रवेश करती हैं तो वे तने बन जाती हैं, जिससे यह पेड़ एक विशाल वन की तरह फैल जाता है। इसीलिए इसे अक्षय वट भी कहा जाता है, जो आपदा प्रलय के बाद भी बना रहता है। इस वृक्ष में त्रिमूर्ति का वास भी माना जाता है। मान्यता है कि वट वृक्ष की जड़ में ब्रह्मा जी की और तने में भगवान विष्णु, शाखाओं में भगवान शिव निवास करते हैं। यह वट वृक्ष प्रकृति और पर्यावरण का रक्षक होता है। यह भारी मात्रा में ऑक्सीजन छोड़ता है और एक स्थान पर यह स्थिर होकर छाया और आश्रय हमें प्रदान करता है। कई सिद्ध वट वृक्ष भी हैं। प्रयागराज का अक्षय वट, गया का अक्षय वट और सिद्ध वट जैसे कई सिद्ध वट भी माने जाते हैं। वृक्षों में एक मान्यता यह भी है कि बौद्ध धर्म में भी इसे पवित्र माना जाता है, क्योंकि भगवान बुद्ध ने भी वट वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया था। तो बहनों, बातें और भी होंगी, चलिए आपको आजकल की महिलाओं कुछ न कुछ रोजगार कर रही हैं, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, वह एक छोटे उद्यमी के रूप में काम कर रही हैं। इसी चर्चा को आगे जारी रखते आज आपको सुनवाते हैं भेंट वार्ता। वार्ताकार हैं रसोई प्रशिक्षिका से कल्पना रायकवाड़ से रूपाली नाथ की बातचीत।
5: श्रोताओं, जब हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो सशक्तिकरण के लिए महिलाओं की आत्मनिर्भरता बहुत जरूरी है, और आज की महिलाएं तो फिर हर क्षेत्र में अपनी सफलता का परचम लहरा रही हैं। न सिर्फ पढ़ी लिखी महिलाएं बल्कि गृहिणियां भी स्टार्टअप के माध्यम से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रही हैं। तो आज इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कल्पना रायकवाड़ जी हैं, जो

0: की एक रसोई प्रशिक्षिका भी है। कल्पना जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे स्टूडियो में।
1: धन्यवाद।
0: अच्छा कल्पना जी, जैसे कि आप रसोई प्रशिक्षिका हैं, तो मैं सबसे पहले तो मेरा प्रश्न ये है आपसे कि किस तरह से इस काम की शुरुआत हुई, किससे प्रेरणा मिली आपको?
1: जी, शुरुआत इस तरह से हुई कि खाना जैसे बनाने का शौक बहुत ज्यादा था
0: जी,
1: तो सभी लोगों को बहुत ज्यादा मतलब खाना पसंद आता था, उसको बहुत ज्यादा तारीफ है चारों तरफ से, घर परिवार रिश्तेदार फ्रेंड कुछ कोई भी।

0: पसंद आता था, उसको बहुत ज्यादा तारीफ है चारों तरफ से, घर परिवार रिश्तेदार फ्रेंड कुछ कोई भी हर कोई तारीफ करता था और इच्छा जताता था कि हमें सिखाओ कैसे इतना अच्छा बनाती हो। और कई लोगों को हमने ऐसे ही सिखाया, फिर कई लोगों ने कहा कि आप इससे अर्निंग भी कर सकती हो, पैसों से सिखाओ। कई लोगों ने मतलब जैसे कई लोगों को हम मना कर देते कि हमें टाइम नहीं है, तो हमने कहा नहीं नहीं आप प्लीज चाहे पैसे ले लीजिए लेकिन सिखाइए। तो फिर मौका अच्छा लगा कि हाँ कई लोगों ने सलाह दी कि नहीं ये सही है। और हमने खुद सीखा, जब कुमारी थी तब हमने भी छोटे थे तब हमने भी एक मोहल्ले के भाभी से सीखा था, तो हमारे भी दिमाग भी चलता था हाँ इस तरह से पैसे भी कमाए जा सकते। और घर के अंदर बिल्कुल चार दीवार जो जिसमें हमें खुद शौक है, हमें खुद वहीं रहना, हमें बाहर जाना बाहर ज्यादा काम करना है, ये बहुत ज्यादा अच्छा मौका लगा। और घर के अंदर ही सब ठीक मतलब लगा तो फिर हमने इसको शुरुआत किया और लड़कियां आने लगी। कुछ पहले रिश्तेदार ऐसे आती थी तो उनसे तो हम नहीं लेती थी पैसे, लेकिन फिर कुछ बाहर की भी आई तो उन्होंने पैसे भी देना स्टार्ट किया। बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन 500-600 इस तरह से एक पर्सन से हमने, और फिर इन पैसों से खुद की बहुत ज्यादा हमने जरूरतें पूरी की। हम फिर किसी पर डिपेंड नहीं रहे, छोटी छोटी चीजों के लिए हमने जी ने कहा कि हमें पैसे दो।
1: तो इस काम की जैसे आपने शुरुआत की, आपने बताया धीरे धीरे आपने शायद निम्न स्तर से शुरुआत की होगी, पहले एक दो छात्र आपके छात्र छात्राएं आए। हाँ इसको सीखने से आप में आत्मनिर्भरता आ सकती है, कैसे आपने ये उनको
0: जैसे कुछ लड़कियां थी तो वो जैसे आजकल सोशल मीडिया चल गई
1: जी बिल्कुल,
0: तो वो वहां से उसी देख लेती थी कोई भी वीडियो, मेरी खुद है चैनल जैसे उसमें देख लेती थी, लेकिन वो कहती थी वैसा हो ही नहीं पाता, वैसा हम कर ही नहीं पाती। तो हमने कहा लाइव देख लो हम सिखा दे रहे, उन्होंने भी कहा आप खुद हमें सिखाओ, कोई भाभी कहती है कोई दीदी कहती है, तो इस तरह से किसी ने हमसे कहा नहीं सिखाओ, हमने कहा ठीक है। तो इस तरह से खुद सामने से हमें ज्यादातर वो मिला की
1: जी जी
0: हमें खुद ही समझो मौका दिया गया, तो हमने इसी तरह से इसको करना चालू किया
1: जी। अच्छा जैसे ये काम आपने शुरू किया, आपने लोगों को पाक कला के बारे में प्रशिक्षित करना शुरू किया, आपके पास छात्राएं बढ़ी, तो देखिए इसके लिए तो समय की जरूरत होती है, तो आपको किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा इस क्षेत्र में आने की?
0: चुनौती बहुत ज्यादा तो खैर नहीं की, लेकिन हाँ ये था कि मैं जैसे घर में बहुत काम रहती है और फिर जॉइंट फैमिली मतलब सास ससुर के साथ रहती है, उनकी भी बहुत जिम्मेदारी,
1: संयुक्त परिवार है,
0: बच्चा भी है हस्बैंड की भी, लेकिन थोड़ा था सपोर्ट भी था सबका, किसी को दिक्कत नहीं हुई। उन्होंने कहा जैसे हमने भी थोड़े तरीके किए कि खाना जब जिस समय हमारा खाने का टाइम, हमने वही समय रखा लड़कियों के लिए, और हमने भी मतलब ऐसे थोड़ी ना है कि पैसा थोड़ा सा और खर्च ज्यादा कर दे, ऐसा भी नहीं कर सकती। तो हमने भी कुछ इसी तरह से जैसे शाम का रखा टाइम टेबल और उसी तरह से फिर मैनेज होता चला गया, सपोर्ट भी बहुत मिला, हस्बैंड का काफी सपोर्ट है सास में, फिर धीरे धीरे मैनेज हो गई चीजें, थोड़ा सा शुरू में हुई मैं दिक्कत।
1: जब इस काम की आपने शुरुआत की रसोई प्रशिक्षिका के रूप में, जब आपने सोचा कि हाँ अब मैं इसमें अपना अब स्वरोजगार में इसमें अपना करूंगी, तो किस तरह की पूंजी की तो कुछ आवश्यकता होती ही है हर कार्य शुरू करने में, तो वो किस तरह से हुआ?
0: पूंजी की ऐसी हुई कि जैसे जैसे सब्जी बनाना है या कुछ भी कोई भी रेसिपी बनानी
1: हाँ,
0: है
1: तो कुछ स्पेशल आपको सिखाना है,
0: जैसे बनाना है तो उसके लिए जैसे सामान तो लगता ही है, तभी वो चीज अच्छी भी बनती है
1: जी जी।
0: तो इसका पहले सपोर्ट रहा है घर से ही, ज्यादातर सपोर्ट आया, जैसे घर का जो राशन वगैरह है उसमें ही हमने ऐड किया, तो उससे किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई है मतलब घर में इस चीज से, मतलब हमने घर से ही मैनेज कर लिया था
1: जी, आपने घर से ही मैनेज कर लिया था। देखिए जैसे आपने अभी बताया कि आपने घर से मैनेज किया और आज आप एक सफल रसोई प्रशिक्षिका हैं, तो कैसा लगता है जब आपको प्रतिक्रियाएं मिलती हैं और जो छात्राएं आपसे सीख कर जाती हैं, तो कैसा लगता है?
0: बहुत बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। और मतलब जैसे मेरे जैसी बहुत सारी महिलाएं हैं जो मतलब कम पढ़ी लिखी हैं
1: जी जी,
0: और बाहर नहीं है उनके लिए बेस्ट काम
1: हाँ जी,
0: तो मतलब उनके लिए है प्रेरणा है कि हाँ अपन घर के अंदर भी ऐसी काम है, बहुत सारी कुछ कुछ अलग अलग हुनर वाली है तो कर सकती हैं घर के लिए काम, और इससे मतलब लोग तारीफ भी करते हैं, खाने को भी अच्छा मिलता है, और वो कहते भी कि इससे भी हम पैसे कमा सकते हैं, ऐसी बातें भी करते हैं, कहा हाँ कमा सकते हैं आप लोग भी, जिसके पास जो भी होना है वो कर सकता है।
1: बिल्कुल अच्छी प्रतिक्रिया है,
0: हाँ अच्छी सब जगह ऐसे बहुत।
1: अच्छा शुरुआत में जब आपने शुरू किया था, आपने जब ये माए अपना सोच बना ली थी कि आप रसोई प्रशिक्षिका बनेंगी, तो आपको कैसा फील हुआ, कैसा आपको झिझक लगी कि हाँ क्या मैं वाकई में ये कर पाऊंगी?

0: इस तरह का कुछ विचार आपके मन में आया? क्योंकि देखिए जब शुरुआत होती है तो ये नहीं पता होता कि किस तरह से चीजें आगे जाएंगी, तो आपको क्या मन में ऐसी झिझक थी आपकी?
1: नहीं, झिझक ज्यादा नहीं आई मैं मन में, क्योंकि हमें शौक बहुत ज्यादा है इस चीज का जी। कहते हैं ना कि कभी कभी किसी चीज का शौक अपन को बहुत ज्यादा, तो वो हावी रहा हमारी हर चीज के ऊपर। खाने बनाने का शौक ही बहुत ज्यादा है।
0: अच्छा,
1: तो हमें इतनी ज्यादा तो खैर दिक्कत नहीं आई है, बस थोड़ा सा टाइम मैनेज करना था तो वो हमने कर लिया, बहुत ज्यादा हमें वो नहीं है यहाँ। और फिर हर तरह से हमें मतलब कोई भी रेसिपी हम बनाते थे सब लोग तारीफ ही करते थे, तो हम मनोबल दिन पे दिन बढ़ते ही गया।
0: मनोबल दिन पर। अच्छा, ऐसा कभी कुछ हुआ कि कोई चुनौती आई हो, ऐसी कोई समस्या आई है आपको इस कार्य में कि आपको याद आता है जो आप हमसे शेयर करना चाहेंगे, किसी तरह की कोई चुनौती का आपने सामना किया हो?
1: चुनौती अभी कुछ दिन पहले जैसे थोड़ा सा फैमिली में हुआ था
0: जी,
1: जैसे सासू माँ की तबीयत हो गई थी थोड़ी सी खराब, उस टाइम पे टाइम मैनेज करना बहुत मुश्किल हो गया था
0: जी जी,
1: समझो। उस टाइम हमने कुछ दिन के लिए बंद भी किया था जी सब कुछ, सोशल मीडिया पे भी बंद कर दिया था क्योंकि उनको मतलब हार्ट अटैक की थोड़ा सा वो हो गया था, तो उस टाइम पे जरूर हमें आया, वो समय हमें थोड़ा सा बुरा लगा था कि थोड़ा होता है ना कि कोई चीज चल रही हो फिर वो थोड़ी पीछे हो जाती है
0: जी। अच्छा, मैं ये भी जानना चाह रही हूँ आपसे, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई छात्रा सीखने आती है तो आप शुरुआती तौर पर मतलब कैसे उसको सिखाते हैं, क्या आप किस चीज से आप उसको शुरुआत करते हैं, किस तरह से मतलब आप शुरुआत करते हैं कि इस तरह का कोई कोर्स आपने बनाया हुआ है कि हाँ इतने दिन हम आपको सिखाएंगे, या इस तरह का कोई प्लान है आपका?
1: ऐसा करते हैं जैसे एक लिस्ट टाइप की बना के दे देते हैं उनको, मेन्यू होता है जैसे कि हम चीजें सिखाएंगे, ये नहीं कि हाँ कुछ इच्छाएं बोल भी जता देती हमें जी सीखना है वो सीखना, और तो लेकिन हमारे तरफ से भी एक लिस्ट जारी की जाती जैसे हम खुद ही बनाते, कोई कुछ हमारे कोई बहुत बड़ा वो नहीं है कि कोई मतलब बहुत ज्यादा।
0: तो मतलब कितने दिन का आप मैक्सिमम प्रशिक्षण देती?
1: एक महीना,
0: एक महीने का प्रशिक्षण आप सभी को देती हैं?
1: एक दिन में एक रेसिपी ऐसा, और वो एक लड़की के लिए नहीं, चार
0: तो एक जो आप जैसे महीने भर का प्रशिक्षण देते हैं तो एक बैच में कितने छात्राएं आप रखते हैं?
1: वो चार पांच ऐसे।
0: और कितना समय लेती हैं आप इसमें?
1: उसमें
0: रोज की क्लास होती होगी?
1: एक ही रेसिपी जैसे बताते हैं हम एक बार में, उसमें जितना समय रेसिपी लेंगे जी ऐसा कुछ रहता है। और लिखने में भी करके नोट भी करके लड़कियां ले जाती हैं, आजकल तो थोड़ा नोट भी कम ही करते हैं, जैसे थोड़ा वीडियो भी डाली है वो भी वॉच कर लेती लड़कियां।
0: अच्छा कल्पना जी, आज आप आत्मनिर्भर हैं, आज आप अपना स्वयं का कमा रही हैं, अपने परिवार को भी सपोर्ट दे रही हैं, कैसा लगता है आपको?
1: बहुत अच्छा लगता है।
0: और परिवार वाले क्या कहते हैं इस संबंध में?
1: सब तारीफ करते हैं।
0: तो आपको क्या लगता है कल्पना जी कि महिलाओं का आत्मनिर्भर होना जरूरी है?
1: हाँ बिल्कुल, जिनमें है हुनर उन्हें जरूर होना चाहिए, जैसे अगर कोई जैसे काम आता है कुछ भी उसको शौक है तो उसको जरूर आगे लेकर जाना चाहिए अगर मौका भी मिले
0: जी।
1: खाने का कुछ बहुत ज्यादा ही था, खाना बनाने का जब हम 16 साल ऐसे होंगे तब हमने सीखा था, बेकरी ऐसे कुछ था हमारे इस मोहल्ले की भाभी से, तो हमने उनसे भी रहा कि जब इतने समय पहले कोई सिखा सकता है तो आज भी
0: तो हम भी सिखा सकते हैं,
1: हमें खुशी तो बहुत।
0: तो आज आप जो आत्मनिर्भर हैं तो आपके परिवार वाले भी आप बता रहे हैं कि खुश हैं कि आप आत्मनिर्भर हैं, तो
1: बहुत सपोर्ट करते हैं।
0: तो उनको जब किसी दूसरे से जब वो मिलते होंगे समान या किसी भी फंक्शन में जब मिलते हैं, जब वो आपकी तारीफ करते हैं उनसे, तो उन्हें कैसा लगता है?
1: हस्बैंड
0: हैं आपके परिवार वाले हैं
1: अच्छे
0: भाई, आपके घर में बहू आपकी आत्मनिर्भर
1: तारीफ, हाँ सब अच्छा लगता, खुशी होती और इच्छा भी जताती, सिर्फ तारीफ ही नहीं करती इच्छा भी जताती कि यार जैसे हस्बैंड के फ्रेंड कहते हैं दोस्त वगैरह के भाभी से कह दो कि हमें मिसेज को ये सिखा दे, और जो बेटा है हमारा 13 साल का वो जब स्कूल जाता तो वो उसके फ्रेंड भी कहते कि अपनी मम्मा से कहना कि ये वाली रेसिपी हमारी मम्मा को सिखा दे, तो हमें बहुत खुशी होती अपने आप पे एक रहता कि अरे वाह हम इतना अच्छा कर।
0: तो कल्पना जी आज आप आत्मनिर्भर हैं और आज आपने अपना काम शुरू किया, अपना स्टार्टअप शुरू करके आप आत्मनिर्भर बनी हैं, तो आपको क्या डिफरेंस लगता है कि जब आपने काम शुरू नहीं किया था आप आत्मनिर्भर नहीं थे और आज जब आप अपने पैरों पे खड़े हैं, तो क्या आपको इसमें क्या डिफरेंस लगता है, क्या भिन्नता लगती है उस टाइम में और इस टाइम में?
1: जी लगता कि पहले जैसे थोड़ा रह जाती थी कोई चीज के लिए जैसे पैसे
0: जी,
1: है तो अच्छा परिवार सब बढ़िया है अच्छा अच्छी किस्मत भी सब, लेकिन कभी कभी होता ही है कि कुछ चीजों की हम कह रहे हैं हमें ये दिला दो वो दिला दो या मतलब नीचा मार रहे हैं, तब वो नहीं करना पड़ता।
0: बिल्कुल, आज आप आत्मनिर्भर हैं, आप न सिर्फ आत्मनिर्भर हैं बल्कि अपनी अर्निंग से आप अपने परिवार का भी सहयोग कर पा रहे हैं।

0: कर लेती, जब छुट्टी कर लेती और
1: खुशी मिलती है,
0: खुशी मिलती, सहयोग तो बहुत है परिवार का।
1: तो फिर आप हमारे श्रोता बहनों को क्या संदेश देना चाहेंगी कि आत्मनिर्भरता जरूरी है और किस तरह से वो क्षेत्र में आगे बढ़े, क्या कहना चाहेंगी आप?
0: बहनों से बस यही कहना चाहूंगी कि जो भी उनके अंदर हुनर है
1: जी,
0: और उन्हें लगता है कि वो चीज मतलब कर सकती तो उन्हें करना चाहिए और आत्मनिर्भर बनना।
1: हाँ, न सिर्फ पाक कला बल्कि देखिए सिलाई कढ़ाई है और कई सारी क्षेत्र
0: है। कई महिलाएं, कई बहनें जी सोचती हैं कि बाहर ही है काम, तो सिर्फ बाहर का ही, बाहर का ही होगा, घर में हम कुछ नहीं कर सकते।
1: बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा कुछ नहीं,
0: बहुत सारे काम है जो अपन घर में भी बैठ कर सकते हैं और पैसे भी कमा सकते हैं और अपने आत्मनिर्भर घर के अंदर ही बन के रह सकते हैं जो हम है।
1: तो आत्मनिर्भरता जरूरी है,
0: जरूरी है बिल्कुल।
1: और आप स्वरोजगार के माध्यम से भी आत्मनिर्भर बन सकते हैं।
0: और ऐसा भी कुछ नहीं था जब हम निर्भर थे तब भी हमें कुछ खास वो नहीं थी, लेकिन आज और भी ज्यादा खुशी है, हस्बैंड को भी बहुत खुशी है, सबको खुशी है।
1: एक सम्मान समाज में, परिवार में आत्मनिर्भर होने से एक सम्मान जो मिलता है वो
0: थोड़ा वो भी करते कि ऐसा भी होता है घर में भी मतलब घर के खाने से भी पैसे कमा सकते हैं, कुछ लोगों को तो ये भी लगता है।
1: जी प्राइपा जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमको स्वरोजगार के माध्यम से आत्मनिर्भरता के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आपका भी धन्यवाद जो आपने हमें यहाँ पर बुलाया।
1: धन्यवाद।
2: बहनों, अभी आप सुन रही थी भेंट वार्ता। वार्ताकार हैं रसोई प्रशिक्षिका कल्पना रायकवार से रूपाली नाग की बातचीत। तो बहनों, अब हम बात करते हैं हमारे सांस्कृतिक परिधान जो कि साड़ी है। आजकल के पहनावे में इसे कम पहना जाता है, पर कुछ महिलाएं आज भी साड़ी पहनती हैं। महिलाओं को कोई वस्त्र पहने पर तीज त्योहारों पर, खास कोई पर्व हो तो साड़ी जरूर पहनती हैं। हम अपनी साड़ियों का रख रखाव कैसे करें जिससे वह हम पहनने के लिए साड़ी निकालें तो वह हमें अच्छी तरह से हमें पहनने के लिए मिले। तो बहनों, हमें किस प्रकार से अपनी साड़ियों की देखभाल करनी चाहिए? तो हमारी साड़ियां हमेशा नई जैसी कैसे रहेंगी? साड़ियों को हल्के डिटर्जेंट में धोएं। साड़ियों को ज्यादा समय तक पानी में भिगोकर ना रखें, उससे उनका कलर निकल सकता है। साड़ियों को कॉटन या सूती मलमल के कपड़ों में फोल्ड कर रखें। उन्हें नमी वाले स्थानों पर रखने से बचें। साड़ियों को कम से कम महीने में एक बार उनकी तह बदलें ताकि उनकी क्रीज ना बने। साड़ियों को सूखी और ठंडी जगह पर रखें। साड़ियों को बैग और पॉलीथिन में ना रखें क्योंकि उनमें फंगस लगने का खतरा होता है। साड़ियों को कभी सीधी धूप में ना सुखाएं, उसे छांव में उल्टा करके सुखाएं। साड़ियों को चमकदार बनाए रखने के लिए डिटर्जेंट में शैम्पू डालकर आप 5 से 10 मिनट के लिए पानी में भिगो कर रख दें, जिससे आपकी साड़ी के दाग धब्बे भी साफ होते हैं और उनकी चमक भी बढ़ती है। और आपकी साड़ियों पर अपनी हल्की आयरन करना चाहिए जिससे आपकी साड़ियों में हल्की चमक बनी रहे। तो बहनों, बातें और भी होंगी, चलते हैं गीत संगीत की ओर जो कि लिया गया है फिल्म नदिया के पार से। आवाज दी है हेमलता जी ने।

बहनों, अब हम बात करते हैं कि गर्मी के मौसम में राहत पाने के लिए हम अपनी रसोई से क्या चीज बना सकते हैं जिससे कि हमें गर्मी से लू से भी राहत मिल सके। बहनों, पुदीने का अर्क जो कि हमारे शरीर को ठंडक भी देता है और सुपाच्य भी होता है। अपच, पेट दर्द में पुदीने का अर्क या काढ़ा पाचन तंत्र की मांसपेशियों को आराम देता है जिससे अपच, गैस, पेट दर्द में तुरंत आराम मिलता है। पुदीना पेट की गर्मी को शांत करता है और जलन को कम करता है। सफर के दौरान जी मचलाना, उल्टी आदि में भी पुदीने के अर्क का सेवन करने से आराम मिलता है। पुदीने के अर्क की कुछ बूंदे पानी में डालकर पीने से शरीर को ठंडक प्रदान करता है। पुदीना को हम कई प्रकार से यूज कर सकते हैं। पुदीने की चटनी छाछ में डालकर भी पी सकते हैं। शहद में कुछ बूंदे पुदीने के अर्क की लेने से गैस में आराम होता है। पुदीने को हम अपने घर में भी बनाकर रख सकते हैं। पुदीने का रस निकालकर हम अपने पास एक बोतल में फ्रिज में रख सकते हैं। जब भी हमें जरूरत हो हम उसकी दो चार बूंदों का पानी में डालकर यूज कर सकते हैं जिससे कि हमें राहत मिल सके। अर्क बनाकर या चटनी के रूप में भी हम पुदीने को इस्तेमाल कर सकते हैं। सब्जी में काट कर भी डाल सकते हैं। कई प्रकार से हम पुदीने का अर्क का इस्तेमाल करते हैं और पुदीने को हम सुखाकर भी रख सकते हैं क्योंकि पुदीना हमें गर्मियों के मौसम में अधिक प्राप्त होता है। इसीलिए हम पुदीने की पत्तियों को छाए में सुखाएं और सुखाकर अपने पास स्टोर करके रखें ताकि हमें जब भी जरूरत हो हम पुदीने का इस्तेमाल कर सकें। पुदीने का अर्क तो हमें बनाकर रखना ही है, इसीलिए पुदीने के इस्तेमाल

को जब चाहे तब कर सकते हैं। तो बहनों, अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, तो जल्दी से हमारे कार्यक्रम का पता नोट कीजिए। हमारे कार्यक्रम का पता है नारी जगत कार्यक्रम द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी झांसी, पिन कोड है 284128। तो बहनों, हमारे कार्यक्रम का पता एक बार फिर नोट कीजिए। हमारे कार्यक्रम का पता है नारी जगत कार्यक्रम द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी झांसी, पिन कोड है 284128। तो बहनों, अपनी सखी नीलम देवी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: जो गई थी।
1: महिलाएं अभी सुन रही थी अपना पसंदीदा कार्यक्रम नारी जगत। एफएम 103 पर हम आकाशवाणी के झांसी केंद्र से बोल रहे हैं। आइए अब सुनते हैं किसान भाइयों का पसंदीदा कार्यक्रम चौपाल।

किसान पंच भैया रहो, स्वीकार रहो, संतोष पाल को नमस्कार, राम राम भैया रहो और पंच भैया रहो, अपन और कैसी हो। हाँ पंच भैया रहो, भगवान से आशा करत और प्रार्थना करत कि अपन सब जने भी नोनी हुई हो, उमदा हुई हो और अपनी खेती बाड़ी के काम धंधे, खेती से जुड़े हुए व्यवसाय अच्छी तरह से निपटा रहे हुई हो, कर रहे हुई हो। और भैया रहो, अपन तो जो देख ही रहे कि आजकल जो अपन शादी ब्याह को मौसम चल रहा तो वो ही अपन देख रहे, बरातें कर रहे, तो ऐसे में देखो अपन मौसम को बदलाव ही देख रहे। हाँ भैया रो, अपनी अपन बराते चले जात और घर के काम धन की चिंता बनी रहती है कि आंधी ना आ जाए, हमारी जो फसल डरी या कछु ऐसी कृषि उत्पाद डरे जो नुकसान ना हो जाए जी है, तो इन सब के बचबे, इन सब से बचबे की लाने अपन हैं। हम आज एक बहुत नोनी बात बता रहे। हाँ भैया रो, देखो आज को योग कल लगत कंप्यूटर को योग है, हम तो कत के भैया मोबाइल को योग है। ऐसे हर चीज आज के समय में मोबाइल में सिमट के रह गई, हर चीज की जानकारी हुए, चाहे देखो अपन है अब घड़ी की जानकारी जरूरत नहीं पड़ा, समय भी हमें देख लेते। ऐसे ही मौसम की जानकारी भी अपन अपने मोबाइल पे प्राप्त कर सकत, बा कैसे पा सकत भैया, तो उके लाने हम अपन है बता रहे कि अपने मोबाइल में अपन है का करने एक मेघदूत ऐप आता है, जो एप्लीकेशन मेघदूत ऐप अपन डाउनलोड करके और इसे मौसम की जानकारी ले सकत। और जो ऐप जो भैया है, जो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि IMD, ICAR और IITM द्वारा बनाओ गो, और जो सरकारी कृषि मौसम परामर्श ऐप है जो किसानन को स्थान विशेष की जानकारी यानी कि उते को पूर्व अनुमान और फसल और पशुधन संबंधी सलाह हिंदी में और जोन भाषा में अपन बोलो, जैसे हमारे जो बुंदेलखंड क्षेत्र के किसान भैया आ रहे हैं तो वे बुंदेलखंडी यानी कि बुंदेली भाषा बोलत, तो अपन बुंदेली भाषा में जो सवाल उनसे करो, जो पूछो, तो अपन के जवाब भी वो तैसे बुंदेली भाषा में मिले। तो देखो भैया कितना नौनी बात है जातो कि अपन के कोनो दिक्कत नहीं पड़े समझने में और अपन की समस्या को भी समाधान हो जाए। और अब हम अपन के बता रहे कि ई एप्स की कछु विशेषताएं भी होती। और हाँ भैया रो, जो अपन जो जानते ही हो कि

कि जो संसाधन अपने पास खुद ही उपलब्ध हैं, अपने ही घर है। हाँ अब अपन समझ गए हो भैया हम क्या वो चाह रहे हैं कि अपन के जैविक खेती, जैविक खेती में अपन देखो कार्बनिक खाद को प्रयोग कर सकत, जी है भैया कंपोस्ट खाद भी बोलो जाता ही। सबसे पहले तो अपन जो सुनो कि जो कार्बनिक खाद होत का है। हाँ भैया रो हम अपन के बता दें कि जो कार्बनिक पदार्थ होते ही वे का होते ही अपने घर या खेतन में जो कूड़ा कचरा निकलता ही, अपनी फसल के अवशेष निकलते ही बे, और जो अपने पशुधन से अपन के गोबर मलमूत्र प्राप्त होते ही वो, और जो पेड़न की पत्तियां हैं पत्ता पत्ती बे, और अपनी जो रसोई घर है उसमें जो देखो तरकारी भाजियन की जो छिलका होता ही है बे छिलका, और जो सूक्ष्म जीव होते ही ये सब कार्बनिक पदार्थ को आते ही भैया। अब इन कार्बनिक पदार्थन के अपन इकट्ठो करत तो है, जी है अपन अपनी भाषा में घूरो बोलत, अपन घूरो डात इकट्ठे करके रखत जाते ही, लेकिन सही विधि से नहीं करत जिसे वे अपन के अपनी खेती में सही लाभ नहीं देते। अपन है का करने के ज्यादा आटन नहीं करने, अपन जो ऐसे ही खुले में समतल जमीन पे उन्हें डाल देते ही तो ऐसा नहीं डालने, अपन है का करने एक गड्ढा खोद लेने, और जैसी अपन होदी बना चौकोर ऐसी अपन है बना लेने, और बना के का करने के गड्ढा खोद लो तो अपन जो ईंट होते ही गुम्मा होते ही और गारा होते ही है उसे चुनाई कर देने उसके चारों तरफ, अपनी जितनी जो कूड़ा कचरा ने करता ही कार्बनिक पदार्थ ने करता ही कि अब साल भर में अपनो एतिक जुड़ जाते ही तो उस आपको अपन है गड्ढा बना लेने, और वो गड्ढा कितने बनाने अपन है देखो छाव ना जितने छाए रो हुए उस स्थान पे बनाने पनु पेड़े की तरह, जैसे उमें जो सूक्ष्म जीव है विपन पत्र है, और का करने के उमें समय समय पे देखो जब बरसात नहीं होती तो पानी भी डालत रहने, बरसात चौमासे में तो देखो पानी भर जाता अपन ने गड्ढा खोदो, और समतल में डाल दे तो वो में पानी नहीं भर पाते तो सड़ नहीं जाते और सूक्ष्म जीव उगा में जन्म नहीं पाते तो वो अपनो खाद अच्छी तरह से पच नहीं पाते। तो अपन के जो सब का करना है कि पहले का करना है कि अपन के एक जैसे हमने गड्ढा बताओ गीलो जो चारो कूड़ा कचरा होता ही अपन है वो डाल देने हरो, जैसे अपने जो पशुधन के अपन गंजा भैंसियन के हरो चारो डालते ही उनको जो जूठन बचत वो डाल दो, और फिर सूखे पत्ता डाल दो, और फिर कचरा कूड़ा कचरा की परत बना दो, और तन थोड़ा नमी बनावे के लाने पानी छिड़क दो, और 15-20 दिन में ऊखे ऊपर नीचे करत रहे यानी कि पलटत रहे जिसे जो पोषक तत्व से भरपूर प्राकृतिक खाद तैयार हो जाता है। और अब एक ही लाने अपन देखो हमने बताओ कि छायादार स्थान पे बनाने जो वो 3x3 यानी कि 3x3 फीट को गड्ढा खोदें, जो तो हमने अनुमान बताओ अपन अपनी सुविधा अनुसार भी इसे कमा बढ़ा सकत, या फिर देखो प्लास्टिक के जो ड्रम आता है उनको उपयोग कर सकत। अब इके लाने हमने देखो सामग्री अपन पहले बता दी, एक बार फिर से सुन लो कि इके सबसे नीचे काड़ान ने सूखी टहनिया लकन्या जो पतनी पतनी होती ये पत्ता जो हवा के लाने, और फिर इके बाद गीलो कचरा यानी कि जो अपनी रसोई घर से जो सब्जियन के छिलका निकलत आई, और या हरी जो घास होता अपने पशुओं को हरो चारो जो जूठन बछू रही उखे डाल देने, फिर सूखो कचरा यानी कि सूखे पत्ता कागज या जो लकड़ी को बुरादा होता ही देखो अपने घर में जो अपन देखो केबाल लगवाता ही या खिड़की की पटकियां लगवाता ही तो उमें जो काटा कूटी के छोला छाली होता ही तो उको जो बुरादा निकलता ही वो अपन उमें डाल सकत। फिर अपन गोबर गोबर को घोल बना के और तनक मिट्टी मिला के और जो पुरानी जो अपनी खाद है उमें डाल दो जी में जो सूक्ष्म जीव पाए जाते ही सुबह और बढ़ जाए, और नमी भी बनाए रखने, और देखो हवा की भी ऐसी व्यवस्था करने कि उमें हवा भी जात रहे और पानी भी छिड़कत रहो, इतने नहीं छिड़कने कि उमें कीचड़ हो जाए, और देखभाल की लाने अपन का करने भैया 10 से 15 दिन में जो इकट्ठो मिश्रण है उलट पलट देने जिसे हवा लगत रहे, और जो भैया 30 से 45 दिन में भूरे काले रंग को हो जाता ही और इसे कोनो तरह की गंध नहीं आता ही यानी कि बदबू भी नहीं आता ही। तो भैया इस तरह से अपन देखो जी कार्बनिक पदार्थ से कार्बनिक यानी कि कंपोस्ट खाद तैयार करके अपने खेतन के

0: सकत और अपनी खेतन की माटी को स्वस्थ बरकरार रख सकते। और भैया रो अब हम अपन से बतकाऊ और करें, लेकिन उसे पहला अपन खे एक उमदासी भेंट वार्ता सुनवा रहे। कैसे अपन हो रहे इबेरा अपने खेतन में जायद की भी फसल लें, जायद में अपन जो फसल लेते ही जैसे उड़दा है, मूंग है, मूंगफली है, तो आज ऐसे ही हम अपन खे उमदासी एक भेंट वार्ता सुनवा रहे जायद में। डॉक्टर राजवीर सिंह यादव से जायद में मूंगफली की उन्नत खेती विषय पे पुष्पेंद्र भैया की बातचीत, तो अपन उन्हें सुनो जे का कछु अपन खे नोनी नोनी बातें बता रहे।
1: किसान भाइयों, हम समय समय पे आपको नई नई जानकारी से अवगत कराते रहते हैं, वैज्ञानिकों के जो सुझाव हैं वो भी आप तक पहुंचाते रहते हैं, साथ ही साथ जो प्रगतिशील किसान भाई हैं उनके अनुभव भी आप तक पहुंचाते हैं। आज हम बात करते हैं जायद में मूंगफली की उन्नत खेती पर, और इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर राजवीर सिंह यादव, रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी में पदस्थ है। डॉक्टर साहब, आपका आकाशवाणी की तरफ से एवं आकाशवाणी की तमाम श्रोताओं की ओर से हार्दिक स्वागत है।
2: बहुत बहुत धन्यवाद पुष्पेन जी, एवं सभी किसान भाइयों को नमस्कार, साधुवाद।
1: डॉक्टर साहब, हम बात करें कि बुंदेलखंड में जायद में यानी गर्मियों में हमारे किसान भाई अधिकांशतः मूंग की खेती करते हैं और कर भी रहे हैं। अभी देखा देखी में ये आया है कि बुंदेलखंड में हमारे किसान भाई जायद में यानी गर्मियों में मूंगफली की खेती करना शुरू किए हैं। हम बात करते हैं कि जायद में मूंगफली की वैज्ञानिक खेती हमारे किसान भाई कैसे करें, किन किन बातों का ध्यान रखें। तो इसमें पहली बात ये आती है कि जो मूंगफली है इसको जायद और खरीफ दोनों मौसम में हम उगा सकते हैं हमारे किसान भाई, तो इसके लिए हमारे किसान भाइयों को किन बातों का ध्यान रखना है। हम शुरू करते हैं कि जो जलवायु है, मिट्टी है, वो कैसी होनी चाहिए।
2: जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मूंगफली एक तिलहनी फसल है तथा यह मृदा संरक्षण भी करती है,
1: बिल्कुल,
2: और इसके साथ साथ इसको हम खरीफ एवं जायद में भी लगा सकते हैं। तो जायद में लगाने के एक फायदे इसके ये हैं कि दूसरा क्या है, इसमें रोग एवं कीट लगते हैं वो थोड़े से कम लगते हैं इस सीजन में, उनके आपकी लागत कम हो जाती है प्रबंधन करने की। दूसरा इसमें क्या है कि ऋतु की अपेक्षा इसमें अधिक पैदावार भी होती
1: है, पैदावार भी ठीक होती है और खरपतवार भी कम
2: होते हैं।
1: हम डॉक्टर साहब बात करें कि हमारे किसान भाइयों को ये बताएं कि जायद में जो अच्छी प्रजातियां हैं वो कौन कौन सी है, ताकि किसान भाई उन्हीं का चयन करें।
2: तो अपनी जो प्रमुख प्रजातियां हैं वो DH 86 और ICGS 44, ICGS 1 और R 925 और R 8808, TG 37, ये प्रमुख प्रजातियां हैं। तथा जलवायु जो है इसकी शुष्क जलवायु की आवश्यकता होती है, और मिट्टी जो है अपन इसमें बलुई दोमट मिट्टी प्रमुख होती है, और पीएच इसको 6 से 7 के बीच में होना चाहिए।
1: तो ये तो पीएच हो गया हमारा कि मृदा का कितना पीएच होना चाहिए, और कौन कौन सी प्रजातियां जो आपने बताई हैं, DH 86 है, ICGS 44 है, ICGS 1 है, R 935 है, R 8808 है और TG 37, ये उन्नत प्रजातियां हैं। अब हम बात करते हैं कि खेत की तैयारी, जो प्रिपरेशन की बात है, हमारे किसान भाई तैयारी कैसे करें, इनमें किन बातों का भी ध्यान रखें।
2: खेत की तैयारी में इसमें क्या है कि गेहूं की फसल जैसे ही अपन काटते हैं और मध्य मार्च में अपन पहली गहरी जुताई एक करते हैं, उसके बाद 2 से 3 जुताई देसी हल या कल्टीवेटर से करके उसमें पाटा लगा देना चाहिए, जिससे कि क्या है मृदा संरक्षण, दूसरा पानी जो पलेवा अपन करते हैं वो आसानी से
1: उसकी नमी संरक्षित रहे।
2: हाँ,
1: नमी बचाने के लिए आमने सामने की जुताई करके हमारे किसान एक पाटा लगा दे और इसके बाद में बुआई करें। जब बात आती है बुआई की, तो बुआई करने से पहले इसमें बीज शोधन की अपन बात करें, तो हमारे किसान भाइयों को ये बताएं कि बीज शोधन कैसे करें, कौन कौन सी दवा से इनका बीज शोधन कर सकते हैं और बीज शोधन से क्या फायदा है।
2: बीज शोधन एक प्रमुख क्रिया है और बीज शोधन हमें आवश्यक रूप से करना चाहिए किसान भाइयों को। इसमें 2 ग्राम थीरम और 1 ग्राम कार्बनडाइजा 50% का प्रति किलोग्राम सीड की मात्रा के अनुसार इसका बीज शोधन करें, तथा राइजोबियम कल्चर 1 पैकेट प्रति

0: 10 केजी सीड के हिसाब से या 20 ग्राम प्रति केजी सीड के हिसाब से इसका बीज शोधन कर सकते हैं।
1: बिल्कुल, बीज शोधन हमारे किसान भाई थीरम और कार्बन डाइजिम से भी कर सकते हैं, साथ ही साथ राइजियम कल्चर भी और बीज शोधन करके ही हमारे किसान भाई बॉय करें। डॉक्टर साहब, बात करें कि बीज दर के, कि प्रति हेक्टेयर कितना बीज दर की आवश्यकता होगी, कितना बीज लगेगा। किसान भाई अमूमन देखा देखी में बीज दर बढ़ा देते हैं कि हम ज्यादा बीज डालेंगे तो फसल अच्छी होगी, तो इस विषय पर थोड़ी सी बताइए।
0: मूंगफली की बुवाई सर्वप्रथम तो अपन को वो सीड्रल से करनी चाहिए, जिससे क्या है कि लाइन टू लाइन और रो टू रो आपका दाना प्रॉपर पड़े। तो लाइन टू लाइन जो है आपकी रो टू रो वो आपकी पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 सेंटीमीटर तथा पौधे से पौधे की दूरी 8 से 10 सेंटीमीटर रखें, तो इसमें आपका 100 से 125 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से सीड की मात्रा पर्याप्त होती है।
1: अच्छा, तो किसान भाइयों को अधिकतम 120 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से डालेंगे तो निश्चित ही फसल अच्छी होगी और जो स्पेस आपने बताया है वो भी हमारे किसान भाई मेंटेन करके रखेंगे। गर्मियों का मौसम है और ये गर्मियों में हमारे किसान भाई इसकी खेती कर रहे हैं, तो इस विषय में बात करते हैं सिंचाई की। तो सिंचाई हमारे किसान भाई कैसे करें और किन किन अवस्थाओं में इसकी सिंचाई जो है वो खास है?
0: सिंचाई इसमें 4 से 5 सिंचाई की आवश्यकता होती है, और जैसे ही जर्मिनेशन आता है उसके 20 दिन बाद अपन प्रथम सिंचाई करते हैं, उसके फिर इसमें 10 से 15 दिन के अंतराल पे कंटिन्यू 4 से 5 सिंचाई अपन करते हैं। जैसे आपने 20 दिन में की तो फिर 30 से 35 दिन में कर देंगे, और फिर उसके बाद 50 से 55 दिन में कर सकते हैं। फिर चौथी सिंचाई आप उसकी फली बनते समय जो आपकी 65 से 70 दिन के बीच में कर सकते हैं। फिर पांचवी सिंचाई जो है वो आपका फली बनने के बाद जो दाना भरने की आवश्यकता होती है उस समय अवश्य करनी चाहिए, जिससे कि क्या है कि उसके दाने में प्रॉपर भराव हो सके और आपको उत्पादन अधिक मिल जाए,
1: दाना अच्छा बने।
0: अच्छा,
1: तो हमारे किसान भाई ध्यान रखेंगे। सिंचाई जो आपने बताई है कि मूंगफली में लगभग 5 सिंचाई की आवश्यकता होगी, पहली सिंचाई हमारे किसान भाई बुआई के ठीक 20 दिन बाद करें, और दूसरी सिंचाई 35 दिन बाद, तीसरी 50 से 55 दिन बाद, और जो चौथी है वो बताइए अपने 65 से 70 दिन में, और पांचवी दाना भरते समय। तो इस प्रकार से हमारे किसान भाई ध्यान रखें कि कब कब सिंचाई करना है, और निश्चित है किसान भाई समय से सिंचाई करेंगे, देखरेख करेंगे तो अच्छा उत्पादन उन्हें मिलेगा। हम बात करते हैं खरपतवार प्रबंधन की, डॉक्टर साहब, तो इस समय हमारे किसान भाई किन बातों का ध्यान रखें ताकि उनकी फसल में जो खरपतवार है और उससे निजात पा सके?
0: खरपतवार प्रबंधन में प्रमुख जो है अपना इसमें प्री इमरजेंस, जैसे फसल की बुवाई के 72 घंटे के पहले पहले अपन पेंडीमेथिलीन का छिड़काव कर सकते हैं। तो 30% पेंडीमेथिलीन का छिड़काव करते हैं, जिसमें से 3.3 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 500 लीटर पानी में मिलाकर पूरे एक लेयर के रूप में अपन इसका छिड़काव कर देते हैं, जिससे ये खरपतवार प्रबंधन की समस्या
1: बिल्कुल
0: खत्म।
1: तो हमारे किसान भाई ध्यान रखें कि बुआई के ठीक 72 घंटे के अंदर अंदर हमें पेंडामेथिलीन का एक छिड़काव करना है ताकि खरपतवार जो है वो ना उग पाए। अब बात करते हैं डॉक्टर साहब हम इसमें उर्वरक की, तो इसमें प्रति हेक्टेयर की दर से कितने एनपीके की आवश्यकता होगी?
0: इसमें नाइट्रोजन की मात्रा अपन को कम ही देनी पड़ती है, तो इसमें 20 केजी नाइट्रोजन, 40 से 50 केजी फास्फोरस और 30 से 40 केजी पोटास की आवश्यकता होती है, जिसमें अपन 45 से 50 केजी यूरिया, अपन यूरिया की मात्रा कम ही रखते हैं, जिससे क्या है कि ये अगर यूरिया नाइट्रोजन की मात्रा अधिक हो जाएगी तो इसकी समय अवधि बढ़ जाती है, तो समय अवधि प्रॉपर समय पे बरसात के पहले से अपन काट सके, इसलिए इसकी उचित मात्रा 20, 40 और 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से एनपीके रखते हैं।
1: ये तो उर्वरक की बात हो रही, अब हम बात करें डॉक्टर साहब कि इसमें कौन कौन से रोग और कीट का प्रकोप होता है, तो उनके लिए हमारे किसान भाई क्या करें?
0: इसमें जो प्रमुख रोग हैं आपके वो तना बिगलन है, किट्टा रोग है, मूंगफली कली परिगलन रोग है, ये रोग प्रमुख हैं, और इनके लिए हमें सिस्टमेटिक फंजीसाइड कार्बन डाइजिम से अपन उपचारित करते हैं तो अपने को रोग कम आते हैं। दूसरा क्या है कि इसका एक 10 ग्राम प्रति पंप अपन छिड़काव एक 20 से दिन बाद, बुवाई के 20 दिन बाद कर सकते हैं।
1: बिल्कुल, ये तो हो गया कि जो फंजीसाइड है उससे हम कर सकते हैं, क्योंकि जो भूमजनित रोग है वो फंजीसाइड

0: से हम नियंत्रण कर सकते हैं। बात करते हैं कीट की, कौन कौन से कीट हमारी फसल में लगते हैं और उनसे हमारे किसान भाई अपनी फसल को कैसे बचाएं।
1: मूंगफली में एक रेड हैरी कैटरपिलर है, हेलिकोबर्पा इल्ली जो लगती है, दीमक का भी प्रकोप होता है, तो इन सब को बचाने के लिए पहले तो ग्रीष्मकालीन जो अपन गहरी जुताई करते हैं उससे अपना कीट प्रबंधन काफी हद तक ठीक हो जाता है। उसके बाद इसमें अपन नीम खली भी अपन 250 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से डाल सकते हैं, और रासायनिक प्रबंधन में भी अपन क्लोरोपाइरीफास के माध्यम से दीमक का प्रबंधन कर सकते हैं। दूसरा इसमें जैसे अगर माहू या एफिड आती है तो इसमें इमिडा क्लोरोपिट का भी छिड़काव अपन 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से डाल सकते हैं।
0: बिल्कुल, तो ये रोग है, दीमक है, चेपा है, तोता है, इल्ली है, इनके लिए हमारे किसान भाई निश्चित है कि इस प्रकार से प्रबंधन करेंगे ताकि कीट अपनी फसल को ज्यादा नुकसान न कर पाए। और हम बात करते हैं डॉक्टर साहब की, जैसे हमारा किसान भाई जो प्रति हेक्टेयर की दर से बात आती है उपज की, तो कितनी अमूमन लगभग उपज उसे मिल पाएगी एक हेक्टेयर में?
1: उपज मूंगफली की फसल की उपज आपकी खरीफ की अपेक्षा जायद में अच्छी पैदावार होती है। खरीफ में आपकी 18 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, जबकि जायद में आपकी 20 से 25 क्विंटल और अच्छी फसल होने पर 30 क्विंटल तक भी अपन कर सकते हैं।
0: मूंगफली की उन्नत खेती कैसे करें, इस पर विस्तार से जानकारी दी हमारे किसान भाइयों को। चलते चलते और क्या सलाह देना चाहेंगे?
1: जो किसान भाई इन फसलों को नहीं ले सकते हैं वो इसमें गर्मियों में आप ढेंचा छिड़क सकते हैं, जब बरसात होगी तो वो अपने आप उगाएगा और उसको आपकी खरीफ की फसल लेते समय उसको आप उससे पहले इनकॉर्पोरेट जमीन में कर सकते हैं, उससे भी आप मृदा की उर्वरा शक्ति बढ़ा सकते हैं। तो जो मूंग और मूंगफली है ये क्या है कि आपकी उर्वरा शक्ति बढ़ाने के साथ साथ आपकी आर्थिक स्थिति भी सुधारती है, जो कि आप बुंदेलखंड में बहुत अच्छी किसान हैं या जो अब अपने अपना रहे हैं। दूसरा कृषि विश्वविद्यालय भी इसकी ओर आपको वो बता रहा है कि कैसे अपन वैज्ञानिक तरीके से मूंग और मूंगफली की खेती कर सकते हैं।
0: बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने बहुत सारी जानकारी दी और निश्चित है हमारे किसान भाई, जो किसान भाई इस समय खेती नहीं कर रहे हैं वो सनई ढेंचा की बुआई करके और हरी खाद बना सकते, और निश्चित है कि जब जीवांश कार्बन बढ़ेगा तो उनकी जो मृदा है वो उपजाऊ होगी और स्वस्थ होगी। डॉक्टर राजवीर सिंह साहब, आप स्टूडियो में आए, किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बहुत बहुत धन्यवाद किसान भाइयों।
2: किसान पंचवैया, और अबे अपनों ने कितनी उम्दा जा भेंट वार्ता सुनी, और डॉक्टर राजवीर सिंह यादव से जायद में मूंगफली की उन्नत खेती विषय पे पुष्पेंद्र भैया ने सभी बातें पूछ ली, और अपन ने देखो गौर से सुनी हुई है, दीखे अपन खेती में अपना के और उम्दा पैदावार ले सको। और भैया रो अब तो नक्स रुकत और सुनत जो संदेश हो।
3: अरे भैया का करें, जब खेती किसानी में कौन फसल में कितने पानी देवे, खाद बीज कितने से ले आवे, किसे पूछ में कछु समझ ही में नहीं आऊ।
4: अब चिंता छोड़िए किसान भाइयों, क्योंकि आकाशवाणी झांसी प्रस्तुत करता है रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी के सहयोग से RLBCAU रेडियो कृषि पाठशाला। 24 कड़ियों के इस कार्यक्रम में कृषि, बागवानी, पशुपालन, मत्स्य आदि से संबंधित जानकारियाँ और व्यवहारिक अनुप्रयोग की विधियाँ बताई जाएंगी। यह कार्यक्रम 10 मई 2026 से प्रत्येक रविवार शाम 6 बजे से प्रसारित किया जाएगा।
3: अरे सच में भैया?
4: हाँ बाबू, बिल्कुल सच। हाँ
2: किसान भैया, आरो अपन से बतकाओ, हमने बिलात करो, और अब मन कर रहा हो कछु देखो लोक संगीत भी हो जाए, तो अपन एक उमदासी हम आज चेतावनी सुनवा रहे, जी हैं गावे वाए भैया हैं नारंदास सजरिया और उनके संगी साथी, तो सुनो भैया।

भैया और कितनो उमदा जब चेतावनी अपन ने सुनी जी खे गावे वाय भैया आते नारा अंदाज से जरिया उनके संगी साथी। अब चलत चलत हम तो अपन से जो किया वो चाहते ही कि भैया और देखो अब जेठ मास को सीजन है गर्मियन में कहो तो आग ज्यादा जल्दी पकड़ लेते ही। तो अपन खे कितों भी जो किसान भैया आ रहे हैं हम तो यही सलाह देते भैया के धूम्रपान नहीं करने, लेकिन जो भैया आ रहे हैं करत है धूम्रपान तो बे अपने जो खेत हैं या सू को चारों डो सू की नकन्या रखी उते जलत बेड़ी या अपने माचिस की सीख बिल्कुल ना फेंकें और सावधानी से अपने जो आसपास है वो सब बचाए रखें और अपनी लड़का बच्चन के देखते रहें कि उनके पास माचिस तो नहीं है जिसे भी कहता हूँ आग लगा सकें। और भैया अब अपने कार्यक्रम को समय पूरा हो रहा तो हम अपन से जो क्या वो चाहते ही कि हमारे आकाशवाणी झांसी के नाम से फेसबुक पेज है ऊपर अपन हमें बता सकते कि अपन आकाश जो चौपाल कार्यक्रम है कैसो लगा तो इनमें का कछु बदलाव चाहते ही। और यूट्यूब चैनल भी है आकाशवाणी झांसी के नाम से तो कमेंट बॉक्स में उन्हें भी बता सकत अपन का कछु इमें अच्छो लग रहा और बदलाव चाह रहा है। अब अपने भैया संतोष पाल को दो आज्ञा नमस्कार।

किसान भाई अभी सुन रहे थे अपना पसंदीदा कार्यक्रम चौपाल। FM 103 पर हम आकाशवाणी के झांसी केंद्र से बोल रहे हैं। खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में आवश्यक सूचना। खोए हुए व्यक्ति का नाम है परमलाल उर्फ कल्लू पुत्र राम किशन। इनकी उम्र 40 वर्ष है, जो मोहल्ला मलाही टोला कस्बा थाना एरज जिला झांसी के निवासी हैं। आप 8 जून 2023 से वेतवा नदी घाट बृहद डिकोली से लापता हैं। इनका रंग सांवला है, चेहरा गोल, नाक कान औसत, कद 5 फीट 5 इंच है। ये पैंट शर्ट पहने हुए हैं। इनके संबंध में किसी भी प्रकार की सूचना प्राप्त होने पर कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद झांसी अथवा थाना एरच को संपर्क कर सकते हैं। सूचना समाप्त हुई।

एफएम 103 पर ये आकाशवाणी का झांसी केंद्र है। आइए आप सुनते हैं आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा।

अब से थोड़ी ही देर बाद यानी कि शाम 6:35 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम नए पुराने गीत सुहाने। शाम 7:19 पर समय होगा प्रादेशिक समाचारों का। ये समाचार आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से हम रिले करते हैं। खुशबू मार्डी की ये कार्यक्रम आप सुन सकते हैं शाम 7:31 पर। विविध भारती के कार्यक्रम आज हमारे केंद्र से आप सुन सकते हैं रात 8 और रात 9:15 पर। रात 8:45 पर समय होगा समाचार संध्या का। रात 9 अंग्रेजी में समाचार आप सुन सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाते हैं। रात 8:15 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम शीर्षक गीत। रात 10 कार्यक्रम होगा चित्रपट संगीत। सुगम संगीत का कार्यक्रम रोज की तरह आज आप सुन सकते हैं रात 10:30 पर। रात 11 हिंदी में समाचार, रात 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार आप सुन सकते हैं। ये थी आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। कार्यक्रम विवरण संपन्न होता है।

एफएम 103 पर हम आकाशवाणी के झांसी केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम नए पुराने गीत सुहाने। सुनते हैं कार्यक्रम का पहला नगमा।

अरिजीत सिंह की आवाज में ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म कबीर सिंह से। गीत के बोल लिखे थे इरशाद कामिल ने और धुन बनाई थी सचेत टंडन और परंपरा ठाकुर ने। आपको याद दिला दें आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नए पुराने गीत सुहाने। आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया है आकाशवाणी का झांसी केंद्र। तो कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं।

ये गीत आप सुन रहे थे काला बाजार फिल्म से। आवाज थी आशा भोसले और मन्ना डे की। शैलेंद्र के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया था ST वर्मन ने। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नए पुराने गीत सुहाने।

ये गीत आप सुन रहे थे रोहित हयात का लिखा हुआ, फिल्म का नाम था कलयुग। आवाज थी राहत फतेह अली खान की और संगीत था फैजल रफी का। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नए पुराने गीत सुहाने।

आप ये गीत सुन रहे थे आरडी वर्मन के संगीत निर्देशन में बना। गीतकार थे आनंद बख्शी, आवाज थी मुकेश की और फिल्म का नाम था कटी पतंग। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नए पुराने गीत सुहाने।

ये गीत आप सुन रहे थे देवदास फिल्म से। गीत के बोल नुसरत बद्र ने लिखे थे, संगीतकार थे इस्माइल दरबार और आवाज थी उदित नारायण की। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नए पुराने गीत सुहाने। आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया है आकाशवाणी का झांसी केंद्र।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: भैया कछू अनमने दिखा रहे, क्या बात है
2: भैया? एक तरफ तो गैया बीमार है और भैया फसलन में नए नए कीट और भैया खरपतवार से परेशान है।
1: हैं? अपन को भैया पता नहीं है, आकाशवाणी झांसी से हेलो किसान फोन इन कार्यक्रम को।
2: हेलो किसान फोन इन जोका है भैया?
1: अरे भैया हेलो किसान फोन इन कार्यक्रम में किसान भैया से जुड़ी भाई तमाम प्रकार की जो भी खेती बाड़ी समस्या है उसको समाधान करवे के लाने बैठत है विशेषज्ञ भैया।
2: कैसे पाए समस्या को समाधान?
1: अरे भैया प्रत्येक गुरुवार को अपन 2 बजे से लेके 2:30 तक फोन कर सकते हैं और फोन लगाओ और समस्या को समाधान पाओ।
2: अरे भैया तो फोन नंबर तो बता दो।
1: फोन नंबर है 0510-232-0068।
2: तो भैया बहुत ही नोनी बात बताई अपन ने, तो अब ना होए हमारे किसान भैया परेशान।

आप सुन रहे थे किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज में ये गीत। फिल्म का नाम था दर्द, खयाम का संगीत था और नक्श लायलपुरी का लिखा गीत था। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नए पुराने गीत सुहाने। अब कार्यक्रम का अगला नगमा आपको सुनवाते हैं।

आप सुन रहे थे महेंद्र कपूर की आवाज में ये गीत, जिसको हमने लिया था फिल्म हमराज से। साहिर लुधियानवी का लिखा यह गीत था और धुन बनाई थी रवि ने। इसी गीत के साथ ही आज का नए पुराने गीत सुहाने कार्यक्रम अब समाप्त होता है। एफएम 103 पर हम आकाशवाणी के झांसी केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय शाम के 7:18 हुए हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी लखनऊ से प्रादेशिक समाचार।

स्वयं में विश्वास न कर लो। जीवन कठिन प्रतीत हो सकता है, लेकिन आपके करने योग्य हमेशा कुछ न कुछ होता है जिसे करके आप सफल हो सकते हैं। ये विचार है स्टीफन हॉकिन के।

आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। 14 खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा।

0: कई जिलों में आंधी बारिश से लोगों को मिली गर्मी से राहत, सीतापुर और कानपुर देहात में गिरे ओले। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं तनवीर फातिमा और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सीजन 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संवाददाताओं से कहा कि सरकार ने किसानों को उनके उत्पादों का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है। उन्होंने कहा कि खरीफ सीजन के लिए किसानों को अनुमानित 2,60,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाएगा।
1: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मैट्रिक टन LMT।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल की अधिकतम बढ़ोतरी सूर्यमुखी बीजों के लिए की गई है। ग्रेड ए धान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,461 रुपए प्रति क्विंटल, सामान्य के लिए 2,441 रुपए प्रति क्विंटल, हाइब्रिड ज्वार के लिए 4,023 रुपए प्रति क्विंटल, बाजरे के लिए 2,900 प्रति क्विंटल, मक्का के लिए 2,410 रुपए प्रति क्विंटल और अरहर दाल के लिए 8,450 रुपए प्रति क्विंटल, मूंग के लिए 8,780 रुपए प्रति क्विंटल होगा। मंत्रिमंडल के फैसलों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आभार जताया है। खरीफ फसलों की MSP वृद्धि पर प्रदेश के किसानों ने खुशी जताई है। वाराणसी के किसान दुर्गेश ने बताया कि इससे किसानों को फायदा होगा।
2: जो केंद्र सरकार ने हम जैसे किसानों के लिए जो समर्थन मूल्य बढ़ाया है, ये एक तरह से अगर कहा जाए तो ये बहुत ही लाभदायक होगा, क्योंकि जिस तरह से समर्थन मूल्य जो घट रहा था हम किसानों को बड़ा ही घाटा हो रहा था, लेकिन MSP बढ़ने के साथ साथ हम लोगों की आय में भी दुगुना होगी और इस सरकार के फैसले को हम बहुत ही सराहनापूर्वक उन्हें धन्यवाद देते हैं।
0: पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने ईंधन बचत उपाय तेज किए हैं। वैश्विक ईंधन कीमतों में वृद्धि के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में घरेलू दौरों के लिए अपने काफिले का आकार काफी कम कर दिया है। विशेष सुरक्षा समूह SPG प्रोटोकॉल के अंतर्गत अनिवार्य सभी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाएं बरकरार रखी हैं। एक रिपोर्ट।
3: ये कदम पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करने और पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनाकर आर्थिक मजबूती में योगदान के लिए प्रधानमंत्री की 7 अपीलों के अनुरूप है। सूत्रों के अनुसार काफिले का आकार कम करने के बावजूद प्रधानमंत्री की सुरक्षा

0: सुनिश्चित करने के लिए सभी महत्वपूर्ण सुरक्षा व्यवस्थाएं यथावत बनी रहेंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जहां भी संभव हो बिना कोई नई खरीद किए उनके काफिले में इलेक्ट्रिक वाहन शामिल किया जाए। अंकित की रिपोर्ट के साथ अमीषा।
1: गृहमंत्री अमित शाह ने भी अपने काफिले का आकार घटाकर आधे से भी कम कर दिया है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी प्रदेशवासियों से प्रधानमंत्री के आह्वान से जुड़ने की अपील की। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से कहा कि ईंधन की खपत कम करें और अनावश्यक सोने की खरीद न करें। उन्होंने एक उच्च स्तरीय बैठक में निर्देश दिया कि मुख्यमंत्री व मंत्रियों आदि की फ्लीट में तत्काल 50% की कमी की जाए। पेश है एक रिपोर्ट।
2: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नागरिकों से ईंधन की खपत कम करने और सोने की अनावश्यक खरीद से बचने का आग्रह किया। राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान मुख्यमंत्री और अन्य लोगों के वाहनों के बेड़े को तत्काल 50% तक कम करने का निर्देश दिया। उन्होंने आधिकारिक काफिलों से अनावश्यक वाहनों को हटाने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने राज्य में घर से काम करने की संस्कृति को प्राथमिकता देने की भी अपील की। उन्होंने सार्वजनिक परिवहन, मेट्रो सेवाओं और उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा संचालित बसों के उपयोग पर विशेष जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मंत्रियों, सांसदों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों को सप्ताह में से कम एक दिन सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना चाहिए। सप्ताह में एक बार वाहन निषेध दिवस यानी नो व्हीकल डे का भी आयोजन किया जाना चाहिए। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: इसी क्रम में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने विधानसभा की संसदीय समितियों के पूर्व निर्धारित अध्ययन भ्रमण के समस्त कार्यक्रमों को अग्रिम आदेशों तक स्थगित कर दिया है। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के सौतेले भाई प्रतीक यादव का 38 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनकी पत्नी अपर्णा यादव भाजपा की सदस्य हैं और वर्तमान में राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में अपर्णा यादव के घर जाकर प्रतीक यादव को श्रद्धांजलि अर्पित की और शोक संतप्त परिवार को सांत्वना दी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी घर जाकर शोक संवेदना व्यक्त की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 16 मई को गोरखपुर में अंचल के पहले और प्रदेश के चौथे इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का भूमि पूजन और शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री के संभावित कार्यक्रम को देखते हुए जिलाधिकारी दीपक मीणा ने संबंधित अधिकारियों के साथ आज परियोजना स्थल का निरीक्षण किया। एक रिपोर्ट।
3: निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने निर्माण कार्य की प्रगति, गुणवत्ता और व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कार्य में तेजी लाने और सभी व्यवस्थाएं समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित करने पर जोर दिया। गोरखपुर वाराणसी राजमार्ग पर स्थित ताल नदौर में यह इंटरनेशनल स्टेडियम 392.94 करोड़ रुपए की लागत से आकार लेगा। निर्माण के लिए पहली किस्त के रूप में 63.39 करोड़ रुपए जारी हो चुके हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए गिरीश नारायण चौबे, गोरखपुर।
1: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने आज कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए। छात्र रोल नंबर डालकर आधिकारिक वेबसाइट डिजी लॉकर और उमंग ऐप पर अपना परिणाम देख सकते हैं। इस वर्ष सीबीएसई की कक्षा 12वीं की विज्ञान, वाणिज्य और मानविकी विषयों की परीक्षाएं 17 फरवरी से 10 अप्रैल तक आयोजित की गई थीं। सीबीएसई ने एक बयान में बताया कि 17,68,000 से अधिक विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। इनमें से 15,07,000 से अधिक विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। इस वर्ष का कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 85.20% है। छात्राओं का उत्तीर्ण प्रतिशत 88.86% है, जबकि छात्रों का उत्तीर्ण प्रतिशत 82.13% है। मुख्य सचिव एसपी गोयल ने आज जनगणना 2027 के तहत प्रदेश में चल रही स्वगणना प्रक्रिया की समीक्षा कर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों को अभियान में तेजी लाने के निर्देश देते हुए कहा कि आमजनों के बीच व्यापक प्रचार प्रसार सुनिश्चित किया जाए। दुग्ध उत्पादक कंपनी अमूल ने दूध की कीमतों में 2 रूपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी का ऐलान किया है, जो कल से पूरे देश में लागू हो जाएंगी। राजधानी लखनऊ और आसपास के जिलों में बारिश और तेज आंधी की वजह से तापमान में गिरावट दर्ज हुई, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। सीतापुर जिले में कई स्थानों पर ओले गिरे, कई जगहों पर

पेड़ गिरने से विद्युत आपूर्ति बाधित हुई। वहीं कानपुर देहात के रसूलाबाद थाना क्षेत्र में तेज बारिश के साथ ओले गिरे। अमरोहा में भी दिन में तेज आंधी के साथ बारिश हुई। कई स्थानों पर पेड़ गिरने से यातायात प्रभावित हुआ। हालांकि मौसम विभाग ने कल से प्रदेश में मौसम शुष्क रहने का अनुमान जताया है। विभाग के मुताबिक प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों में 16 और 17 मई को लू चलने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 14 खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा। ग्रेड ए धान के लिए 2461 रुपए और अरहर दाल के लिए 8450 रुपए प्रति क्विंटल होगी एमएसपी। वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटाया सुरक्षा काफिले का आकार। प्रदेश में भी ईंधन बचाने के विभिन्न उपायों पर जारी हुए दिशा निर्देश। सीबीएसई के 12वीं बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित। 85% से ज्यादा विद्यार्थी पास, छात्राएं रहीं अव्वल। और राजधानी लखनऊ सहित प्रदेश के कई जिलों में आंधी बारिश से लोगों को मिली गर्मी से राहत। सीतापुर और कानपुर देहात में गिरे ओले। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा।

0: गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर का विचार है, समुद्र को किनारे खड़े रहकर उसे देखते रहने भर से तुम समुद्र के पार नहीं जा सकते।
1: मीडियम वेव 401.FM
2: 103 पर हम आकाशवाणी के झांसी केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम खुशबू माटी की। ये कार्यक्रम बुंदेली लोकगीतों पर आधारित है। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हरचरण पाल की गाई इस गोट गायन से।

कन्या प्यारी दो तो बन है दो कुल की उजियारी, बन है दो कुल की उजियारी, मुख मिले

0: आप सुन रहे थे बधाई गीत। गायक कलाकार थे अमृत सिंह बुंदेला।
1: अरे को सुनो पसीना और देखो दाने दाने में धन के भरे खजाने में। हर बारे को सुनो पसीना देखो दाने दाने में धन के भरे खजाने में। रूखी सूखी रोटी खाके दिन भर खेतन में हर हाके देश भरे का दे तो कमा के। सोना हीरा उपजा रहे हैं हाँ सोना हीरा उपजा रहे हैं सो धरती और वीराने में धन के भरे खजाने में। हर बारे को सुनो पसीना देखो दाने दाने में धन के भरे खजाने में। अपनी घरू बिछा के खाते अपन गिरानी में दिन काटे सबका दूध मलिंदा बाटे। जय जवान और जय किसान की जय जवान और जय किसान की। हो रही राज घराने में धन के भरे खजाने में। हर बारे को सुनो पसीना देखो दाने दाने में धन के भरे खजाने में। फूटी किरण सगुन की बेला हरि को सुमर लेते हर बेरा। पर बे पाँव बांध कैसे ला रघुपत राघव राजा राम की रघुपत राघव राज

0: राम की लगे राम धुन गाने में, धन के भरे खजाने में, हर बारे को सुनो पसीना।
1: बलराम पाल से अभी आप सुन रहे थे किसान गीत।

0: के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: अरे भैया का करें, जब खेती किसानी में कौन फसलन में कितने पानी देवे, खाद बीज कितने से ले आवे, किसे पूछ में कछु समझे ही में नहीं आऊ।
2: अब चिंता छोड़िए किसान भाइयों, क्योंकि आकाशवाणी झांसी प्रस्तुत करता है रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी के सहयोग से RLB CAU रेडियो कृषि पाठशाला। 24 कड़ियों के इस कार्यक्रम में कृषि, बागवानी, पशुपालन, मत्स्य आदि से संबंधित जानकारियां और व्यवहारिक अनुप्रयोग की विधियां बताई जाएंगी। यह कार्यक्रम 10 मई 2026 से प्रत्येक रविवार शाम 6 बजे से प्रसारित किया जाएगा।
1: अरे सच में भैया?
2: हाँ बाबू, बिल्कुल सच। हाँ
3: भैया, कछु अनमने दिखा रहे, का बात है
4: भैया? एक तरफ तो गैया बीमार है और भैया फसलन में नए कीट और भैया खरपतवार से परेशान है।
3: हैं? अपन को भैया पता नहीं ना, आकाशवाणी झांसी से हेलो किसान फोन इन कार्यक्रम को।
4: हेलो किसान फोन इन जोका है भैया?
3: अरे भैया, हेलो किसान फोन इन कार्यक्रम में किसान भैया से जुड़ी भाई तमाम प्रकार की जो भी खेती बाड़ी समस्या है उनको समाधान करवे के लाने बैठत है विशेषज्ञ भैया।
4: कैसे पाए समस्या को समाधान?
3: अरे भैया, प्रत्येक गुरुवार को अपन 2 बजे से लेके 2:30 तक फोन कर सकते हैं और फोन लगाओ और समस्या को समाधान पाओ।
4: अरे भैया, तो फोन नंबर तो बता दो।
3: फोन नंबर है 0510-232-0068।
4: तो भैया बहुत ही नोनी बात बताई अपन ने, तो अब ना हो हमारे किसान भैया परेशान।

आप सुन रहे थे माता दीन जोशी से हास्य लोकगीत। अब कार्यक्रम में सुनते हैं अगला लोकगीत।

अभी आप सुन रहे थे रसिक लोकगीत, गायक कलाकार थे संजय कुमार और साथी। सत सत

आप सुन रहे थे देशभक्ति लोकगीत। गायक कलाकार थे देवीदास कुशवाहा और साथी। इसी लोकगीत के साथ ही आज का खुशबू माटी की कार्यक्रम अब समाप्त होता है। FM 103 पर हम आकाशवाणी के झांसी केंद्र से बोल रहे हैं। रात के 8 बजने को हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी।

0: आज सुनिए झलकी ना बाबा ना। लेखक है संजय श्रीवास्तव, निर्देशक गोविंद पारीक।
1: कौन है? अरे कौन है भाई?
2: क्या है जी, कौन है? मुझे तो डर लग रहा है।
1: अरे बिल्ली होगी, सो जाओ।
2: नहीं जी, एक बार उठ के देख तो लो, तुम डर तो नहीं रहे?
1: तुम भी क्या बात करती हो, मैं भी कहीं डरता हूँ? देखता हूँ। अरे
2: क्या हुआ?
1: अरे कुछ नहीं कुछ नहीं, मैं कह रहा था ना बिल्ली होगी, वही थी।
2: तो इसमें चीखने की कौन सी बात थी, डर गए क्या?
1: अरे नहीं, वो अचानक कूदी ना तो चीख निकल गई।
2: मैं तो कहती हूँ जी, मुझे तो बहुत डर लगता है।
1: तुम्हें डरने की क्या बात है, मैं तो हूँ ही।
2: वो बात नहीं, यूँ भी दिन में तुम ऑफिस चले जाते हो, पीछे मैं अकेली रह जाती हूँ, शाम को भी कभी कभी देर से आते हो, ऐसे में मैं बिल्कुल अकेली पड़ जाती हूँ।
1: तो मैं क्या करूँ, काम तो करना ही पड़ेगा ना।
2: वो बात नहीं, मेरा कहने का मतलब ये था कि वो पड़ोस वाली मिसेस सिंह है ना, कितने चैन से रहती हैं, कहीं भी चली जाती हैं, चाहे घर पर कोई हो या ना हो।
1: वो कैसे?
2: उनके पति ने जब से अल्सेशन कुत्ता पाला है, तब से वो सारा घर उसी कुत्ते के भरोसे छोड़कर चली जाती हैं।
1: अच्छा, ये बात है।
2: हाँ, और वो कुत्ता भी बहुत खतरनाक है, किसी अजनबी आदमी को तो घर के पास फटकने तक नहीं देता।
1: तो फिर मैं क्या करूँ, तुम्हारा मतलब क्या है?
2: सुनो जी, एक कुत्ता पाल लेते हैं, एक अच्छा सा ला दो ना, मुझे भी तुम्हारी कमी महसूस नहीं होगी।
1: अच्छा बाबा, ला दूंगा, लेकिन इस वक्त तो सो जाओ, रात बहुत बीत चुकी है।
2: नहीं, पहले वादा करो कि तुम एक कुत्ता ले आओगे। कितना अच्छा होगा जब मैं भी मिसेस सिंह की तरह कहीं भी आ जा सकूंगी, कुत्ता घर की रखवाली करेगा। बोलो लाओगे ना?
1: हाँ हाँ ले आऊंगा, अब तो सो जाओ वरना मैं उठकर बाहर चला जाऊंगा।
2: ओके डार्लिंग, गुड नाइट। ओहो मिसेस सिंह और मिसेस शर्मा, आइए आइए।
3: हेलो गीता, कैसी हो?
2: बिल्कुल ठीक, आइए आइए अंदर आइए।
3: सुना है आपने बड़ी अच्छी नस्ल का कुत्ता पाला है, इसीलिए हमने सोचा चलो देखकर आते हैं। और फिर हमारा तो आना जाना लगा ही रहता है, पहचान जाएगा तो काटेगा भी नहीं। हाय, मेरा तो बस 14 सुई से दिल घबराता है, बड़ा दर्द होता है। अरे मिसेस शर्मा, अब जमाना कहाँ से कहाँ चला गया है, अब तो कुत्ते को पहले ही एंटी रैबिक सुई लगवा दो तो फिर कुछ भी असर नहीं होता।
4: अरे भाई, काटने के बाद भी 14 सुई का क्या भरोसा, जब बैक्टीरिया शरीर में प्रवेश कर जाते हैं फिर तो आदमी भौंक भौंक कर दम तोड़ता है, पानी देखते ही काटने को दौड़ता है और फिर हाइड्रोफोबिया।
3: अच्छा, कहाँ लगती है ये एंटी रैबिक सुई?
4: ये तो किसी भी पशु चिकित्सालय में लग सकती है,
3: इसीलिए मैं तो कुत्ता पालती ही नहीं, यूं भी जानवरों से मुझे बड़ी नफरत है। हमारे पति देवी बड़े बहादुर हैं, क्या मजाल कोई दरवाजे पर फटक जाए।
4: उनकी तो मुझे देखकर अच्छी अच्छों की घिघी बन जाती है।
3: हाँ आपने सच ही कहा है मिसेस सिंह, उन्होंने तो मुझे कह रखा है कि रात को अगर लगे कि कोई चोर आया है तो बस कह देना पहलवान जी वो अपना डंडा कहाँ रखा है, और बस चोर डर कर अपने आप ही भाग जाएगा।
2: मिसेस सिंह,

0: आपके कुत्ते का नाम क्या है?
1: बाय द वे, मेरा कुत्ता नहीं कुतिया है, कुत्ते से ज्यादा तेज होती है। उसका नाम लूसी है।
0: कितना प्यारा नाम है।
1: जानती हो गीता, मेरी कुतिया पर रोजाना 200 रुपए खर्च होते हैं। सवेरा होने से लेकर रात सोने तक उसकी देखभाल होती ही रहती है। अच्छे साबुन से नहलाना, बाल संवारना, परफ्यूम लगाना, बिस्किट, दूध वगैरह वगैरह।
0: हाय मिसेस सिंह, कितनी खुशकिस्मत है आप, इतना प्यारा चौकीदार मिला है आपको।
1: और वफादार इतनी कि देखते ही तुम हिलाने लगती है।
0: मैंने तो जब भी अपने पति से कहा कि हमें भी ऐसा ही एक वफादार कुत्ता ला दो तो बस भड़क उठे। वैसे तो वो मेरा कहना बहुत मानते हैं।
1: अरे भी गीता, तुम्हारा कुत्ता है कहाँ, हम तो उसे देखने आए हैं।
0: अभी बुलाती हूँ। प्रीतम, अरे हमने कुत्ता बुलाने को कहा है।
2: ये मेरे कुत्ते का ही नाम है भाई, और कोई नाम लेने पर वो सुनता ही नहीं। प्रीतम कहते ही दौड़ कर आता है। प्रीतम आजा, आओ आओ आओ।
0: आय हाय, कितना प्यारा कुत्ता है, बरसा सफेद।
2: जानती है, अब की डॉग शो में इसी नस्ल का कुत्ता फर्स्ट आया है।
0: वाह, आओ आजा आजा।
2: ऐसे नहीं, प्रीतम आओ आओ ना, आओ आओ।
0: अरे वाह, इतना समझदार है,
1: बहुत प्यारा कुत्ता है। अरे वाह, ये तो मेरी गोद में बैठ गया।
0: आपके पास तो यूं बैठा है जैसे पहले की पहचान हो।
1: नहीं जी, जानवरों को प्यार से पुचकारो तो फिर वो दुम हिलाते ही रहते हैं।
0: आपको तो इस बात का बड़ा तजुर्बा है मिसेस सिंह।
1: अरे ये क्या, छी छी, इसने तो मेरी 1000 रुपए की साड़ी ही खराब कर दी।
0: बहुत ही बदबू है, बड़ा बेशर्म कुत्ता है। ये जानवर होते ही ऐसे हैं, जहाँ पाया वही गंदा कर दिया।
1: आज ही तो निकाली थी ये साड़ी। हाय, अब मैं घर कैसे जाऊंगी।
2: ऐसा भी क्या है मिसेस सिंह, थोड़ा सा पानी से साफ कर लीजिए।
1: नहीं जी, पानी वानी क्या, अब तो घर जाकर ही साफ करूंगी। चलो भी मिसेस शर्मा।
3: ओफो, आज तो बहुत थक गया। सुनो, एक कप चाय तो पिला दो।
2: दूध नहीं है।
3: क्या कहा?
2: हाँ, अपना प्रीतम पी गया, उसके लिए भी तो चाहिए। और सुनो, तुम उसको अभी अस्पताल ले जाकर एंटी रेबिक सुई तो लगवा दो। जानते हो, किसी दिन उसका दांत भी लग गया तो आदमी भौंक भौंक कर मरेगा। और हाँ, एक अच्छा सा साबुन, कंघी, तौलिया, बिस्किट वगैरह डॉक्टर से पूछ कर ले आना। आते वक्त दूध भी ले आना, तभी चाय भी बनेगी।
3: गीता, इस वक्त मैं इतना थक गया हूँ कि अब मैं आराम करूँगा।
2: जाओ ना, सोचो किसी दिन उसका दांत हमें या तुम्हें लग गया तो। मिसेस सिंह कह रही थी, हाय भगवान कैसा ना करे।
3: मैं अब कहीं नहीं जा सकता, इतनी सारी फरमाइशें, अपने लिए तो कुछ हो नहीं पाता, ऊपर से कुत्ते का खर्चा।
2: तुम नहीं जाओगे?
3: नहीं, बिल्कुल नहीं।
2: यही फर्क इंसान और जानवर में होता है। देखो, हमारी अभी कितने दिनों की पहचान है, फिर भी कितने प्यार से दुम हिला रहा है।
4: टेलीग्राम
3: आया।
0: किसका है जी?
3: तुम्हारे पिताजी आने वाले हैं।
0: हाय पापा, शादी के बाल पहली बार आ रहे हैं। ऐसा करो, दूध ले आओ ना, पापा को तो हर पल चाय चाहिए।
3: मैं तो नहीं जाऊंगा, सारा घर बदबू से भरा पड़ा है, हर जगह इस कुत्ते ने गंदगी कर रखी है।
0: वो तो क्या है जी, मैं सफाई वाले के भरोसे रह गई, वो आज आई ही नहीं। खैर, उसे मैं साफ कर दूंगी, तुम दूध ले आओ ना।
3: अच्छा बाबा, जा रहा हूँ। मरता क्या ना करता, इनको भी आज ही आना था। हे भगवान, ये कुत्ता यहाँ रहा तो मेरा तो कबाड़ा हो जाएगा।
0: हाय राम, बहुत थक गई, ये गंदगी साफ करते करते सिर चकरा गया। बदबू के कारण तो उल्टी सी लग रही है, अब तो कुछ करने को जी भी नहीं चाह रहा। लेकिन क्या करूं, पिताजी भी पहली बार आ रहे हैं।
3: हाँ। ये लो दूध, पहले मुझे चाय पिला दो।
0: अच्छा जी।

0: मेरा तो सर दर्द बन गया। अब पता नहीं क्या हुआ, कौन है?
1: अरे भाई मैं हूँ, अरे छुड़ाओ तो इस कुत्ते से।
2: पिताजी अजी जल्दी छुड़ाओ वरना वरना काट खाएगा। हाय राम, खून लगता है काट खाया। हाय अब क्या होगा, इसीलिए तो मैं कह रही थी कि तुरंत जाकर सुई लगवा दो। काट लिया ना। हाय पिताजी, मेरे पिताजी पहली बार तो बेचारे आए थे। हाजी मिसेस सिंह कह रही थी कुत्ते का काटा आदमी भौंक भौंक कर। हाय पानी देखते ही, हाय मुझसे तो कहा भी नहीं जाता, ये कुत्ता नहीं मौत का पैगाम है।
1: बेटी ये क्या कह रही है तू?
0: ये कह रही है ससुर जी कि कुत्ते का काटा आदमी भौंक भौंक कर मरता है।
2: अब क्या होगा, अब तो आपको 14 सुई भी लगेगी। तुम डॉक्टर को बुलाओ जी।
1: डॉक्टर? लेकिन डॉक्टर क्यों?
2: पिताजी आपको कुत्ते ने जो काट लिया है ये खून।
1: अरे ये खून नहीं बेटी, ये तो दवा की शीशी थी जो फूट गई। कुत्ता मेरे ऊपर गिरा इसलिए फूट गई। अब सारे कपड़े भी खराब कर दिए।
2: तो इसने आपको काटा नहीं?
1: नहीं बेटी बिल्कुल नहीं।
2: सुनो जी तुम इस कुत्ते को अभी हटा दो।
0: लेकिन तुम जो अकेली रहती हो उसका क्या होगा?
2: ना बाबा ना, मैं अकेली रह लूंगी लेकिन ये सफाई ये देखभाल मुझसे ना हो सकेगी। इसको अभी मेरी नजरों से दूर कर दो, दूर कर दो इसको।
3: अभी आपने झलकी सुनी ना बाबा ना। इसके लेखक थे संजय श्रीवास्तव, निर्देशक गोविंद पारीक और ये झलकी आकाशवाणी जोधपुर की प्रस्तुति थी। हवा महल कार्यक्रम समाप्त हुआ।

जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

0: राष्ट्रीय गीत की 150वीं वर्षगांठ आ सेतु हिमाचल गूंजता स्वर
1: वंदे मातरम सुजला
0: हम मना रहे हैं स्मृति उत्सव
1: शस्य श्यामला मातरम वंदे
0: सुनना न भूलिए लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष वंदे मातरम एक जय घोष प्रसारण प्रति शुक्रवार सुबह 8:15 पर पुनः प्रसारण उसी दिन दोपहर 2 बजे लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष
2: तुम्हें याद करते करते
3: छाया गीत
2: लग जागने
3: हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्णिम युग की एक संगीतमय यात्रा
4: तेरे मेरे सपने अब
3: पुराने दिनों की मनमोहक धुनों में गोता लगाएं सुरों के पंख लगाकर आसमां में उड़ उड़ जाएं
4: भीगी भीगी रातों में मीठी मीठी बातों में
3: याद रहे ये वो कैप्सूल है जो धुनों

एफएम 103 पर हम आकाशवाणी के झांसी केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम शीर्षक गीत। आज हम आपको शीर्षक जिंदगी पर आधारित चुनिंदा फिल्मी नगमों को सुनवाएंगे। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस गीत के साथ।

0: ये गीत सुन रहे थे उदित नारायण की आवाज में। फिल्म का नाम था हमराज, संगीत दिया था हिमेश रेशमिया ने और गीत के बोल लिखे थे सुधाकर शर्मा ने। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम शीर्षक गीत। आज आप सुन रहे हैं जिंदगी शीर्षक पर आधारित चुनिंदा फिल्मी नगमे।
1: मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
2: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना, जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: escena.
1: अंतराल के बाद कार्यक्रम में स्वागत है आपका। आप सुन रहे हैं शीर्षक गीत पर आधारित आज का फिल्म संगीत का कार्यक्रम। शीर्षक आज का है जिंदगी। तो कार्यक्रम में आपको सुनवाते हैं अगला नगमा।

ये गीत आप सुन रहे थे साहिर लुधियानवी का लिखा, लता मंगेशकर की आवाज में। संगीतकार रवि का संगीत था और फिल्म का नाम था आंखें। आपको याद दिला दें, आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया है आकाशवाणी का झांसी केंद्र और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम शीर्षक गीत। आज आप सुन रहे हैं शीर्षक जिंदगी पर आधारित चुनिंदा फिल्मी नगमे।

ये गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में। गीत के बोल साहिर लुधियानवी ने लिखे थे, संगीतकार थे सपन चक्रवर्ती और फिल्म का नाम था जमीर। आपको याद दिला दें, आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया है आकाशवाणी का झांसी केंद्र। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम शीर्षक गीत।

ये गीत आप सुन रहे थे गुलजार का लिखा हुआ। आवाज थी भूपेंद्र सिंह की, संगीतकार थे कानू रॉय और फिल्म का नाम था गृह प्रवेश। कार्यक्रम की आखिरी पेशकश हम आपको सुनवाते हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने 37,500 करोड़ रुपए की कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के संवर्धन को भी स्वीकृति दी। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया। देश भर में कई स्थानों पर छापेमारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने काफिले का आकार कम किया। भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों और अन्य नेताओं ने भी मितव्ययिता के उपाय शुरू किए। पश्चिम बंगाल सरकार का भर्ती घोटालों की जांच सीबीआई को सौंपने का फैसला। आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही पर सभी अंतर्राज्यीय प्रतिबंध हटाए। और गुजरात के गांधीनगर में एशियाई सीनियर भारत्तोलन चैंपियनशिप में ज्ञानेश्वरी यादव ने 2 पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उनके उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है।
1: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि सूर्यमुखी बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए प्रति क्विंटल और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।
1: कोल भारत में करीब करीब 400 बिलियन टन के नोन रिजर्व्स है, तो इस कोयले का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके हम इसे गैस बना सके और गैस का उपयोग फिर फर्टिलाइजर वगैरह में, ताकि फर्टिलाइजर के लिए जो LNG इंपोर्ट करनी पड़ती है वो कम हो जाएगी। 37,500 करोड़ रुपीज का आउटले इस स्कीम के लिए रखा गया है और करीब 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा इसमें टोटल, और 75 मिलियन टन कोल को इसमें गैसीफाई करने के लिए प्रोजेक्ट्स लगेंगे।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि योजना से केवल खनन से प्रतिवर्ष 6,300 करोड़ रुपए का राजस्व और 50,000 रोजगार सृजित होगा। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने लगभग 20,667 करोड़ रुपए की लागत से अहमदाबाद सरखेज धोलेरा सेमी हाई स्पीड दोहरी लाइन परियोजना को मंजूरी दी है। रेलवे की ये पहली सेमी हाई स्पीड परियोजना होगी। इसे स्वदेशी तकनीक से तैयार किया गया है। मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत नागपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उन्नयन और आधुनिकीकरण को मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने कहा कि ये नागपुर हवाई अड्डे के लिए क्षेत्रीय विमानन केंद्र बनने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को देश के करोड़ों किसानों को अपने उपज के लिए उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि इस निर्णय से देश के किसानों के जीवन में समृद्धि आएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि अहमदाबाद धोलेरा सेमी हाई स्पीड डबल लाइन परियोजना देश की रेल संपर्क यात्रा में महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि कोयला लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं की संवर्धन योजना से ऊर्जा सुरक्षा बढ़ेगी, निवेश को बढ़ावा मिलेगा और युवाओं के लिए रोजगार सृजित होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

मोहम्मद रफी की आवाज में बरसात की रात फिल्म का नगमा आप सुन रहे थे। साहिर लुधियानवी के बोल थे, रोशन का संगीत था। इसी गीत के साथ ही कार्यक्रम शीर्षक गीत अब समाप्त होता है।

0: इनसे प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। 3 व्यक्ति जयपुर से, 1 गुरुग्राम से और 1 व्यक्ति को नासिक से गिरफ्तार किया गया है। अन्य कई संदिग्ध व्यक्तियों की जांच की जा रही है। सीबीआई ने आज इस सिलसिले में कई स्थानों पर छापे मारे और अनेक आपत्तिजनक सामग्री तथा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए। सीबीआई इस मामले में शुरुआती जांच करने वाले राजस्थान के विशेष कार्यबल के भी समन्वय में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन की खपत कम करने की अपील का बड़ा प्रभाव पड़ा है और पेट्रोल तथा डीजल का उपयोग कम हुआ है। प्रधानमंत्री ने अपने काफिले का आकार काफी कम करके एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह सहित भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों और अन्य नेताओं ने भी ऐसा ही कदम उठाया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने वाहनों के बेड़े में तत्काल कमी करने का निर्देश दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री सहित सभी मंत्रियों की हवाई यात्राओं में 50% की कटौती का आदेश दिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंत्रियों विधायकों के सरकारी वाहनों की संख्या सीमित करने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि शुक्रवार को श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय मुद्दों, ऊर्जा सहयोग सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श होगा।
2: During the visit, यात्रा के दौरान दोनों नेता निवेश, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, संस्कृति और आपसी जनसंपर्क समेत विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने के उपायों पर चर्चा करेंगे।
3: People to people connect.
1: श्री जॉर्ज ने बताया कि 4 यूरोपीय देशों की यात्रा के दौरान श्री मोदी 3रे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे।
3: The visit to the 4 European countries.
2: 4 यूरोपीय देशों की ये यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते को इसी वर्ष अंतिम रूप दिया गया है। इस दौरान 3रा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन भी आयोजित किया जाएगा। भारत इन देशों को मेक इन इंडिया अभियान के अहम साझेदार के रूप में देखता है। यात्रा का मुख्य उद्देश्य व्यापार और निवेश, हरित प्रौद्योगिकी, नवाचार, स्टार्टअप और आपसी जनसंपर्क को मजबूत करने का रहेगा।
3: पीपल टू पीपल कनेक्ट।
1: संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि अमेरिका के स्मिथसोनियन राष्ट्रीय एशियाई कला संग्रहालय से 3 भारतीय प्राचीन वस्तुओं की वापसी का उद्देश्य भारत की चोरी हुई सांस्कृतिक विरासत को पुनः स्थापित और संरक्षित करना है। नई दिल्ली में श्री शेखावत ने कहा कि देश की विरासत जिसे अनैतिक तरीकों से देश से बाहर ले जाया गया था, अब वापस लाई जा रही है।
4: ऐतिहासिक एंटीक्विटीज को जो भारत लाने का क्रम पिछले वर्षों से चल रहा है, उस दिशा में हम आज ऑस्ट्रेलिया से 11 और अमेरिका से 3 और मूर्तियों को भारत में लाने में सफल हुए हैं। इसके अतिरिक्त भी 657 एंटीक्विटीज को आइडेंटिफाई करके हमने अमेरिका के साथ चर्चा की। यूएस एनफोर्समेंट एजेंसीज ने उनको भारत के दूतावास को अमेरिका में सुपुर्द कर दिया है। उनको लाने की प्रक्रिया भी प्रारंभ होगी। 657 एंटीक्विटीज उसके बाद में भारत आएंगे।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल होने वाले ब्रिक्स विदेश मंत्रियों के शिखर सम्मेलन से पहले आज नई दिल्ली में रूस, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील और मालदीव के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने बताया कि सभी देशों के साथ रणनीतिक साझेदारी के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की गई और आपसी हित के बहुपक्षीय मुद्दों पर भी चर्चा हुई। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोफ ने आश्वासन दिया है कि बाहरी प्रतिस्पर्धा के बावजूद भारत के लिए ऊर्जा आपूर्ति संबंधी समझौतों का पालन किया जाएगा। श्री लावरोफ ने कहा कि रूस ये सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा कि अनुचित प्रतिस्पर्धा द्विपक्षीय समझौतों को नुकसान न पहुंचाए। एयर इंडिया ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की संख्या में कमी लाने का फैसला किया है। इसके लिए विदेशी मार्गों पर कुछ सेवाएं अस्थायी रूप से रोक दी गई हैं। ये फैसला वायु क्षेत्र नियंत्रण और विमान ईंधन के ऊंचे मूल्य को देखते हुए किया गया है। ये कटौती इस वर्ष जून से अगस्त तक के लिए होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है।

0: पश्चिम बंगाल में नवगठित सरकार ने शिक्षक भर्ती, नगर निगम भर्ती और सहकारी सेवा भर्ती घोटालों से संबंधित मामलों को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती सरकार ने इन मामलों में भ्रष्ट अधिकारियों को बचाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया था। एक अन्य निर्णय में राज्य सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, तिलहन, अनाज, पशु उत्पादों और अन्य आवश्यक उत्पादों के अंतर्राज्यीय आवागमन पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। असम सरकार 26 मई को समान नागरिक संहिता विधेयक विधानसभा में पेश करेगी। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा ने पहली मंत्रिमंडलीय बैठक के बाद ये घोषणा की। डॉ शर्मा ने बताया कि प्रस्तावित विधेयक विवाह की कानूनी उम्र, बहुविवाह, उत्तराधिकार और लिव इन संबंधों सहित कई मुद्दों पर है। उन्होंने स्पष्ट किया कि धार्मिक प्रचलन इस विधेयक के दायरे से बाहर रहेंगे।
1: इसे असम की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार किया गया है। जनजातीय समुदायों को इसके दायरे से बाहर रखा गया है। साथ ही राज्य के लोगों द्वारा अपनाई जाने वाली सभी रस्मों, परंपराओं और रीति रिवाजों को भी इससे बाहर रखा गया है।
2: आउटसाइड द स्कोप ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड।
0: पुदुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगासामी ने पांचवी बार पद ग्रहण करने के बाद स्वास्थ्य सेवा, रोजगार, शिक्षा, खेल और औद्योगिक विकास से संबंधित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इसमें गरीबी रेखा से ऊपर के राशन कार्ड धारकों को 3 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करना, इंदिरा गांधी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय और मॉडल विद्यालय स्थापित करना शामिल है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज लाडली बहना योजना की 36वीं किस्त नरसिंहपुर जिले के ग्राम मुंगवानी से जारी की। उन्होंने 1,25,00,000 से अधिक लाडली बहनों के बैंक खातों में 1,835 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे अंतरित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा नगर निगम चुनावों में भाजपा की जीत पर लोगों का आभार व्यक्त किया है। श्री मोदी ने कहा कि इस जीत ने फिर स्पष्ट कर दिया है कि जनता ने भाजपा एनडीए सरकार की विकास और सुशासन नीतियों पर अटूट विश्वास व्यक्त किया है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
3: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 50 अंक बढ़कर 74,609 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 33 अंक की बढ़त के साथ 23,413 पर स्थिर हुआ। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 के मुकाबले 7 पैसे कमजोर होकर अपने सबसे निचले स्तर यानी 95 रुपए और 70 पैसे पर बंद हुआ। वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में मामूली गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार तैयार किए जाने तक ब्रेंट क्रूड $107.62 प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था।
0: गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारत्तोलन प्रतियोगिता में ज्ञानेश्वरी यादव ने 53 किलो भार वर्ग में रजत और कांस्य पदक जीता है। उन्होंने स्नैच में रजत पदक और कुल 194 किलो का वजन उठाकर कांस्य पदक जीता। उधर थाईलैंड ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु, मालविका बंसोड़, देविका सिहाग, लक्ष्य सेन और किदांबी श्रीकांत सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आईपीएल क्रिकेट में रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक कोलकाता ने तीसरे ओवर में बिना किसी नुकसान के 23 रन बना लिए हैं। महाराष्ट्र में आज नाशिक त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभ मेले के लोगों का अनावरण किया गया। इसमें त्रिशूल दर्शाया गया है और गोदावरी नदी को शिवलिंग के रूप में चित्रित किया गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ये लोगो भारत की सांस्कृतिक विरासत, परंपराओं और राष्ट्रीय एकता का सशक्त संदेश देता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने 37,500 करोड़ रुपए की कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के संवर्धन को भी स्वीकृति दी। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया। देशभर में कई स्थानों पर छापेमारी।

फैसला, आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही पर सभी अंतर्राज्यीय प्रतिबंध हटाए। इसके साथ ही समाचार संध्या का यज्ञ समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी
2: एफएम 103 पर ये आकाशवाणी का झांसी केंद्र है। आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से अनुप्रसारित विविध भारती के कार्यक्रम।

फिल्म चांदनी से आप ये गीत अभी सुन रहे थे। ये गीत सुनिए फिल्म सिलसिला से, लता मंगेशकर, किशोर कुमार और सखियों की आवाजें।

लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत अभी आप सुन रहे थे कोरा कागज से, कल्याण जी आनंद जी की तर्ज थी। और इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम आपके लिए यहीं समाप्त होता है।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: कहानी या किसी सीन के रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया।
0: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत?
1: डायरेक्टर ने आओ देखना ना आओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। तो बस सिर्फ दिल बहलाने गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ठेलों में। सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में पल्लम कोई करता चमर होगा। वाह वाह वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन साथी।

श्रोताओं नमस्कार, आज के फनकार कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज बात एक ऐसी आवाज की जो अंधेरे में एक रोशनी जगाती है, जो हमें सहलाती दुलारती ही नहीं बल्कि हमारे दिल की धड़कनें भी बढ़ाती है। वो आवाज जो हमें जोश भरती है, हमें थिरकने और झूमने पर मजबूर करती है। आज बात इस स्वैग से भरी आवाज के मालिक बेनी दयाल की।

0: आदत से मजबूर।
1: बेनी दयाल, जिनकी आवाज एक ओर सादगी से भरी महसूस होती है तो वहीं दूसरी ओर ऊर्जा का एक जखीरा खोलती है। उनके गीतों की फहरिस्त उनके हुनर का बखान तो करती है, लेकिन उनका हुनर इससे कहीं ज्यादा है। वैसे बात करें उनके शुरुआती दिनों की, तो अगर उन्होंने खुद के हुनर को न पहचाना होता तो शायद ये आवाज हम तक कभी ना पहुंच पाती। ये बात हम कह रहे हैं क्योंकि बेनी दयाल खुद को गायक मानते भी नहीं थे।

वैसे ये बात बेनी के लिए नहीं कही जा सकती, क्योंकि वो बचपन से ही कला से जुड़े रहे और उन्होंने तकरीबन 14 सालों तक भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और मोहिनी अट्टम जैसे नृत्य शैलियों की तालीम ली। हालांकि वो इसके साथ ही कर्नाटक संगीत भी सीख रहे थे, लेकिन उनके मन में कभी भी एक गायक बनने का विचार नहीं आया। वो अपने स्कूल के दिनों से ही अलग अलग डांस कॉम्पिटिशन में भाग लिया करते और जीतते। उनका ध्यान पूरी तरह से

बचपन से किशोर होते तक बेनी दयाल एक डांसर के रूप में पहचाने जाते रहे, लेकिन जब एक रोज किसी ने उन्हें गाते सुना तो उनकी तारीफ में कहा कि वो डांस से भी ज्यादा अच्छी तरह से गाते हैं। ये बात उन्हें पहले तो आश्चर्य लगी, लेकिन उन्होंने डांस के साथ साथ गानों के कार्यक्रमों में भी नाम देना शुरू किया और जीतने लगे। तब उन्हें लगा कि शायद वो एक गायक बनना चाहते हैं, पर इस शायद वाले विचार को पुख्ता जमीन मिली कुछ दिनों बाद, जब उन्होंने एक खास संगीत को सुना।

15 मई 1984 को आबू धाबी में जन्मे बेनी दयाल का बचपन और स्कूली शिक्षा आबू धाबी में ही हुई। जब वो हाई स्कूल में थे तो एक रोज स्कूल जाते समय बस में दिल से फिल्म का शीर्षक गीत चला और बेनी को ये संगीत अब तक सुने सारे संगीत से अलग लगा। स्कूल खत्म होने के बाद घर लौटते हुए बेनी ने बस ड्राइवर से फिर वही गाना चलाने के लिए कहा और उन्हें तब लगा कि संगीत इस तरह का ही होना चाहिए जिसे बार बार सुनकर भी और सुनने का मन करे। इस दिन ने उनका जीवन बदल दिया और बेनी ने तय किया कि वो अपने जीवन में संगीत के साथ ही रहना चाहते हैं।

पूरा होने के बाद जब बेनी को आगे की पढ़ाई के लिए पुणे के प्रसिद्ध इंस्टीट्यूट में भेजने की चर्चा चल रही थी, तब उन्होंने पिता के सामने साहस करके कह दिया कि वो पुणे नहीं चेन्नई जाना चाहते हैं और फिल्म इंडस्ट्री में बतौर गायक अपना नाम बनाना चाहते हैं। इस बात को लेकर 2 महीनों तक पिता पुत्र के बीच मौन पसरा रहा। आखिर बेनी की लगन देखकर ये तय हुआ कि बेनी अपनी पढ़ाई पहले पूरी करेंगे, उसके बाद ही फिल्मी दुनिया की ओर बढ़ेंगे। इस बात ने बेनी के मन को उदास तो कर दिया, लेकिन कॉलेज आते ही उनके लिए मानो नई राह खुल गई।

अबू धाबी से भारत आकर बिनी दयाल ने कॉलेज में अपना एक बैंड बना लिया। हर तरह के संगीत को अपनाने वाले बिनी दयाल ने धार्मिक, पॉप, फिल्मी

नए पुराने हर तरह के गीतों में अपना रंग भरा। आखिर वो दिन भी आया जब करियर में आगे बढ़ने की राह चुननी थी। बेनी ने संगीत का ही साथ चुना, लेकिन ये राह आसान नहीं थी। उन्हें संघर्षों के एक बुरे दौर से गुजरना पड़ा।

जानकर आश्चर्य होगा कि जिन बेनी दयाल की आवाज के आज लाखों मुरीद हैं, एक वक्त ऐसा भी था जब कोई भी उनकी आवाज को एक मौका भी नहीं दे रहा था। बेनी जगह जगह जाते और कम से कम कोरस में ही गाना गाने देने की गुजारिश करते, लेकिन कुछ हासिल न होता। इस दौर में एक म्यूजिक डायरेक्टर ने तो उन्हें ये तक कह दिया कि उनकी आवाज गायक बनने लायक नहीं है और वो कभी भी एक गायक नहीं बन सकते। संघर्ष के इन दिनों में जीवन में हर ओर से मुसीबतें बरस रही थीं।

बेनी अपने एक इंटरव्यू में बताते हैं कि जब उन्हें इस तरह से लगातार असफलता का सामना करना पड़ रहा था, ये वो समय था जब घर और बाहर कहीं भी कोई साथ नजर नहीं आता था, क्योंकि उनके पिता के खराब स्वास्थ्य के कारण परिवार भारत लौट आया था। उनके भाई भी अपने काम को लेकर उलझन में थे। बेनी अपना दुख किसी के साथ बांट नहीं सकते थे और दूसरी ओर उनकी आर्थिक स्थिति भी बिगड़ती जा रही थी। आखिर मन मार कर एक सीनियर की सलाह पर बेनी ने बीपीओ में एचआर की नौकरी कर ली।

इधर बेनी नौकरी में पहुंचे और पीछे पीछे संगीत द्वार खटखटाता उन्हें वापस ले जाने पहुंच गया। जी हाँ, बिल्कुल किसी फिल्म की कहानी के रोमांचक मोड़ की तरह काम के पहले ही दिन बेनी को एक कॉल आया। वो कॉल उनकी जिंदगी बदलने का मादा रखता था। ये बात बेनी को अच्छी तरह से पता थी और हुआ भी यही। बेनी को आया था ये कॉल संगीतकार ए आर रहमान का।

दरअसल बेनी दयाल ने हर जगह कोशिश की थी लेकिन ए आर रहमान के पास नहीं गए थे क्योंकि उन्हें लगता था कि वो ए आर रहमान के संगीत के लायक बन ही नहीं पाए हैं। रहमान ने बेनी का गाया धार्मिक गीत कहीं सुना था और उन्हें बेनी की आवाज बहुत पसंद आई। आखिर बेनी दयाल को उनका पहला गाना मिल ही गया, वो भी उस व्यक्ति के साथ जिनके संगीत के फैन बेनी बचपन से रहे हैं। 2008 में ये एक तमिल फिल्म थी सक्कर कट्टी और बेनी दयाल का गाया गीत था चिन्नम्मा चिलकम्मा का तमिल वर्जन। ए आर रहमान पहले से ही बेनी दयाल की आवाज के कायल थे और बेनी ने भी अपने काम से ये साबित किया कि उनका चुनाव गलत नहीं था।

सलमान के साथ से बेनी अपना सपना जीने लगे। जब भी किसी नए गाने की रिकॉर्डिंग होती, बेनी ऑफिस के बाद रिकॉर्डिंग के लिए आते। आखिर एक रोज उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और संगीत में ही रम गए। दक्षिण भारतीय फिल्मों में बेनी A.R. रहमान के लिए लगातार गा रहे थे। रहमान ने ही बेनी को हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की ओर लाया और आया वो गीत जो सभी के मन में बस गया।

गजनी के इस गीत ने बेनी दयाल की आवाज के चाहने वालों में इजाफा किया। अब तक साउथ इंडस्ट्री में अपनी आवाज का जादू बिखेर रहे बेनी दयाल अब हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक चहेती आवाज बनकर सामने आए। बेनी को काम मिलने लगे, यहाँ तक कि बेनी दयाल को उस म्यूजिक डायरेक्टर ने भी अपनी फिल्म में गाने के लिए बुलाया जिन्होंने ये भविष्यवाणी की थी कि बेनी कभी गायक नहीं बन सकते। वो तो अपनी बात भूल भी चुके थे और बेनी ऐसी बातें याद दिलाने में विश्वास नहीं रखते।

वेणी दयाल ने हिंदी के अलावा कई भाषाओं के गीतों को अपनी आवाज दी है। उन्हें तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, बांग्ला, गुजराती और मराठी भाषाओं के गीतों में सुना जा सकता है। इसके अलावा वो फ्रेंच और अरबी भाषा में भी गाना गा सकते हैं, क्योंकि स्कूल के समय से उन्हें इन दोनों भाषाओं का ज्ञान है। लेकिन सच कहा जाए तो वेणी दयाल सिर्फ एक ही भाषा में गीत गाते हैं और वो है दिल की भाषा। तभी तो उनकी आवाज़ सीधे दिलों को छूती है।

बीनी दयाल एक अच्छी गायक और डांसर होने के साथ साथ एक एक्टर भी रह चुके हैं। उन्होंने साल 2005 में आई मलयालम फिल्म बाय द पीपल से ही अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की और इस फिल्म के सभी गाने उन्होंने गाए। हालांकि उन्हें प्रसिद्धि दिलाने वाले गीत दूसरे रहे, लेकिन ये फिल्म और उसके सभी गीत उनके दिल के करीब हैं।

रीने दयाल एक बेहतरीन आवाज के मालिक होने के बाद भी फिल्मों में लगातार गाते नजर नहीं आते। इसका कारण उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया और कहा था कि उन्हें ज्यादा काम करने से अच्छा लगता है बेहतर काम करना। वहीं वो ये भी कहते हैं कि उन्हें कभी भी ये लगा ही नहीं कि वो एक प्रसिद्ध गायक हैं, बल्कि आज भी जब वो कोई गाना रिकॉर्ड करते हैं तो यही सोचते हैं कि शायद उनकी आवाज अगर इस गाने के लिए ठीक न लगे तो उसे ना भी रखा जा सकता है या उन्हें इस गाने से हटाया भी जा सकता है, और वो इन सारी बातों को स्वीकारने के लिए तैयार।

बेनी दयाल खुद को दुनियादारी से जरा दूर ही रखते हैं। उनका मानना है कि संगीत दिल से निकलता है, इसलिए खुद को बचा कर रखना आपके संगीत के लिए अच्छा है। वहीं बेनी दयाल ये भी मानते हैं कि अपने दिल में किसी भी तरह की बुरी भावना को घर न करने देना भी आपके संगीत को एक अलग ऊंचाई देता है, और इसकी गवाह

भले ही फिल्मों में बेनी दयाल लगातार नहीं गाते, पर वो अक्सर अपने गाने खुद बनाते रहते हैं। इन्हें वो स्वैगानुसार नाम से लोगों के बीच लाते हैं। उन्हें संगीत का ज्ञान होने के कारण वो कई बार खुद संगीत भी देते हैं। संगीतकारों की बात करें तो ए.आर. रहमान के अलावा बेनी दयाल ने हिमेश रेशमिया, प्रीतम, सलीम सुलेमान, विशाल शेखर, अमित त्रिवेदी, शंकर एहसान लॉय, सचिन जिगर जैसे संगीतकारों के साथ कई हिट गाने दिए हैं।

सनी दयाल की आवाज में एक ओर वेस्टर्न स्टाइल झलकता है तो दूसरी ओर वो अपनी भारतीय जड़ों से जुड़े महसूस होते हैं। जितनी दिलकश उनकी आवाज है उतने ही स्टाइलिश बिनी दयाल भी हैं। कपड़ों, चश्मों और टोपी का उनका अपना ही एक अलग स्टाइल है। वो स्टेज परफॉर्मेंस के दौरान इतने जोश में होते हैं कि दर्शक भी झूम उठते हैं। एक सिंगर और डांसर होने के कारण वो स्टेज परफॉर्मेंस को जीवंत बना देते हैं।

2016 में बेनी दयाल ने मॉडल कैथरीन थंगम से अपने परिवार के लोगों के बीच शादी कर ली। दोनों अपनी जिंदगी के पल अपने फैंस के साथ सोशल मीडिया के जरिए बांटते भी नजर आते हैं। सरल और सुलझे हुए बेनी दयाल कुछ दिनों तक एक रियलिटी शो में जज के रूप में भी नजर आए। इसके अलावा वो अपने संगीत में ही डूबे रहते हैं, देश विदेश में लगातार स्टेज शोज करते हैं और अपने

बेनी दयाल जब भी किसी गीत में सुनाई देते हैं तो लोग उनकी आवाज को सराहे बिना नहीं रह पाते। बावजूद इसके बेनी सादगी और विनम्रता से भरे हैं। उनके हल्के फुल्के मजाहिया वीडियोस देखकर आप भी ये अंदाजा लगा सकते हैं कि बेनी दयाल अपना जीवन बिल्कुल टेंशन फ्री जीने में विश्वास करते हैं और दिल से संगीत पेश करते हैं। यही बात उन्हें लोगों के दिल में उतारती है। अपनी आवाज से हम सभी के दिलों में बसने वाले बेनी दयाल आगे भी इसी तरह अपनी आवाज का जादू बिखेरते रहेंगे और हम उन्हें सुनकर बस यही

0: के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था स्वैग से भरी आवाज के मालिक बेनी दयाल पर। शोध आलेख और स्वर नेहा शर्मा का। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेज श्री कामले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

किशोर कुमार की आवाज में ये गीत आप सुन रहे थे शर्मीली फिल्म से। नीरज की रचना थी और संगीत दिया था एसटी वर्मन ने। आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं मुकेश की आवाज में। फिल्म का नाम है उपहार।

ये गीत आप मुकेश की आवाज में सुन रहे थे। फिल्म का नाम था उपहार। आनंद बख्शी के लिखे इस गीत को संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का

आप सुन रहे थे फारूख जामी का लिखा कलाम। संगीतकार राजकमल की धुन पर आधारित यह गीत फिल्म सावन को आने दो से लिया गया। आवाज थी येसुदास की। अब सुनते हैं कार्यक्रम में आशा भोसले को।

ये गीत आप सुन रहे थे आशा भोसले की आवाज में। अजीज कश्मीरी का लिखा ये कलाम था। आप सुन रहे थे ओपी नैयर के निर्देशन में बना ये गीत फिल्म ये रात फिर ना आएगी से। अब कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं।

ये गीत आप सुन रहे थे जंजीर फिल्म से। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज थी, गुलशन बाबरा की बोल थे, नगमा निगार थे कल्याण जी आनंद जी। आपको याद दिला दें, आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया है आकाशवाणी का झांसी केंद्र और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रपट संगीत।

ये गीत आप सुन रहे थे मौसम फिल्म से। आवाज थी भूपेंद्र सिंह और लता मंगेशकर की। गुलजार के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया था मदन मोहन ने। इसी गीत के साथ ही आज का चित्रपट संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। FM 103 पर हम आकाशवाणी के झांसी केंद्र से बोल रहे हैं।

अभी आप सुन रहे थे भूपेंद्र सिंह की गाई ये गजल। आपको याद दिला दें, आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया है आकाशवाणी का झांसी केंद्र। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत।

आप सुन रहे थे आशा भोसले की गाई ये गजल। अब कार्यक्रम में सुनते हैं चित्रा सिंह को।

आप सुन रहे थे चित्रा सिंह की गाई ये गजल। कार्यक्रम के आखिर में आइए सुनते हैं जगजीत सिंह को।

जगजीत सिंह की गाई इसी नज्म के साथ ही आज का सुगम संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। एफएम 103 पर हम आकाशवाणी की झांसी केंद्र से बोल रहे हैं। रात के 11 बजने को हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी में समाचार और उसके बाद अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उनके उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है।
1: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि सूर्यमुखी बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रूपये प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रूपये प्रति क्विंटल
1: इन्वेस्टमेंट होगा इसमें टोटल, और 75 मिलियन टन कोल को इसमें गैसीफाई करने के लिए प्रोजेक्ट्स लगेंगे।

0: इन्वेस्टमेंट होगा इसमें टोटल, और 75 मिलियन टन कोल को इसमें गैसिफाई करने के लिए प्रोजेक्ट्स लगेंगे।
1: श्री वैष्णव ने कहा कि योजना से केवल खनन से प्रतिवर्ष 6,300 करोड़ रुपए का राजस्व और 50,000 रोजगार सृजित होगा। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने लगभग 20,667 करोड़ रुपए की लागत से अहमदाबाद सरखेज धौलेरा सेमी हाई स्पीड दोहरी लाइन परियोजना को मंजूरी दे दी है। रेलवे की यह पहली सेमी हाई स्पीड परियोजना होगी। इसे स्वदेशी तकनीक से तैयार किया गया है। मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत नागपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उन्नयन और आधुनिकीकरण को भी मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी से देश के करोड़ों किसानों को उपज के लिए उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि अहमदाबाद धौलेरा सेमी हाई स्पीड डबल लाइन परियोजना देश की रेल संपर्क यात्रा के लिए महत्वपूर्ण है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। 3 व्यक्ति जयपुर से, 1 गुरुग्राम से और 1 व्यक्ति को नासिक से गिरफ्तार किया गया है। अन्य कई संदिग्ध व्यक्तियों की जांच की जा रही है। सीबीआई ने आज इस सिलसिले में कई स्थानों पर छापे मारे और अनेक आपत्तिजनक सामग्री और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किये। पश्चिम बंगाल में नवगठित सरकार ने शिक्षक भर्ती, नगर निगम भर्ती और सहकारी सेवा भर्ती घोटालों से संबंधित मामलों को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया है। एक अन्य निर्णय में राज्य सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, तिलहन, अनाज, पशु उत्पादों और अन्य आवश्यक उत्पादों के अंतर्राज्यीय आवागमन पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि शुक्रवार को श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। केंद्र सरकार ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद को 1 वर्ष का सेवा विस्तार दे दिया है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने आज ये मंजूरी दी। प्रवीण सूद का वर्तमान कार्यकाल इस महीने की 24 तारीख को समाप्त हो रहा था। आईपीएल क्रिकेट में रायपुर में कोलकाता नाइट राइडर्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 193 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक बेंगलुरु ने 6 ओवर में 1 विकेट पर 66 रन बना लिए हैं। कोलकाता की ओर से अंग कृष्ण रघुवंशी ने 71 रनों की पारी खेली। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी। The news read by R.S. Raghu. The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, has approved increase in minimum support prices, MSP, for 14 Kharif crops for marketing season 2026-27. Addressing media after the Union Cabinet meeting in New Delhi, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said, the government has increased the MSP of Kharif crops to ensure remunerative prices to the growers for their produce. Mr. Vaishnaw said, the highest increase of 622 rupees per quintal in MSP has been recommended for sunflower seed, followed by 557 per quintal for cotton and 500 rupees per quintal for sesamum. He said, for grade A paddy, the MSP will be 2,461 rupees per quintal. For Jowar hybrid, it will be 4,023 rupees per quintal. For Bajra, the MSP will be 2,900 rupees. And for Tur, it will be 8,450 rupees per quintal. The Union Cabinet has also approved a scheme for promotion of surface coal and lignite gasification projects with a financial outlay of 37,500 crore rupees. Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, has approved Ahmedabad Sarkhej Dholera Semi-High Speed Double Line Project with a total cost of nearly 20,667 crore rupees. The Union Cabinet has also approved upgradation and modernization of Nagpur International Airport through long-term license involving private partner under public-private partnership. Prime Minister Narendra Modi has said that the Union Cabinet's decision of approving an increase in the minimum support price MSP for Kharif crops